0: नाम का ऐलान किया। आज बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पर मोहर लगा दी। अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने की इनसाइड स्टोरी खुद अमित शाह ने सुनाई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की झांकी दिखेगी। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता और 20 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। मतलब कोलकाता की धरती पर मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। चंद घंटों के बाद शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा।
2: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: 74 सालों बाद बंगाल में बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ है। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार के मिशन और विजन का संपूर्ण ब्लूप्रिंट रखा।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्षद्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है, अब विकास को कोई नहीं रोक सकता।
0: अमित शाह का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब सिर्फ विचारधारा का विस्तार नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी की सरकार का मतलब है बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है।
1: तो इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा, ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
0: बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर नई सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदला। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को रोकना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यही है कि बीजेपी ने शुभेंदु को बंगाल की कमान तो सौंप दी, लेकिन शुभेंदु बंगाल को चुनौतियों के अंबार से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बैनर्जी का 15 वर्ष का शासन उखाड़कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी ही हैं, जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 तक पहुंचा दिया। और इसीलिए बीजेपी ऐलानिया कह रही है कि आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे, आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: अब इसे बीजेपी और अमित शाह की रणनीति कहें या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की खुन्नस, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु के बीजेपी खेमे में आने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिली बल्कि बंगाल में बीजेपी की आज सरकार बनी। तो आइए हम आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी की वो कहानी जिसने आज बंगाल में बीजेपी का सपना साकार किया।
0: 27 नवंबर 2020, अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी के खास सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने थे। आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। 1 दिसंबर की रात 4 दिग्गज एक कमरे में जुटते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची होती है और सुबह सौगत रॉय ऐलान करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में शुभेंदु ने व्हाट्सएप मैसेज से धमाका कर दिया। उन्होंने सौगत रॉय को लिखा कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं, मुझे माफ कर देना।
4: हमारे विश्वासघातक बोलचे के बोलचे जरा 98 साले तृणमूल प्रतिष्ठार परे अटल जी भारत रत्न তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না।
5: তিনবার হেরেছে, 2-3 বার পরপর হেরেছে, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাতি নষ্ট, অতি লোভের এটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
0: 17 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को आधिकारिक तौर पर कहा अलविदा और 19 दिसंबर 2020 को बेदनीपुर के मैदान में भारी जन सैलाब के बीच अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। शुभेंदु ने शाह के पैर छुए और बन गए बीजेपी के सारथी और आज 5.5 साल बाद वही अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के गले में फूलों का हार पहनाकर उन्हें बीजेपी की तरफ से बंगाल की कमान सौंप रहे हैं और शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम होंगे। और आज शुभेंदु अधिकारी की पहचान मेदिनीपुर के चाणक्य से बंगाल के किंग मेकर तक होती है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको ये भी बता दें कि शुभेंदु की असली लड़ाई ममता से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी से है।
6: दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ममता के लिए शुभेंदु काफी मददगार साबित हो रहे थे और ममता उनसे काम भी खूब ले रही थी। ये जुगलबंदी जम भी खूब रही थी। शुभेंदु का पार्टी में रुतबा काफी बढ़ गया था। वो एक तरह से अघोषित नंबर 2 हो गए थे लेकिन तभी ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। यहीं से शुभेंदु के मन में ममता के प्रति दूरी पैदा होने लगी और नौबत पार्टी छोड़ने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के इस पूरे चुनाव को भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की लड़ाई बना दिया क्योंकि राजनीति शुभेंदु को विरासत में मिली। आज नतीजा सबके सामने है। 15 दिसंबर 1970 को मेदिनीपुर के करकुली इलाके में जन्मे शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति की खुशबू भी थी और राजनीति का माहौल भी। दादा खेनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से ऐसी बगावत की कि आजादी से पहले 3 बार उनका घर जलाया गया। पिता शिशिर अधिकारी 25 से ज्यादा साल गांधी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 12 साल के शुभेंदु ने अपने पिता को विधायक बनते देखा और तभी ठान लिया कि उनका रास्ता भी राजनीति ही है। 19 साल की उम्र में शुभेंदु ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। टीएमसी बनने के 2 साल बाद साल 2000 में शुभेंदु कांग्रेस छोड़कर ममता के साथ आए थे लेकिन शुभेंदु के जीवन में बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। दरअसल दिसंबर 2006 में लेफ्ट की बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप के साथ मिलकर बंगाल के नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब बनाने का फैसला किया। किसान इसके खिलाफ थे और जनवरी 2007 में लेफ्ट सरकार के इस फैसले को जमीन पर लागू होने से रोकने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनाई गई, जिसके कमांडर बने शुभेंदु अधिकारी। इस आंदोलन से तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अधिकारी ने ही निभाई थी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उपजे असंतोष के दम पर ही ममता बनर्जी 3 दशक पुराना वामपंथी किला ढहाने में सफल हो पाई थी। नंदीग्राम के बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल का इंचार्ज बनाया। ये इलाका माओवादियों और वामपंथियों का गढ़ था। शुभेंदु ने यहाँ हर बूथ पर टीएमसी की जड़ें मजबूत की और साल 2011 के चुनाव में शुभेंदु ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता बन चुके थे। इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और 34 साल की वामपंथी सरकार का अंत हुआ। सीएम बनी ममता बनर्जी।
4: আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
0: लेकिन ममता का झुकाव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ हुआ तो शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। उनकी सादगी कुर्ता पैजामा चप्पल जो बंगाल के लोगों को पसंद है। ग्रामीण वोटर से अच्छा कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़ यही उन्हें मास लीडर बनाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले अधिकारी ने विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अपनी नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 85.87 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 12,000 रुपए कैश और पीएनबी, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक समेत अन्य बैंकों में उनके खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा होने की जानकारी दी थी। और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बंगाल में बीजेपी के सीएम बनने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर ये जानकारी दे दें। यह खबर बेरोजगारों की है। गुरुवार को बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों ने मांग की है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, इसमें देर न की जाए।
7: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए।
8: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, तियारी फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
9: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो हैं उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
10: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
11: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है।
7: बैरिकेटिंग को हवा में उठा दिया गया है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को उठा दिया गया है।
11: कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है।
7: लाठीचार्ज हो गई है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है, देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है, ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए लाठीचार्ज की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और तबाहतोड़ लाठी चलाई जा रही है, ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है।
11: ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते है कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है।
7: इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी है और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है और ये देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है।
11: पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र है या कोई छात्रा।
12: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी
13: देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टीआरई फोड़ी है, ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना, कोई किसी को कुछ अपवाद वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे, सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे, डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं?
11: दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है।
9: ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए?
14: सर शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती।
9: 2-3 साल पहले?
14: जी जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं, तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे? सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वरगलाने का काम किया जा रहा है।
15: चार बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है।
16: बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2-3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वो गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पीटी मेंस का बहाना कर करके टीआरई को टाला जा रहा है, और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहा है।
11: दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है।
17: इस सरकार मनमानी कर रही है, टीआरई 4 ही इसका एक्सपेरिमेंट है सरकार का। तो यहाँ पे टीआरई 4 में प्री और मेंस की बात हो रही है, तो ये नहीं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस माहौल पे हुआ है उसको, और आज नोटिफिकेशन जारी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बीपीएससी कंट्रोलर बोले थे कि 19 और 20 को हम जारी करेंगे नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, यहाँ तक कि फॉर्म भरने का भी तिथि बता दिया गया था।
11: फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
18: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठी चार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
11: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई? रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
20: शनिदेव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं?

0: क्या है शनिदेव की पूजा के नियम और तरीके, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पश्चिम बंगाल की सियासत का आज ऐतिहासिक दिन। बंगाल के बीजेपी के पहले सीएम के रूप में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। कोलकाता में शुभेंदु के शपथ के साथ होगा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी की अगुवाई में 21 राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम होंगे समारोह में शामिल। 10,000 विशिष्ट मेहमानों के साथ करीब 50,000 लोग होंगे शपथ के साक्षी। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार। लोक भवन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी है तारीख। केरल में फंस गया मुख्यमंत्री का पेच। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान। आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ तुमांशु दीक्षित। और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। बंगाल में आज मेगा शपथ ग्रहण समारोह है। 55 साल के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान भी किया और इसके बाद शुभेंदु लोक भवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आज जब घड़ी में 11 बजेंगे, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृहमंत्री अमित शाह होंगे और इसी के साथ एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा आज पश्चिम बंगाल में लगेगा, ब्रिगेड ग्राउंड में लगेगा, जहां अमित शाह की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेगा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। ब्रिगेड ग्राउंड में यह भव्य आयोजन किया जाएगा और 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विशिष्ट लोगों को वीवीआईपी पासेस भी दिए गए हैं। 1,00,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, 10,000 निमंत्रण पत्र दिए गए हैं, इन्विटेशन दिए गए हैं,

रेन प्रूफ हैंगर टेंट तैयार किया गया है कि अगर बारिश होती है तो दिक्कत ना हो, जैसे हम बिहार में देख चुके हैं। बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। झालमुड़ी और सौंदेश जो कि बंगाल की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, उसके स्टॉल लगेंगे, लोग आएंगे, झालमुड़ी खाएंगे। 1000 वीवीआईपी मेहमानों को भी न्योता दिया गया है कि वो यहां पर आए और इस बदलाव के साक्षी बने। अब सुरक्षा के लिए 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ब्रिगेड ग्राउंड में, ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके इंतजाम आज किए गए हैं, क्योंकि भारी भीड़ होगी। और भीड़ हो भी क्यों ना, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है जिसके लिए बीजेपी बहुत लंबे वक्त से लड़ती आ रही थी, जनता के बीच जा रही थी। जनता ने बंगाल में बीजेपी को चुना और अब आज मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। लेफ्ट और टीएमसी के बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी का राज देखने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जहां बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस खास मौके के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना है। इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जहां अमित शाह की अगुवाई में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया।
1: मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे।
0: अमित शाह ने इस दौरान साफ किया कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से अब बंगाल की जनता को आजादी मिलने जा रही है।
2: ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा।
0: ये पहला मौका है जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में इस मौके को शाह ने सपना पूरा होने जैसा बताया।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है।
0: आज तक ब्यूरो।
3: कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐतिहासिक राजनीतिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है, जहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और बीजेपी इस समारोह को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति और परंपरा के बड़े प्रदर्शन के रूप में पेश कर रही है। करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है, जबकि 1,00,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है। और देखिए, जैसा आपको बताया था कि बारिश की संभावना को देखते हुए विशाल रेन प्रूफ टेंट यहां पर लगाए गए हैं। समारोह स्थल पर भी छाऊ, गमीरा और पाउल कलाकारों की प्रस्तुति होगी। दक्षिणेश्वर और काली मंदिर थीम पर सजावट के साथ सुंदरबन और टेराकोटा कला की झलक भी यहां पर दिखाई देगी। झालमुड़ी होगी, रसगुल्ले होंगे, सौंदेश जैसे बंगाल के पारंपरिक स्वाद भी समारोह में हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 4,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और देखिए, ये आप समझिए कि इतने लंबे वक्त बाद बीजेपी यहां पर आ रही है पहली बार। 30 सेक्टर में पूरे मैदान को बांटा गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर हो रहा यह समारोह राजनीतिक संदेश के साथ बंगाली अस्मिता को भी केंद्र में रखेगा।
4: ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर हूँ, यही पर शुभेंदु अधिकारी का कल शपथ समारोह होगा। तैयारियां चल रही हैं, जो आप स्टेज देख रहे हैं हमारे पीछे, उसी स्टेज पर शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिलाया जाएगा बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। भाजपा का एस्टिमेट है कि लगभग 50,000 लोग यहाँ पर कल मौजूद होंगे जब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। और उसके साथ साथ जो इंतजाम किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि जो पीछे में स्टेज है उस स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उनके अलावा जितने भाजपा शासित राज्य हैं, जितने एनडीए की गवर्न स्टेट्स हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। भाजपा के लिए बहुत ही खास दिन होगा क्योंकि पहली बार बंगाल में भाजपा का एक मुख्यमंत्री होने जा रहा है, तो इसलिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज रात भर तैयारियां चलेंगी। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो इसलिए एक स्पेशल टेंट का भी यहां पर इंतजाम किया गया।
3: पूर्वी मिदनापुर के कांती स्थित किशोरी नागर सचेंद्र शिक्षा सदन में आज जश्न का माहौल है क्योंकि स्कूल के पूर्व छात्र शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने की खबर ने पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है। स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और पूर्व विद्यार्थियों ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि यह स्कूल के लिए सम्मान की बात है और इससे छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। विज्ञान शिक्षक ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने यहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी और बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। एक लैब असिस्टेंट जो उनके जूनियर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि स्कूल के दिनों में से ही उनकी नेतृत्व क्षमता साफ नजर आती थी। कक्षा 10 के छात्र भी इस खबर से उत्साहित हैं और उन्हें गर्व है कि उनके इलाके और उनके स्कूल से कोई व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बना है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद जब शुभेंदु अधिकारी कांती आएंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
5: पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो कि इसी स्कूल यानी कि किशोर नगर सचिंद्र शिक्षा सदन से परे थे और यही स्कूल में बचपन कटी थी शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि वो कांती के रहने वाले है पूर्व मेदिनीपुर से। और कोई ऐसी सीएम बहुत दिनों बाद कोलकाता की बाहर यानी जिले से मिल रहा है, अनुप्रेरणा है और साथ ही में गर्व की माहौल है इस वक्त उनके स्कूल में।
6: अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में वो पढ़े हैं और कांटे का चीफ मिनिस्टर अगर वो हो जाए तो अच्छा, बहुत अच्छा है। बंगाल का चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर हो जाए तो हम लोगों का बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कांटे से पहला एक चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलेगा। और सब अच्छे है क्योंकि हम लोगों का स्कूल में पढ़े है वो सर जी, मैं उसको आपको प्रणाम करता हूँ।
7: ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कैसा फीलिंग हो रहा है?
8: तो हम पहले कांतीवासी होकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कांती का ही आदमी आए तो यहाँ का जो शिशिर बाबू था उनके पिता, वो उनको हम लोग बोलते थे कांती का रूपकार है, तो उनके बेटा वो भी ये होने से हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात है, शुभेंदु बाबू इस स्कूल का स्टूडेंट थे, लगभग बहुत साल पहले वो 8th क्लास तक यहाँ पर पढ़े थे, उसके बाद दूसरा स्कूल में गया कांती का स्कूल में, तो अच्छा ही लगेगा।
3: तो देखिए, स्कूल की जब बात की जा रही है तो स्कूल में कैसे जश्न मनाया गया जब उनका एक पहले पढ़ा हुआ छात्र शुभेंदु अधिकारी इस राज्य का मुख्यमंत्री अब बनने जा रहे हैं, तो वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये तो हॉल ऑफ फेम में लगाई जाएंगी क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जब शुभेंदु अधिकारी स्कूल में थे। और कई तस्वीरें ऐसी हैं जो अब बहुत यादगार होने जा रही हैं और युवा अवस्था में शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें हैं। तो जो शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे बड़े कमांडर थे, आज वो ममता के सिंहासन पर काबिज होने जा रहे हैं। कैसा रहा शुभेंदु का सीएम तक का सफर, आपको दिखाते हैं।
2: मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
9: जिस नंदीग्राम से ममता की सियासत का उदय हुआ, उसी नंदीग्राम से ममता को शुभेंदु ने शिकस्त दी। जिस भवानीपुर को ममता ने अपना गढ़ बनाया, उस भवानीपुर में ममता शुभेंदु से मात खा गई। अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज वो सत्ता का सिंहासन शुभेंदु के लिए तैयार है। ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को चुना। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है। और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन रही है, तो सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ी थी और 19 दिसंबर 2020 को बीजेपी ज्वाइन की थी। और तृणमूल छोड़ने के सिर्फ 64 महीने के अंदर शुभेंदु ने बीजेपी को बंगाल में बंपर जीत दिला दी।
2: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए।
9: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव करके कैसे दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई। और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक राज्य में कोई ऐसा लोकल नेता नहीं होता जो सीधे ममता के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती देता, तब तक बंगाल जीतना मुश्किल था। इसीलिए बीजेपी की तलाश शुभेंदु पर आकर खत्म हुई। शुभेंदु ममता के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
10: बंगाल में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
9: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन शुभेंदु अपना मन बना चुके थे और दिसंबर 2020 में वो बीजेपी से जुड़ गए।
10: कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
9: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु ममता के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बने। वो अपने गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़े तो ममता ने भी उन्हें सबक सिखाने की ठानी। ममता शुभेंदु के खिलाफ लड़ने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई, वही नंदीग्राम जहां से ममता का उदय हुआ था। जानकार बताते हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के आंदोलन का बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी थे। ममता ने शुभेंदु के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गईं। शुभेंदु पहले ही कह चुके थे कि अगर नंदीग्राम नहीं जीता तो राजनीति छोड़ दूंगा।
11: हाफ लाख भोटे जुदी माननिया के आनाते ना पारी आमी राजनीति छेड़े देबो, आमी राजनीति छेड़े देबो, आपनी लिखे राखो।
9: और ऐसा ही हुआ, यहीं से शुभेंदु अधिकारी का उदय हुआ। उन्होंने 2021 में बीजेपी को न सिर्फ 77 सीटें दिलाई बल्कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया। फिर आया 2026 का चुनाव, शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
12: शुभेंदु भाई हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं ममता के घर में जाकर उसको हराना है।
9: अब शुभेंदु की इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: तो बंगाल में अब शुभेंदु राज शुरू होने जा रहा है। कभी ममता की राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ कर बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बंगाल में इतिहास रचते हुए बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और बीजेपी की इस जीत के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने बंगाल में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 207 सीटों तक पहुंचाया है। इसीलिए बीजेपी आज ऐलानिया कह रही है, आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, राज तिलक की करो तैयारी।

0: बंगाल में परिवर्तन का नाम बनकर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का नया चेहरा बनकर छाए हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रचा, तो इस जीत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा, शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ कर बीजेपी ने बंगाल में जिस बदलाव की दस्तक दी है, उस बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को मिली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने वाले आर्किटेक्ट हैं, जिसके लिए बीजेपी ने दशकों का इंतजार किया। तभी तो मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए अमित शाह बंगाल में सत्ता पाने के सपने को फिर से दोहराते हैं।
1: कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से ले।
0: जी हाँ, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब लिखा था, आज वही बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के किले को ढहा चुके हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को जाता है। जिस बीजेपी ने बंगाल में कभी 3 सीटें जीती थी, आज वो 207 सीटें जीतकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही चुनाव में शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और साल 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामते ही दीदी को दो दो बार चुनाव में हरा दिया।
2: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
3: वहीं तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब मामला फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। 118 मिल गए, आप सरकार बनाइए। अब टीवीके के पास 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 मिला लीजिए, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2 विधायक समर्थन दे चुके हैं, यानी कुल संख्या हुई 116। लेकिन बीसीके के 2 विधायक अभी तक खुलकर समर्थन देने के लिए आगे नहीं आए हैं। कल तो ये खबर आ गई थी कि बीसीके भी समर्थन दे रही है और आंकड़ा हो गया 118, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले दावा किया जा रहा था कि इन दोनों दलों का समर्थन मिलने के बाद टीवी के बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी और विजय आज चेन्नई के नेहरू ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी समारोह में शामिल होने की चर्चा थी कि वो आज पहुंचेंगे शपथ ग्रहण में। अब नई जानकारी ये है कि बीसीके आज तय करेगी कि समर्थन देना है या फिर नहीं देना है। अब ये भी खबर आ रही है सूत्रों से कि पार्टी डेप्यूटी सीएम पद की मांग कर रही है। 2 विधायक हैं और डेप्यूटी सीएम की उप मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यही रही कि पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा टूट गया और कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इन चुनावों में बहुत कुछ हुआ। एक बहुत बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हार गई। डीएमके एआईएडीएमके लंबा राज चला रहा था तमिलनाडु पे, दोनों धराशायी हो गए और टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 107 सीटों के साथ विजय, थलपति विजय छा गए, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़े हैं क्योंकि बहुमत 118 स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीसी के समर्थन देगी नहीं देगी ये आज स्पष्ट होगा, क्योंकि दो विधायक हैं उप मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है, जो सूत्रों से खबर मिली है, और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि 118 विधायकों का बहुमत विजय दिखा पाएंगे क्या आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बहुत जल्द स्पष्ट होगा। सीएम शपथ पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है तमिलनाडु में। कई बार राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से परोस।
5: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
8: शनिदेव की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं? शनि देव की पूजा की सावधानियां क्या हैं और शनि देव की पूजा का सरल तरीका क्या है? क्या है शनि देव की पूजा के नियम और तरीके, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
9: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

पश्चिम बंगाल की सियासत का आज ऐतिहासिक दिन। बंगाल के बीजेपी के पहले सीएम के रूप में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। कोलकाता में शुभेंदु के शपथ के साथ होगा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी की अगुवाई में 21 राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम होंगे समारोह में शामिल। 10,000 विशिष्ट मेहमानों के साथ करीब 50

Bon gal. केरला में फंस गया मुख्यमंत्री का पेच, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान। आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता। बंगाल में शुभेंदु के पीए हत्याकांड की जांच यूपी तक पहुंची, सुराग की तलाश में यूपी पहुंची एसआईटी। चंद्रनाथ की हत्या में इस्तेमाल दूसरी बाइक भी बरामद।

बंगाल में आज मेगा शपथ ग्रहण समारोह है। 55 साल के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया और उसके बाद शुभेंदु लोक भवन में राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृहमंत्री अमित शाह होंगे और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी का राज है, सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है। आज सुबह 11 बजे का इंतजार है जब शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी और शपथ समारोह में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के साथ इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने जा रही है।

0: पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। लेफ्ट और टीएमसी के बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी का राज देखने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जहां बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस खास मौके के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना है। इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जहां अमित शाह की अगुवाई में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया।
1: मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए छेन, सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे।
0: अमित शाह ने इस दौरान साफ किया कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से अब बंगाल की जनता को आजादी मिलने जा रही है।
2: ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा।
0: ये पहला मौका है जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में इस मौके को शाह ने सपना पूरा होने जैसा बताया।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है।
0: आज तक ब्यूरो।
3: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल R.N. रवि उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 294 में से 207 सीटें जीतकर 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया, 2/3 बहुमत से ज्यादा। कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जब अमित शाह की रैली थी, अमित शाह संबोधित कर रहे थे उस दौरान, और अब पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोलकाता में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरे ब्रिगेड ग्राउंड को 30 सेक्टर में बांटा गया है। ड्रोन और छोटे विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, जबकि कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के दिन हो रहा यह समारोह राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों लिहाज से बहुत खास माना जा रहा है। तो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐतिहासिक राजनीतिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है, जहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब बीजेपी समारोह को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति और परंपरा के बड़े प्रदर्शन के रूप में पेश कर रही है। करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, इसी जगह पर 1,00,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है यहां। अब बारिश अगर हो, बारिश की संभावना को देखते हुए एक बहुत बड़ा रेन प्रूफ टेंट लगाया गया है। समारोह स्थल पर छाऊ, गमीरा और बाउल कलाकारों की प्रस्तुति होगी, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाएगा। दक्षिणेश्वर और काली मंदिर थीम पर सजावट के साथ सुंदरबन टेराकोटा कला की झलक भी यहां दिखाई देगी। झालमुड़ी होगी, रसगुल्ला होगा और सौंदेश जो यहाँ की पारंपरिक स्वाद है वो भी समारोह का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां होंगे। सुरक्षा के लिए 4000 पुलिसकर्मी यहां होंगे। 30 सेक्टर में ये पूरा मैदान बांटा गया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, राजनीतिक संदेश के साथ बंगाली अस्मिता का भी आज केंद्र में रखा जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं यहां पर, क्योंकि आज बीजेपी के लिए तो बहुत अहम दिन है, कई सालों का इंतजार और आज सफलता। पूर्वी बिद्दापुर के कांथी स्थित किशोरे नगर सचेंद्र शिक्षा सदन में आज जश्न का माहौल है, क्योंकि इस स्कूल के एक पूर्व छात्र यानी शिवेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने की खबर ने पूरे इलाके को गौरवान्वित कर दिया। स्कूल के शिक्षकों, छात्र और पूर्व विद्यार्थियों ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रधान अध्यापक का तो कहना है कि यह स्कूल के लिए सम्मान की बात है और इससे छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी। विज्ञान शिक्षक ने कहा कि शिवेंदु अधिकारी ने यहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी और बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। वहीं एक लैब असिस्टेंट जो उनके जूनियर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि स्कूल के दिनों में उनकी नेतृत्व क्षमता साफ नजर आती थी। कक्षा 10 के छात्र भी इस खबर से बहुत उत्साहित हैं और उन्हें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उनके इलाके, उनके स्कूल से कोई व्यक्ति आगे जाकर राज्य का मुख्यमंत्री बना है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद जब भी शुभेंदु अधिकारी यहां पर आएंगे, कांथी आएंगे, तो उनका बहुत जोरदार स्वागत किया जाएगा।
4: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो कि इसी स्कूल यानी कि किशोर नगर सचिंद्र शिक्षा सदन से परे थे और यही स्कूल में बचपन कटी थी शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि वो कांथी के रहने वाले हैं, पूर्व मेदिनीपुर से, और कोई ऐसी सीएम बहुत दिनों बाद कोलकाता की बाहर यानी जिले से मिल रहा है। अनुप्रेरणा है और साथ ही में गर्व की माहौल है इस वक्त उनके स्कूल में।
5: अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में वो पढ़े हैं और कांटेक्ट का चीफ मिनिस्टर अगर वो हो जाए तो अच्छा, बहुत अच्छा है। बंगाल का चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर हो जाए तो हम लोगों का बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कांटेक्ट से पहला एक चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलेगा और सब अच्छा है, क्योंकि हम लोगों का स्कूल में पढ़े हैं वो सर जी। मैं उसको आपको प्रणाम करता हूँ।
6: कैसा फीलिंग हो रहा है?
7: तो हम पहले कांथीवासी होकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कांथी का ही आदमी है, तो यहाँ का जो शिशिर बाबू था, उनके पिता, वो उनको हम लोग बोलते थे कांथी का रूपकार है, तो उनके बेटा वो भी ये होने से हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात है, शुभेंदु बाबू इस स्कूल का स्टूडेंट थे लगभग बहुत साल पहले, वो 8th क्लास तक यहाँ पर पढ़े थे, उसके बाद दूसरा स्कूल में गया, कांथी का स्कूल में, तो अच्छा ही लगेगा।
3: भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं की सूची लगातार लंबी होती गई है और अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा है और आज शपथ लेंगे 11 बजे। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी रहे शुभेंदु, 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। अब बिहार में सम्राट चौधरी भी ऐसे नेता हैं जो आरजेडी और जेडीयू से होते हुए बीजेपी तक पहुंचे और मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने उन्हें आउटसाइडर पृष्ठभूमि के बावजूद नेतृत्व सौंपा। पूर्वोत्तर में बीजेपी के कई भारी पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर दाव लगाए हेमंत बिस्व शर्मा, प्रेमा खांडू कांग्रेस से बीजेपी में आए अरुणाचल के SCM, वहीं मानिक साहा कांग्रेस छोड़ने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा आप देखिए एन बीरेन सिंह, बसवराज बोम्बई, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, ये जोंग अपांग भी दूसरे दलों से आकर बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरों में शामिल रहे हैं। और लंबी लिस्ट है जो दूसरे दल से आए, बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली।

0: तो आज कई बड़ी खबरें, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, देश को नया CDS मिलने वाला है, लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि देश के नए CDS होंगे और ये CDS जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। 30 मई को CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो ऐसे में अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और अब उनकी जगह पर आर सुब्रमणि नए CDS होंगे। ये बहुत अहम जानकारी इस वक्त आपको दी जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि होंगे इस देश के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान की जगह लेंगे आर सुब्रमणि। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शिवानी, क्या जानकारी आ पा रही है?
1: जानकारी इस वक्त मिली है कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि, जो इस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर नियुक्त हैं, वो अगले CDS बनने वाले हैं और सरकार ने उनकी नियुक्ति तय कर दी है और ये भारत के तीसरे CDS होंगे। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, उनके निधन के बाद जनरल अनिल चौहान CDS बने और अब जब वो 30 तारीख को सुपर एनुएट होने वाले हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे पहले ये फैसला लिया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि, जो कि सेंट्रल कमांड के GOC भी रहे, उनको ये नियुक्ति की जाएगी। और बहुत ही अहम इसलिए भी है हिमांशु, क्योंकि भारत लगातार थिएटराइजेशन पर, जॉइंटनेस पर काम कर रहा है, किस तरह से भारत की तीनों सेनाओं के अंग मिलजुल कर काम करेंगे उस पर पूरा फोकस है। इस लिहाज से ये जो अपॉइंटमेंट है ये बेहद अहम हो जाता है और सबसे पहले ये सूचना आज तक पर दर्शकों को मिल रही है कि अगले CDS भारत के कौन होने वाले हैं, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि।
0: शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात तमिलनाडु की राजनीति की, तमिलनाडु की राजनीति में समय बहुत बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब मामला फिर से फंसता हुआ दिख रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए आधे से ज्यादा यानी 118 विधायकों का समर्थन। TVK के पास 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 विधायक उनके साथ हैं, CPI के 2 हैं और CPIM के 2 विधायक समर्थन दे चुके हैं। कुल संख्या हो गई 116, लेकिन VCK के 2 विधायक अभी तक खुलकर समर्थन देने के लिए आगे नहीं आए, कभी हाँ कभी ना, अटके हुए हैं। पहले यह दावा किया जा रहा था कल तक कि दोनों दलों का समर्थन मिलने के बाद TVK बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी और विजय आज चेन्नई के नेहरू ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तैयारियां भी इसकी बहुत पहले से की जा रही थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भी शामिल होने की बात चल रही थी समारोह में, लेकिन अब ये जानकारी है कि VCK आज तय करेगी कि समर्थन देना है या नहीं देना है। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि VCK को चाहिए उप मुख्यमंत्री पद यानी डेप्यूटी CM, ये सूत्रों से खबर आ रही है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि पहली बार DMK और AIADMK का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा टूट गया और TVK सबसे बड़ी पार्टी बनी। मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने अरब सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने USS ट्रक्सटन, USS राफेल पेराल्टा और USS मैसोन युद्ध पोतों की तस्वीरें अब जारी की हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये तीनों अमेरिकी डिस्ट्रॉयर फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं और ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी अभियान को समर्थन दे रहे हैं। यह भी दावा किया गया है कि अब तक 57 कारोबारी जहाजों का रास्ता बदला गया है, जबकि 4 जहाजों को निष्क्रिय किया गया है ताकि वो ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या वहां से बाहर ना निकल सके। अब ईरान को लेकर अमेरिका की यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई जब पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, वहीं इस तैनाती से खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों को लेकर भी चिंता गहरा गई है। मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अमेरिकी वायुसेना की F-16 फाइटर जेट की तस्वीर जारी की। सेंटकॉम ने कहा है कि मध्यपूर्व में तैनात अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह से मिशन रेडी हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये वो तस्वीर है जो जारी की गई है और ये बताया गया है कि कैसी भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। सेंटकॉम की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध खत्म कराए हैं और एक और संघर्ष को सुलझाने में भूमिका निभाई है। ट्रंप ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि एक और बड़ा विवाद भी खत्म हो सकता है। उन्होंने खासतौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं और युद्ध विराम को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं।
2: I would do it if I thought it would help. I'd do it. I'd love to see that war end. I've settled 8 wars and actually 9, and now it looks like we could have 10. But I would love to make that the 10th. I will tell you. I would love to see an end between Russia, Ukraine, that war.
0: और अब आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर पर खबरदार करते हैं और बेरोजगारों के हक की है ये खबर। कल ही बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और कल ये देखा गया कि पटना की राजधानी में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकले जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा ये मामला है जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों की मांग है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए, देरी ना हो। आपको फिर बता दें कि परसों ही विस्तार हुआ है कैबिनेट का बिहार में।
3: लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए,
4: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
5: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
6: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है।
7: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है। पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गईं, सामने छात्र हैं या कोई छात्रा।
3: आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप
4: देखिए, मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है, ये महिलाओं पे पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना।
0: वक्त तो चला बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

पश्चिम बंगाल की सियासत का आज ऐतिहासिक दिन। बंगाल के बीजेपी के पहले सीएम के रूप में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। कोलकाता में शुभेंदु के शपथ के साथ होगा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी की अगुवाई में 21 राज्यों के सीएम डेप्टी सीएम होंगे समारोह में शामिल। 10,000 विशिष्ट मेहमानों के साथ करीब 50,000 लोग होंगे शपथ के साक्षी। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार। लोकभवन सूत्र के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दिए तारीख। केरल में फंस गया मुख्यमंत्री का पेच। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान। आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे नए सीडीएस। जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। 30 मई को रिटायर हो रहे हैं जनरल अनिल चौहान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब कष्ट आते हैं, संघर्ष बढ़ता है, शनि का अशुभ प्रभाव जीवन पर होता है, तो हम सब शनि देव की पूजा करते हैं।

और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सामान्य जीवन में आप शनि देव की पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि देव हैं कौन और आम जीवन में इनकी क्या भूमिका है। देखिए, शनि देव ग्रहों में न्यायकर्ता माने जाते हैं। हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पीछे और काम का जो जीवन में फल मिलता है, उस फल के पीछे शनि ही हैं। व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी, कैसा रोजगार करेगा, कैसा करियर होगा और जीवन में कितना संघर्ष होगा, ये शनि के द्वारा ही डिसाइड होता है। शनि को प्रसन्न करके और अपने आचरण को बेहतर करके व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है और शनि देव की पूजा करके, साधना करके करियर और धन के मामले में सफलता पा सकता है। अगर आप ये समझ जाएं कि शनि देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन सावधानियों का, किन बातों का ध्यान रखना है, उसको समझ करके अगर आप शनि देव की पूजा करें तो आपको तुरंत लाभ होगा, तुरंत इसके शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो अगर शनि संबंधी कोई कष्ट है जीवन में या जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में शनि देव की पूजा करनी चाहिए। उस पूजा को करने से आपको लाभ होगा। शनि देव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन आसानी से मिलेगा,
स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा।

के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि जब आप शनि देव की पूजा करेंगे तो शनि देव की पूजा में किन सावधानियों का पालन करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, शनि देव की मूर्ति के दर्शन करना और शनि देव की मूर्ति के सामने जाना उचित नहीं है। शनि देव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने मत करिएगा। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करिएगा जहां पर वो शिला के रूप में हैं, वहीं पर शनि देव की पूजा करना उचित होगा। अगर शिला वाला मंदिर नहीं मिलता तो ऐसे समय में प्रतीक के रूप में शमी के पौधे की या पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। शनि देव की पूजा अगर आप शिला के सामने कर रहे हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो उनके लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना सर्वोत्तम है। लेकिन शनि की शिला या मूर्ति पर तेल उड़ेल कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उससे बढ़िया है कि आप शनि देव को तेल अर्पित करके किसी निर्धन व्यक्ति को तेल का दान कर दें। जो लोग शनि देव की पूजा करना चाहते हैं या नियमित रूप से शनि देव की पूजा करते हैं उनको अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। एक तरफ आप शनि देव की पूजा करें, दूसरी तरफ लोगों को कष्ट दें, लोगों को अपशब्द बोलें, लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो शनि देव की पूजा के साथ अपना खान पान सुधारिए, अपना आचरण और अपना व्यवहार बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा। शनि देव की पूजा पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्या से राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि।

की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रंजीता सिंह जी ने हमें लिखा है। रंजीता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1978। जन्म का समय शाम के 5:45। जन्म का स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग की नौकरी करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है और मैं अपना ट्रांसफर रोकना चाहती हूँ, ट्रांसफर नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा ट्रांसफर रुक सके। रंजीता जी, हाल फिलहाल में ट्रांसफर रुकने की संभावना नहीं दिख रही है। जहां आपका ट्रांसफर हुआ है वहां जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोशिश करिएगा। उस समय आप वापस जहां पहले नौकरी कर रही थी वहां पर या उसके आसपास आ जाएंगी। अभी परिवर्तन दोबारा से होना या अभी ट्रांसफर का रुक जाना संभव नहीं लग रहा है, तो 2-4 महीने की बात है, ज्वाइन कर लीजिए। साल के अंत में वापस आप आ जाएंगी अगर आप प्रयास करती हैं तो। सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा। एक मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपको बहुत लाभ होगा। तो शनि देव की पूजा की सावधानियां आपने समझ ली। अब सामान्य जीवन में अगर आप शनि देव की पूजा करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, आइए जानते हैं। देखिए, शनिवार के दिन पहले आप भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा, क्योंकि शनि देव जिसकी पूजा करते हैं वो श्री कृष्ण हैं और शनि देव के गुरु हैं भगवान शिव। तो शनिवार के दिन शनि की पूजा करने के पहले भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। इसके बाद शाम के समय शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। अगर रोज करें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम शनिवार की शाम को 1 माला, 3 माला, 5 माला शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जरा सा जल डालिएगा और उसके बाद पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि शनि देव आपके ऊपर कृपा करें। जब शनि देव की पूजा कर लें तब किसी गरीब व्यक्ति को एक समय का भोजन कराएं या खाने पीने की वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन भूल कर भी तामसिक आहार ग्रहण मत करिए। अगर आप शनि देव की कृपा चाहते हैं तो शनिवार के दिन
मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप सरल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, रोज ना भी कर पाए, केवल शनिवार के शनिवार इस तरीके से शनिदेव की पूजा करें, तो आपको शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शनिदेव की पूजा किन मंत्रों के साथ करनी चाहिए, उन मंत्रों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, आप रोज शनि देव की पूजा ना भी करें तो कम से कम शनिवार की शाम को शनि देव के लिए मंत्रों का जप करना चाहिए और मंत्र से शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी अनुकूल होते हैं। आपको कुछ मंत्र बताते हैं, जो मंत्र आपको सरल लगता है उस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। पहला मंत्र शनि का सबसे सरल मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार इस मंत्र को अगर आप निरंतर पढ़ते रहें तो करियर के मामले में दिक्कत नहीं होगी, जीवन में संघर्ष कम होगा। दूसरा मंत्र शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। अगर 7:30 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है जिसमें आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, तब रोज शाम को शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। तीसरा जो मंत्र है वो शनि देव का वैदिक मंत्र है। अगर शनि की मारक महादशा आ गई या शनि की बड़ी खराब दशा आ गई तब इस मंत्र का जप करना चाहिए, कम से कम 11 माला रोज शाम को। मंत्र है, ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये। ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः, संयो रभि स्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप नियमित रूप से करने से शनि की मारक महादशा का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी आप शनि देव का मंत्र जपने जा रहे हैं, आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर भी शनि देव का मंत्र पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर में शनि का मंत्र नहीं जपना चाहिए। आप अपने घर में संध्या काल में शनि देव का मंत्र जप सकते हैं। घर में शनि देव का चित्र आदि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सामान्यतः पूजा स्थान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से या लाल चंदन की माला से आप शनि देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला से अगर शनि देव के मंत्रों का जप करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव की वो मूर्ति जिसमें उनकी आंखें हों, ऐसी मूर्ति के दर्शन करने से मना किया जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है, ज्योतिष ऐसा मानता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर, जिस ग्रह पर या जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि के सामने जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी मुश्किल आ सकती है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते।

नंबर दो, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर तीन, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर चार, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर पांच, परिवार में विवादों से बचाव करें। नंबर छह, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर सात, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नंबर आठ, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर नौ, रुके हुए काम आज आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करेंगे।

रोजगार की समस्या में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ दो लौंग रख करके मीटिंग में जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

राशि के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। तुला राशि को बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है, सूर्य देव की सबसे महत्वपूर्ण तिथि, इसलिए आज सूर्य देव को जल चढ़ा के प्रार्थना करने से लाभ होगा। और आज थोड़ा सा समय निकाल कर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

शिवेंद्र अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। गृहमंत्री अमित शाह ने शिवेंद्र अधिकारी के नाम का किया ऐलान। सुबह 11 बजे कोलकाता में होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी होंगे मेहमान। बीजेपी विधायक दल के नेता चुनेगा शिवेंद्र अधिकारी। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। शिवेंद्र अधिकारी ने अमित शाह का जताया आभार। शिवेंद्र अधिकारी बोले, भय आउट भरोसा इन, महिलाओं की सुरक्षा और विकास का वादा। बंगाल की संस्कृति संघ होगा भव्य शपथ समारोह। पीएम मोदी अमित शाह समेत 21 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। चंद्रनाथ वध हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दूसरी बाइक बरामद। फर्जी नंबर प्लेट से बड़ी जांच की पेचीदगी, पुलिस ने तेज की कार्रवाई। शिवेंद्र अधिकारी के करीबी की हत्या मामले में एसआईटी टीम यूपी रवाना। तकनीकी और फील्ड इनपुट जुटाने में जुटी जांच एजेंसियां। बरसात में दूसरी बाइक बरामद, एयरपोर्ट इलाके में मिली पहली बाइक के बाद दोनों वाहनों की नंबर प्लेट फर्जी निकली। 7 से 8 हमलावरों की आशंका, 4 पहिया वाहन की तलाश में पुलिस। यूपी बंगाल लिंक की भी जांच में जुटी एजेंसियां। 36 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, बॉर्डर जिलों में हाई अलर्ट। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मदद से जांच जारी। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार, 116 विधायकों के समर्थन के दावे के बीच राज्यपाल ने अभी तक नहीं दी तारीख। लोक भवन सूत्र के मुताबिक विजय को फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, बहुमत के लिए जरूरी संख्या पर संशय कायम। तमिलनाडु में नई सरकार गठन पर पेच फंसा, राज्यपाल की मंजूरी और शपथ तारीख को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता जारी। गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बंगाल और असम चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, चुनाव चोरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा, बंगाल और असम में सरकार ने चुनाव में गड़बड़ी की, एसआईआर प्रक्रिया में लाखों नाम हटाए गए। टीवीके ने जारी किया वीडियो, एआईडीएमके विधायक कनगराज के समर्थन पत्र को लेकर सियासी विवाद गहराया, पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। टीवीके का बड़ा आरोप, टीवी दिनाकरण फैला रहे हैं गलत जानकारी, समर्थन पत्र को लेकर बयानबाजी और घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में टीवीके को लेकर याचिका दायर हुई, राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने का न्योता देने और शपथ की प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज। टीवीके की याचिका में दावा, 2026 चुनाव में त्रिशंकु परिणाम, टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। बहुमत विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पहले शपथ और फिर फ्लोर टेस्ट की मांग की। केरलम में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत का दावा, 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों के साथ सरकार गठन की तैयारी तेज। नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में खींचतान तेज हो गई है, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के नामों पर अंदरूनी चर्चा जारी। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री चुनने को लेकर सत्ता और पद पाने की होड़ में लगी है। केरल में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज, बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस गठबंधन में असमंजस बरकरार। असम में कांग्रेस की बड़ी समीक्षा बैठक, आज गुवाहाटी में जिला इकाइयों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस संगठन में गहन समीक्षा, सभी उम्मीदवारों से लिया जा रहा है फीडबैक। 126 सीटों में सिर्फ 19 सीटें मिलने पर कांग्रेस का आत्ममंथन, चुनावी रणनीति और संगठन पर होगी विस्तृत चर्चा। जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक, चुनावी नतीजों पर होगी गहन समीक्षा। असम कांग्रेस में हार के बाद सुधार की कवायद तेज, संगठन को मजबूत करने और रणनीति बदलने पर जोर। मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मानसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मानसून के बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यही होती है मानसूनी बारिश। उत्तराखंड में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी, मौसम बिगड़ने की संभावना। 10 मई से सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी, बारिश के पहले तेज हवाएं चलने की संभावना। टीसीएस धर्मांतरण मामले में नेता खान की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना से नेता संजय शिरसाट का आरोप, एआईएमआईएम और उसके नेता इम्तियाज जलील पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की महासचिव को मारी गोली, अस्पताल में इलाज। छपरा में दुर्घटना का शिकार हुई कलाकारों से भरी पिकअप वैन, 3 लोगों की मौत, कई घायल। हमीरपुर में दबंगों ने बारात रोक कर की बेरहमी से मारपीट, कार से खींचकर दूल्हे को सर फोड़ कर किया लहूलुहान। कोटा में वरमाला के बाद दुल्हन परिवार समेत फरार, दूल्हा पक्ष बोला 4 लाख लेकर गायब। दिल्ली के स्कूलों का सीएम रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ पानी को लेकर अधिकारियों को निर्देश। क्लासरूम में सीएम रेखा ने बच्चों से की बातचीत, साफ पानी से लेकर साफ सफाई के भी आदेश दिए। गांधीनगर में एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2.0 आयोजन, अहमदाबाद एयरपोर्ट को 2030 तक विश्व स्तरीय बनाने की योजना।
दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 डॉक्टर रवीश कमल को आयुर्वेदिक त्वचा देखभाल और इम्यूनिटी रिसर्च के लिए वीजा पुरस्कार मिला। ले में वी सपोर्ट पीस अभियान का जोरदार समर्थन, जैन आचार्य लोकेश मुनि ने विश्व शांति बनाए रखने की अपील की। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने गई आबकारी टीम पर महिलाओं का हमला, हमलावर महिलाओं ने पुलिस और अधिकारियों को खदेड़ दिया। गांव बनाचाव ने अभी भी आबकारी विभाग की दो गाड़ियों पर गांव वालों का कब्जा, नाम सहित 45 और 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, आरोपियों में ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। द्वारका के समुद्री तट पर एक बार फिर बरामद हुई चरस, हर्षद दरिया तट से कई किलो अवैध चरस का बैग की तस्वीर सामने आई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर छेड़छाड़ के मामले में तीर्थयात्रियों पर हमला, कुछ अज्ञात युवकों ने महिला तीर्थयात्रियों के साथ छेड़छाड़ भी की। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में टेस्टिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, धमाके में दो मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक। गोंडा में पुलिस ने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के वाहन ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से सोना चांदी बरामद। आगरा में आयकर विभाग के एक रिकवरी इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या, इनकम टैक्स ऑफिस के साथ ही मंदिर से कूदकर इंस्पेक्टर ने जान दी। राजनांदगांव में पद्मश्री फूल बासन यादव अपहरण मामले में 5 आरोपित गिरफ्तार, आरोपियों में 2 महिला पुरुष और 3 पुरुष शामिल। पुणे में MIDC इलाके में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, तेंदुए खुलेआम घूमता दिखा CCTV में। मेरठ में खेत से तेंदुए का रेस्क्यू किया, घंटों की मेहनत के बाद विभाग ने सुरक्षित पकड़ा। ओडिशा के बालासोर में युवक को पीटते दिखी भीड़, युवक पर महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप। ACB ने विद्युत विभाग की लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, 25,000 की रिश्वत मांगी थी। अररिया में एक तरफा प्यार में युवक ने 17 साल की लड़की को गोली मार दी, मौके पर ही मौत। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 AMU छात्रों सहित 12 गिरफ्तार, 6 अवैध हथियार बरामद। सहारनपुर में खूंखार कुत्तों का कहर, कुत्तों ने 110 भेड़ों को नोचा, पशुपालक बहुत नुकसान हुआ। KKR की IPL में लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 142 रन बनाए, कोलकाता ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। फिनलैंड की नाबाद 100 रन की तूफानी पारी, 47 गेंदों में लगाए 5 चौके 10 छक्के। कैमरून गिन के साथ कोलकाता की आसान जीत, दिल्ली की प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका, KKR की उम्मीदें बरकरार। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज, दादी की शादी मैं एक्टर नहीं हूं समेत कई फिल्में रिलीज सिनेमाघरों में। दादी की शादी में एक्ट्रेस नीतू कपूर, एक्टर कपिल शर्मा समेत कई कलाकार, रिद्धिमा कपूर सानी ने दादी की शादी से किया डेब्यू। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा, सतरूपा की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं मैं थिएटर्स ने दस्तक दी, शाहबाज की काली सच्चाई, शोबिज की काली सच्चाई दिखाने में कमजोर पड़ी फिल्म। अल्ताफ खान, ऋत्विक पारिक की सटायर ड्रामा मिस्ट्री जग जग सिनेमाघरों में रिलीज, समाज की अंधश्रद्धा पर कटाक्ष करती है फिल्म। हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट 2 दुनिया भर में रिलीज हुई, कार्ल अर्बन, एडलाइन रुडोल्फ, जेसिका मैकनेमी और लुइस ट्रैन मुख्य भूमिका में। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला की धूम, 21 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़ के पार। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़ पहुंचा, इतिहास बनाने के करीब। दुनिया भर में फिल्म पैट्रियट का जलवा बरकरार, दुनिया भर में 73 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पर जुनैद खान साई पल्लवी की जोड़ी का नहीं चला जादू, फिल्म एक दिन में एक हफ्ते में महज 4 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 अब OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, 14 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई, कहा अब तक 8 से 9 युद्ध रुकवाने में निभाई भूमिका। रूस यूक्रेन युद्ध को ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह बताया, हर महीने 25,000 जवानों की मौत का दावा। ट्रंप बोले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम 3 दिन से ज्यादा चले, युद्ध खत्म होना चाहिए, दुनिया के लिए अच्छा होगा। हंटा वायरस पर ट्रंप का बयान, स्थिति नियंत्रण में है, कोविड जैसा खतरा नहीं है, विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को धमकी दी, कहा अगर अमेरिकी सेना पर हुआ मिसाइलों से हमला तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का बड़ा बयान, कहा जब भी कूटनीतिक समाधान सामने होता है अमेरिका करता है लापरवाही भरा सैन्य अभियान। ईरान ने हॉर्मुज़ जल डबरूबंदी पर अमेरिका और बहरीन के UN में रखे गए मसौदे को खारिज किया, UN में ईरान के दूत ने कहा प्रस्ताव संकट की मूल वजह पर नहीं है केंद्रित।
ईरानी दूत ने मसौदे को पूरी तरह खामियों से भरा और राजनीतिक रूप से बताया प्रेरित। ईरान ने कहा समुद्री नाकेबंदी हटे और हॉर्मुज को सामान्य आवाजाही में बहाल। चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान का हॉर्मुज में चीनी क्रू वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ। हमले के वक्त जहाज पर चीनी नागरिक मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के बीच बातचीत की। ईरान को लेकर दोनों देशों में सरकारों में चल रहा है तनाव। इटली के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका और यूरोप को है एक दूसरे की जरूरत। ईरान युद्ध खत्म होने के बाद इटली हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में मदद कर सकता है। रूसी विदेश मंत्री ने दी यूक्रेन और उसके मददगार देशों को बड़ी धमकी का रूस के विक्ट्री डे परेड को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कोई दया नहीं करेगा रूस। रूसी सरकार की ओर से आया बड़ा बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूरोपीय नेताओं समेत सभी से बातचीत के लिए तैयार। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर किया दौरा का हाल के महीने में सेना ने कुछ छोटे इलाकों पर फिर से हासिल किया है नियंत्रण।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
12: It's your boy,
3: just
12: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
13: So they were disallowed from speaking their language.
3: In-depth conversations with A-list celebrities.
14: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
3: True crime podcasts you just can't stop listening to.
15: Others escape justice to live and die in infamy. These
3: plus the news and sports content you crave in podcast form.
16: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
3: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
17: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
18: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
19: विक्रम एक हिंट तो देते
20: विक्रम
19: हिंट
18: बड़े आराम से
21: और वही कहाँ गए थे घूमने
22: जीके मैक्स
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
22: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
23: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट
23: जेके मैक्स
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
24: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
25: बहुत टायर्ड हो गई
26: No added sugar, preservative के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
27: लायन डेट नट बाइट्स
28: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए
29: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे
30: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
31: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील TMT से बना
32: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड
33: द
0: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है.
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
7: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
8: विमल, बोलो जुबा केसरी.
9: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
11: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि बंगाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि कातिल पूरी तैयारी के साथ आए थे और भागने का रूट भी पहले से तय था। अब सवाल यही है, कातिल कौन थे, कहां से आए और हत्या के बाद कहां गायब हो गए। जांच में पुलिस को जो सुराग मिले हैं उससे साफ है कि पूरी वारदात कई लेयर वाली साजिश का हिस्सा थी। हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर शामिल, हत्या से पहले कई दिनों तक रेकी, फर्जी नंबर प्लेट वाली कार बाइक, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग, विदेशी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल, भागने के लिए अलग अलग रूट तैयार। जांच की सबसे अहम कड़ी बनी है कातिलों का एस्केप रूट। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। शुरुआती फुटेज में हमलावरों की बाइक और कार अलग अलग रास्तों पर जाती दिखाई दी। जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या के बाद शूटर पहले एयरपोर्ट इलाके की तरफ भागे, फिर 12-7 और बेलघरिया कनेक्टर के रूट इस्तेमाल हुए। कुछ मोबाइल फोन वारदात के बाद अचानक स्विच ऑफ हुए, कई संदिग्ध नंबर बंगाल से बाहर के मिले। पुलिस को सुपारी किलिंग मॉड्यूल का शक। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब मोबाइल टॉवर डंप डेटा और सीसीटीवी फुटेज को मैच कर रही है ताकि हमलावरों की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की जा सके। जांच उस वक्त और दिलचस्प हो गई जब हत्या में इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट फर्जी निकली। कार नंबर WB741-227 असल मालिक सिलीगुड़ी निवासी जेम्स विलियम्स, बाइक नंबर पश्चिम वर्धमान RTO में रजिस्टर्ड। दिए गए पते पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, यानी कातिलों ने सिर्फ हत्या की प्लानिंग नहीं की थी

0: पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी राउत का आगाज। सीएम के रूप में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। शुभेंदु के शपथ समारोह में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 10,000 विशिष्ट मेहमान, 50,000 होंगे शपथ के साक्षी। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार। लोक भवन सूत्र के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी है तारीख। केरलम में फंस गया मुख्यमंत्री का पेच। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान। आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता। और लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि होंगे नए सीडीएस। जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, 31 मई को संभालेंगे पद। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथ होंगे नए नेवी चीफ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल को आज एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, नाम शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन होंगे और कई केंद्रीय मंत्री मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कल कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना था और ये उसी वक्त की तस्वीर है। मुस्कुराते हुए चेहरे और मुस्कुराए भी क्यों ना, क्योंकि लंबे वक्त का इंतजार, एक बहुत लंबा अरसा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने की चाहत और अब वो सफल भी हुई और अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस जगह की है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल की ये तस्वीरें हैं जब तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। 10,000 खास मेहमान आएंगे, 50,000 से 1,00,000 लोगों तक जुटने की बात कही जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी का राज है, जहां सत्ता की चाबी अब शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है। और आज सुबह 11 बजे शपथ समारोह है, जहां बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के साथ इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने जा रही है।

0: मंत्री भी शामिल होंगे, जहां बीजेपी को मिलेगा। इस मौके के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना है। इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जहां अमित शाह की अगुवाई में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया।
1: मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे ग्यारंटी दिए छेन, सब ग्यारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे।
0: अमित शाह ने इस दौरान साफ किया कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से अब बंगाल की जनता को आजादी मिलने जा रही है।
2: ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, ना राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा।
0: ये पहला मौका है जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में इस मौके को शाह ने सपना पूरा होने जैसा बताया।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है।
0: आज तक ब्यूरो।
3: चलिए रुक करते हैं अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी का। और अनुपम, बंगाल की हर एक खबर, हर एक हलचल सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे हैं। अनुपम, आज का दिन ऐतिहासिक है, बीजेपी से यादगार बनाना चाहेगी, शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। आज क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त आज सेट है बंगाल में?
4: जी देखिए, आज रविंद्र जयंती है और इस दिन को शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना गया है। तो पिछले एक दो दिनों से ही गहमा गहमी बनी हुई है और थोड़ी देर में ही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद से कार्यक्रम शुरू होगा। 11 के आसपास शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे तो और प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को बुलाया गया है, जो अभी तक बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सेलिब्रिटीज, पश्चिम बंगाल से बहुत जो सेलिब्रिटीज हैं, गणमान्य लोग हैं, या फिर जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो काफी सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर जो कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।
3: अब बिल्कुल ये बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात, रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़कर आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ, हम दोबारा में आपसे जुड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आरएन रवि पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाएंगे। और जैसा आपको बताया, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और भी वीवीआईपी कई मेहमान जिनको निमंत्रित किया गया है, वो यहां पर आएंगे और इस पल के साक्षी बनेंगे। और बड़ी तैयारियां की गई हैं, यादगार मनाया जाएगा आज के दिन को, और बनाया भी क्यों ना जाए। और खास दिन चुना गया है जब रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए बंगाल और रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध कुछ ऐसा है जैसे शरीर और प्राण, या मिट्टी और उसकी खुशबू। तो आज का दिन बेहद खास है जिसको आज चुना गया है।
5: मैं अभी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अंदर हूँ। यहीं पर शुभेंदु अधिकारी का कल शपथ समारोह होगा। तैयारियां चल रही हैं, जो आप स्टेज देख रहे हैं हमारे पीछे, उसी स्टेज पर शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिलाया जाएगा बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। भाजपा का एस्टिमेट है कि लगभग 50,000 लोग यहां पर कल मौजूद होंगे जब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। और इसके साथ साथ जो इंतजाम किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि जो पीछे में स्टेज है उस स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके अलावा जितने भाजपा शासित राज्य हैं, जितने एनडीए की गवर्न स्टेट्स हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। भाजपा के लिए बहुत ही खास दिन होगा क्योंकि पहली बार बंगाल में भाजपा का एक मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो इसलिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज रात भर तैयारियां चलेंगी। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो इसलिए एक स्पेशल टेंट का भी यहां पर इंतजाम किया गया।
3: पूर्वी बिंदापुर के कांती स्थित किशोरी नगर सचेंद्र शिक्षा सदन में आज जश्न का माहौल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस स्कूल के एक पूर्व छात्र शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने की खबर ने पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है। स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और पूर्व विद्यार्थियों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रधानाध्यापक का कहना है कि यह स्कूल के लिए सम्मान की बात है और इससे छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। विज्ञान शिक्षक ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने यहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी और बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। वहीं एक लैब असिस्टेंट जो उनके जूनियर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि स्कूल के दिनों से ही उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत स्पष्ट दिखाई देती थी। कक्षा 10 के छात्र भी इस खबर से बहुत उत्साहित हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके स्कूल का एक व्यक्ति जो वहां से पढ़ा हुआ है वो वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब स्कूल प्रशासन कह रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद जब भी शुभेंदु अधिकारी कांती आएंगे तो उनका बहुत जोरदार स्वागत किया जाएगा।
6: पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो कि इसी स्कूल यानी कि किशोर नगर सचिंद्र शिक्षा सदन से परे थे और यही स्कूल में बचपन कटी थी शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि वो कांथी के रहने वाले हैं, पूर्व मेदिनीपुर से। और कोई ऐसी सीएम बहुत दिनों बाद कोलकाता की बाहर यानी जिले से मिल रहा है, अनुप्रेरणा है और साथ ही में गर्व की माहौल है इस वक्त उनके स्कूल में।
7: अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में वो पढ़े हैं और कॉन्टे का चीफ मिनिस्टर अगर वो हो जाए तो अच्छा, बहुत अच्छा है। बंगाल का चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर हो जाए तो हम लोगों का बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कॉन्टे से पहला एक चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलेगा। और सब अच्छा है क्योंकि हम लोगों का स्कूल में पढ़े है वो सर जी। मैं उसको आपको प्रणाम करता हूँ।
3: तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं की सूची लगातार अब लंबी होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का नाम तो उसमें जुड़ गया है, नया नाम जिन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल के वो अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शपथ भी लेंगे। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे सहयोगी शुभेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बिहार में सम्राट चौधरी भी ऐसे नेता हैं, आरजेडी और जेडीयू से होते हुए बीजेपी तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने। पूर्वोत्तर में बीजेपी के कई बाहरी पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर दाव लगाया। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, 2021 में असम के मुख्यमंत्री बने। पेमा खांडू कांग्रेस से बीजेपी में आए, अरुणाचल में लगातार सत्ता बरकरार रखी। मानिक साहा कांग्रेस छोड़ने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। और इसके अलावा एन बीरेन सिंह, बसवराज बोम्मई, सर्वानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, गेगोंग अपांग दूसरे दलों से आई है और ये दूसरे दलों से आए और उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरों में शामिल रहे हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसमें ये नया नाम जुड़ गया है और ये तस्वीर भी अब लग जाएगी जिसमें शुभेंदु अधिकारी 2020 में अमित शाह की रैली में ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और उसके बाद लगातार ममता बनर्जी को उन्होंने हराया, सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे और अब विधायक दल के नेता चुने गए और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। और यह भी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई विशिष्ट अतिथि, कई बड़े मेहमान पहुंच चुके हैं। कोलकाता पहुंच चुके हैं। अब यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो कई बड़े नेता आपको दिखाई देंगे। देखिए हिमंता बिस्व शर्मा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम आप यहां पर देख रहे हैं पहुंच चुके हैं, और कई बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल में। और ये बताया गया है कि कई वीवीआईपी पासेस जारी किए गए हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुपम, कौन कौन से दिग्गज इस वक्त पहुंच चुके हैं?
8: ये देखिए, कल रात से ही दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री के भी आने की बात है और ऐसे में प्रोग्राम सुबह 11 बजे ही शुरू हो जाएगा, तो ज्यादातर लोग कल ही पहुंच चुके हैं। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं, और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सेलिब्रिटीज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और ज्यादातर लोग कल रात से ही उनका आना शुरू हो गया था और आज सुबह वो लगातार उतर रहे हैं एयरपोर्ट पर, और थोड़ा सा विश्राम करके 11 बजे से पहले आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सब शामिल होंगे।
3: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम। और एक से एक बड़े दिग्गजों का जमावड़ा आज लगने वाला है, क्योंकि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है पश्चिम बंगाल में। और अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अभिनेता से नेता बने हैं विजय, उनकी पार्टी टीवी के सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई थी। अब थी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल तक लग रहा था कि सब शॉर्ट हो गया, लेकिन अभी मामला फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 234 सीटें वाली तमिलनाडु विधानसभा में 118 चाहिए सरकार बनाने के लिए। टीवीके के पास 107 है, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 विधायक समर्थन दे चुके हैं, यानी कुल संख्या 116 है लेकिन चाहिए 118। वीसीके के 2 विधायक अभी तक खुलकर अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, कभी हाँ कभी ना कह रहे हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है सूत्रों से कि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। अब आज ये स्पष्ट होगा कि समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। तो विजय ने कैसे अपने लिए जीत की राह तय की है? सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनाई और उसके बाद ऐसा कमाल किया कि तमिलनाडु की राजनीति को पलट कर रख दिया। ऐसा कैसे हुआ आप जानना चाह रहे होंगे, तो एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।

पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। लेफ्ट और टीएमसी के बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी का राज देखने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और राज्यों के

0: तमिलनाडु में शुरू होने वाला है विजय राज। वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं।
1: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवीके ने ध्वस्त किया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी, लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेंसी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये है कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री बन रहे हैं थलपति विजय। आज तक पेरो।
1: और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर का बयान आया है। मणिकम ने कहा है कि जिन लोगों को तमिलनाडु ने नकार दिया वो विजय को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि विजय को सीएम बनने से रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। हम सभी बाधाओं को पार करके विजय को सीएम बनाएंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
2: I have no idea how this election is going to play out,
1: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
13: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
14: विक्रम, एक हिंट तो देते।
15: विक्रम!
14: हिंट
13: बड़े आराम से।
16: Director, the taste of success.
17: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
18: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
19: लायन डेट नट बाइट्स।
20: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
22: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रोफाइबर है।
1: माइक्रोफाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है,
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
4: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
6: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
7: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
8: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
7: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
9: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
6: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
10: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी राज का आगाज। सीएम के रूप में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। शुभेंदु के शपथ समारोह में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी समेत 21 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। 10,000 विशिष्ट मेहमान, 50,000 से ज्यादा लोग शपथ के साक्षी होंगे। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार। टीवीके के पास अभी 116 विधायकों का ही समर्थन। तोड़फोड़ के डर से कांग्रेस ने 5 विधायकों को बेंगलुरु किया शिफ्ट। 10 बजे चेन्नई में AIADMK की बैठक।

वेणुगोपाल और वी डी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान, आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता। और लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे नए सीडीएस, जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, 31 मई को संभालेंगे पद। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथ होंगे नए नेवी चीफ।

शिवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। गृहमंत्री अमित शाह ने शिवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। आज सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चंद्रिका शुभेंदु अधिकारी, आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को जताया आभार, बोले भय आउट भरोसाहीन, महिलाओं की सुरक्षा और विकास का वादा। बंगाल की संस्कृति संग होगा भव्य शपथ समारोह, पीएम मोदी अमित शाह और 21 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दूसरी बाइक बरामद, फर्जी नंबर प्लेट से बड़ी जांच की पेचीदगी, पुलिस ने तेजी कार्रवाई। शिवेंदु अधिकारी के करीबी के हत्या मामले में एसआईटी टीम यूपी रवाना, तकनीकी और फील्ड इनपुट जुटाने में जुटी जांच एजेंसियां। बारासात में दूसरी बाइक बरामद, एयरपोर्ट इलाके से मिली पहली बाइक के बाद दोनों वाहनों की नंबर प्लेट फर्जी निकली। 7 से 8 हमलावरों की आशंका, चार पहिया वाहन की तलाश में पुलिस, यूपी बंगाल लिंक की भी जांच जारी। 36 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, बॉर्डर जिलों में हाई अलर्ट, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मदद से जांच तेज। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार, 116 विधायकों के समर्थन के दावे के बीच राज्यपाल ने अभी तक नहीं दी तारीख। लोकभवन सूत्र के मुताबिक विजय को फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, बहुमत के लिए जरूरी संख्या पर संशय कायम। तमिलनाडु में नई सरकार गठन पर पेच फंसा, राज्यपाल की मंजूरी और शपथ तारीख को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता जारी। गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बंगाल और असम चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, चुनाव चोरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा बंगाल और असम में सरकार ने चुनाव में गड़बड़ी की, एसआईआर प्रक्रिया में लाखों नाम हटाए गए। टीवीके ने जारी किया वीडियो, एएमएम के विधायक कनक राज के समर्थन पत्र को लेकर सियासी विवाद गहराया, पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। टीवीके का बड़ा आरोप, टीटीवी दिनाकरण फैला रहे हैं गलत जानकारी, समर्थन पत्र को लेकर बयानबाजी और घमासान जारी। सुप्रीम कोर्ट में टीवीके को लेकर याचिका दायर, राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने का न्योता देने और शपथ को प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। टीवीके की याचिका में दावा, 2026 चुनाव में त्रिशंकु परिणाम, टीवीके 108 विधायक सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी। बहुमत विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पहले शपथ और फिर फ्लोर टेस्ट की मांग की। कांग्रेस गठबंधन को बहुमत का दावा, 140 सदस्य विधानसभा में 102 सीटों के साथ सरकार गठन की तैयारी तेज। नए मुख्यमंत्री को लेकर केरल कांग्रेस में खींचतान तेज, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के नाम पर अंदरूनी चर्चा। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री चुनने को लेकर सत्ता और पद पाने की होड़ में लगी है। केरल में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज, बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस गठबंधन में असमंजस। समय कांग्रेस की बड़ी समीक्षा बैठक आज गुवाहाटी में जिला इकाई और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस संगठन में गहन समीक्षा, सभी उम्मीदवारों से फीडबैक लिया जा रहा है। 126 सीटों में सिर्फ 19 सीटें मिलने पर कांग्रेस का आत्ममंथन, चुनावी रणनीति और संगठन पर विस्तृत चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक, चुनावी नतीजों पर गहन समीक्षा होगी। असम कांग्रेस में हार के बाद सुधार की कवायद तेज, संगठन को मजबूत करने और रणनीति बदलने पर जोर। गुजरात के गिरनार में जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल, हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क, कई मौके पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार कराया जा रहा है सड़क। वन विभाग हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रहा तैयारी, कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की योजना। जूनागढ़ वन विभाग की लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन चलाएं धीमे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों का सफर रेस्क्यू, बिगड़ते मौसम की वजह से फंसे थे। दिल्ली के स्कूलों का सीएम रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ पानी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। क्लासरूम में सीएम रेखा ने बच्चों से बातचीत भी की। गांधीनगर में एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2.2 का आयोजन, अहमदाबाद एयरपोर्ट को 2030 तक विश्व स्तरीय बनाने की योजना। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन किए। मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मानसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मानसून के बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यही बारिश होती है। उत्तराखंड में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी, मौसम बिगड़ने की संभावना।
10 मई से सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी, बारिश के पहले तेज हवाएं चलने की संभावना। पटना में कल शाम आए आंधी और बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति, घंटों जाम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला भी पचेल गोलंबर के पास जाम में फंसा रहा, तेजस्वी यादव एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर अपने आवास के लिए निकले। झारखंड के रामगढ़ में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, स्थानीय लोगों ने मिलकर पाया काबू। नासिक धर्मांतरण और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक, नासिक में लव जिहाद मामले की संदिग्ध निता खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत। भोपाल में टीटी की गुंडागर्दी, एसी कोच में चढ़ने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मारा घूसा, ट्रेन छूटने के डर से एसी कोच में चढ़ी थी महिला। झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाजार में मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, कई की हालत गंभीर। द्वारका में बवाल, पुलिस युवकों की झड़प के बाद 5 राउंड फायरिंग, धार्मिक कार्यक्रम की रैली के दौरान पुलिस और युवकों के बीच कहासुनी ने बड़ा विवाद ले लिया। कानपुर में आईएएस का साला चूड़ी कारोबार की हत्या करके फरार हो गया, हत्या से पहले कारोबारी को घटनास्थल पर लाता हुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हत्यारा। गुजरात एसओजी ने भावनगर में बड़ी कार्रवाई की, 5 बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया, बांग्लादेशी सिम कार्ड मिले। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार पिता और पुत्री की मौत, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने गई आबकारी टीम पर महिलाओं का हमला, हमलावर महिलाओं ने पुलिस और अधिकारियों को खदेड़ दिया, गांव छावनी बन गया। अभी भी आबकारी विभाग की 2 गाड़ियों पर गांव वालों का कब्जा है, 45 नामजद, 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, ज्यादातर महिलाएं। द्वारका के समुद्री तट पर एक बार फिर बरामद हुई चरस, हर्षद दरिया तट से कई किलो अवैध चरस की बैग दिखे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर छेड़छाड़ के मामले में तीर्थयात्रियों पर हमला हो गया, कुछ अज्ञात युवकों ने महिला तीर्थयात्रियों के साथ छेड़छाड़ की। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में टेस्टिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, धमाके में 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक। गोड्डा में पुलिस ने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के बहाने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से सोना चांदी बरामद। आगरा में आयकर विभाग के एक रिकवरी इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली, इनकम टैक्स ऑफिस की 7वीं मंजिल से कूदकर इंस्पेक्टर ने जान दी। राजनांदगांव में पद्मश्री फूल बासन यादव अपहरण मामले में जांच, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आरोपियों में 2 महिला और 3 पुरुष शामिल। पुणे के MIDC इलाके में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मेरठ में खेत से तेंदुए को रेस्क्यू किया गया, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। ओडिशा के बालासोर में युवक को पीटने की भीड़, युवक पर महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप। बीजेपी ने विद्युत विभाग के लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, 25,000 की रिश्वत मांगी थी। अररिया में एक तरफा प्यार में युवक ने 17 साल की लड़की को गोली मार दी, मौके पर मौत हो गई। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 AMU छात्र सहित 12 गिरफ्तार, 6 अवैध हथियार बरामद। सहारनपुर में खूंखार कुत्तों का कहर, कुत्तों ने 110 भेड़ों को नोचा। KKR की IPL में लगातार 4th जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 142 रन बनाए, कोलकाता ने 14 ओवर में ही हासिल कर लिया लक्ष्य। फिन एलन ने 47 बॉलों में 100 रन की पारी खेली, 5 चौके 10 छक्के मारे। कैमरून ग्रीन के साथ कोलकाता की आसान जीत, दिल्ली की प्लेऑफ उम्मीदों को झटका, KKR की बरकरार। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का गुजरात टाइटंस से मुकाबला, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज, दादी की शादी मैं एक्टर नहीं हूं समेत कई फिल्में रिलीज। दादी की शादी में एक्ट्रेस नीतू कपूर, कपिल शर्मा सहित कई कलाकार, रिद्धिमा कपूर साहनी ने दादी की शादी से डेब्यू किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सतरूपा की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं ने थिएटर्स में दस्तक दी, शोबिस की काली सच्चाई दिखाने में कमजोर हुई। अल्ताफ खान, ऋतिक पारी की सटायर ड्रामा मिस्ट्री डग डग सिनेमाघरों में रिलीज, समाज की अंधश्रद्धा पर कटाक्ष करती है फिल्म। हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट 2 दुनिया भर में रिलीज हुई, कार्ल अर्बन, एडलाइन रुडोल्फ, जेसिका मैकनेमी और लुइस टेन मुख्य भूमिका में। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला की धूम, 21 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन 63 करोड़ पहुंचे। दुनिया भर में फिल्म पैट्रियट का जलवा बरकरार, दुनिया भर में 73 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया।
बॉक्स ऑफिस पर जन्नत खान साई पल्लवी की जोड़ी का नहीं चला जादू। फिल्म एक दिन में एक हफ्ते में महज 4 करोड़ का बिजनेस कर पाई। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। 14 मई को नेटफ्लिक्स पर। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई। कहा अब तक 8 से 9 युद्ध रुकवाने में भूमिका निभा चुका। रूस यूक्रेन युद्ध को ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह बताया। हर महीने 25,000 जवानों की मौत का दावा। ट्रंप बोले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम 3 दिन से ज्यादा चले, युद्ध खत्म होना दुनिया के लिए अच्छा होगा। हंटर वायरस पर ट्रंप का बयान, स्थिति नियंत्रण में, कोविड जैसा खतरा नहीं है, विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को धमकी दी। कहा अमेरिका सेना पर हमला हुआ मिसाइलों से तो हम भी जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का बड़ा बयान। कहा जब भी कूटनीतिक समाधान सामने होता है अमेरिका लापरवाही भरा सैन्य ऑपरेशन करता है। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर अमेरिका और बहरीन के यूएन में रखे गए मसौदे को खारिज किया। यूएन में ईरान के दूत ने कहा प्रस्ताव संकट की मूल वजह पर नहीं है केंद्र। ईरानी दूत ने मसौदे को पूरी तरह खामियों से भरा और राजनीतिक रूप से बताया प्रेरित। ईरान ने कहा समुद्री नाकेबंदी हटे और हॉर्मुज़ आवाजाही हो। चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा हॉर्मुज़ में चीनी क्रू वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ, हमले के वक्त चीनी नागरिक मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की। ईरान को लेकर दोनों देशों में तनाव चल रहा है। इटली के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका और यूरोप को है एक दूसरे की जरूरत। ईरान युद्ध खत्म होने के बाद इटली हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के काम कर सकता है। रूसी विदेश मंत्री ने दी यूक्रेन और उसके मददगार देशों को बड़ी धमकी। कहा रूस के विक्ट्री डे परेड को बिगाड़ने की कोशिश की तो कोई दया नहीं करेगा यूरोप। रूसी सरकार की ओर से आया बड़ा बयान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूरोपीय नेताओं समेत सभी से बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दक्षिण पूर्वी मोर्चे का किया दौरा। कहा हाल के महीनों में सेना ने कुछ छोटे इलाकों को फिर से नियंत्रित किया है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:24 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन आसानी से मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कर्क राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्या से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि,

की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
4: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: विक्रम, एक हिंट तो देते।
6: विक्रम!
5: हिंट।
7: बड़े आराम से।
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
10: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद।

धोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी सरकार के जश्न में शामिल होगी टॉप लीडरशिप। शुभेंदु की शपथ में पीएम मोदी से लेकर 21 राज्यों के मुख्यमंत्री तक। कोलकाता में 10,000 विशिष्ट मेहमान। आज तक पर पल पल की कवरेज। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय। तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर। लोक भवन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट।

केरलम में फंस गया मुख्यमंत्री का पेच, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान। आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता, राहुल और खड़गे लेंगे अंतिम फैसला। और लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे नए सीडीएस, जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, 31 मई को संभालेंगे पद। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे नए नेवी चीफ।

0: शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी।
1: नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
2: पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
0: आउट फॉर साइन।
3: नमस्कार आदाब, मैं हूं मारिया शकील और मैं सीधे आ रही हूं आपके लिए कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड से। यहां पर कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो 21 राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब कलकत्ता पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन जहां अक्षता है वहां पर अभी भी सस्पेंस जारी है, क्योंकि सस्पेंस अब ये है कि वीसी के एक जो एक अहम पार्टी के तौर पर उभरी है, जिनके पास दो एमएलए हैं, वो अब तय करेंगे कि

0: तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वीसीके क्या तय करेगी अक्षिता आज?
1: गुड मॉर्निंग मारिया और हमारे सब दर्शकों को वनक्कम चेन्नई से। हमको लग रहा था कल कि बंगाल के साथ आपके सिटी कोलकाता के साथ यहाँ पे चेन्नई में भी एक बहुत धमाकेदार शपथ ग्रहण देखेंगे 11 बजे को, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि कल रात जो एक नया ट्विस्ट आया था गेम में और जो फिल्म स्क्रिप्ट चल रहा है तमिलनाडु में, उसके वजह से अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाले हैं। शायद अगले 24 घंटे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा तमिलनाडु में। लेकिन आप सही बोल रहे हो कि विजय के पास अभी भी नंबर नहीं है मारिया। हमको लगा कि कल जब राज्यपाल के पास गए थे, उनके पास जो मेजोरिटी मार्क है 118 उनकी सिग्नेचर्स के साथ गए थे, लेकिन पता चला कि नहीं 116 सिर्फ था। तो एक दो और सिग्नेचर्स चाहिए और कुछ नहीं मारिया। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा शोडाउन हो रहा है तमिलनाडु में कि अभी भी स्टेल में चल रहा है। तो हाँ, आज स्वेरिंग नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा था कि बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्य में एक ही दिन पे एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण देखेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है मारिया। तो अभी के लिए मैं बताऊंगी हमारे दर्शकों को कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्यों ऐसे पॉज किया है शपथ ग्रहण को। तब तक अभी पूरा एक्शन बंगाल में ही है। तो मारिया बता दीजिए हमको कि क्या क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हो रहा है वहां पे।
0: जी, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है अक्षिता, और बंगाल के बहुत ही सारे क्षेत्रों से यहाँ जो कला है वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पीले लिबास में, ये क्या कला है? ये जो है
2: ये मृदंग को सीख होला है, ये भगवान नरोत्तम दास का सृष्टि है। ये हम लोग को भगवान के नाम गाना के बहुत आगे बढ़ रहा है।
0: कीर्तन है,
2: कीर्तन है, संकीर्तन है, भगवान सुचेत्र देव का संकीर्तन है।
0: ये साउथ 24 परगना का,
2: हम लोग साउथ 24 आ रहे हैं।
0: आप लोग कहाँ से आ रहे
2: हैं? साउथ 24 परगना से आ रहे हैं,
3: अलीपुर
2: तत्व संस्कृति दफ्तर, साउथ 24 परगना।
0: तो ये क्या है, जरा दिखा बजा करके दिखाइए।
3: हाँ,

0: चलिए, तो ये जो आर्ट फॉर्म है वो आता है साउथ 24 परगना से, और पीछे में जो स्टेज है जहाँ पर शपथ समारोह होगा वहाँ पर रविंद्र संगीत बज रहा है। तो आज के दिन की अहमियत बताते हैं, आज रविंद्र जयंती है, गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी, जिन्होंने लिखा था जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, इसलिए भाजपा ने ये दिन चुना है। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है बंगाल की जनता को कि वो बंगाल का कल्चर, यहाँ का ईथॉस समझती है। अगर बीजेपी को 207 कमल मिला है, बंगाल की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो बंगाल ने उनको अपना लिया है और वो भी कोशिश कर रहे हैं बंगाल को समझने के लिए। अब चलते हैं पीयूष मिश्रा और अनुपम के पास। पीयूष मिश्रा शुभेंदु अधिकारी को ट्रैक कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, उससे पहले जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री सब यहाँ पर आ चुके होंगे। पीछे में वहाँ पर स्टेज है जो लगभग यहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं और आने लगे हैं। पीयूष, मैं आपके पास आऊँगी। शुभेंदु अधिकारी का आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई?
1: माने अभी तो दिन की शुरुआत उनकी होने वाली है, फिलहाल वो अपने घर में हैं और कुछ देर में निकलने भी वाले हैं और हमारी मौजूदगी उनके घर के ठीक बाहर है। लेकिन यहाँ पर एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है, वो ये तस्वीर है, ये बताती है कि अब शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा कोलकाता पुलिस भी लगी है करने। अब तक हमने सिर्फ सेंट्रल फोर्सेज के जवानों को उनकी सुरक्षा करते हुए देखा, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ। मेरे सहयोगी अंकित अगर अपना कैमरा पैन करके आपको दिखाएं तस्वीर, आप ये देखिए कि कोलकाता पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। हमने ये गाड़ी कभी यहाँ पर नहीं देखी है। ये जो रस्सी यहाँ पर लगी है, ये देखिए, ये जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इससे पहले कभी दिख नहीं है। जो रस्सी यहाँ पर लग रही है उमर, हमने ऐसी रस्सी लगते हुए ऐसी रस्सियां जो लगती हैं जब बैरिकेड जो मीडिया को कोने में किया जाता है, ये हमने तभी देखा है जब ममता बनर्जी कहीं से निकलती हैं और कहीं आती हैं। तो शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री की शपथ आज लेने वाले, लेकिन उनसे पहले ही जो सीएम का प्रोटोकॉल है वो उनको मिल चुका है। विधायक दल के नेता वो कल चुने गए थे, कल हमने देखा कि कैसे एक लंबी बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर उनको विधायक दल का नेता चुना गया था और महज कुछ घंटों की बात है और फिर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे। फिलहाल वो विधायक दल के नेता हैं और यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है, कुछ देर में वो अपने घर से निकलने वाले हैं। जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो यहाँ से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाकर प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जहाँ पर हो रहा है यानी ब्रिगेड ग्राउंड, वहां पर पहुंचेंगे। हो सकता है उससे पहले एक मंदिर भी वो जा सकते हैं, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कालीबाड़ी में जो मंदिर है वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं माता के दर्शन करने के बाद एयरपोर्ट जाकर प्रधानमंत्री को रिसीव करें। लेकिन अभी क्लैरिटी आना बाकी है, फिलहाल तैयारियां जरूर कर ली गई है। कुछ देर में यानी हो सकता है अगले 5 से 7 मिनट में ही शुभेंदु अधिकारी यहां से निकलते हुए हमको नजर आए और जब वो यहां से निकलेंगे तो सीधा उनका दूसरा पड़ाव एयरपोर्ट होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री को रिसीव करके वो सीधा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ये भव्य समारोह है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, कई केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया, एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया गया। तो एक भव्य समारोह वहां ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाला है जहां पर हमारे आप भी मौजूद हैं।
0: जी नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं कलकत्ता, उनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर वो लोग आने लगेंगे। ब्रिगेड ग्राउंड कहा जाता है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहाँ पर जो लार्जेस्ट और सबसे बड़ा कोलकाता का पब्लिक ग्राउंड है ये, और जब टीएमसी और उससे पहले लेफ्ट का यहाँ पर राज चल रहा था। चलिए देखा,
2: पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार भ्रष्टाचार होता था वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। थैंक यू।
0: जी तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है पूरी और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल रही है, पहली बार बीजेपी का बंगाल में मुख्यमंत्री होगा और वो होंगे शुभेंदु अधिकारी, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ 2020 में छोड़ा और 2026 में वो आज भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। जो तैयारी आप देख सकते हैं, और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि वो पैन करके दिखाएं कि किस तरह से भाजपा के लोगों का आना, जो कार्यकर्ता है उनका तांता लगा हुआ है लगातार, और 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और वोटर्स सपोर्टर्स जो बीजेपी के हैं वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे जब शपथ समारोह हो रहा होगा। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और उसके साथ साथ जय बंगला का भी नारा लग रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी हर जगह पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि एक मैसेज साफ देना चाह रही है बीजेपी कि वो बंगाल को समझती है और इसीलिए बीजेपी को बंगाल ने वोट किया है। अनुपम मिश्रा भी यहीं पर से जुड़ गए हैं, वो शायद उस तरफ है, बहुत बड़ा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड और इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड के अगले छोर पर है अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर।
3: जी देखिए, मैं वीआईपी गेट के सामने हूं, जहां पर धीरे धीरे थोड़ी देर में जो वीआईपीज हैं उनकी एंट्री शुरू होगी। यहां पर माइक पर रविंद्र संगीत सुबह से बज रहा है, क्योंकि आज रविंद्र जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड के चारों ओर जो माइक लगाए गए हैं, रविंद्र संगीत की आवाज गूंज रही है। ये वीवीआईपी एंट्री है जहां से जो एमएलएज वगैरह हैं वो प्रवेश करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यहां पर थोड़ी ही देर में जो समागम है वो और गहरा और बड़ा होता जाएगा। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, कार्यक्रम में अभी थोड़ी देरी है, लगभग 2 घंटे का समय है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11-10 बजे से यहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। और ये बड़ी तैयारी है, बड़ा कार्यक्रम है, खास तौर पर बीजेपी के लिए जो पहली बार सत्ता में आ रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना है और यहां पर गर्मी काफी है, लेकिन फिर भी लोगों का तांता जरूर लगा हुआ है। सुबह से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो परिवार हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला सुबह से जारी है। मैं थोड़ी
0: अनुपम, मैं आती हूँ आपके पास। यहाँ पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है, लेकिन अक्षिता जहाँ है वहां पर अभी भी सन्नाटा है और तय नहीं है किस दिन होगा तलपति विजय का शपथ, लेकिन ये भी तय नहीं है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। 107 एमएलएज हैं उनके साथ, उसके अलावा 5 कांग्रेस के, 4 लेफ्ट पार्टीज के, तो अभी उनका टोटल नंबर 116 पर है। मैजिक फिगर है 118 का, लेकिन अक्षिता वो 2 एमएलए कहां से आएंगे अभी तक क्लियर नहीं है पिक्चर। अक्षिता
2: बिल्कुल मार्या, और हमको लग रहा था कि जब कल विजय गए थे राज्यपाल के पास लोकभवन में कल शाम, इतने सिग्नेचर्स थे, 118 सिग्नेचर्स थे उनके पास, लेकिन बिल्कुल नहीं था, 116 थे। हमको यही पता चला कि विजय के पास एक लेटर ऑफ सपोर्ट वीसीके के से आया था। वीसीके एक छोटा दल है जिसके पास 2 सीट है और 2 सीट के साथ वो किंग मेकर बन चुका है इस चुनाव में तमिलनाडु में, और वो किंग मेकर वीसीके जो है एक लेटर दे दिया विजय को, टीवीके को। उस लेटर के साथ विजय ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हो गया, मेरा नंबर तो आ गया, 118 है, और इसलिए लोकभवन आ गए उस लेटर्स के साथ। लेकिन दिक्कत ये था कि उनके पास सिग्नेचर्स नहीं थे। वीसीके एक लेटर दिया था जिसमें सिग्नेचर कुछ नहीं था, और जब आप राज्यपाल के पास गए जाते हो तो वो सिग्नेचर्स चाहिए। प्रॉब्लम और चैलेंज यही है हमारा, जब हम बंगाल और तमिलनाडु को कंपेयर करते हैं, बंगाल में क्लियर बहुमत था बीजेपी के लिए, यहाँ पे हाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय था, 108 या 107 जो भी आप मान लो, क्योंकि विजय 2 सीट पे जीत लिया, 108 के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। लेकिन जब 118 आपकी मेजोरिटी मार्क है, वो 10 कहाँ से आएगा?
4: 5 कांग्रेस से है और उसके बाद जो छोटे दलों है वो ज्यादातर नेगोशिएट कर रहा है। जैसे कि हमको ये भी सुनने आ रहा है कि बीसी के जिसके पास 2 सीट है, जिसके लीडर है तोल तिरुमावलवन, दिल्ली में बैठता है क्योंकि दिल्ली के एमपी है, दिल्ली में एमपी है, और वहां से मतलब बोल रहा है कि मेरे को डेप्यूटी सीएम पोस्ट दे दो। तो ये मान लो कि टीवी के जिसके पास कांग्रेस 5 सीट के साथ है और फिर सीपीआईएम लेफ्ट 4 सीट है, वीसी के 2 के साथ, क्या वो डेप्यूटी सीएम पोस्ट भी मिल सकता है? शायद, क्योंकि विजय अभी डेस्परेट है, बोल रहा है कि जैसे भी मेरे को अभी नंबर्स चाहिए। और शायद आज फॉर द 4th टाइम यहां पे लोकभवन में आएगा और पता नहीं क्या इस बार लकी होंगे कि नहीं, क्योंकि अब तक हर बार गवर्नर के पास आया गया, राज्यपाल के पास आया।
5: लेकिन अक्षिता, ये जो वीसीके का कल रात में ये एक स्टेटमेंट आया था, अक्षिता कल रात में वीसीके का एक स्टेटमेंट आया कि वो आज तय करेंगे कि वो किधर जाएंगे, क्या वो टीवीके के साथ जाएंगे, वो डीएमके के साथ रहेंगे, तो वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर अपना डिसीजन अनाउंस करेंगे या अपना फैसला कैसे वो बताएंगे जनता को?
4: नहीं, तो 10:30 बजे हमको पता चलना होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उस समय हमको यही खबर मिल रहा है मारिया कि वीसीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ करेंगे कि कौन से साइड में है, डीएमके के साथ या टीवीके के साथ, ये भी पता चला। और इसलिए इतना ज्यादा सस्पेंस हो रहा है, मतलब विजय के फिल्म से ज्यादातर जो पॉलिटिकल थ्रिलर है उसमें ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट आ रहा है। ये पता चला कि जब वो लेटर ऑफ सपोर्ट गया था टीवीके के पास और उसके बाद विजय ने आकर राज्यपाल से मिला, उसके बिल्कुल 1 घंटे बाद तिरुमावलवन जो वीसीके के चीफ है एमके स्टालिन से मिल रहा था। और इसके ऊपर इतना सवाल उठ गए कि तोल तिरुमावलवन अगर वीसीके विजय को सपोर्ट दे रहा है तो इस साइड जाकर एमके स्टालिन डीएमके के साथ क्यों मिल रहा है, क्या है एजेंडा, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जितने भी बार हम कॉल कर रहे हैं वीसीके को, कोई कुछ नहीं बोल रहा है मारिया। मेरे को लगता है जो हम देख रहे हैं वो यही है कि वीसीके बोल रहे हैं हमको डेप्यूटी सीएम पोस्ट दे दो, नहीं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी विजय के लिए, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहले बार पॉलिटिक्स में आया है, 2 साल पहले उसका पार्टी शुरू हुआ, उनके पास जितने भी लोग हैं टीवीके में या 1 या 2 लोग का ही एक्सपीरियंस है, नहीं तो सब न्यूबीज है, सब न्यू कमर्स है, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके आप जानते हो इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज है और उनके लिए ऑब्वियसली इतना इजी है मैनिपुलेट करने के लिए। गए हमारे साथ अनघा, हमको ये बताइए कि कब पता चलेगा वीसीके की डिसीजन, कब पता चलेगा और क्या आपको कुछ खबर मिल रहा है कि कौन सा साइड जाएगा? अभी
6: लगभग 10 घंटे में पता चलेगा, एट 10 AM एक प्रेस मीट है, वीसीके का एक प्रेस मीट है, तब हमें पता चलेगा कि क्या तिरुमावलवन उनका सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे पीवीके को। अभी हमें वेट करना चाहिए, पर हमें ये पता चल रहा है कि वीसीके ने एक कंडीशनल डिमांड मांगा है, उनके लिए कैबिनेट डिमांड भी मांगा है, पर वो है डेडलॉक। पीवीके अभी हेजिटेंट है और वीसीके अभी जो डिमांड कर रहे हैं, जो प्लम पोर्टफोलियो, वो टीवीके अभी ओके नहीं किया है, तो इसीलिए इतना देर डिले चल रहा था। पर अभी ये लग रहा है कि वीसीके हैज बज डाउन, इट हैज डायल डाउन इट्स डिमांड्स, वी बिलीव। तो अभी 10 बजे एक प्रेस मीट कॉल किया है तिरुमावलवन, जो पार्टी की चीफ जो है उन्होंने प्रेस मीट कॉल किया है, और हमें तब पता चलेगा कि क्या वीसीके टीवीके को सपोर्ट देंगे। मेरा सोर्सेस ये बोल रहा है कि वीसीके मोर और लेस रेडी है टीवीके को सपोर्ट करने के लिए, पर हमें ऑफिशियल वर्ड के लिए वेट करना चाहिए। पर अभी ये तमिलनाडु के पॉलिटिकल सिनेरियो एक
4: पॉलिटिकल थ्रिलर सवाल आएगा। जी आप बिल्कुल सही, और अनघा कि हम ऑफिशियल वर्ड के लिए वेट करेंगे और लग रहा है कि वीसीके अभी सपोर्ट देंगे, तो फिर कल रात स्टालिन से क्यों मिला? और मारिया, मेरे को हमेशा यही सवाल है कि विजय को कौन एडवाइस कर रहा है, जब राज्यपाल ने डायरेक्टली साफ साफ बोल दिया कि आपको इतनी सिग्नेचर्स चाहिए उसी के साथ आ जाओ, आप क्यों गए थे 116 सिग्नेचर्स के साथ? कौन एडवाइस कर रहा है विजय को? ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उसके साथ जितने भी लीगल एडवाइजर्स है वो बिल्कुल मतलब बोल रहे हैं कि आप चले जाओ राज्यपाल के साथ 116 सिग्नेचर्स के साथ, और फिर वापस रिपीट हो रहा है कि राज्यपाल के साथ पास जा रहा है, राज्यपाल बोल रहे हैं नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, जब तक स्टेबिलिटी है, जब तक मेजोरिटी गवर्नमेंट है, हम बिल्कुल स्वेयरिंग इन नहीं करेंगे। तो मतलब ये नॉन स्टॉप रिपीट हो रहा है यहाँ पे तमिलनाडु में, पर एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट बंगाल में हो रहा है और स्वेयरिंग इन होने वाला है दो घंटे में हमारे यहाँ।
5: चलिए बिल्कुल अक्षिता, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बंगाल में अब माहौल बिल्कुल बन चुका है, अगर आप देखिए पिछले नाच गाने और गाजा बाजा के साथ तैयारी चल रही है शपथ समारोह की। और दूसरी तरफ सारी तस्वीरें आने लगी हैं कोलकाता के एयरपोर्ट से, जहां बहुत सारी स्पेशल फ्लाइट्स और प्राइवेट प्लेन से सब काफ़ी 21 राज्य के मुख्यमंत्री सब पहुँचने लगे हैं। कल रात में देवेंद्र फडणवीस आए, आज सुबह में सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लोग सब यहाँ पर आ चुके हैं। कल रात में जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो लोग भी सब यहाँ पर आज आ गए थे। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो जनता है वो यहाँ पर पीछे आ चुकी है। और पूरा जो ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड है इसके बारे में अगर मैं बताऊँगी आपको, ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, इसके ये कलकत्ता के हार्ट में है, ये पार्क स्ट्रीट के पास ये एरिया है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो बड़ा इवेंट्स होता है वो होता रहता है यहाँ पर। बीजेपी अब शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगी आज, वो अपना दिखाएगी कि उसकी ताकत क्या है, वो अपना आज दिखाएगी। रविंद्र संगीत बज रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बड़ी कटअवेज और तस्वीरें लगी हुई हैं पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के चारों तरफ। अब मैं अनुपम के पास चलूंगी क्योंकि अनुपम के साथ भी वहां पर वो भी दिखाएंगे कि क्या किस तरह की तस्वीरें। अनुपम बताइए क्या हो रहा है, एंट्री पॉइंट पर अगर आप हैं तो बताइए कि सबसे पहले यहां पर कौन आएगा, और प्रधानमंत्री तो लगभग 11 बजे तक आएंगे, उससे पहले क्या होने वाला है। जी मैं आपको अनुपम के पास चलूंगी, लेकिन अगर आप देखिए मैम आप कहाँ से आ रही हैं?
7: हम संतोषपुर से आए हैं, हम आज बहुत खुशी है, हम बोल नहीं सकते।
5: कितने साल से आप भाजपा के?
7: हम 2014 से हम नरेंद्र मोदी का पार्टी में हम लिप्त है, मेरा घर में सबको ही होता है, मतलब भाजपा पार्टी कर रहा है।
5: उससे पहले टीएमसी में थी?
7: नहीं नहीं नहीं एकदम नहीं, पहले से मतलब 1995 में मेरा बड़ा पापा जो है राम मंदिर में आपका घर का जो ईटा है वो रख के आए थे, तब के हम लोग बीजेपी है। और इसलिए मतलब ये जय सनातनी हिंदू का जय है
5: जी,
7: एकदम सनातनी है, भारत माता की जय है ये जय।
5: चलिए यहाँ पर बहुत सारे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत सारे जगह से आए हैं, पूरे बंगाल से आए हैं, क्योंकि जो 207 सीटें बीजेपी को मिली हैं वो कोई एक पॉकेट से नहीं मिली है, वो बीजेपी को ये पूरी जीत हर एक पॉकेट से, हर एक रीजन से आया है। तो 24 परगना हो या फिर 24 साउथ परगना हो, सारे रीजन से ये बीजेपी की जीत हुई है। इसीलिए कुछ ही देर में सब नेता यहाँ पर आने लगेंगे, शुभेंदु अधिकारी केवल आज ओथ लेंगे यही खबर आ रही है। और जहाँ तक डेप्यूटी सीएम्स की बात है उस पर अभी चर्चा जारी रहेगी, तो आज बस शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और शुभेंदु अधिकारी का जो जर्नी रहा है, पॉलिटिकल जर्नी रहा है भाजपा में, खास करके जब उन्होंने टीएमसी को छोड़ा, इस वजह से क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने सक्सेसर के तौर पर वो देखने लगी थी, तभी शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ उस वक्त दिया था जब बहुत ही अहम मौका था 2006-2007 में, जब नंदीग्राम में आंदोलन चल रहा था। पीयूष मिश्रा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, पीयूष अभी कहाँ है शुभेंदु अधिकारी?
1: जी हमारे फिलहाल शुभेंदु अधिकारी अपने घर में ही मौजूद हैं, जो न्यू टाउन में एक इलाका है वहां पर अपने घर में मौजूद हैं, और कुछ देर में यहां से निकलकर वो उम्मीद ये जताई जा रही है कि एयरपोर्ट जाएंगे। यहां से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रिसीव करेंगे और उसके बाद सीधा वो ब्रिगेड ग्राउंड जाएंगे। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि पहले वो दक्षिणेश्वर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद वहां जाएंगे, लेकिन अब समय कहीं ना कहीं लगातार कम होता जा रहा है और इस वक्त 9:30 बज चुके हैं, तो सिर्फ 1.5 घंटा बचा है और किसी भी वक्त शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकलने वाले हैं। यहां पर तैयारियां हो चुकी हैं, आप देखिए चारों तरफ कैसे कोलकाता पुलिस के अधिकारी जो है वो काफी भारी मात्रा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, पहली बार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो दर्शाता है कि अब अगली कमान तो शुभेंदु अधिकारी के हाथ में ही है और अगले कुछ घंटों में जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनको पूरा मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल भी देना है। तो उससे पहले ही यहाँ पर तैयारियां भी कोलकाता पुलिस के द्वारा कर ली गई है, सभी इलाकों को जो है पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, उनके घर के बाहर सुरक्षा भारी मात्रा में बढ़ा दी गई है। आप देखिए न सिर्फ कोलकाता पुलिस के जवान बल्कि जो पैरामिलिट्री के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। और तो जैसे ही शुभेंदु अधिकारी निकलेंगे हम आपको अपडेट करेंगे हमारे, लेकिन हाँ बीजेपी के लिए आज बहुत बहुत बहुत बड़ा दिन है। सदियों पुराना देखा हुआ सपना आज वो पूरा हो रहा है। पिछले काफी सालों से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जाने दी, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा, 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और कई महिलाओं के साथ जो है वो जघन्य अपराध हुए। तो इन सभी चीजों के बाद, इन सभी स्ट्रगल्स के बाद आज बीजेपी का अपना सरकार बनने जा रहा है। और आपको बता दें कि एक बड़े वरिष्ठ नेता के साथ हम बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि सन 1300 के बाद पहली बार हिंदू इथोस वाली सरकार अब पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है, यानी जो सनातन के लिए काम करेगी, जो भारत के मूल की रक्षा करेगी, जो यहाँ पर जो लॉलेसनेस है उसके ऊपर काम करेगी, जो करप्शन है उसके खिलाफ काम करेगी, इन सभी चीजों की बात बीजेपी करती रही है। तो अब जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है, देखना ये होगा हमारे कि किस तरह से लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उस पर बीजेपी खरी उतरती है। हालांकि कल काफी मंत्रणा के बाद आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा कर दी गई। कई सारे नेता रेस में थे जिसमें सुकंत मजुमदार थे, साथ साथ समीक भट्टाचार्य और कई बड़े नेता हैं जो पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन कमान शुभेंदु अधिकारी को सौंपी गई। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो नेता है हमारे जिन्होंने ममता बनर्जी को ना सिर्फ नंदीग्राम से हराया बल्कि भवानीपुर से भी हराया, और भवानीपुर में तो 15,000 से ज्यादा के मार्जिन से हराया। तो जो नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो बार हराया, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एग्रेसिव फाइट पिछले काफी लंबे समय से बंगाल में लड़ते रहे, उनको पार्टी ने माना कि उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए। और कल काफी देर की मंत्रणा के बाद लंबे दौर की बैठक हुई। कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता आए थे और सीधा नोवोटेल होटल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कई बड़ी बैठकें की। उन बैठकों में शमिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार, अग्निमित्रा पौर और कई बड़े नेता बीजेपी के शामिल हुए, लेकिन आखिर में वन टू वन मीटिंग हुई शमिक भट्टाचार्य और गृहमंत्री अमित शाह की। उसके बाद ये तय हुआ कि शुभेंदु अधिकारी के हाथ में ही कमान सौंपी जाएगी। मैं लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अलर्ट हो गया है और आप मेरे सहयोगी अंकित सिंह अगर कैमरा अपना पैन करेंगे तो आप देख सकते हैं गाड़ियां निकल रही है, शुभेंदु अधिकारी अब यहाँ से निकल रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के घर से चिनार पार्क का इलाका है जहां पिछले काफी समय से वो रहते रहे। आगे बैठे शुभेंदु अधिकारी आप देख सकते हैं यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो जा रहे हैं पहले वो प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे, उसके बाद वो सीधा पहुंचेंगे। भगवा रंग का कपड़ा शुभेंदु अधिकारी ने घर से निकल चुके हैं, भगवा रंग का कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है। आज शपथ लेने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर और यहां से वो निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप आज तक के कैमरे पर देख पा रहे हैं जहां शुभेंदु अधिकारी फिलहाल यहां से निकल चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच में शुभेंदु अधिकारी का काफिला कोलकाता पुलिस के जवानों के साथ यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और ये गाड़ी अब सीधा ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ जाएगी। ब्रिगेड ग्राउंड के बाद सीधा ये गाड़ी पहुंचेगी ब्रिगेड, पहले पीएम को रिसीव किया जाएगा, फिर ब्रिगेड ग्राउंड जाया जाएगा और उसके बाद सीधा जो है वहां पर शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी। तो विधायक दल के नेता जो चुने गए शुभेंदु अधिकारी अब अपने घर से निकल चुके हैं और शपथ लेने के लिए सीधा ब्रिगेड ग्राउंड की ओर पहुंच रहे हैं। जी मारे
5: जी, और यहाँ पर मैं आपको तैयारियां दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर साउथ 24 परगना की एक और आर्ट फॉर्म है जो अभी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी।
8: Yeah.
5: कहाँ से आए? कहाँ से आए?
8: बोर्शीघाट, बोर्शीघाट हर उत्तर बोर्शी।
5: ये आपका गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का फोक आर्टिस्ट है। ओके, तो ये आप सनातन मंडल हैं?
8: मंडल है।
5: क्या है इस तरह का फोक?
8: ये किस तरह
9: लोक संगीत है?
5: जी। चलिए, तो ये भी आपने देखा, सो इस तरह के बहुत सारे फोक आर्टिस्ट बंगाल से आए हुए हैं, अगले अगले अब बहुत सारे रीजन से मौजूद है यहाँ पर। रविंद्र नाथ टैगोर की जयंती है आज, इसीलिए ये दिन बहुत खास है। बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि वो बंगाल की संस्कृति को समझती है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी पैन करके दिखाए कि अब ये पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड भर गया है, क्योंकि थोड़ी देर में शपथ समारोह शुरू होने वाला है और बीजेपी के कार्यकर्ता सपोर्टर्स जो वोटर्स हैं वो बीजेपी जो बहुत सारे दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, कोई नॉर्थ बंगाल से, कुछ बिहार से हो, या अलीपुर द्वार से, या दार्जिलिंग से, सब दूर दूर से वो यहाँ पर सब आए हुए हैं। और आज बहुत ही खास और बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, इसीलिए शायद अगर फोक आर्टिस्ट की बात हो या फिर दूर से बात हो, वो लोग सब यहाँ पर मौजूद है। मैं चलूँगी अनुपम के पास। अनुपम, बताइए क्या देख रहे हैं आप? चलिए पीयूष के पास चलूंगी। पीयूष बताइए, वहां पर से शुभेंदु अधिकारी अब निकल चुके हैं, वो ब्रिगेड ग्राउंड आएंगे या सीधे एयरपोर्ट जाएंगे पीएम को रिसीव करने के लिए?

0: पदाधिकारी अपने घर से निकल चुके हैं और इसी घर जगह पर आने वाले हैं जहां पर उनका शपथ समारोह होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता और जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो सब यहां पर पहुंच चुके हैं। ये कलकत्ता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहां पर मैसिव अरेंजमेंट है और लगभग ज्यादातर एरिया अब जो ब्रिगेड ग्राउंड है वो भर चुका है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर?
1: पूर्व मणिपुर का एक हॉस्पिटल और ब्रिज के लिए हम आए हैं। अच्छा, दादा के पास रखेंगे।
0: तो ये आप दादा के लिए रिक्वेस्ट करिएगा।
1: ये एगला है, एगला पौरसभा। अच्छा। शुभेंदु का भाई दीपेंदु अधिकारी जीता है। अच्छा। उसी के लिए हम ये वाला जो हॉस्पिटल है,
0: हॉस्पिटल का रिक्वेस्ट है।
1: हॉस्पिटल उसका ब्रिज है जो 20 साल बच्चा लोग जाता है स्कूल, वो आज तक नहीं हो रहा है। दीपेंदु गया, शुभेंदु गया, सब गया, कोई भी देखा नहीं आज तक। आज देखने बोलता हूँ दादा को। ये वाला देखिए।
0: तो ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं लेकिन रिक्वेस्ट आने लगे हैं कि हॉस्पिटल, ब्रिजेस और इसी तरह के जो डेवलपमेंट के रिक्वेस्ट हैं वो जो जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, वो अपना प्लकार्ड लेकर के भी यहाँ पर आए हैं। शुभेंदु अधिकारी जो अपने घर से निकले तो वो भगवा कपड़े में थे, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने इस बात पर एम्फसाइज किया कि बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है जहाँ पर उनको एक इतना बड़ा मौका मिला है। वो तस्वीरें देखिए और कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आएंगे। पहले वो जायजा लेंगे और उसके बाद सीधा वो जाएंगे एयरपोर्ट जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को वो रिसीव करेंगे। अनुपम हमारे साथ है और उसके साथ साथ पीयूष भी। मैं पीयूष के पास पहले जाऊंगी। पीयूष, अब शुभेंदु अधिकारी किधर निकले हैं? पहले तापस, चलिए तापस ने अभी रिपोर्ट भेजी है कि मंच की तैयारियां कैसी चल रही है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर वापस।
2: तरीके से तैयार है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ के लोक संस्कृति को सामने रखकर यहाँ आज खूब यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंतजार उस घड़ी का है जब नरेंद्र मोदी आ पहुंचेंगे और उनके मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि बड़े तादाद में बहुत कलरफुल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गोरखा कम्युनिटी से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
3: हम दार्जिलिंग से।
2: दार्जिलिंग से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है माहौल?
3: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: आज क्या आप लोग कोई परफॉर्म करेंगे यहाँ?
3: हाँ।
2: क्या है
3: परफॉर्म? खुकरी डांस।
2: खुकरी डांस।
3: हाँ।
2: दिखाइए
3: दिखाइए दोस्त, दिखाइए ना
2: दर्शकों। ये देखिए, खुकरी डांस करके हमें दिखा रहे हैं और इनका भी एक परफॉर्मेंस बताया जा रहा है कि यहाँ पर है। गोरखा को जाना जाता है उनके उनके उनके करेज के लिए जाना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोक संस्कृति को उजागर करके यहाँ चारों ओर जो लोग हैं अलग अलग हिस्सों से, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से वो आए हैं। भारी तादाद में महिलाएं आई हुई है। हम उनसे बात करते हैं। अपना कोथा थे क्या आश्चर्य?
4: कुछ भी आते गए,
2: कुछ भी आज
4: कल के।
2: आज के कैमन? आज के की एखाने की परफॉर्मेंस आछे?
4: बोले थे नित्य बढ़ियाती नित्य।
2: कितने जन आछे?
4: 15 जन।
2: तो ये भैरवी नृत्य करेंगी और इसके लिए पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर तैयार हैं और कुछ ही क्षण में ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक नेता पहुंचने लगे हैं। मैं आपको अंदर की चित्र को भी दिखाता हूँ। पूरी तरीके से यहाँ जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, यहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद किया। कर रही थी। आखिरकार आज वो दिन आज का जब शुरू होने में ये देख सकते हैं कि पर अपद जाने

0: अनुपम मिश्र के पास चलते हैं जो वीआईपी गेट के पास है। अनुपम, कौन कौन वीआईपी आ चुके हैं और कौन आने वाले हैं?
1: जी मारिया, देखिए अभी एक ब्रेकिंग मैं आपको दे रहा हूं, दिलीप घोष भी आज शपथ लेने वाले हैं, ये अभी अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि पोर्टफोलियो अभी नहीं पता है, लेकिन अभी अभी जो सूचना मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा आज कई और लोग शपथ लेंगे, उनमें दिलीप घोष का नाम भी सामने आ रहा है जिसकी कन्फर्मेशन अभी हमें मिली है। हालांकि पोर्टफोलियो नहीं बताया गया है और इंडिविजुअली जितने भी लोग आज शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी के अलावा, उनको इंडिविजुअली फोन करके बताया गया है कि आज उनको शपथ लेनी है। ये वीआईपी गेट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी जो अंदर घुसने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। यहां पर सुरक्षा के तामझाम आप देख सकती हैं, चूंकि वीआईपी गेट है ये, एमएलएज जो हैं वो इसी गेट से धीरे धीरे भीतर प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर नीली और लाल बत्तियों का तांता लगा हुआ है, रविंद्र संगीत माइक पे लगातार बज रहा है, जो रविंद्र जयंती है उसी के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम को रखा गया है, तो लाजमी है जाहिर तौर पर रविंद्र संगीत बजेगा और ये चीज दर्शाता है कि बीजेपी
0: अधिकारी के अलावा और भी मंत्री होंगे आज, और भी मंत्री शपथ ले सकते हैं। आपने नाम लिया है दिलीप घोष का, ये बताइए उनके अलावा क्या और कोई और कौन कौन नाम है और कौन कौन नाम है, और ये भी बताइए कि
1: लोग शपथ लेंगे, हालांकि उनके नाम अभी सामने नहीं है। एक नाम जो हमें मिला है वो दिलीप घोष का है, जो अभी हमारे साथ हमारे बात हुई है और विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि दिलीप घोष भी आज शपथ लेने वाले हैं।

0: वेडिंग एंड सेरेमनी होने जा रही है, तैयारियां एकदम आखिरी चरम पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्वामी जी दूर दराज जिले से आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
1: आसाम कामाख्या मंदिर से आया।
2: तो आज तो बहुत ऐतिहासिक दिन
1: जी,
2: है,
1: इसलिए हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। ये राम राज्य बनने का सपना था हम लोग का, मोदी जी का, और वो सपना पूर्ण हो गया। इसलिए जैसे हम लोग के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। साधु संत तो बहुत पीड़ादायक हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। दीपू चंद्र दास जिस टाइम बांग्लादेश में मार के पीट के सनातन धर्म का इतना लज्जा हुआ था, फिर भी हमारा उस टाइम का सरकार कोई प्रतिवाद मुकर हुआ नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा में आया बंगाल है। हम लोग यूपी से संविधान से बाबरी मस्जिद उच्छेद किया था, सरकार जो राय दिया था वो राय को अनुजाई में सुप्रीम कोर्ट का, फिर बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद?
0: शुभेंदु दा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कितना उम्मीदें हैं उनसे? खुश है?
1: बहुत उम्मीद है, वो अच्छा सज्जन है। अतो ये महादेवी नित्यंग रक्षा सनातनी है, सनातन रक्षा तो सब रक्षा है, फिर शुभेंदु दा भी सनातनी है।
0: आप क्या कहेंगे?
3: धर्म कॉल बता सुनिए बाप,
0: বার বার করে বলা হচ্ছিল যে ভয়ের বাতাবরণ, সেই ভয়ের বাতাবরণ কি কেটেছে?
3: লেটস সি।
0: বেশ, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?
3: কামাখ্যা।
0: তো আপনি দেখ সকতে হ্যায় যে সাধু সন্ত হ্যায় কামাখ্যা সে আয়ে হ্যায় হিন্দু সাধু সন্ত, और हर हर महादेव की गूंज के साथ आज ये जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण, उसी की तैयारी में जुटी हुई है। इतने सारे साधु संत कामाख्या से आ रहे हैं, कोई दूर दराज जिले से आ रहे हैं, सभी का डेस्टिनेशन एक ही है, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, जहां पे आज वह ऐतिहासिक क्षण कुछ देर में जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। देश आजाद होने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उसकी पहला मुख्यमंत्री।
4: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा भी एक मंत्रिमंडल शपथ लेगा आज। दिलीप घोष उस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। क्या दिलीप घोष डेप्यूटी सीएम होंगे या उसके अलावा क्या कोई महिला भी एक डेप्यूटी सीएम का पद की शपथ ले सकती है? यही हमारी बड़ी बड़ी खबर रहेगी। देखते रहिए आज तक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आप मेरे लिए स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे?
3: That's right.
2: 50 शेयर्स खरीदूं या 5,000? ब्रोकरेज इज
1: जस्ट 20 रुपीज।
2: आपके आसमान से टपक पड़े
4: स्काई से। HDFC Sky, all in one investment app.
5: Fixed brokerage on stocks and F&O. HDFC Sky. Download today. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
6: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
7: Security! Priya!
8: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
2: Vikram, ek hint to dete.
9: Vikram!
2: Hint.
8: Badi aaram se.
10: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
11: take a date, not bites.
12: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रोफाइबर है।
13: माइक्रोफाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: और वही कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
18: जेके वॉल मैक्स।
17: बेस्ट पेंट
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
20: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
21: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
19: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
20: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
25: करेक्ट, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: विमल, बोलो जुबा केसरी।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.AajTak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि बंगाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि कातिल पूरी तैयारी के साथ आए थे और भागने का रूट भी पहले से तय था। अब सवाल यही है, कातिल कौन थे, कहां से आए और हत्या के बाद कहां गायब हो गए। जांच में पुलिस को जो सुराग मिले हैं उससे साफ है कि पूरी वारदात कई लेयर वाली साजिश का हिस्सा थी। हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर शामिल, हत्या से पहले कई दिनों तक रेकी, फर्जी नंबर प्लेट वाली कार बाइक, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग, विदेशी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल, भागने के लिए अलग अलग रूट तैयार। जांच की सबसे अहम कड़ी बनी है कातिलों का एस्केप रूट। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। शुरुआती फुटेज में हमलावरों की बाइक और कार अलग अलग रास्तों पर जाती दिखाई दी। जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या के बाद शूटर पहले एयरपोर्ट इलाके की तरफ भागे, फिर 12-7 और बेलघरिया कनेक्टर के रूट इस्तेमाल हुए। कुछ मोबाइल फोन वारदात के बाद अचानक स्विच ऑफ हुए, कई संदिग्ध नंबर बंगाल से बाहर के मिले। पुलिस को सुपारी किलिंग मॉड्यूल का शक। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब मोबाइल टॉवर डंप डेटा और सीसीटीवी फुटेज को मैच कर रही है ताकि हमलावरों की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की जा सके। जांच उस वक्त और दिलचस्प हो गई जब हत्या में इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट फर्जी निकली। कार नंबर WB741-227 असल मालिक सिलीगुड़ी निवासी जेम्स विलियम्स, बाइक नंबर पश्चिम वर्धमान RTO में रजिस्टर्ड। दिए गए पते पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, यानी कातिलों ने सिर्फ हत्या की प्लानिंग नहीं की थी बल्कि जांच को गुमराह करने की तैयारी भी पहले से कर रखी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी नंबर प्लेट कहां तैयार हुई और हत्या में इस्तेमाल असली गाड़ियां किस नेटवर्क के जरिए जुटाई गई।
1: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो फोर व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है।

11 बजे शपथ ग्रहण, नए इतिहास का गवाह बन रहा है पश्चिम बंगाल। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी सरकार के जश्न में शामिल होंगी टॉप लीडरशिप। शुभेंदु की शपथ में पीएम मोदी से लेकर 21 राज्यों के सीएम तक। कोलकाता में 10,000 विशिष्ट मेहमान, आज तक पर पल पल की कवरेज। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय, तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर। लोकभवन सूत्रों के अनुसार फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट।

तेज केसी वेणुगोपाल और वी डी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान। आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता, राहुल और खड़गे लेंगे अंतिम फैसला। और लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य होंगे नए सीडीएस, जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे 31 मई को संभालेंगे पद वाइस एडमिरल।

0: शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी,
1: साइन।

आज तक। बंगाल में आज नया सूर्योदय, आजादी के बाद पहली बार भगवा की बयार है। बीजेपी की सरकार आने वाली है, बस एक घंटे बाद शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त है। बंगाल में बीजेपी के पहले अधिकारी के नाम पर कल मुहर लग गई। आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। नंदीग्राम के संघर्ष से शुभेंदु सत्ता के शिखर पर आ गए। आज शुभेंदु के साथ दिलीप घोष भी शपथ लेंगे। दिलीप घोष से मैं आज तक से बातचीत में इसकी पुष्टि भी की है, और भी कई नाम हो सकते हैं, एक एक करके हम आपके सामने वो खबरें रख रहे हैं। कोलकाता का मैदान जिसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड कहा जाता है, 3 मेगा मंच वहां पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, इनके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस मेगा शपथ समारोह में शामिल होंगे, उसके साक्षी होंगे। बीजेपी ने सोनार बांग्ला का संकल्प लिया है, भय नहीं भरोसा का मंत्र दिया है। इसकी वानगी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिख रही है। एंट्री गेट से लेकर मंच तक बंगाल की संस्कृति आपको हर तरफ दिखेगी। झालमुड़ी, सौंदेश से लेकर रसगुल्ला तक के स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच गए हैं। आज वो केवल इसी शपथ ग्रहण समारोह में के साक्षी बनने के लिए वो पहुंच रहे हैं।

0: बीजेपी के हर नेता उस लंबे स्वप्न, उस लंबे दौर, उस लंबे संघर्ष की बात करते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात आती है। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले, बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे, फिर मैदान पहुंचेंगे यानी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार कल से तमाम ये अपडेट्स दे रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे बंगाल के, ये तय हुआ, ये आज तक पर सबसे पहले हमने आपको दिखाया। और पीयूष, आज उस शपथ ग्रहण की बारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कोलकाता। पीयूष, आवाज आ रही है आपको? हम अपने संवाददाता के पास आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले आपको ये अलग अलग जगहों पर सजे हुए मंच दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी शासित राज्यों को अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों में, जिस तरीके से कहीं पर भी कोई उत्सव, कोई अहम मौका, कोई बड़ा मौका होता है, आपको पूरे प्रदेश की संस्कृति इसी तरीके से सड़क के किनारे, छोटे छोटे मंच पर, दूर दूर इलाकों से आए हुए कलाकार परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। आज पश्चिम बंगाल में आपको वैसा ही उत्सव दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी, जब आज सुबह अपने घर से पहली बार निकले थे, ये उस समय की तस्वीर है, भगवा में पूरी तरीके से दिख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, एक भगवा कुर्ता, उसके ऊपर भगवा गमछा उन्होंने डाला हुआ है, और यहां से वो आगे के लिए प्रस्थान किए हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए।
1: जबो, आज इस ऐतिहासिक सुबह में कोलकाता के सड़कों में भगवा लहर दिख रहा है। जिस तरह से भी आप देखेंगे, जिस तरफ आप देखेंगे, आप सिर्फ देखेंगे भगवा ही भगवा दिख रहा है। जय श्री राम का नारा है, और उसके साथ साथ बीजेपी के जो समर्थक है, जो उत्साही कार्यकर्ता है, वो राज्य के विभिन्न जिले से इस वक्त एक ही उनका डेस्टिनेशन है, और वो है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड। आप देख सकते हैं बीजेपी के जो समर्थक है वो किस तरह से कमल का चिन्ह लेके, और उसमें शुभेंदु अधिकारी का फोटो लगा हुआ दिख रहा है, और भगवा जो वेश है वो पहन के, उसके साथ साथ हाथ में है उनका बीजेपी का फ्लैग। तो भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह का लहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। सभी लोग, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब आज इस ऐतिहासिक क्षण को यहाँ पे रहना चाहते हैं, इसको जीना चाहते हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई भी बीजेपी का समर्थन है, समर्थक है, वो नहीं चाहता आज का ये पल, ये ऐतिहासिक क्षण वो मिस करे। इसीलिए हाथ में बीजेपी के झंडे लिए सब एक ही जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां पे कुछ देर में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में, बीजेपी के पहले, पश्चिम बंगाल में पहला बीजेपी के सरकार का मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ ग्रहण करेंगे, और उसी में शामिल होने के लिए जिस तरह का तांता लगा हुआ है बीजेपी समर्थकों का, और सभी वहां पे जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये सीधा दिखा रहा है कोलकाता के रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह, और उसके साथ साथ आज पुटी शेर बोईसाख भी है, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव उनका जन्म जयंती भी है। तो हर किसी एंगल से अगर आप देखें तो आज का दिन बंगाल के लिए, बंगाल की राजनीति के लिए, बंगाल के समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण है। कैमरा पर्सन ओरखो के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता।
0: तो जिसे स्थानीय लोग मैदान कहते हैं, चूंकि सेना की ओनरशिप में आता है ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड रहा है, लंबा इतिहास इसका है, जब से फोर्ट विलियम वहां पर स्थापित हुआ था। फोर्ट विलियम यानी कि जो पूर्वी कमान है भारतीय सेना का, जहां से वो पूरी कार्रवाई वहां पर चलती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मैदान है। वामपंथ के सब दौर में पूरा इस मैदान में बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन हुआ था। आज बदलाव का एक और प्रतीक शुभेंदु अधिकारी का जब शपथ ग्रहण यहां पर होगा। पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पीयूष, सबसे पहले तो ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी के घर के सामने आप आज मौजूद रहे, वहां से आपने दिखाया कि कैसे जब निकले तो पूरी तरीके से भगवा, उन्होंने अपने कपड़ों के जरिए ही वो पहला स्टेटमेंट दे दिया है जो नंदीग्राम की वोटिंग के दिन एक तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जब एक महिला रोते हुए उनके पास आई थी कि हम हिंदू हैं क्योंकि आप हैं। तो आज हम जब शुभेंदु अधिकारी के साथ बंगाल में बीजेपी के इस नए दौर की शुरुआत देखने वाले हैं तो इस तरह की ही मैसेजिंग सबसे पहले दिन सबसे प्रमुखता से।
2: जी बिल्कुल श्वेता, और एक पूरी तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, और वो मैसेज अपने कपड़ों के द्वारा भगवा रंग का कुर्ता जो पहने हुए नजर आए और भगवा रंग का टीका उन्होंने लगाया हुआ था। और ये कहीं ना कहीं ये मैसेज है और ये उन सभी हिंदुओं को मैसेज है जिनको लेकर शुभेंदु अधिकारी कहते रहे कि हमको तो हिंदुओं ने जिताया, हमको तो हिंदुओं ने वोट किया। और आपने जैसा बताया नंदीग्राम में जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वोटिंग डाल के जब वो वापस जा रहे थे तो एक महिला रोती हुई लगती हुई आई और उनके गले लग गई। जब हमने पूछा कि शुभेंदु जी ये क्या कह रही है महिला, तो शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ये महिला रो रही है, बिलख रही है और ये बता रही है कि अगर बीजेपी नहीं आई तो फिर हिंदू नहीं बचेंगे और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। इस तरह की बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही थी और आज उसी आंसुओं का दर्द कहीं ना कहीं दिखाते हुए कि कैसे हिंदुओं के साथ प्रताड़नाएं हुई, कई जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मारा गया, उन सभी को एक साथ लेते हुए उनका मैसेज लेते हुए शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले। और एक और जो नई तस्वीर आज देखने को मिली श्वेता वो ये कि उनके घर पर हम पहले भी कई बार जा चुके हैं, वहां से हम पहले भी कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन आज रिपोर्टिंग का जो तरीका है वो दूसरा था। आज हमने देखा कि कैसे वहां पर न सिर्फ केंद्रीय
0: बल मौजूद, अपनी बात करते रहिएगा, बस एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो बता देते हैं कि ये अमित शाह का जो काफिला, गृहमंत्री अमित शाह जो एक पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर मौजूद हैं कोलकाता में, उनका काफिला ये निकल रहा है। 11 बजे का समय निर्धारित है जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब जहां पर अमित शाह ठहरे हुए हैं वहां से मैदान की दूरी यानी ब्रिगेड परेड ग्राउंड की दूरी आधे घंटे से ऊपर की होती है, इसीलिए अब ये काफिला आप निकलता दिख रहे हैं। पीयूष अपनी बात पूरी करें।
2: जी बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था कि आप पूरा जो सुरक्षा का इंतजाम है शुभेंदु अधिकारी वो अधिकारी का वो कोलकाता पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया और धीरे धीरे जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लगभग सभी बीजेपी शासित और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी के सभी कोलकाता आ चुके हैं और अगले आधे से पौने घंटे में आपको पूरा मैदान पटा हुआ दिखाई देगा जिसमें सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। और 11 बजे के आसपास जब ये शपथ शुरू होगी तो महज 10 से 15 मिनट में शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले शपथ ले लेंगे और उसके बाद कुछ और नेताओं की शपथ लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। लगभग 6 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है और बाद में पोर्टफोलियो का एलोकेशन होगा और कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, लेकिन पूरा ब्रिगेड ग्राउंड इस वक्त सज चुका है और भारी संख्या में पूरे पश्चिम बंगाल से वो कार्यकर्ता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए हैं जिन्होंने पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी सरकार को आने के लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए स्ट्रगल किया, कईयों ने अपनी जान दी।
0: दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से महिलाएं पुरुष सब पहुंच रहे हैं यहाँ मैदान में जहां पर आज शपथ ग्रहण होगा। इंद्रजीत कुंडू भी वहीं पर मौजूद हैं। बहुत अलग अलग एंट्रेंसेस इसके हो जाते हैं, एक तरफ वीआईपी एंट्रेंस रहेगा जहां से वो बड़े बड़े नाम आएंगे और दूसरी तरफ जो आम कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। इंद्रजीत,
3: बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त खड़ा हूं कोलकाता के एक महत्वपूर्ण इंटरजंक्शन में, यह है पार्क स्ट्रीट का इलाका। दूसरी तरफ आपको दिखा दूं कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो भी बिल्कुल सुबह सुबह ठप हो गया, क्योंकि जितनी भारी तादाद में, इस तरफ आपको दिखा दूं जो बीजेपी के समर्थक हैं वो देखिए कितने भारी तादाद में आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है और कोई नहीं चाहता कि इस क्षण को वो मिस करे। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिले जिले से आ रहे हैं, नेताएं आ रहे हैं, बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा गेट बनाया गया है और सभी इस वक्त सबकी निगाहें है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा जो कोलकाता शहर का सेंट्रल कोलकाता इलाके में ट्रैफिक है वो भी ठप होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के जो समर्थक है वो भी नारेबाजी कर रहा है, जम के उत्साह जोश की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतने सालों की जो उम्मीद है, जो बीजेपी के समर्थकों ने इतने सालों तक उम्मीद जताए बैठे हुए थे, वो आज आज सफल होता हुआ दिख रहा है, कैसा लग रहा है बताइए माँ?
4: ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल और अपने आगे चले जा रहे हैं और आने वाला भविष्य ये पूरा इंडिया का, ये स्टेट वेस्ट बंगाल सबसे आगे होगा।
3: शुभेंदु दा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा कैसा महसूस?
4: अच्छा है, बहुत अच्छा स्वभाव है। मैं पर्सनल विक्टोरिया मिला हूँ, वो सब आम आदमी के लिए काम करेगा और उसको करना है जो भी है, आम आदमी के लिए काम करना है, राजनीति कम करके काम ज्यादा करना है, आम आदमी का काम करना है।
0: ये बड़ी बड़ी आकांक्षा है, ये बड़ी उम्मीद है मारिया कि शुभेंदु दा आ रहे हैं तो आम आदमी का काम उन्हें करना है और आम लोगों की अपेक्षाएं ऐसी हैं कि कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि लोग वो आवेदन लेकर भी आ गए थे कि हमारे यहाँ ब्रिज नहीं बना है या हमारे यहाँ अस्पताल की हालत खराब है। तो शुभेंदु अधिकारी से बहुत उम्मीदें लेकर आ रहे हैं सब।
5: जी बिल्कुल श्वेता, जो आपने कहा एक प्लकार्ड लेकर के कोई इंसान यहाँ पे खड़ा था, वो बीजेपी का सपोर्टर या वर्कर नहीं था, वो एक आम इंसान था है बंगाल का। उनका रिक्वेस्ट था कि शुभेंदु अधिकारी उनके लिए उनके क्षेत्र में एक हॉस्पिटल और एक ब्रिज बनवाएं। तो लेकिन मैं आपको माहौल बताती हूँ श्वेता, ये बहुत बड़ा मैदान है ब्रिगेड परेड ग्राउंड और उस एंड में वहाँ पर हो रहा है शपथ ग्रहण। लेकिन क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो जो भी पेड़ है या उसके नीचे बीजेपी के कार्यकर्ता और जो सपोर्टर्स जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर अपने झुंड में दिख रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
6: शांतिपुर से।
5: शांतिपुर यहाँ से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से आए हैं? क्यों?
6: सुबह।
5: कितना सुबह? सुबह
6: अपना इधर शपथ ग्रहण के लिए,
5: शपथ ग्रहण के लिए
6: हम लोग साक्षी बनने के लिए इधर आता है। एक ऐतिहासिक विजय है हम लोग का, बीजेपी का, मतलब हिंदू संस्कार का, हिंदू सनातनी धर्म का, हम लोग का हिंदुत्व का बोध जगाने के लिए हम लोग इधर आया था। सब हम लोग इधर अपना एक कट्टा सब हम लोग हिंदू संस्कार के लिए इधर आए।
5: आप लोग जो आए हैं शांतिपुर से?
6: शांतिपुर से लगभग 200 से ज्यादा होगा।
5: कैसे आए आप लोग? ट्रेन से आए?
6: ट्रेन से, कोई बस में भी आया लास्ट नाइट में।
5: जी जी जी। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग भी शांतिपुर से?
7: नहीं, हम लोग मेदिनीपुर खड़गपुर से।
5: खड़गपुर में यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर?
7: हाँ, 3.5 घंटा दूरी पर।
5: सुबह सुबह चले?
7: पूरा 4 बजे उठ के आ गया। मोदी जी के दर्शन के लिए हम लोग राज्यों में विजय लाभ किए, सबको संवर्धना देने के लिए और खुशी मनाने के लिए हम लोग आ गए यहाँ।
5: तो मेदिनीपुर से और शांतिपुर से यहाँ पर लोग मौजूद है श्वेता। रविंद्र संगीत पीछे बज रहा है और जो तैयारियां हैं वो दिख रही हैं क्योंकि हर कोने कोने पर, ये पूरा जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है श्वेता, उसके कोने कोने पर बड़ी बड़ी तस्वीरें रविंद्रनाथ टैगोर की लगी हुई है क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। और जब बीजेपी ने इस दिन को चुना शपथ ग्रहण समारोह के लिए तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति, बंगाल के कल्चर को अच्छे से समझती है। और कुछ ही देर में, अब क्योंकि 10:15 बज चुका है और 11 बजे का
0: शपथ पश्चिम बंगाल में, उसमें सीधे तौर पर टीएमसी से सबसे बड़ा प्रहार यही किया जाता रहा कि हम तो जय बंगला कह रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए बंगाल का सम्मान नहीं कर रही है। आज जब हम अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे इलाके में उस तरह का जश्न दिख रहा है जो पश्चिम बंगाल की एक पूरी संपूर्ण तस्वीर यहां पर पेश कर रहा है। हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी चलेंगे लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और स्टूडियो में भी हम आपको बता दें कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, आशुतोष हैं और साथ में संगीत रागी जी यहां पर मौजूद हैं, जिसमें मुझे लगता है कि उम्मीदें तो सबके लिए पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग हो सकती हैं विनोद जी, लेकिन जो वहां कि जनता कहती रही ना कि हम यहां पर नौकरी चाहते हैं या फिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो कोलकाता के बाहर की परिस्थितियां, जहां पर लोग अगर कह रहे हैं कि हमें अस्पताल चाहिए, ब्रिज चाहिए, स्कूल चाहिए, तो शुरुआत कहां से करनी होगी, एक प्राथमिकता क्या रहेगी शुभेंदु अधिकारी?
8: लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो उम्मीदें बढ़ती हैं लोगों की।
0: और ये योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की तस्वीर,
8: जब कम्युनिस्टों के बाद ममता बनर्जी आई थी तो उनसे बहुत उम्मीदें थी। 15 साल बाद बीजेपी आई है और बीजेपी ने जो वादे किए हैं, और बीजेपी का चूंकि देश के 22-23 राज्यों में शासन है, उनका एक विकास का मॉडल है, तो लोग अपेक्षा करते हैं। प्रधान शुभेंदु अधिकारी से तो अपेक्षा है ही चूंकि वो तो बंगाल के ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है। मुख्यमंत्री कोई भी होता अगर मान ली शुभेंदु की जगह दिलीप घोष बनते या स्वामी भट्टाचार्य बनते तो भी यही अपेक्षाएं होती लोगों की, क्योंकि लोगों को भाजपा से अपेक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री शुभेंदु बने कोई भी बने, और ये जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है कि लोगों की अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे।
0: लेकिन और भी आज शपथ ग्रहण होने वाले हैं आशुतोष जी, ये साथ में बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी
9: ठीक है, शुभेंदु अधिकारी का चयन तो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स, बंगाल की सोसाइटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे प्रदेश,
0: सिर्फ इसलिए नहीं,
9: मैं बता रहा हूँ, और वो जानते हैं कि वहां पे एंट्रेंस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, खासतौर वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के, अगर उससे लड़ना है तो आपको उनकी तरकीबों को और उसके उसका अभ्यस्त होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी को कम से कम तृणमूल कांग्रेस की सारी जानकारियां हैं, ममता बनर्जी जैसे नेता का उनको सामना करना पड़ेगा, और उनसे कोई अमेच्योर आदमी या कोई ऐसा शख्स जो उनकी रणनीति से परिचित ना हो या उनकी राजनीतिक संस्कृति से परिचित ना, उसको लड़ने में थोड़ी दिक्कत, मैं नहीं कहता बाकी लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन चूंकि शुभेंदु उसको अच्छी तरीके समझते हैं इसलिए उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात क्या है कि शुभेंदु ने अपने आप को तृणमूल कांग्रेस से निकलने के बाद पूरी तरीके से एक हिंदू नेता के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, जैसे कि हेमंता ने अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो पूरे कैंपेन में एक फेस बन के उभरे हैं। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर मानना है कि दिलीप घोष ने जो 2016 के बाद जो मेहनत की है, जिसकी वजह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी और अनप्रेसिडेंटेड 30% वोट शेयर का गेन हुआ था, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही टेम्परामेंटल है, थोड़े से सबको साथ लेके चलने में उनको दिक्कत पैदा होती है, और इसीलिए 2021 के बाद से वो थोड़े बियाबान में भी चले गए थे। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का चयन ठीक है। जो डिप्टी सीएम के बारे में है वो तो कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करके ही होगा कि मतलब आप सारी समुदाय को कास्ट बैलेंस करके चले,
8: कास्ट के साथ साथ जेंडर इक्वेशन भी बैलेंस करके,
0: जेंडर इक्वेशन भी,
8: क्योंकि बंगाल में महिलाओं का बहुत बड़ा,
0: बिल्कुल, और बीजेपी में कई ऐसी महिला का नेतृत्व है जो मतलब ग्राउंड पर और हर मुद्दे को उठाकर फाइट करती रही हैं। सर
10: शायद मैं यदि मैं आंकड़ा गलत नहीं हो तो 33% शायद ज्यादा पिछली बार के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हुआ है इस बार,
8: 37 पिछली बार था, तो
10: 33% जो पहले जितने जीत करके आए थे उससे ज्यादा 33%, तो मैंने एक अच्छी संख्या महिलाओं की जीत करके भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी चेहरा बन करके आए थे, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उनमें क्या अतीत रहा है, क्या उनके साथ जुड़ा हुआ है, अतीत क्या जुड़ा रहा है, वो एक सेकेंडरी प्रश्न हो जाता है, वो अलग से चर्चा का विषय हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल चुनाव में यदि कोई एक नाम उभर करके जो बंगाल से था, जो केंद्रीय धुरी की तरह काम किया, वो पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान कोई एक व्यक्ति था तो शुभेंदु अधिकारी थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ममता बनर्जी को जाकर के उनकी मांद में जाकर के उनके गृह क्षेत्र में जाकर के हराना ये कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय ये आंकड़ा आया था कि 8,000 का ही वोट का डिफरेंस तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रह गया था और 44,000 के आसपास वोट कटा था, तो एक तरह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ममता दी हैं, एक अच्छे जमीन के लड़ाई लड़ने वाली महिला थी, उनको जाकर के उनकी मांग में हराना ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए भी उनका वहां पर बनना आवश्यक
0: एक तरह से। आप किस तरीके से पहले नंदीग्राम फिर भवानीपुर में आपने हराया है ममता बनर्जी को,
10: इसमें
0: दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर हम इन जीते हुए विधायकों में ही देख लें तो गिनती के कुछ विधायकों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां रही नहीं है, प्रसून आचार्य हमारे साथ
10: देख लीजिए, यदि ममता बनर्जी के बाद यदि तृणमूल कांग्रेस में कोई नेता था पॉपुलर तो शुभेंदु अधिकारी थे,
0: जब तक अभिषेक बनर्जी
10: को एंट्री दिलवाया गया।
0: प्रसून आचार्य जी, आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार जब आ रही है, पहली बार जब बीजेपी की सरकार आ रही है और उसमें शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री उसके बन रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों की जो अपेक्षा होगी, जो आकांक्षा होगी, वो सबसे पहली क्या चीज होगी जो चाह रहे होंगे लोग कि शुभेंदु दा बने तो ये काम कर जाए?
11: पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि बंगाल का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, चाहे लोग ऐसा ही माइग्रेंट वर्कर जा रहा है और यहाँ भी नौकरी का भी कमी है, पहले में वो सबसे ज्यादा दूसरा मुद्दा होगा जो कृषि क्षेत्र में जो जिसका आय दुगुना तो हुआ ही नहीं, उसका दिन के दिन वो पोटैटो फार्मर हो या धान उगलते हैं उसका आय कम हो गया है, दूसरा उम्मीद यही है। तीसरा उम्मीद यही है कि बंगाल में पिछले 15 साल में ज्यादा इंडस्ट्री नहीं आया खास तरीका से, माने मोटा मोटी बड़ा इंडस्ट्री जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंडस्ट्री का चलते, और चाहे माने स्किल लेबर हो चाहे शिक्षित इंजीनियर हो स्टेट छोड़ के जा रहा है, तो इसके लिए उसका पास उम्मीद होगा जो किसी प्रकार से कम कुछ इंडस्ट्री लगाई जाए। और फोर्थ होगा नॉर्थ बंगाल का बहुत और जंगल महल एरिया का बहुत डिमांड है, क्योंकि डेवलपमेंट का हिसाब से वो पिछड़ते जा रहा है, उसके लिए भी उम्मीद है वहां पर भी कुछ हो ऐसा जिसमें लोगों का नौकरी बने, जिसमें लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बने, यही चार उम्मीद। और पचवा तो है लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा से सुधारने वाला जो है।
0: बंगाल शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आ रही है, 4 विधायक ले सकते हैं शपथ आज। अब दिलीप घोष का नाम तो सामने आ रहा था शुभेंदु अधिकारी के बाद, लेकिन उसके साथ ही अब 4 विधायकों की बात हो रही है, 4 विधायक शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। मारिया, जिस तरीके से एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो पहले कहा गया कि आज सिर्फ शुभेंदु, लेकिन अब लग रहा है कि मंत्रिमंडल के कुछ और नाम सामने हो सकते हैं जिसमें शंकर घोष, निशित प्रमाणिक, ये सारे नाम शामिल हो सकते हैं। मारिया, वो आज वहां पर सिग्नल का की बड़ी दिक्कत आ रही है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, इस कारण एक तो जो मैदान है, जो परेड ग्राउंड है, उसके आसपास की परिस्थिति, जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन बंगाल शपथ ग्रहण को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। एक एक करके वो नाम जैसे ही हमारे सामने होते हैं हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन फिलहाल 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल का भी नाम सामने आ रहा है, दिलीप घोष है, अग्निमित्रा पॉल है, निशित प्रमाणिक है, शंकर घोष है, ये सारे वो नाम हैं जो आज मुमकिन है शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ लें। तो 11 बजे से ये कार्यक्रम होना है, 10:30 होने को आ रहे हैं अभी, एक तरफ उत्सव लेकिन दूसरी तरफ ये सारे नामों की फहरिस्त जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होगी, इनमें कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के अपने चेहरे हैं और कुछ जो तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर विनोद जी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आकर मोर बीजेपी देन पुराने नेता वैसे भी दिख रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके आते हैं, जिस तरह के तेवर उनके दिखते हैं।
8: देखिए, शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अपने आप को बीजेपी के जो वैचारिक लाइन है, जो हिंदुत्व का की विचारधारा है, उसमें अपने आप को पूरा तरह से रचबस जाना और ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करना, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा के सामने थी। तो क्योंकि जब आप किसी दूसरी विचारधारा में जाते हैं तो आप पर हमेशा एक उंगली उठी रहती है कि ये तो वहां से आया है, तमाम सारे लोगों को हजम नहीं होता है, इसलिए आपको ज्यादा दिखाना पड़ता है कि हम आपसे भी ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं। और इसीलिए आप चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, आप उनके बयानों को देखिए, उनके एक्शंस को देखिए, उनके कपड़ों को देखिए, वो ज्यादा अपने को जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है उसमें ज्यादा अपने को आगे बढ़ा चला दिखाते हैं। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी एक चेहरा इसलिए बने कि ममता बनर्जी को हेड ऑन चुनौती देने की हिम्मत किसी दूसरे नेता में नहीं थी, नंदीग्राम में भी जाकर उन्होंने चुनौती दी, मणिपुर में भी। इसके अलावा वो लगातार विधानसभा के अंदर
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह, यानी हम समझ सकते हैं कि 11 बजे का जो समय दिया गया था, जो इनविटेशन कार्ड्स पर 11 बजे का समय लिखा गया था, वो समय के अनुसार शुरू हो सकता है। और अब तो दिलचस्पी इस चीज को भी लेकर बढ़ गई है कि कौन कौन से वो नाम होंगे। अभी हम शुभेंदु अधिकारी के साथ 4 और नाम आपको बता रहे हैं, अब कौन डिप्टी सीएम होगा या विभाग क्या होगा ये तो आगे विभागों का बंटवारा होगा, लेकिन शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस इस समय जुड़ रहे हैं, तापस ये बताइए कि एक एक करके जो नए नाम सामने आ रहे हैं जो शपथ ग्रहण होगा, यानी हम समझें कि एक लंबी लंबी लिस्ट हो सकती है उन नेताओं की जो आज ओथ लेंगे।
12: श्वेता एक बार अगर अपना सवाल दोबारा दोहराएं।
0: तापस आज जो बताया जा रहा है कि और भी नेता शपथ लेंगे, तो उसमें और भी अभी और लंबी लिस्ट हो सकती है क्या? शुभेंदु अधिकारी के साथ चार नाम अभी तक सामने आए हैं।
12: जी देखिए, प्राथमिक तौर पर यह बताया गया था कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही शपथ लेंगे, लेकिन उसके बाद चार नाम और सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि 6 से 7 नाम हो सकता है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, लेकिन ये पूरा जो चर्चा है कल रात भर इस बारे में का देर रात तक ये चर्चा चली कि किन किन को शपथ दिलाया जाएगा और उन्हें क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, इस बारे में भी चर्चा हुई, इसको लेकर भी स्पेकुलेशन है। लेकिन फिलहाल जो हमें पता चल रहा है कि 4 से 5 विधायक आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। क्या इसके साथ और कुछ नाम जुड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में ही सभी को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तय था पहले से शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, वैसा नहीं, शुभेंदु अधिकारी के साथ कई और विधायक शपथ लेने की बात हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि कितने लोग कुल मिलाकर आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करते हैं।
0: आज पीयूष अभिजीत मुहूर्त में शपथ ग्रहण ये होने वाला है और प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर पहुंच गए हैं, हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और आपके साथ तो काफी जो आम लोग हैं वो भी पूरा भगवा में होकर और आज अपने अपने विचारों को अपने वस्त्रों से रखने के लिए ऐसा लग रहा है कि वहां पर मौजूद हैं।
12: जी जरूर श्वेता, देखिए आज
1: उत्साह है और लोग काफी भारी संख्या में जो है वो ब्रिगेड ग्राउंड के पास पहुंच रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग अपने चेहरे पर पगड़ी बांधकर, पगड़ी के ऊपर है कमल के ऊपर है मोदी और मोदी के हाथ में है झालमुरी। बड़ा खूबसूरत आपने बनाया, ये कैसे बनाया आपने?
13: झारग्राम में चुनाव का प्रचार में आए थे मोदी जी, आज झालमुड़ी खा के बोले थे सेलिब्रेशन बंगाल की होगी, मिठाई के साथ झालमुड़ी बांटा जाएगा, इसलिए मोदी जी को सर पे झालमुड़ी का ठोंगा लेके पकड़ा दिया।
1: सर के ऊपर पगड़ी पर लोटस के ऊपर मोदी के हाथ में झालमुड़ी।
13: पूरा वर्ल्ड फेमस है, डायनामिक है, फेबुलस है, ग्रेट है, मोदी एक ही मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी
14: मोदी।
15: खड्डा से,
16: बांकुड़ा से आया,
1: बांकुड़ा से,
16: आप बैरकपुर से,
1: बैरकपुर
16: बैरकपुर
17: बांकुड़ा सोनामुखी विधानसभा, बांकुड़ा सोनामुखी विधानसभा।
1: अच्छा आज शुभेंदु अधिकारी को क्या कहेंगे?
17: मुख्यमंत्री है क्या हमारे बंगाल?
13: दादा ओ अभी बंगाल का फेमस लीडर है दादा, ममता बनर्जी को हराया, छोटा मोटा बात नहीं है, ममता बनर्जी घर पे हराया, घर पे हराया, एक बड़ा बड़ा बात नहीं है।
1: गूंज रहे यहाँ पर और काफी दूर से पूरा रास्ता जाम हो चुका है, कोलकाता ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ जाने का पूरा ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो चुका है, लोगों को रास्ता नहीं मिला तो लोग पैदल ही निकल लिए, हाथों में झंडा लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ श्वेता, ये इस वक्त तस्वीरें हैं कोलकाता ब्रिगेड ग्राउंड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले की। देखिए पूरा रास्ता इस वक्त ठप हो चुका है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और उस तरफ भी देखिए कैसे जो महिलाएं हैं।
0: तो पीयूष वो तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन उसके साथ ही वहां पर आप देखिए कि कैसे लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर तापस बहुत बड़ी संख्या में और दूर दूर से, और अगर हम जो आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं नेता विधायक उनके प्रोफाइल को देखें तो वो भी अलग अलग हिस्सों के, मतलब अगर दिलीप घोष जैसा नाम है तो साथ में शंकर घोष भी हैं जो कि सिलीगुड़ी के विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं।
12: जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले सरकार के खिलाफ ये आरोप रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों का कि उत्तर बंगाल पर खासा ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह था कि बीजेपी भाजपा ने अपने कमल खिलाने में सफल रहा उत्तर बंगाल में। जो चूक ममता बनर्जी ने किया वो चूक भाजपा नहीं करना चाहती। इस बार जो नॉर्थ बंगाल के समर्थक या कार्यकर्ता नेता थे उनकी मांग थी कि वहां के लोगों के लिए काम करना और वहां के डेवलपमेंट के लिए अगर काम करना हो तो उन्हें उत्तर बंगाल से कोई ऐसे नाम, कुछ ऐसे नाम कैबिनेट में शामिल हो जिसे सामने रखते हुए लोगों को लगे कि उत्तर बंगाल को भी काफी ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में डेवलपमेंट कहा जाता है कि बहुत ज्यादा होता है, उत्तर बंगाल में सरकार का ध्यान हमेशा से कम रहा है, चाहे वो वाम सरकार के समय हो या तृणमूल के समय हो। इस बार ये साफ हो गया कि अगर दिलीप घोष खड़गपुर से है तो दूसरे छोर पर शंकर घोष जो उत्तर बंगाल से और काफी चाहते और लोकप्रिय नेता है शंकर घोष, तो शंकर घोष जैसे नाम, तो यहाँ पर जो अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे जो नाम लगभग सामने आ रहे हैं इस समय, तो इसमें पश्चिम बंगाल के हर कोने को टच करते हुए ये कैबिनेट बनाया जा रहा है कि हर जगह का रिप्रेजेंटेशन जो हो वो इस कैबिनेट में हो, ताकि लोग जहाँ जब अगली बार चुनाव से पहले वोट मांगने जाए तो कम से कम उन्हें ये बताने का समय मिले, मौका मिले कि उन्होंने क्या काम किया है। तो इसलिए उत्तर बंगाल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और महिलाओं को भी यहाँ पर इस कैबिनेट में काफी ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री थी उसके बावजूद ये आरोप लगा था कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, तो इस बार भाजपा सरकार आने के बाद महिला रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। अगर महिलाओं को कैबिनेट में ज्यादा शामिल नहीं किया जाता तो विरोधियों की तरफ से फिर सवाल उठाया जाएगा, तो इस वजह से इस बार महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होगा कैबिनेट में यह माना जा रहा है वो भी काफी अच्छा होगा। श्वेता,
0: पीयूष जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मैदान के बगल में आप देखिए कि गाड़ियों का लंबा जाम आपको दिख रहा है और गाड़ियों जितनी सड़क पर हैं खचाखच उतने ही लोग आपको चलकर आगे बढ़कर जाते हुए दिख रहे हैं। पीयूष, अगर आपको आवाज आ रही है तो और लोगों से बात करें, क्योंकि आज उत्साह सबका चरम पर है। पीयूष को अभी हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आप लोगों का हुजूम देखिए वहां पर जो आगे जा रहे हैं। पीयूष, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप कैमरे के सामने आ जाइएगा तो हम समझ लेंगे कि आप सुन सकते हैं हमें, लेकिन ये ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ जाते हुए लोगों का हुजूम, दूसरी तरफ आप अभी भी देख रहे हैं कि कलकत्ता में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं वो अभी भी पैदल चलकर मैदान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा हो सकें। अभी तक रैलियों के लिए आप आते हुए जरूर देखते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर जरूर हो चुकी है जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े क्राउड को संबोधित भी किया है, लेकिन ये जो मैदान है ये हमेशा से एक तरीके से जब यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच एक नेता की लोकप्रियता को दिखाना हो, या फिर जैसा कि हम कल से भी चर्चा कर रहे थे कि जब ऑपोजिशन यूनिटी को दिखाने की बारी आई थी तो इसी मैदान में ममता बनर्जी उन सभी नेताओं के हाथ थाम कर खड़ी हुई थी। संगीत जी,
10: देखिए पता नहीं हाथ थामी थी या हाथ उखाड़ने के लिए खड़ी थी, राहुल गांधी के साथ क्या किया, एक भी टिकट जहाँ तक इंडी गठबंधन को साथ लेकर के तो चलने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन को के लिए तो उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया, वो एक स्वतंत्र चेता की महिला हैं और उनके लिए था कि माई वे और हाईवे जिसे हम कहते हैं वही स्थिति थी उनके लिए। दूसरी बात, एक चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता था, किसी ने हमको बताया और बंगाल के ही एक पत्रकार ने बताया, शायद शुभेंदु जी ने जिक्र किया था कि वो बचपन में शाखा जाया करते थे, तो क्या उनकी घर वापसी हुई है एक ढंग से? अच्छा, 2019 में जब मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में एड्रेस किया था तो वैसे तो राहुल गांधी को भी इन्वाइट किया था, अखिलेश जी को भी इन्वाइट किया था, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल से इन्वाइट किया था, ममता बनर्जी को भी इन्वाइट किया गया था।
8: शुभेंदु आए थे।
10: तो मतलब ये एक बड़ा दिलचस्प है। और दूसरी बात,
8: उनके अंदर था पहले से।
10: देखिए, एक चीज कहा जाता है कि बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते थे आशा भरी नजरों से, लेकिन उनको राजनीतिक भविष्य उसमें नहीं दिखता था, तो स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मतलब है कि अपनी राजनीतिक करियर को गंवा देना। ये परिवर्तन तो बंगाल के अंदर जो है 2014 में नरेंद्र मोदी के बाद ही आया है ना, नहीं किसने सोचा था कि त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आडवाणी जी के समय किसने सोचा था कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? ये सब तो ऐसे प्रदेश थे जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं पाती थी कि आसाम के अंदर तीन सीटें मिलती थी आसाम में, तीन से सीधे आप छलांग मार करके और सीधे आप सत्ता में चले आते हैं।
0: एक चीज
10: जरूर जिक्र करना था, अल्पसंख्यक मंत्रालय कम से कम बंद कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर, और यदि कहे तो उसे परिभाषित करें कि उसमें मुस्लिम भी उसके हिस्से नहीं है। 33% की आबादी अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी को वहां सुनिश्चित करना चाहिए।
0: सारे नागरिकों का उत्थान एक साथ, मतलब मुझे लगता है कि अगर वहां की जनता ये बात आकर कह रही है कि हमें विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोजगार की भी मुद्दा बहुत लोग वहां पर बोलते रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि एक समावेशी विकास की तरफ अगर कोई भी सरकार वहां पर आगे अभी बढ़ पाएगी, अगर शुभेंदु अधिकारी इस उम्मीद को पूरा कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। और पहला फैसला उनकी कैबिनेट किस चीज का लेना चाहती है, ये चीज भी उनके आने वाले समय को बहुत अच्छे से परिभाषित करेगी। तापस आप ये बताएं कि और क्या जानकारियां अब तक मिल पा रही हैं, क्या कुछ और नाम सामने आ पा रहे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का, खासकर अगर हम उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी देखें, हालांकि वो बहुत सारे रोल्स में रहे हैं, बहुत मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है, उन सारी चीजों के बीच उनसे अगर जनता उम्मीद लगा रही है तो गलत नहीं है। अब वो है कि वो उसे पूरा कैसे करेंगे।
12: जी देखिए, मेरे पास ये बेहद एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके के बड़े कद्दावर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का, और हमें याद रखना होगा श्वेता कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कह सकते कि छात्र है, और ये राजनीति में वो ममता बनर्जी को जितने अच्छी तरह वो जानते हैं उतना शायद इस राजनीति में कोई ममता बनर्जी को पहचानता होगा, और यही है वो कारण रहा है कि इस बार चुनौती देने में और जीत हासिल करने में शुभेंदु काफी सफल रहे। लेकिन दूसरे छोर पर अगर देखा जाए,
0: शुभेंदु अधिकारी की रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी की नेता, उनसे बात की है मेरी सहयोगी मारिया शकील ने।
14: बहुत जिम्मेदारी दे दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई मेरे पर, मैं उनका सबका कष्ट दुख जो भी झंझट इतने सालों से वो लोग झेल रहे वो सब का निर्वाहन करूंगी माँ काली के आशीर्वाद से सबका निर्वाहन करूंगी।
5: दक्षिण और वो पूरे एरिया में 24 साउथ परगना में भाजपा ने कभी कुछ किया नहीं था, और इस बार जीत एक ऐसी सीट पर जो बहुत ही डिफिकल्ट थी।
14: देखो ना, वो तो था बी ग्रेड का सीट, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के सारे लोग भर भर के बीजेपी को आशीर्वाद दिया इस बार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोलकाता में लैंड किया उसके बाद वो अपनी हेलीकॉप्टर में सवार होकर आगे पहुंचे हैं, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जिसमें सवार होकर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर ब्रिगेड ग्राउंड तक पहुंचे हैं, और ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर भी अब पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे से शुरू होना है, और एक एक करके वो सभी नाम स्पष्ट होते जाएंगे। अब रूपा गांगुली भी जो बात कर रही है मारिया से, उसमें वो एक बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रही है, तो अब देखना है कि क्या शपथ ग्रहण में वो भी शामिल होंगी। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार तीन ये जो चॉपर्स हैं वो लैंड करते हैं, जिनमें से दो में उनकी सुरक्षा डिटेल होती है और एक में प्रधानमंत्री स्वयं सवार होते हैं। तो ये पहला आपने लैंड करते देखा, ये दूसरा विमान वहां पर लैंड कर रहा है, और उसके बाद तीसरा विमान भी लैंड करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंच गए हैं, और आज यहां पर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी, योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने देखी थी, गृहमंत्री अमित शाह अपने होटल से रवाना हो चुके थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए, और सब ये परेड ग्राउंड की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ मुख्यमंत्री के तौर पर जब आज शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे तो याद रखने की बात है कि 20 साल का जो उनका पूरा,
18: तुम्हें बोलो সারা বাংলার জয়, সারা বাংলারবাসী যে আমাদের বিজেপি সরকারকে ভালোবেসেছে এটা তাদের জয়।
19: মন্ত্রীপদ কি পাচ্ছেন কি কিছু
18: ফোন আসছে,
19: কিছু কথা বলা
18: না না ফোন হয়
20: না।
0: এস ওয়াক
20: রূপা গাঙ্গুলী
0: तो ये आप सुन रहे थे रत्ना देवनाथ को, जो कि आरजी कार की जो विक्टिम थी उनकी माँ है। ये पानीहाटी से चुनाव लड़ी और कह रही है कि जो विजय है भारतीय जनता पार्टी की, ये बंगाल की जनता की विजय है। हमारे साथ मैदान से जुड़े हुए हैं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है अब से 15 मिनट में उसकी शुरुआत हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता जिनके पास केंद्र से लेकर राज्य तक का अनुभव है, दो बार के लोकसभा एमपी भी रहे हैं, कई पोर्टफोलियोज उन्होंने संभाली है पीयूष, और इन सब के बीच आज पश्चिम बंगाल में जब एक नया सूर्योदय हो रहा है, एक नया उदय हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी जब वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच गए, मतलब ये बीजेपी के लिए उत्सव है, ये बीजेपी के लिए एक लक्ष्य प्राप्ति है, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक आने वाले दिनों का सफर, ये एक एक पड़ाव पर आपको यहां पर पूरे कोलकाता शहर में आज नजर आ रहा है। और साथ में बंगाल के गवर्नर आरएन रवि भी आपको एक हम आपको दिखा रहे हैं, जो क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ दिलवाएंगे आज राज्यपाल, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष बताएं।
2: आइए आइए इधर। जी जी बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह है और ये सपना था लाखों कार्यकर्ताओं का कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर आए, और अरे दीदी आप ये लोगों का प्यार है, यहाँ पर आया हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, सनातन टीका जो है मेरे पर लगा दी, और जय श्री राम का ये नारा दिया। आप यहाँ पर महिलाएं
18: जय श्री राम,
2: जय श्री राम,
18: जय श्री राम,
2: जय श्री राम। कहाँ से आई हो दीदी आप, बोलिए, आज आप ये सनातन का टीका लगा रही है क्या? हम सबको आप ये भगवा टीका लगा रही है क्या?
18: हमारा मोदी जी यहाँ पर आया है, शुभेंदु साहब जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बना है, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: कितना खुश है? खुशी
18: बहुत ज्यादा खुश हूँ।
19: टीका नहीं लगता ना, तो समझिए अब दीदी का सरकार रहने पे नमाज और टूपी पहनने पड़ता है, इस बार नमाज और टूपी पहनने ही पड़ता।
20: अगर टीका नहीं लगता तो यहाँ पर नमाज पढ़ने का आ जाता है, ये भीड़ जो होता है नमाज पढ़ने का होता
19: है, टोपी पहनाना है, वो कभी हिंदू को कभी नहीं हुई, वो नमाज है, वो मुमताज बेगम है।
2: आप लोग कहाँ कहाँ से आए?
20: हम लोग आसनसोल से आए हैं, आसनसोल से जी,
19: आसनसोल हम लोग का मंदिर बंद करके रखा था।
21: दुर्नीति रानी पतन,
2: कितनी देर से पैदल चल रहा है,
22: आधा घंटा सब लोग लाइन में लग जा रहा है, आधा घंटा
21: बीजेपी बीजेपी
22: बीजेपी बीजेपी बीजेपी।
2: कितना उत्साह है आपको, क्या नाम हुआ?
23: मेरा नाम स्वरूप नाथ है।
2: कितना उत्साह है आज बीजेपी का?
23: बहुत खुश हुआ, बहुत हम लोग बहुत दिन देखने का था, दिन चलाया, मोदी जी जिंदा।
0: देखिए ये मैदान में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जो विशेष रथ है उसपे सवार होके आगे आते हुए, उनके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी आपको दिख रहे हैं,
24: आपनारा देखते बच्चें,
0: साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस गाड़ी में सवार होकर अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मंच की तरफ वो जा रहे हैं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
24: श्री सौमिक भट्टाचार्य
0: अपने उन सिपे सालारों के साथ जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दशकों पुराने सपने को पूरा किया है, दो बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, तीन बार एमएलए रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन 5 साल के लिए, तीन बार काउंसलर भी रहे, चेयरमैन ऑफ कोंटाई म्युनिसिपैलिटी रहे वो, एक लंबा उनके पास अनुभव है, एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर ट्रांसपोर्ट इरिगेशन
24: पावन धरती पर
0: इन विभागों को उन्होंने संभाला है, और हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं, यानी कि जमीन से लेकर और केंद्र के स्तर तक कई सारे ऐसी जिम्मेदारियां शुभेंदु अधिकारी ने निभाई हैं, जो सबको उम्मीद है कि आज जब वो शपथ ग्रहण लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो अनुभव उनके काम आएगा आगे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, अभी भी आप वहां पर देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश किस तरह का है कि सब वहां पर आज जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इस कार्यक्रम की शुरुआत भी अब होने वाली है पीयूष, जहां प्रधानमंत्री जिस रथ में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और कार्यकर्ताओं की विशिष्ट अतिथियों की सबकी मौजूदगी भी दिख रही है। पीयूष
1: जी बिल्कुल, लगभग सभी प्रदेशों के वो प्रदेश जहाँ पर बीजेपी और एनडीए की सरकारें और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है वहाँ पर वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी भी आ गए और कुछ देर में ये शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होने जा रहा है। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए कि कैसे हुजूम जो है वो कार्यकर्ताओं का बढ़ता जा रहा है। हर कोई सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, जय श्री राम। एक और समस्या यहाँ पर यह आ गई है कि कई विधायक जो जीत के आए हैं वो भी ब्रिगेड ग्राउंड नहीं पहुंच पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि इतना जाम है, इतना ट्रैफिक है, पूरा ब्रिगेड ग्राउंड इस वक्त गिर चुका है। चारों तरफ से कार्यकर्ता चलते हुए जा रहे हैं, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार नारों के साथ हाथ में झंडा लिए, भगवा झंडा लिए और हाथ में जो बीजेपी का झंडा लिए वो सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। और यहाँ पर चना और झालमुरी भी यहाँ पर बिक रहा है, आप ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोग ये इन सब चीजों का
24: बिलुप्त। श्री नरेंद्र मोदी जी
0: एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट शमिक भट्टाचार्य, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल के नेता
24: के
0: अब से कम कुछ मिनटों तक वो यही कहलाएंगे, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कहलाएंगे शुभेंदु अधिकारी। और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
24: जीवन में
0: बीजेपी के लिए एक बहुत लंबा समय लगा, बहुत लंबा संघर्ष लगा। अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं का एक बहुत लंबा बलिदान का दौर लगा कि पश्चिम बंगाल में वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करा पाए।
24: सुगंध बह रही है,
0: चाहे दो सांसदों का जीतना जिसे तुक्का भी कहा गया, पर उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्थिति को इस तरीके से स्थापित करते जाना कि पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही। 207 सीटें बीजेपी ने जीती। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम भवानीपुर दो सीटों पर खड़े हुए। नंदीग्राम वो सीट जहां से पिछली बार वो जीत कर आए थे, इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के विरुद्ध लड़कर जीते।
24: सकले माननीय प्रधानमंत्री এসে পৌঁছানো মাত্র পরিবেশিত হবে জাতীয় সংগীত, তারপরে অনুষ্ঠানের যে কার্যক্রম রয়েছে আমরা তাতে চলে যাব। বাংলার পক্ষে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ পশ্চিম বাংলার বিধানসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত।
0: ये बताया जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर दिन, रविंद्रनाथ टैगोर और वहां पर उस संगीत के साथ शुरुआत होगी जिसके बाद वहां पर शपथ ग्रहण होगा।
24: करें

0: वहां पर जो घोषणा हुई है जिसके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये बताया गया है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, और इसीलिए जो पहले वहां पर पहले संगीत के साथ, पहले कार्यक्रम के साथ, आयोजन के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, पहले उसी इस शुभ दिन का उत्सव और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप अब उस रथ से उतरकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको दोनों तरफ नजर आ रहा है उनके, जिसके बीच से चलते हुए आगे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। बहुत विशिष्ट अतिथि भी पहुंचे हैं देश भर से, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा यहां पर है, और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से आए हुए उन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी।
1: एंड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जी श्री अमित शाह, और उनके साथ है बहुत सारे और व्यक्तित्व। नितिन नवीन जी सकले मिले एदेर के स्वागत जानान। नितिन नवीन जी हमारे मध्य आछेन, गृहमंत्री आछेन श्री अमित शाह,
0: वरिष्ठ मंत्री
1: हमारे मध्य आछेन
0: जेपी नड्डा,
1: राजनाथ सिंह जी,
0: राजनाथ सिंह
1: रक्षा मंत्री
0: सब मंच पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सबका अपना योगदान इस बार के चुनावों में भी, जब प्रचार के लिए पूरी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी नेताओं को झोंक दिया था, अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को के जिम्मे, और सबने अथक प्रयास लगातार किया। लेकिन इसमें एक नाम जो अलग हो जाता है वो है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह आज से नहीं बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी उसके बाद से उनकी सक्रियता वहां पर पहले कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर पश्चिम बंगाल के इन चुनावों तक संपूर्ण रूप में नजर आई है। उनकी छवि अगर एक चाणक्य की 2014 के चुनावों के साथ कई लोगों ने महसूस की, तो पश्चिम बंगाल में उनकी सक्रियता के साथ जिस तरीके से बीजेपी एक एक कदम करके आगे बढ़ती गई उसमें बहुत अधिक महसूस हुआ। और इसीलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे, चाहे प्रभार चुनाव का रहा हो किसी एक नेता के जिम्मे, लेकिन अमित शाह ने दिन रात लगकर पार्टी के स्वप्न को जरूर साकार किया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ आपको मंच पर बैठे हुए दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं के बीच होते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे मंच की तरफ अब बढ़कर आगे जाएंगे, वो तस्वीरें भी आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं। और ये जो पीयूष एक शोर वहां पर, जिसमें सब अपने हिसाब से अलग अलग नारे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जय श्री राम है तो जय माँ काली के नारे नहीं लग रहे, ऐसा नहीं है कि मोदी मोदी के नारे अगर लग रहे हैं तो उसके बीच में शुभेंदु अधिकारी के लिए भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन आज जो ये पूरा जो आवाजें हर ओर से हम मैदान के सुन रहे हैं, उसमें शंख ध्वनि के साथ शुरुआत आज के शपथ ग्रहण समारोह की होने वाली है, और इस सब के बीच अगर एक सपना साकार होने की बात होती है तो वो सपने आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आंखों में दिख रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री
2: जी, बिल्कुल, ये वो लाखों कार्यकर्ता हैं श्वेता जिन्होंने पिछले काफी दशकों से मेहनत करी, काफी सालों से वो लगातार मेहनत करते रहे, और आज ये स्वर्णिम दिन जो है उनको देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। कुछ कार्यकर्ता जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ, उनसे समझ लेता हूँ कि मन में क्या भाव है, कहाँ से आप आए हैं और क्या मन में भाव है आपका।
3: मैं उत्तर पाड़ा विधानसभा हुगली जिला 185। हमारे
2: माला तो बहुत खूबसूरत पहने
3: हमारे हमारे एक्स एनएसजी कमांडो दीप्यांजन चक्रवर्ती महोदय जो भारी मतों से विजय प्राप्त किए हैं। आप बताइए
1: कोलकाता संगठित होते
2: क्या हुआ था
1: सबाई के धन्यवाद।
4: बात बता रहे दिन में बूथ के अंदर हम लोग बूथ से निकलने के बाद हम लोग गेट के अंदर में ही थे। बाहर से टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि 4 तारीख तुम लोग का लास्ट डेट है, मतलब 4 तारीख तुम लोग का अंत
2: होगा। बनाया जाता था लिस्ट,
4: सबका लिस्ट बोला कि जितना हिंदू है, जितना हिंदू बिहारी जो भी है, इस बार जो लास्ट
2: हिंदू का लिस्ट बन रहा था, बिहारी बंगाली पूरा हिंदू का लिस्ट बन रहा था पूरा लिस्ट। आज जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कितना मन में कॉन्फिडेंस है?
3: बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मतलब आप बोल नहीं सकते हैं। ये सोनार बंगला वापिस आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी सोनार बंगला आएगा। 1 जून से 10 जून तक हम लोग फुल एक्टिव हो जाएंगे, हम लोग शुरुआत कर देंगे।
2: जय श्री राम बंगाल है, जय बंगाल, जय श्री राम का बंगाल है।
3: एक कार्यक्रम शुरू कर देंगे, अभी हमारा मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। और देखिए सोनार बंगला यदि नहीं आया तो हमको बोलिएगा। 34 साल हमने सीपीएम को दिया, 15 साल हमने ममता को दिया, अब हम लोग हिंदू राज में आए, हम लोग राम राज्य है।
2: बीच में यहाँ पर श्वेता आप देख सकते हैं कैसे
1: मिथुन चक्रवर्ती सिंबल ऑफ एनर्जी
2: समय नहीं हुआ, एक मिनट भी समय नहीं हुआ जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं हुई। लगातार कार्यकर्ता जो है यहाँ से मार्च करते हुए ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और सबके हाथ में भगवा झंडा जय श्री राम के नारे लगाते हो। दादा क्या नाम वो

0: সিপিএমকে ভোট দিয়া হয়, 15 বছর মমতা কি ভোট দিয়া হয়, চম মিথ্যা ঝুট বলতা ঝুট বলতে
1: হম কই রাজনীতি দলকে নেই হ্যাঁ। 27 মার্চ কো হমকো পতা চলা হমারে উত্তরপাড়া বিধানসভা মে এক্সএলজি কমান্ডো আ রে, হমনে আপনা কপড়া ব্যবসায়, হম কপড়া ব্যবসায়ী হ্যাঁ, কপড়া ব্যবসায় ছোড় করকে হমনে আয়া, হম আপনা কপড়া ব্যবসায় ছোড় কে 1 মহিনা কন্টিনিউ কিতনি ডেলি হমনে কিয়া, সুবহ 7 বজে লেকর কে রাত তক, আর উসকে বাদ পাঁচ সভা সারি হমনে কিয়া,
2: হমনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি
1: কান্ড কি মাকে পাঁচ বজে মিলে গিয়া इनवाइट अपने विधानसभा में किया है। हम लोग
3: तो सभी कार्यकर्ताओं का वो जोश आप सुन रहे हैं, लेकिन आज का दिन बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। 25 बैसाख यानी कि बैसाख जो कि पहला महीना होता है बंगाली कैलेंडर के अनुसार, उसका जो 25वां दिन होता है वो आज के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी हुआ था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 25 बैसाख के संगीत भी लिखे, उन्होंने खुद भी वो संगीत लिखे हैं जिनको आज के दिन में चाहे अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह तो आज हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर ये सामान्य वर्ष भी होता जहां पर उत्सव बस मनाया जा रहा होता तो लोग रविंद्र संगीत के साथ पूरे दिन को, इस दिन के उत्सव को बहुत मन से मनाते हैं। तो आज इसके साथ ही, इस महत्वपूर्ण दिन के साथ ही आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो आप पश्चिम बंगाल के लोगों का उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उल्लास वो सब समझ सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, ये सब तस्वीरें जब आप देख रहे हैं तो आपको हर चेहरे की मुस्कान यही एक बात बता रही है। और नितिन नवीन जो कि बीजेपी अध्यक्ष बने उसके बाद मुझे लगता है कि वो अचीव कर लिया विनोद जी, जो कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, मतलब अमित शाह ने तो उसी समय इसकी शुरुआत की थी कि हम बंगाल को जीतेंगे, लेकिन आज संपन्न हो रहा है जब नितिन नवीन वहां पर है, लेकिन अमित शाह का योगदान बहुत बड़ा रहा है बंगाल जीतने में।
4: सबसे बड़ा योगदान अमित शाह का, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन नवीन जी को श्रेय जरूर जाएगा कि उनके कार्यकाल में बंगाल विजय की भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि भूपेंद्र पटेल को श्रेय जाएगा कि उनके समय 156 सीटें जीती गुजरात में, जबकि मोदी जी की प्रधानमंत्री थे, सब कुछ श्रेय मोदी जी का था, लेकिन जब इतिहास में लिखा जाएगा तो कौन मुख्यमंत्री था, भूपेंद्र पटेल, ऐसे ही कौन अध्यक्ष था, नितिन नवीन। तो ये तो संयोग है कि मिलता है उनको, मेहनत तो देखिए इसमें नितिन नवीन से पहले की जो लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की, वो नड्डा जी हो, अमित शाह जी का तो पूरा योगदान ही है। संगठन का जो काम है वो नितिन नवीन से पहले जो संगठन के लोग थे उन, अभी तो नितिन नवीन की टीम भी नहीं बनी है, अभी तो पुरानी टीम ही चल रही है, तो कुल मिलाकर के उस पूरी टीम का योगदान है। और इसके बीच जैसा कि अभी आशोष भी कह रहे थे, 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें छिपे थे, 2016 में शुरुआत की थी उन्होंने, 2016 में 3 सीटें जीती विधानसभा की, 10% वोट, लेकिन 2019 में जब 30% वोट और 18 सांसद जीते तो उम्मीद बनी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सकती है, अपना झंडा फहरा सकती है। और उसके बाद 21 का चुनाव देखिए कितनी जीवटता के साथ लड़ा था, वो अलग बात है नहीं जीत पाए थे, लेकिन 70 सीटें हो गई थी, 38% वोट हुआ, तो ये निरंतरता की जीत है ये। और सबसे बड़ा श्रेय वैसे देना चाहिए संघ के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वर्षों से पश्चिम बंगाल में काम किया है।
5: बट मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं संघ के किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया गया इसमें।
4: मैं तो ले रहा हूँ, आप भी लीजिए, संगीत जी रहेंगे।
6: संघ का कार्यकर्ता तो हमेशा पर्दे के पीछे होता है, और विनोद जी ने ठीक कहा, वहाँ 5,000 से ज्यादा शाखाएं बड़ी हैं पिछले,
7: आजकल बहुत सारी शाखाएं तो पेपर पे बढ़ जाती
6: है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बंगाल के अंदर शाखाएं अच्छी खासी है, जैसे केरला के अंदर भारतीय RSS की शाखाएं सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वहां सीटें नहीं जीत पाती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ जाने के कारण जो है हिंदुत्ववादी लोग भी जो है वो सीपीएम को वोट दे दिया करते हैं।
3: तो ये वहां की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर मंच जो है वहां पर सभी नेता, उनकी मौजूदगी, जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी जहां जहां एनडीए सरकारें हैं वहां के अभी आप प्रतिनिधित्व इस समय मंच पर देख सकते हैं, यानी केवल बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जो एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, आप सबको इस समय मंच पर मौजूद देख सकते हैं। आपको मोहन यादव के साथ पीछे सम्राट चौधरी भी दिख रहे हैं, तो साथ में आपको एकनाथ शिंदे भी इस समय मंच पर दिख रहे हैं।

0: अनाउंस।
1: तो अगर संपूर्ण भारत के नक्शे में आप एक भगवा बयार उत्तर से लेकर दक्षिण पूरब से लेकर पश्चिम के हिस्सों में देखते हैं, तो वहां पर आपको उन सभी क्षेत्रों का की नुमाइंदगी करने वाले वो सारे नेता इस समय मंच पर दिख रहे हैं, और ये सभी नेता पश्चिम बंगाल के चुनावों में प्रचार के लिए पहुंचे थे, सबने अपनी अपनी तरफ से मेहनत की थी। लेकिन यहां जो सबसे प्रथम पंक्ति में गृहमंत्री अमित शाह बैठे हैं और उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठे हैं, ये एक संगठनात्मक रूप में किस तरीके से बीजेपी को का विस्तार यहां किया गया, जो पन्ना प्रमुखों के साथ एक ऐसा फॉर्मूला अमित शाह लेकर आए जिससे भले एक चुनाव में नहीं दूसरे चुनाव में सफलता नहीं, लेकिन फिर एक ऐसी सफलता जो अप्रत्याशित रही। आप वहां पर जिन नेताओं को मौजूद देख रहे हैं उसमें एनडीए सरकारों के साथ साथ ये भी बीजेपी की सरकार जब यहां पर अकेले दम पर 207 सीटें लेकर आती है, तो ये एक ऐसी उपलब्धि जिसके साथ आता है एक बहुत बड़ा दायित्व। हमारे साथ अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता अब जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या शपथ आज लेने वाले नेताओं की सूची कुछ स्पष्ट हो पा रही है कि कौन कौन और आज साथ में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण कर पाएगा?
2: अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं
1: शपथ ग्रहण की शुरुआत से
2: प्रिय प्रधानमंत्री
1: और उनके साथ साथ उनसे दो कदम पीछे शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं।
2: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं एवं सेई संगे आछेन सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी। आज के मंचे उपस्थित आछेन माननीय राज्यपाल श्री आर एन रवि, एदेर सकलेर उपस्थितिते पुष्पार्घ प्रदान करा हलो।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चित्र पर फूलों को अर्पण करते हुए सबसे पहले जब मंच पर पहुंचे हैं तो सबसे पहले पुष्प अर्पित किए हैं
2: माननीय प्रधानमंत्री,
1: और उसके बाद
2: प्रधानमंत्री
1: आज का ये आयोजन जो प्रारंभ हो रहा है।
2: माननीय राज्यपाल उपस्थित आछेन श्री आर एन रवि, उपस्थित आछेन माननीय सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी, आमादेर मध्ये उपस्थित आछेन श्री शौमिक भट्टाचार्य महाशय। आमी ताके अनुरोध जानाबो आजके श्री माखनलाल सरकार सम्पर्के तिनि आमादेर बोलबेन।
3: शिलीगुड़ी निवासी श्री माखनलाल सरकार सबरी प्रतीक्षार मतो दीर्घ प्रतीक्षा, भारत केशरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनी भारतेर संविधान एवं भारतवर्षेर अखंडतार जन्य एई बांग्लाय जन्मग्रहण करे निजेर प्राण दिएछिलेन, जाके काश्मीरेर जेले रहस्यजनकभावे कार्यत खून करा हयेछिल, एवं तार सेई यात्रार जिनी सहयोगी छिलेन सेई माखनलाल सरकार 97 বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে, কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে, বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান আপনার মুক্তি দেব, কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি, বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে, যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং 100 টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য। আজকে সেই মাখনলাল সরকার আমাদের মধ্যে আছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে সম্বোধন করবেন। মাখনলাল সরকার জো শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি কি অন্তিম যাত্রা কা উসকা সাথী রহে হ্যায়। আজ হামারা মঞ্চ পে উপস্থিত হ্যায় হামারা গুজুর্গ জো জীবন মে কিসি কা সামনে সর নহীঁ ঝুকায়া।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका अभिनंदन किया है, माखनलाल सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है, 90 वर्ष की आयु उनकी, लेकिन आज भी एक्टिव कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के।
3: शकुन्ना कुमारी जैसा हमारा सपना है वैसे ही गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार भारत हमारा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार आज बन रहे हैं। ऐसी कितना माखनलाल सरकार ने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, जिसका नाम जिसका पता किसी भी संवाद की सुर्खियों में नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल में नहीं है, जिसका जीवन संघर्ष करते करते चले गए, आज वही माखनलाल सरकार हमारा बीच में उपस्थित है। प्रधानमंत्री जी भी उसको अभिनंदन करेंगे थोड़ी बाद में।
1: भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जिनको सबको आप मंच पर इस समय उपस्थित देख रहे हैं, उन सब के बीच एक बुजुर्ग कार्यकर्ता, एक पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी सम्मान के साथ एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक बात को बार बार कहती है, वो ये कि एक आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, और ये कि बीजेपी के भीतर केवल वरिष्ठ नेताओं नहीं बल्कि सामान्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान, तो ये एक बड़ा प्रतीक और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश शपथ ग्रहण के इस मंच से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि के साथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ शुरुआत की, और बाकी नेताओं की तरफ से भी
2: माननीय प्रधानमंत्री
1: ये क्रम,
2: क्योंकि
1: आज का दिन इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण है बांग्ला संस्कृति में, कि पहले उस पूरी संस्कृति, उस उत्सव का आयोजन, और उसके बाद
2: रविंद्रनाथ ठाकुर जाके हमरा सुखे दुखे,
1: और उसके बाद शुरुआत शपथ ग्रहण की। लेकिन एक बहुत भावुक तस्वीर ये, जब आप एक कार्यकर्ता का यूं सम्मान करते हैं,
2: जाके हमरा
0: प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये बड़प्पन उनका है,
1: सम्मानित किया, पांव भी छुआ,
0: मतलब अब ये देखिए, ये इमोशनल मोमेंट हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए। मोटिवेशन तो यहीं से आता है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पैर छू करके प्रणाम कर रहा है।
1: ये थॉट भी कि उनको आमंत्रित किया गया और मंच पर बुलाया गया है,
4: ये थॉट भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का ही रहा होगा
1: जी।
4: उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया होगा कि जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इस मौके पर बुलाया जाए, और उसमें चूंकि माखनलाल जी सरकार साहब जो है शायद सबसे वरिष्ठ रहे होंगे, इसलिए उनको मंच पर जगह दी गई। इसके अलावा और भी कई पुराने कार्यकर्ता संघ के और भाजपा के जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से रहा। गुजरात में भी वो इस तरह, जब भी उनका शपथ ग्रहण होता था तो जो पुराने कार्यकर्ता होते थे पार्टी के उनको बुलाया जाता था, तो ये एक उनका जेस्चर है। और दिल्ली में भी जब जितने बार उनका प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण हुआ तब भी,
1: या फिर जो उनके नाम के प्रस्तावक रहते हैं, जब वो खुद स्वयं चुनाव लड़ने जाते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं, जो उनके प्रस्तावक होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, जो स्थानीय रूप में जिनकी बहुत पहचान होती है, चाहे मुझे याद है 2014 में चाहे वडोदरा से उन्होंने किया, तो वहां पर जो एक चाय वाले थे जो बहुत अच्छी चाय वहां पर प्रसिद्ध बनाते थे, चाहे फिर जब वो बनारस गए तो वहां पर उन्होंने
4: जी गिरधर मालवीय जी थे
1: तो वो कलाकार या फिर जो वरिष्ठ जन है वहां के उन सबको इस तरह से सम्मान देना आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि उत्तर बंगाल से ताल्लुक रखते हैं ऐसी जानकारी दी जा रही है कि सिलीगुड़ी से ताल्लुक रखते हैं 90 वर्ष से अधिक की उनकी आयु बताई जाती है और सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में बीजेपी के वो शामिल हैं तो उनको उनको सम्मानित देना एक तरीके से वहां जो पूरे कार्यकर्ताओं का हुजूम आखिरी पंक्ति तक जो बैठे हैं उन सब तक एक मैसेज पहुंचा दिया गया है।
0: अब देखिए कितना ये उनके लिए तो सम्मान की बात है ये पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। लोग सोच रहे होंगे कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति जो है आम कार्यकर्ता को पैर छू करके प्रणाम करना इससे सामान्य तौर पर नमस्कार करके तो सभी करते हैं लेकिन पैर छू करके प्रणाम करना प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वयं भी 70 साल के व्यक्ति हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज मोटिवेटिंग फैक्टर ये हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए।
1: यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर मंच के ऊपर सभी नेताओं को तो आप देख रहे हैं लेकिन ये चंद तस्वीरें जो हैं ये आने वाले समय तक लंबे समय तक इसे याद किया जाएगा और उसके बाद जब वो आसीन भी हुए हैं तो ठीक मिथुन चक्रवर्ती के बगल में बैठे हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो भले टीएमसी में भी रहे बीजेपी में भी रहे लेकिन एक नेता से ज्यादा एक कलाकार के रूप में एक सुपरस्टार के रूप में हाँ उनकी पहचान आज भी है चाहे वो राजनीति करें लेकिन उनकी पहचान उस उनकी कला से ही जुड़ती है और इसीलिए वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट दिखाई सुनाई पड़ी। वहां पर आप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी देख रहे हैं आप उन पूरी उस पूरे जगह पर आप पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर देख रहे हैं तो सब यहां पर आप पीछे अमित मालवीय को भी देख सकते हैं तो ये सारे जो चेहरे हैं जिन्होंने छोटे से बड़े रूप में जिस भी रूप में वहां पर अपना योगदान दिया और देखिए यहाँ पर गमछा हिलाते भी आपको लोग दिख जाएंगे। दरअसल ये जो पूरा प्रेसिडेंसी का क्षेत्र जिसे कहा जाता है यानी जिला कोलकाता और जिला कोलकाता से लगता हुआ हुगली हावड़ा उत्तर 24 परगना ये पूरा जो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी अपनी पैठ बना ही नहीं पा रही थी जबकि उसे एक अर्बन पार्टी कहा जाता था तो यहाँ पर शहरों में भी नहीं बन रहा था लेकिन ये वो एरिया है जहां पर बिहार से आकर बंगाल में बसे हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और आज गमछे को हिलाते हुए वो बिहार से बंगाल तक का संदेश भी दे रहे
4: हैं। गमछा आप याद करिए बिहार के चुनाव में मोदी जी ने जो है मंच से गमछा लहराया था और वो एक तरह से सिंबल बन गया था उस समय पूरे चुनाव का।
1: तो ये साथ में हम बताते चलें कि आज केवल 5 लोगों का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है उसके अनुसार आज केवल 5 मंत्री शपथ लेंगे शुभेंदु समेत यानी कुल 6 शपथ कुल 5 शपथ ग्रहण शुभेंदु अधिकारी और उसके साथ 4 और होंगे जिनमें अगर अभी तक की जानकारी के अनुसार जाए तो दिलीप घोष भी होंगे अग्निमित्रा पॉल भी होंगे मुमकिन है कि शंकर घोष हो और साथ में निशित प्रमाणिक तो ये 5 नाम जो हमारे सामने हैं कुल शुभेंदु अधिकारी और साथ में 4 और नाम थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत। जी विनोद जी अपनी बात
4: देखिए नाम तो मैं नहीं कह सकता लेकिन एक महिला जरूर होंगी क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री को हटाया गया है उनकी पार्टी को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो मुझे लगता है ये संदेश तो भाजपा जरूर देगी पहले ही लॉट में एक महिला जरूर शपथ ले कैबिनेट के रूप में। कौन होगी मित्रा पाल होंगी या रूपा गांगुली का भी नाम चल रहा है और भी लोकेश चटर्जी का भी नाम चल रहा है लेकिन कोई ना कोई महिला को तो होना चाहिए। पॉलिटिकल सेंस कहता है
0: देखिए आप जिन तीनों महिलाओं का नाम लिए पूरे बंगाल के चुनाव के दरमियान या पिछले 5-7 साल से ये तीनों बहुत चिर परिचित चेहरे रहे हैं टेलीविजन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव गढ़ने की दोनों दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि बहुत तीनों काफी एग्रेसिव तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे लॉकेट चटर्जी हो चाहे अग्निमित्रा पॉल हो और बंगाल के जो एलिटिस्ट भद्र लोग हैं उनमें इनकी पैठ महत्वपूर्ण है।
4: रूपा गांगुली
0: अच्छा, एक चीज श्वेता जी जो जो नितिन नवीन को जब लाया गया था तो एक फैक्टर ये भी आया कि बंगाल में 25 लाख कायस्थ लोग हैं और वो एक ट्रेडिशनल वोटर के तौर पर ममता जी के साथ थी तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का हिस्सा था।
4: इसमें दो नाम जो चल रहे हैं दिलीप घोष और शंकर घोष दोनों कायस्थ
0: नहीं दिलीप घोष से कायस्थ नहीं है दिलीप घोष जी घोष टाइटल होने के कारण कायस्थ माने जाते हैं बट वो यादव हैं
1: और जो संगीत रागी जी भी कह रहे हैं कि टाइटल के साथ आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या जाति वहां पर है, हालांकि बिहार में भी नहीं समझ
0: नहीं हमारे यहाँ भी एक मेरा बैचमेट अजय घोष करके है जी। वो हम लोग वो यादव है लेकिन घोष टाइटल लिखता है।
4: ऐसे कई कंफ्यूजन टाइटल तो उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे गौतम। हाँ। अब गौतम जो है वो राजपूत भी लिखते हैं, ब्राह्मण भी लिखते हैं और दलित भी लिखते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: तो आप देखिए यहाँ पर सम्राट चौधरी को कुछ समझाते हुए आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के नए बने हुए मुख्यमंत्री, यानी कि अब सबसे नए मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे शुभेंदु अधिकारी आज से, लेकिन अब तक इस समय तक सम्राट चौधरी के पास ये अधिकार है कि वो सबसे नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ आप पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं जो कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी इसीलिए आज अहम है क्योंकि गंगोत्री से गंगा सागर कहा जाता है। गंगोत्री जिस क्षेत्र में, यानी कि उत्तराखंड का वो हिस्सा जहां पर अभी पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं, और आज गंगा सागर के क्षेत्र में यानी पश्चिम बंगाल में वो मौजूद हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं।
4: अटल जी ने अरब सागर से गंगा सागर तक कहा,
1: उसके लिए थोड़ी अभी प्रतीक्षा।
4: देखिए ना, अरब सागर गुजरात,
1: अच्छा अरब सागर गुजरात के हिसाब
4: से लेकर के बंगाल तक, अब सारे राज्य बीच में देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए,
1: अभी वो तमिलनाडु केरल इसकी टीस रहेगी जहां पर, हालांकि
4: पूरब से पश्चिम से पूरब,
1: पश्चिम से पूरब तक की बात हो रही है। पश्चिम से पूरब तक तो संपूर्ण हो चुका है, अब वहां पर तो कोई
4: झारखंड एक टापू है जो बचा हुआ है,
1: एक झारखंड को छोड़ के, और झारखंड एक ऐसा सवाल भी बीजेपी के लिए जहां पर उसकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। बाकी जगहों पर बीजेपी की सरकार जहां पर भी रही वहां पर वो रिपीट उनकी सरकार हुई, लेकिन पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक के पूरे विस्तार में अगर देख लें तो बीजेपी ही बीजेपी आपको हर तरफ नजर आ जाएगी। और आज जो मंच पर प्रतिनिधित्व अपने अपने राज्यों का नेता कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसके साथ ही आपको वो पूरा भारत का नक्शा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अभी बस कुछ देर में यहाँ पर इस आज के समारोह की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर पहाड़ों से लेकर समुद्र तक सब कुछ है, यानी कि आप आप जो नॉर्थ बंगाल वाले हिस्से में जाते हैं, उत्तर बंगाल के हिस्से में दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी कूच बिहार का ये पूरा जो क्षेत्र है जहां से ऐसा मुमकिन है, अगर आज दो शपथ की बात वहां के उससे हो रही है, यानी कि सिलीगुड़ी का एक चेहरा और कूच बिहार का एक चेहरा, तो अभी देखना होगा हालांकि जो कौन से पांच चेहरे आज शपथ ले रहे हैं, बहुत मजबूत
4: नॉर्थ बंगाल,
1: जब कोई और उस समय नहीं वोट कर रहा था बीजेपी के लिए, उस समय भी नॉर्थ बंगाल स्ट्रांगली उनके साथ खड़ा रहा था, जब गुरखा लैंड वाले पूरे क्षेत्र में जब वहां पर आंदोलन हुआ था, हालांकि वो एक एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन वहां पर जब आंदोलन हुआ था ममता बनर्जी को बड़ी चुनौतियां वहां पर अपने पहले कार्यकाल में उसका सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने अपनी मौजूदगी और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज अगर कराई है तो सबसे मजबूती से उत्तर बंगाल के उस क्षेत्र में, इसीलिए आज चाहे उसके सबसे पुराने कार्यकर्ता की बात, सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक की बात अगर हो जाती है जिनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्प अर्पण करने के बाद जिनके चरण छूकर उनके उनको गले लगाकर उनका अभिवादन करते हैं सबसे पुराने कार्यकर्ता का, चाहे सामने मंच के उन उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को बैठे हुए वो इन तस्वीरों को देखकर जो आगे के दिन के लिए उम्मीदें संजो रहे हैं, रैलियों के लिए वो बहुत आते रहे, यहाँ पर बहुत भीड़ जुटाई होगी, लेकिन आज जब स्वयं इसमें शामिल हो रहे हैं, इस शपथ ग्रहण को एक उत्सव का रूप देकर इसमें शामिल हो रहे हैं, तो सबको आज इन तस्वीरों का महत्व समझ में आ रहा होगा, जहां पर पश्चिम बंगाल में चाहे ममता बनर्जी सरकार जब वहां पर पहली बार बनाती है तो भी उस भय को दूर करने की बात करती है कि चुप्पे छाप फुल छाप पर वोट दो, वो अपने मतदाताओं से कहती है बताने की जरूरत नहीं है तो हिंसा नहीं होगी, या फिर बीजेपी जो भय को हराकर जीतने की बात करती है, लेकिन क्या यहां से एक नए दौर की शुरुआत होगी। आज केवल पांच मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात हो रही है, लगभग 11:30 होने को आ रहे हैं, आज जो 25 बैसाख का त्योहार है, रविंद्र जयंती है, तो उसके साथ ही आज शपथ ग्रहण होना है, पहले वो उत्सव और उसके साथ ही फिर शपथ ग्रहण। तो किसी भी समय अब शपथ ग्रहण की शुरुआत यहां पर होनी है, लेकिन यहां जो नई शुरुआत की जिसकी बात हो रही है वो बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पास वो पूरा एक लंबा अनुभव जरूर है, लेकिन उस लंबे अनुभव को वो किस रूप में अब आगे लेकर चलेंगे, यहां पर आप नितिन गडकरी को भी पहुंचते हुए देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सबकी मौजूदगी के बीच आज यहां पर जब शपथ ग्रहण होगा, तो केवल अगर 5 चेहरे आज पहले दिन, यानी कि विस्तार तो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन इस भव्य समारोह में 5 चेहरे तो हम इतना समझ सकते हैं कि कम से कम जिनको लेकर एक डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देने की सोची जा रही है, हालांकि उसका ऐलान आज नहीं होगा, शाम होते होते ये खबर जरूर सामने आ जाएगी, लेकिन वो डिप्टी सीएम, सीएम और साथ में जो प्रमुख चेहरे होंगे उनका शपथ ग्रहण आज यहां पर संपूर्ण होगा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोलकाता में, जहां पर आज इस शपथ ग्रहण का आयोजन कई कारणों से अगर हुआ है तो उसमें एक प्रमुख कारण यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकें। और ये एक रवायत रही है, अलग अलग राज्यों में रवायत रही है कि जब भी कोई इतना बड़ा एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का आयोजन होता है तो चाहे वो पटना का गांधी मैदान हो या फिर कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड हो, वहां पर आप चाहते हैं कि कार्यकर्ता पहुंचे।
4: देखिए श्रोता, क्या है कि पहले शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बड़ा सादे तरीके से राजभवनों में होता था, लेकिन 90 के बाद जब कांग्रेस की सरकारें जाने लगी और तमाम विपक्षी दलों की सरकारें आई, खास करके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम राज्यों में, तो ये शपथ ग्रहण एक बड़े समारोह के रूप में खुले में होने लगा। उत्तर प्रदेश में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुलायम सिंह ने पहली बार शपथ ली थी, बिहार में लालू यादव ने गांधी मैदान में पहली बार शपथ ली थी खुले रूप में इस तरह से, और फिर धीरे धीरे ये चलन बढ़ने लगा। और ज्यादातर जो मुख्यमंत्री, जो खासकर जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहे हों, जो भी मुख्यमंत्री है, योगी जी बाद में आए, मायावती जी आई, तो हमेशा हर जगह, फिर ममता बनर्जी भी ऐसे ही ब्रिगेड मैदान में शपथ लेती थी, तो राजभवनों की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती गई। हालांकि इस बार सम्राट चौधरी ने राजभवन में ही शपथ ली थी, लेकिन उनके मंत्रियों की शपथ भी गांधी मैदान में हुई। तो ये बड़ा आयोजन हो गया शपथ ग्रहण का और जनता भी इसमें शिरकत करने लगी। अब तो करीब हर राज्य में शपथ ग्रहण जो है खुले मैदान में ही होता है और भारी संख्या में उसमें अपने समर्थकों को बुलाया जाता है, तो एक संदेश भी होता है। और वैसे अगर आप उस दृष्टि से देखें तो ये अच्छी बात है, बजाय बंद कमरे में शपथ लेने के, एक खुले मैदान में जनता के सामने अगर मुख्यमंत्री और मंत्री या प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो एक तरह से जनता को साक्षी बना के उस संविधान की शपथ लेते हैं, तो लोकतंत्र की दृष्टि से भी ये बेहतर चीज है।
1: पश्चिम बंगाल,
0: लेकिन ज्योति बसु ने राजभवन में लिया था 1977 में, ज्योति बसु या बुद्धदेव भट्टाचार्य जब आए तो राजभवन में ही उन्होंने शपथ ग्रहण। आपने सही बोला कि ये जो है ना, ये पोस्ट मंडल कमीशन फिनोमेना है, उसके बाद जो जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, चंद्रबाबू नायडू ने भी शायद लिया था मैदान में ही,
4: मैदान में लिया था,
0: तो
4: फिर मैदान का ही चलन बढ़ गया हर जगह।
1: और ये जो आप आज ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल में केसरिया बयार की, वहां पर आप देखिए कि जो जो लोग, जो कार्यकर्ता आए हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की तस्वीरें भी पेंट करके वो सब लाए हुए हैं। सबके पीठ पर एक छोटा छोटा बस्ता लदा हुआ है, यानी कि वो अलग अलग हिस्सों से आए होंगे, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से आए होंगे जहां पर वो, और बंगाल जैसे राज्य में एक जटिल राज्य तो है पॉलिटिकली एक बहुत कठिन राज्य है, जहां पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां पर बहुत बड़ी हिम्मत से डटे रहे हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता। अब देखिए प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं, पहले उन्होंने पुष्पांजलि किया, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता का स्वागत किया और अब मंच पर उनका पहुंचना, साथ में राज्यपाल, अब राज्यपाल पहुंचेंगे और देखिए कि रविंद्र जयंती के दिन आज गुरुदेव
2: सकल के जानाई আমরা এবার শুরু করতে চলেছি অনুষ্ঠান। এভরিওয়ান প্লিজ রাইজ ফর দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম।
5: নাই কোন

0: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সময়ের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদ্বতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
1: শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিম বঙ্গাল কে নয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আপনি হস্তাক্ষর দর্জ করেনগে আর ঔপচারিকতায় পুরি হয়ে। শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিম বঙ্গাল কে নয় মুখ্যমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টি কে পশ্চিম বঙ্গাল মে পহলি সরকার কে আগুয়া, পহলি সরকার কে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অব বন চুকে হ্যাঁ। এক লম্বা প্রশাসনিক অনুভব উনকা রহা হ্যায়, एक लंबा अनुभव केंद्र से लेकर राज्य तक उनका रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं 5 साल, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन वो रहे हैं और सबसे बड़ा राजनीतिक रुतबा जो उनका रहा है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके पांव छूकर उनके सामने सर अपना झुका रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और पीएम उनसे बात कर रहे हैं। जाहिर है कि बात तो पहले भी हो चुकी लेकिन ये मौका बड़ा अहम, अब पीएम का के सामने, उसके बाद फिर वो पहुंचे हैं अमित शाह के सामने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उसके बाद जितने भी तमाम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां पर मौजूद। और देखिए योगी आदित्यनाथ के सामने जब वो पहुंचे हैं, बाबा ने अपना गमछा पहनाया है और शोर किस तरीके का उसके बाद सुनाई दिया।
2: नहीं, लेकिन इसमें संदेश कितना बड़ा है, किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, संदेश बहुत साफ है कि बुलडोजर मॉडल को कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में कंटिन्यू करो, तभी सुशासन आएगा।
3: परमिशन सर, आई नाउ रीड आउट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर्स। The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 146, 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R. N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, শ্রীমতি অগ্নিমিত্রা পল, শ্রী অশোক কীর্তিনিয়া, শ্রী ক্ষুদিরাম টুডু অ্যান্ড শ্রী নিশীথ প্রামাণিক। মে আই নাও রিকোয়েস্ট শ্রী দিলীপ ঘোষ, অনারেবল মিনিস্টার ডেজিগনেট, টু রাইট অ্যান্ড টেক ওথ বিফোর দ্য অনারেবল গভর্নর।
0: আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
1: दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जिस पर नाम जिनके नाम पर चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या बीजेपी उन पर दाव लगाएगी। इस बार तो चलिए शुभेंदु अधिकारी को ही फ्रंट रनर कहा जा रहा था लेकिन पिछले चुनावों तक सबसे प्रबलता से सबसे प्रमुखता से नाम उनका लिया जाता था लेकिन आज क्रम में अगर सबसे पहला नाम उनका शपथ ग्रहण के लिए आया है तो मुमकिन है कि एक डिप्टी सीएम के तौर पर कम से कम आगे चलकर उन्हें देखा जाए। अब देखना होगा कि क्या तीसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल का नाम लिया जाता है। यहां दिलीप घोष एक प्रबल आवाज एक तरीके से एक आक्रामक तेवरों के साथ हमेशा ममता बनर्जी के विरुद्ध उनकी लड़ाई चलती रही है पश्चिम बंगाल में।
2: 3 से 77 तो इन्हीं के दरमियान हुआ।
1: 18 दक्षिण बंगाल की तरफ से ये प्रतिनिधित्व हमें दिख गया है मंत्रिमंडल में। आज कुल जो शपथ ग्रहण होंगे उसमें शुभेंदु अधिकारी के बाद पहला नाम दिलीप घोष का रहा। उन्होंने शपथ अपनी ली है और एक बार फिर वो देखिए प्रधानमंत्री से लेकर आगे बाकी सब की ओर आशीर्वाद लेते हुए शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। जोर से उनकी पीठ भी थपथपाई गई है। जाहिर है कि उनकी उनकी अहमियत को उनकी वरीयता को उनकी वरिष्ठता को पार्टी के भीतर वो तरजीह देते हुए भले शुभेंदु अधिकारी दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए लेकिन इन चुनावों में उनका चेहरा बड़ा अहम रहा। उनके चेहरे के इर्द गिर्द इन चुनावों को बुना भी गया और एक तरीके से अनसेड सा था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो सकते हैं।
3: सबके बीच दिलीप घोष को मित्रा पॉल ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द
1: अग्निमित्रा पॉल। हम कह रहे थे कि एक महिला इस मंत्रिमंडल में आज शामिल की जाएंगी। अग्निमित्रा पॉल का नाम कल से आज तक पर हम आपको दिखा रहे थे। अग्निमित्रा पॉल 2019 के बाद से हमने देखा है कि बीजेपी के लिए
4: श्रीमती अग्निमित्रा पाल ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সময়ে যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
5: আমি
4: শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।
1: दक्षिण आसनसोल से पिछली बार भी उन्होंने चुनावों में एक बहुत कड़ी टक्कर में टीएमसी की कैंडिडेट को हराया था। इस बार फिर उन्होंने एक शानदार जीत वहां से हासिल की। एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी उनका इनफैक्ट एक ब्रांड है जो कि काफी लोकप्रिय है। लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी के साथ वो पश्चिम बंगाल में दिखेंगी। हालांकि सबसे फायर ब्रांड नेताओं में अगर किसी की चर्चा बीजेपी की पश्चिम बंगाल में होती है तो उसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम रहता है।
5: मेरा अनुभव ये कि मैं बंगाल डिबेटिंग क्लब में गया था और वहाँ पे प्रो एंड अगेंस्ट मैंने पहली बार तब अग्निमित्रा पॉल को देखा और जो आग निकल रही थी उनके भाषण में और जिस तरीके की बातें कर रहे थे तो मुझे लगा, मैंने पूछा भाई कौन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अग्निमित्रा पॉल है, ये यहाँ के MLA भी हैं। तो पहली बार मैंने इनको देखा और पहली बार देख के ही मुझे लगा कि मतलब ये बहुत दम वाली महिला है।
2: वैसे कई बार वो टेलीविजन के डिबेट्स में भी आते रहे हैं।
5: हाँ, लेकिन मैंने तो
2: अग्निमित्रा पॉल
5: क्योंकि वहाँ का जो बंगाल डिबेटिंग क्लब बहुत ही प्रेस्टिजियस है, बहुत काफी अहमियत भी और बड़ी पुरानी परंपरा है बंगाल की। वहाँ जिस तरीके से बोल रही थी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष रख रही थी, जिस तरीके से नारे भी लगाए,
3: अशोक कीर्तनिया ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब। पश्चिम बंग राज्य मंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेक सम्मत भावे निर्वाह करीब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणी जनगणर प्रति संविधान ओ विधि अनुसारे न्यायचारण करीब।
0: আমি
3: অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
1: অশোক কীর্তনিয়া যো কি ও ভি পিছলি বার বিধানসভা মে পহলি বার পৌঁছে ইস বার ফির বঙ্গাও উত্তর সে উনহোনে এক জবরদস্ত মুকাবলে মে শিকস্ত দি अपने विरोधी को। मतुआ समुदाय से आते हैं, मतुआ समुदाय जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक पिछले कुछ समय में एक वोटर के तौर पर उभरा है। एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर भी जुड़ा कि मतुआ समुदाय के भी वोटरों का नाम कटा इस बार के SIR की सूची जब तैयार हुई थी, लेकिन ये समुदाय पिछली बार अभी लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक जिस तरीके से खड़ा रहा है उसमें लाजमी है कि आज शपथ ग्रहण के दिन उस समुदाय से एक व्यक्ति को और उस पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सपना साकार होने जैसा है।
2: एक ढंग से ये आश्वासन हो गया क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था इस विधानसभा चुनाव में कि देखो इन्होंने हमारे वोट तो काटे, मटुआ समुदाय के लोगों का भी वोट काट दिया था और कहा जाता था कि 2 लाख के आसपास मटुआ समुदाय का जो वोट है वो कट गए थे उनका वोट।
1: नागरिकता का मुद्दा भी
2: नागरिकता का मुद्दा था और कई बार इसीलिए लोगों को कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी इतना सेंसिटिव क्यों नहीं हुई कि उनको नागरिकता दिलवा करके उनका वोटर्स लिस्ट में नाम उनका कैसे कट गया। तो एक ढंग से लोग कह रहे थे कि लैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने और जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके समाज में जाकर के उनको आश्वासन दिया कि आप इसकी चिंता मत करें।
1: अब देखिए एक ट्राइबल चेहरा भी हमें देखने को मिल रहा है, खुदीराम टुडू जो कि बांकुड़ा से आते हैं, रानीबंद से चुनाव जीत कर आए हैं,
2: पूरा नक्सल था बांकुड़ा,
1: शपथ लेने से पहले ही प्रणाम करके आ रहे हैं सबको।
6: चांदो बंगा नुतुमते किरिये हताई दें छोड़ा खुलेसा मोनेते ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱡᱚᱥ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
7: ᱤᱧ
6: ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱥᱟᱹᱱᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱮ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: साथ समाप्त किया उन्होंने अपना अपना शपथ ग्रहण और हालांकि संथाली भाषा का प्रयोग किया जाता है तो अपनी भाषा में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है खुदीराम टुडू पेशे से एक टीचर हैं और आज जब पश्चिम बंगाल में पहली सरकार का गठन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री के साथ पांच शपथ ग्रहण हैं तो उसमें उन्हें भी आज जगह दी गई है अभी तक जो तस्वीर पश्चिम बंगाल की विधानसभा की नजर आ रही है उसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष अग्निमित्र पॉल
8: ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर
1: आ रहे हैं
9: আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব
7: আমি
9: নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না
1: युवा नेता निशीथ प्रामाणिक 40 साल की उनकी उम्र है उत्तर बंगाल से आते हैं केंद्र में डिप्टी रहे हैं वो होम मिनिस्ट्री में अमित शाह के लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार जीता है उन्होंने और जीतकर उन्हें आज के दिन के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के दिन ही अवसर मिला है कि वो शपथ लें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं जब कूचबिहार से वो सांसद बने थे, और अब निशित प्रमाणिक जो कि माथाभांगा से चुनाव जीतकर बंगाल विधानसभा में पहुंचे हैं, वो शपथ ग्रहण बंगाल में ले चुके हैं। इस मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले दिनों में होगा, लेकिन पहले दिन ही बहुत बड़े बड़े संदेश दे दिए गए हैं। युवा से लेकर महिला तक, मथुआ समुदाय की नुमाइंदगी से लेकर आदिवासी रिप्रेजेंटेशन तक, ये पूरा आप जो स्वरूप अभी पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी मैसेजिंग भी नजर आ रही
3: है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द डिग्निटीज फॉर देयर ग्रेशियस प्रेजेंस एंड विद द And with the permission of His Excellency the Governor, sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem.

0: इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्यपाल वहां से अब प्रस्थान करेंगे और उसके बाद जो बाकी नेतृत्व है वहां से वो आगे की ओर निकलेगा, लेकिन मंच पर आयोजन का समापन इसके साथ ही हो जाएगा। नए मंत्रियों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं जोश से परिपूर्ण, उल्लास से भरे पूरे, और निकलते हुए भी प्रधानमंत्री ने उन कार्यकर्ता को नमन किया जो कि बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं माखनलाल सरकार, और साथ में अब सभी जो मुख्यमंत्री मंत्री पहुंचे हैं उन सबको सबसे बात करते हुए आखिर में मिथुन चक्रवर्ती से भी वो बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मिथुन चक्रवर्ती जब मंच पर आए और बंगाल का वो चेहरा जो बीजेपी के लिए एक नेता से ज्यादा एक स्टार के रूप में प्रचार करता रहा, अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके लिए पीएम कह भी चुके हैं कि मेरे बॉस हैं, पता नहीं नितिन नवीन कितना ये महसूस करते होंगे ये पता नहीं, लेकिन पीएम ने तो कहा कि मेरे बॉस हैं।
1: पीएम ने कहा होगा शॉक में आ गए होंगे, तो रात को नींद नहीं आई होगी, ये क्या हो गया।
2: लेकिन ये भी देखिए, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ा बनाना ही नेतृत्व का मतलब होता है। लीडरशिप थ्योरी जब पढ़ाते हैं तो उसमें भी कहते हैं लीडर इज नॉट वन हु ऑलवेज गिव्स ऑर्डर बट हु एम्पावर्स अदर। तो एक ढंग से देखिए तो उसको
0: चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री, और जाहिर है बाकी किसी जगह पे आज सरकार बन नहीं पाई। आज था कि विजय का शपथ ग्रहण होने वाला था 11 बजे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वहां नहीं हो पाया। तो दक्षिण में अभी जो स्थिति है जस की तस है। केरल में भी अभी कांग्रेस आलाकमान को ये निर्णय लेना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत बिस्व शर्मा भी कुछ देर पहले नजर आए थे मंच पर, उनका भी शपथ ग्रहण होना है
2: 12 तारीख को
0: उनका शपथ ग्रहण होना है,
2: उसमें भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, आगे नितिन गडकरी, सबको सबसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। संजय झा भी दिख रहे हैं बिहार से, यानी कि जो उनके साथी हैं जेडीयू उसकी ओर से संजय झा भी यहाँ पर मंच पर आए हैं। चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे सबसे भेंट मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहाँ से प्रस्थान करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम्स जो हैं वो भी मंच पर थे, लेकिन आज शपथ ग्रहण के साथ शुभेंदु अधिकारी अपने कार्य को किस रूप में अब आगे ले जाएंगे, क्या पहला उनका काम होगा, उनकी कैबिनेट का पहला फैसला क्या होगा, उनकी कैबिनेट का विस्तार कब होगा, यानी कि बाकी मंत्रियों की के नाम कब सामने आएंगे, कुछ देर में ये भी स्पष्ट होगा कि ये शपथ ग्रहण आज हुए हैं उन सबको क्या क्या कार्यभार सौंपा जाएगा। हम कुछ देर में अपने संवाददाताओं से भी अब संपर्क करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये आयोजन और जिस तरह के वीवीआईपीज थे वहां पर मोबाइल का सिग्नल मिलना बड़ा मुश्किल होता है।
2: पर डेटा एक देख रहा था 7.7 लाख करोड़ जो है वो डेट है पश्चिम बंगाल पे, और कोई 1.25 के आसपास का लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 49,000 करोड़ के आसपास का जो है इतना तो सिर्फ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। अब बाकी की सबसे बड़ी जो समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को, जिसे हम सोशल बेनिफिट्स के तौर पर हम देखते हैं, हाँ। उसको निभाना
0: नहीं, वो सारी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आज उन चेहरों का दिन है, जो चेहरे आज सामने आए हैं पश्चिम बंगाल की नई सरकार जो चलाने वाले हैं। अब उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम जिसकी चर्चाएं तो बहुत थी, और सबसे ज्यादा अनुभव के साथ शुभेंदु अधिकारी ही इस पूरी पूरे कैबिनेट में, इस पूरी सरकार में लीड करेंगे सबको, नेतृत्व करेंगे सबका। लेकिन अशोक कीर्तनिया का नाम देख लीजिए, निशित प्रमाणिक का नाम देख लीजिए, आप अग्निमित्रा पॉल को देख लीजिए, दिलीप घोष को देख लीजिए, हर नाम के साथ एक कोई ऐसी बात, एक कोई ऐसा फैक्टर जुड़ जाता है जिस कारण आज इन्होंने शपथ ग्रहण किया है नए मुख्यमंत्री के साथ। इन सब का, सबके नामों के साथ एक बड़ा संदेश बीजेपी के काडर को भी, वहां पर कार्यकर्ताओं को भी और पश्चिम बंगाल की जनता को भी दिया गया।
2: देखिए, अग्निमित्रा पॉल तो इसलिए क्योंकि बीजेपी के बहुत जुझारू नेता हैं और साथ साथ एक महिला के तौर पर महिला का प्रतिनिधित्व देना एक बहुत आवश्यक था। मटुआ समुदाय से एक देखिए आरएसएस के प्रचारक रहे हैं दिलीप घोष जी, और बहुत जो पिछला चुनाव है लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, साथ में विधानसभा का चुनाव भी बहुत अच्छा।

0: मतलब सारे बाहर से ही आए हुए लोग
1: हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, लोग अब वहां से बाहर भी निकल रहे होंगे और साथ में क्या ये समझ में आ रहा है कि ये जो मंत्री पद की शपथ जो शुभेंदु अधिकारी के अलावा जो बाकी ने ली है उसमें जो दो डिप्टी सीएम है दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल ही होंगी? अनुपम, आवाज आ रही है आपको?
2: सुनते बच्ची हेलो
1: नहीं, आवाज नहीं जा रही है अनुपम को। हम फिर दोबारा उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन एक एक करके ये सारी चीजें अभी स्पष्ट होंगी। लेकिन उसमें देखिए कि किस तरीके से एक आदिवासी चेहरा, एक मतुआ समुदाय का एक चेहरा, अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अजय जी, एक तो पूरी सरकार को इस समय शुभकामनाओं की आवश्यकता होगी, पश्चिम बंगाल के सामने जिस तरह की चुनौतियों और वहां के लोगों को जिस तरह की उम्मीदें अभी शुभेंदु अधिकारी से हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता का जिस तरीके से स्वागत किया गया, मुझे लगता है कि आज की ये तस्वीर उस शपथ ग्रहण से भी बड़ी लगती है।
3: बिल्कुल सही कहा।
4: नहीं, निश्चित तौर पे श्वेता जी, बंगाल जब से आजादी भी हुआ था 1952 से लेकर आज तक अगर आप देखिए 75 साल से हमारे कार्यकर्ता वहां से संघर्ष ही कर रहे हैं। केरला में भी वही हाल है, संघर्ष ही कर रहे हैं। संघर्ष में जान गई, प्राण गए, घर गया, बार गया, लेकिन एक कर्तव्य के प्रति जुझारूपन कभी किसी ने नहीं छोड़ा। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी, और ऐसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़ के आते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान तो निश्चित तौर पर आज के दिन होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका लहरा रहा है, तो इस पताके को वहां तक पहुंचाने में इन्हीं कार्यकर्ताओं का योगदान है जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी, मुझे अभी भी याद है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि यहां तक आने के लिए कितने पुश्तें खप गई, कितनों का बलिदान हुआ, तब जाके हम लोग यहां पे आके पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर आज कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा, बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा पल है ये, बहुत बड़ा दिन था ये, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अपने इसी सपने को और बड़ा करने के लिए हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। और शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई शक नहीं।
1: और जो जो शपथ आज हुए हैं उसमें उन चेहरों को नहीं बल्कि एक मैसेज को पढ़े हम, चाहे आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व देखें, चाहे मथुआ समुदाय का।
4: नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो इसमें भद्रलोक से लेके आदिवासी समुदाय से लेके नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, एक पांच ही व्यक्ति का कैबिनेट, अभी शुरुआत हुई है कैबिनेट की, 45 तक जाएगी कैबिनेट, तो अभी तो और विमर्श करके अलग अलग समुदाय सबको समुचित उनका प्रतिनिधित्व और स्थान ये सब तय होगा धीरे धीरे। ये पांच तो देना जरूरी था भाई, हमारे कोर स्ट्रेंथ है राजवंशी, मथुआ, आदिवासी और भद्रलोक। भद्रलोक ने जिस ढंग से हमारे पक्ष में आके कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक माहौल बनाया और उनको समझ में आया कि ममता से मुक्ति पाना सबसे जरूरी है, और बाकी लोग जो जमीन पर रहकर संघर्ष कर रहे थे, चाहे उत्तर बंगाल हो, चाहे आदिवासी एरिया हो, चाहे मथुआ समुदाय के लोग हैं जिनमें भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, उनके वोट काट दिए गए हैं, लेकिन तब भी मथुआ समुदाय जिस तरह से निकल के आया, राजवंशी जिस तरह से निकल के आए, तो ये तमाम फैक्टर, दार्जिलिंग का एरिया, कर्सियोंग का एरिया जिसको हमेशा हम नेग्लेक्ट ही करते रहे, आज तक बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग को कभी माना ही नहीं कि वो उसका हिस्सा है, जबकि अकेले दार्जिलिंग में इतनी पोटेंशियल है, दार्जिलिंग कर्सियोंग उस क्षेत्र में, कि वो टूरिज्म और चाय के माध्यम से बंगाल की जितनी रेवेन्यू नीड्स है अकेले उसको पूरा कर सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर जीरो रखा। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब करना हमें है तो हम उसी हिसाब से करेंगे। एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हरेक को आगे निकलने का अवसर, बंगाल में इंडस्ट्री कैसे वापस बैठे, बंगाल की बिजली आपूर्ति कैसे सुदृढ़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड जो इतना पैथेटिक है बंगाल में, हर जगह स्टेट हाईवे 4 लेन का कैसे बने, कनेक्टिविटी बंगाल में किसी कोने से किसी कोने में किसी हालत में 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने बिहार में लक्ष्य रखा था और पूरा किया, तो उसी तरह से बंगाल का अगले 2 साल रिफॉर्म बंगाल होगा।
1: मनुजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। मनुजीत, जो पहले 5 चेहरे जो सामने दिखे हैं, उम्मीद हो रही है उनसे आपको बंगाल के लिए?
5: I congratulate them, उन लोगों को बधाई हो, आगे देखे क्या काम करते हैं। सब कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर भी ममता दी को 15 साल तक पीपल ऑफ बंगाल ने झेला है, इस तरह का ये एक अपमान है। इस टाइम नहीं हुआ वो भी, यू नो, द टीएमसी शुड एक्सेप्ट दैट, टीएमसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है देखेंगे हम। हम देखे हैं और दूसरे जगह पे क्या हो रही है।

0: डबल इंजन सरकार जहां पर है, तो बंगाल में आगे देखते हैं क्या होते हैं, लेकिन अब फिलहाल तो हम उन लोगों को बधाई देते हैं, बिल्कुल बधाई देते हैं सबको, आपको भी।
1: और ये बताइए कि आपको सबसे पहला काम अगर आपको लगता है कि वहां की नई कैबिनेट को करना चाहिए तो क्या करना चाहिए?
0: देखिए, मैं एजुकेशन सेक्टर से आता हूँ और मैं एक दो जगह पे ऑफिशियली था भी बंगाल गवर्नमेंट के साथ, कोशिश किया है, कुछ कुछ कुछ काम हुआ, बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कुछ काम नहीं हुआ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ना, 9 यूनिवर्सिटी है बंगाल में, उसमें कोई एक भी टीचर नहीं है 9 सालों से। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू पुश देम बिकॉज यू नो, लेकिन ये होता है कि राजनीति भले लोगों के लिए नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्काउंडल राजनीति में आते हैं। इसे देश में नहीं है, दुनिया भर में होता है। आई मीन दुनिया भर में, आई मीन हु आर द बिगर क्रिमिनल्स देन डोनाल्ड ट्रम्प, यू नो, पुटिन एंड नेतन्याहू, दे आर ऑल द बिगेस्ट क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। सो आई नो, एज एन एजुकेटेड पर्सन आई डू रेयरली हैव एनी होप, बट अगेन उन्हीं से जो भी होता है हम मानेंगे, अच्छा हुआ तो अच्छा होगा। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूँ ये, और जितना भी मेरे पास क्षमता थी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट यू नो, सब कम नहीं होता है। एज आई सेड ना, भारत लोगों के पास क्षमता ज्यादा नहीं होते है पॉलिटिक्स में।
1: चलिए, ये अनुपम अनुपम क्या क्या ये स्पष्ट हो पाया है अभी तक? क्या ये जानकारी दी गई है कि डेप्यूटी सीएम्स के तौर पर अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष ही हैं? क्या कुछ विभागों की बात अभी है या फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा? नहीं, अभी भी मुमकिन है कि वहां पर जो आवाज है हमारी वहां पर तक पहुंच नहीं पा रही है, अभी सिग्नल हमारा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम अनुपम से आगे बात करेंगे कि अभी अभी इस मंत्रिमंडल में आपको बहुत विस्तार दिखेगा, अभी बहुत सारे नए चेहरे होंगे, लेकिन आज के दिन जो 5 शपथ ग्रहण यहां पर देखने के लिए मिला है, उस उन चेहरों पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, कामकाज की शुरुआत तो अब इसके आगे होगी, लेकिन जो आज एक झलक दिखाई गई है संगीत रागी जी, उससे उम्मीद क्या बंध रही है?
2: देखिए, एक तो प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ा बैलेंस्ड प्रतिनिधित्व रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि जो आगे वाला चैलेंज है वो गवर्नेंस का चैलेंज है। सबसे महत्व गवर्नेंस के लिए जो है वो पहली शर्त यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पर मेंटेन हो। बंगाल एक अराजकता की स्थिति से, एक दौर से गुजरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडागर्दी जो है वो वहाँ की एक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था, इसमें इसमें भी दो राय नहीं है। और बाबा ने, आपने देखा होगा कि जो पटका पहनाया है उनको, शुभेंदु अधिकारी को, तो एक ढंग से उन्होंने संदेश भी दिया है कि आने वाले दिनों में यदि आप चाहते हैं कि बंगाल में FDI आए आने वाले दिनों में। देखिए, बंगाल से जितनी इंडस्ट्री थी, आप प्रेमचंद के समय का आप उपन्यास पढ़िए,
1: आपने इसको हिंदुत्व के संकेत, मतलब वो उस रूप में नहीं देखा जो कह रहे हैं जय श्री राम और हम केवल सनातनियों के लिए,
2: वो दोनों उसमें मिक्स है।
1: योगी आदित्यनाथ
2: में दोनों मिक्स्ड है, तो उसमें वो उसको देखिए ना, हिंदुत्व के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों को कोई प्रमाण पत्र की किसी से आवश्यकता नहीं है। जैसे होता है
1: वो अलग चीज हो जाती है ना, ये अगर वो क्या अपने कानून व्यवस्था का मेंटल आशुतोष वो दे रहे हैं, मतलब वो बाकी सभी मुख्यमंत्रियों से अलग योगी आदित्यनाथ ने उनको जिस तरीके से उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन।
3: देखिए, एक मुख्यमंत्री उस राज्य का मुखिया होता है, तो कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, इट इज अ डन डील इन द सेंस कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे और किसी तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट को किसी तरीके का बढ़ावा नहीं देंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी विचारधारा। तो उसमें मुझे नहीं लगता सुविधा अधिकारी को किसी तरीके कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन बंगाल की जो सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में वो है कि लेफ्ट मूवमेंट के बाद ममता बनर्जी ने भी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम नहीं किया। और आपको याद होगा कि नंदीग्राम और सिंगूर का जो पूरा आंदोलन था वो बेसिकली उसने पश्चिम बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो आज की तारीख में अगर पश्चिम बंगाल को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ मजबूती के साथ जोड़ना होगा तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब नंदीग्राम के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कोशिश की, लेकिन सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलन के बाद आपको ध्यान होगा कि कैसे वहां जो नैनो लगने वाली थी।
1: इसके साथ वापस लौटेंगे क्योंकि आंदोलन की तीनों भूमियों से ममता बनर्जी एक एक करके हार गई अपनी। लेकिन ये पहले हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि माखनलाल सरकार, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में।
3: आपको बता दो माखनलाल सरकार जी जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम करने वाले थे और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे तब भी उनके साथ गए थे।
1: उनका देहांत हुआ था उसके बाद
3: उनको उनकी बॉडी को भी लेकर आए ये उन लोगों में से है। और दक्षिण दिनाजपुर का कोई इलाका है जहां पे लगातार 8 बार जिला अध्यक्ष रहे तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जुड़ाव है उसकी जीवित कड़ी उस लिहाज से है। तो उचित है कि प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान भी किया उनके चरण भी छुए मेरे ख्याल से अच्छी बात है। हर वरिष्ठ का आप किसी भी पद पर हुई लेकिन अगर आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति का पैर छूते हैं तो भारत की ये परंपरा है और उस लिहाज से प्रधानमंत्री जी का ये कदम जो सराहनीय कदम है।
1: अनुपम न केवल ये जो जो जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जड़ों से लेकर अब तक का उनका योगदान बल्कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को माखनलाल सरकार ने जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसे प्रदेश में जहां पर कहा जाता है कि चाहे लेफ्ट से तृणमूल या तृणमूल से बीजेपी की तरफ लोगों का अगर विचारधारा के रूप में परिवर्तन होता है तो उसमें एक हिंसा का की चुनौती जरूर सामने आती है उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा। जी अनुपम
4: जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही जो देखने को मिल रहा था सबसे बड़ी बात है कि पिछले इतने सालों में 15 सालों में जो बीजेपी का यहां संघर्ष रहा है उन्हें बार बार एक ही जो सवाल किया गया है तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की ओर से कि वो बाहरी पार्टी है बंगाल की पार्टी नहीं है। लेकिन आज जो सुबह से हमें देखने को मिला जगह जगह माइक पे रविन्द्र संगीत बजाया जा रहा था रविन्द्र जयंती के दिन ही आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया और ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बंगाली पार्टी है बंगाल की पार्टी है क्योंकि श्यामा प्रसाद बार बार उनकी ओर से बोला जा रहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं के थे लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी को यहां पर स्थान नहीं मिला था सत्ता नहीं मिली थी। तो ऐसे में आज सुबह से जो संदेश देने की कोशिश की गई उसमें पहली कड़ी थी रविन्द्र संगीत चलाया जाना उसके बाद दूसरी कड़ी में माखनलाल सरकार जो कि 97 वर्ष की उम्र में सबसे पुराने वयोवृद्ध कार्यकर्ता उनको मंच पर जिस तरीके से सम्मानित किया गया तो ये एक संदेश को आगे कड़ी के रूप में जोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद जो 5 लोगों को दिया गया है आप देखिए पूरे बंगाल का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की गई है। फिलहाल जो 5 लोगों को दिया गया है दिलीप घोष मिदनापुर खड़गपुर से हैं अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से वो जीती हैं वहां का उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। जो खुदीराम टुडू हैं पुरुलिया के रानीमाद से वो जीते थे कुर्मी समाज से आते हैं कुर्मी समाज की बहुत अहम भूमिका रही है पूरे जंगल महल को जीतने में। जंगल महल में लगभग 40% के आसपास कुर्मी समाज है जहां पर बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम 4 जिलों में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। ऐसे में वहां का एक प्रतिनिधित्व दिया गया खुदीराम टुडू के रूप में। उत्तर बंगाल ने भर भर के वोट दिए बीजेपी को तो ऐसे में निशित प्रमाणिक जो माथावांगा से जीते उनको दिया गया। तो और दूसरा पांचवा जो था मतुआ समुदाय ने भी इस बार भर भर के वोट दिया जबकि बहुत बातें हो रही थी कि एसआईआर में उनका नाम कट गया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाए गए कि मतुआ समुदाय जो लगातार बीजेपी के लिए वोट कर रहा था उसका ही नाम काट दिया गया है। इसके बावजूद मतुआ समुदाय ने भर भर के वोट दिया तो उसका भी एक प्रतिनिधित्व यहां देखने को मिल रहा है। तो जातिगत समीकरण के अलावा पूरे बंगाल का एक समीकरण जोड़ने की कोशिश बीजेपी की ओर से शुरुआत में की गई है। 5 लोगों को जो दिया गया है शपथ दिलवाई गई है इनमें से जो एक संदेश जा रहा है कि पूरे बंगाल का प्रतिनिधित्व हम करना चाहते हैं। तो कई संदेश इस शपथ ग्रहण समारोह से बीजेपी ने देने की कोशिश की है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि और कितने मंत्रियों को किस तरीके से मंत्रित्व और कितने एमएलए को मंत्री पद दिया जाता है और क्या क्या प्रतिनिधित्व होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौतियां हैं एक हिंसा पोस्टपोल वायलेंस की चुनौती थी उसको काफी हद तक कर्व किया जा चुका है आगे किस तरह से उस पर कार्यवाही होगी। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ पश्चिम बंगाल की उस पर काफी कुछ बीजेपी की ओर से कहा गया लगातार प्रहार किया गया उस पर किस तरीके से कार्यवाही होगी ये सब आगे अब आगे वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। श्वेता
1: आशुतोष भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं।
3: मंच पे मैंने देखा था वहां टैगोर की कोई तस्वीर लगी हुई थी क्या मंच पे थी क्या वो तस्वीर?
1: मुझे लगता है कनेक्शन थोड़ा सा वीक होकर जा रहा है।
3: मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंच पे क्या टैगोर की कोई तस्वीर लगी हुई थी क्या?
1: लगता है फिर उनका फोन कट गया हम आगे।
3: हाँ, मैंने वो ग्लिम्स मैंने देखी थी टैगोर की तस्वीर, जैसा उन्होंने भी कहा ना कि रविंद्र संगीत भी जगह हाँ, जगह बज रहा था।
1: हाँ,
3: देखिए ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी जब चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा था कि आप देखिए आप रविन्द्रनाथ टैगोर की तरीके से आप कैंपेन कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो 20वीं शताब्दी के अंदर जो पहचान है रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से, उसके पहले की जो पहचान थी राजा राम मोहन रॉय, बंकिमचंद चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद, अरविंद की उनकी पहचान थी। ये जो टैगोर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश है, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से कोशिश है कि आप हमको तो बंगाल से अलग किस पार्टी नहीं समझे आप।
1: हाँ, पर आज तो जयंती भी है ना, तो आज तो ये था कि आज का दिन ही चुना गया था।
3: देखिए ये सिग्निफिकेंट है कि आज के दिन शपथ ग्रहण हो रहा है और आज के और वहां पे अगर उनकी तस्वीर जो मैंने देखी, वो तस्वीर भी वहां लगी टैगोर की, साथ ही साथ जगह जगह पे रविंद्र संगीत बज रहा है, तो ये पूरी तरीके से स्थापित करने की कोशिश है और कहने से कोशिश है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो कि हम बाहर के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम भी इसी संस्कृति से रचे बसे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ख्याल से उस लिहाज से।
1: अजय आलोक जी, ये तो देखिए जो सिंबल्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो चुनावों तक बहुत ज्यादा
3: जी
1: उनकी तस्वीर जिस पर पुष्पार्पण के साथ, पुष्पांजलि के साथ शुरुआत हुई आज के पूरे समारोह की। लेकिन अजय आलोक जी, ये बात भी बहुत अहम हो जाता है कि जिस तरह का कर्ज बंगाल की सरकार पर है, जिस तरह का काम लोग अपेक्षा कर रहे हैं और जिस तरह के वादे चुनाव के दौरान बीजेपी ने किए हैं, इसे अपने आप में इसमें तालमेल बिठा पाना और पूरा कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी।
5: देखिए वो तो काम करना शुरू करेंगे, मैं उसका भी जवाब देता हूं, लेकिन किसी पार्टी की, किसी भी राजनीतिक पार्टी की, उसके सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी होती है। ये बंगाल पहली बार, मैं कह रहा हूं टीएमसी के बाद पहली बार बंगाल ने अपनी सांस्कृतिक विरासत की सरकार देखी है। 1952 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, 77 तक रही थी, तो कांग्रेस पार्टी कोई भारत की विचारधारा से उपजी हुई पार्टी नहीं थी, ये एक विदेशी पार्टी थी जिसको एक विदेशी ने बनाया था। कम्युनिस्टों का भी यही हाल था, माओ और लेनिन की विचारधारा लेके आए थे, ये हमारे विचार भारत की विचारधारा थी ही नहीं। तो कांग्रेस हो जाए चाहे कम्युनिस्ट हो जाए, कोई भारतीय विचारधारा की पार्टी नहीं थी। ममता बनर्जी का एक क्षेत्रीय आउटलुक था जो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी टीएमसी बनाई और वो राज करने आई। बंगाल की जहां तक बात कीजिएगा तो हमारी उत्पत्ति 1952 में पहली बार पहले चुनाव में 4 सीटें वहीं से जीत के आए थे। वैचारिक और नैसर्गिक रूप से बंगाल की ही हम पार्टी हैं, लेकिन ठीक है, एक विश्लेषण फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर की पार्टी है, बाहरियों की पार्टी है, गुजरातियों की पार्टी है, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया, सबसे बड़ा परसेप्शन तो लोग ही बनाते हैं, लोगों ने समझ लिया, उसका नतीजा है कि 206 पे हम हैं। तो इसलिए ये नैरेटिव अब कहीं से चलेगा नहीं कि बीजेपी बाहरी की पार्टी है भैया, बीजेपी हमारी उत्पत्ति वहीं की हुई है, हम वहीं के संघर्ष में, हम प्योर भारतीय नीति की पहली पार्टी है। एक बंगाल का जिस तरह से बात हो रही है, मैंने पहले ही कहा हम इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते थे, ब्रिटिशर्स बेवकूफ नहीं थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई थी, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तब थे। जब 1940s में 30s में और लेट 1800s में बंगाल की इकॉनमी नंबर वन पर रहती थी, तो आज क्या कारण हो गया कि बंगाल की इकॉनमी को वापस टर्न अराउंड नहीं किया जा सकता है? क्या नहीं है बंगाल में? पोर्ट्स हैं, अच्छी जमीन है, नहीं है क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इन चार की व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी किसी भी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए। आज जैसे बिहार और यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? उसका मेन कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी सरकार ने सुनिश्चित की और उसके कारण इंडस्ट्रीज आएंगे। अब बंगाल में तो और कूद के आएंगे क्योंकि बंगाल में उनको एडिशनल पोर्ट सर्विसेज मिलता है, हेलीपोर्ट का जितना बड़ा, इनलैंड वाटरवेज का जितना नया सिस्टम शुरू हुआ है, नया एक पोर्ट बन रहा है हमारा ऑलरेडी गंगा सागर पे, हल्दिया से ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है, इन सब का बिजनेस का स्केल और एक्सेलरेशन ये दोनों बढ़ाने की जरूरत है। आशुतोष जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी एक ही चीज में बिलीव करती है कि स्केल बड़ा हो, एक्सेलरेशन बड़ा हो, जब स्केल और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी और डेफिनेटली रेवेन्यू आएगा। हम जानने की बहुत सारा रेवेन्यू डेफिसिट है और हमने जितने वादे किए हैं उसके लिए पूरा करने के लिए भी और रेवेन्यू लगेगी, लेकिन वो स्टेट इतना फर्टाइल है कि अपने वादे पूरे करने के बावजूद भी अगले 3 साल में इस एग्जिस्टिंग लोन को हमारी मंशा है कम से कम 50% कम कर देने की, जो कि हम करेंगे। हर चीज का एक टारगेट लेके, कॉन्ट्रैक्टेड टारगेट लेके बीजेपी चलती है और ये सब हमारे एजेंडेज में है जिसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं वन आफ्टर द अदर।
1: मनोजीत, जब ये पूरा देखिए, अब तो एक तो चुनाव खत्म हो चुके हैं इसीलिए उन चुनावी नारों की बात करना बेमानी हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम वहां पर आम लोगों को भी पहुंचते देख रहे हैं, जब जो मैदान के बाहर हमने देखा कि लोग खड़े थे और चाह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर पाए और वो उनके इलाके में स्कूल, अस्पताल, ब्रिज ये सब बना दें, तो यानी कमी रही थी। अब रोजगार को लेकर जहां पर सिंगूर में आज की तारीख में लोग ये बोलने लगे थे कि हम तो उस समय आंदोलन में साथ थे लेकिन आज हमको नौकरी चाहिए, आज हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे साथ हमारे घर पर ही रहे, यहीं पर उनको नौकरी मिल जाए, लोगों की उम्मीदें तो इन कारणों से भी बढ़ी ना कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी वहां पर।
0: पहली बात यह है कि मैं आशुतोष जी को करेक्ट करना चाहता हूँ कि टैगोर से बंगाल की नहीं थी, वो देश और दुनिया के पहला ग्लोबल एम्बेसडर है जिनको देश दुनिया भर में चिन्हा जाता है। यू गो टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ स्वीडन, यू हैव अ टैगोर स्ट्रीट आउट देयर, एटलीस्ट 180 कंट्री सेलिब्रेट दिस मैन। सो इसे बंगाल की नहीं, एक यू नो बीजेपी के तरफ से एक सिंबलिज्म है। सुनने में अभी अभी आया कि आज औपचारिक दौर से टैगोर के जन्मदिन नहीं माना जा रहा है, बीजेपी के यू नो मंच में जरूर है लेकिन ऑफिशियली यू नो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस डे for the last many years, not just in TMC's time. आज नहीं बना जा रहा है लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे सिंबलिज्म है, you know, and मोदी साहब से और अच्छा कौन जानता है इन सिंबलिज्म को राजनीति में ले आना, बहुत अच्छा है, you know. लेकिन yeah, you talking about the challenges, industry, जो नैनो कहाँ पर गए हैं भाई साहब, ये बात नहीं कर रहे हैं, नैनो गए हैं गुजरात में और वहाँ बंद हो गया है। तो इंडस्ट्री का अगर अपने स्लाइड के बारे में बात करोगे, ये हर जगह पे है, ना कि सिर्फ बंगाल में, हर जगह में इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है, हर जगह में यू नो देश की कोई किसी भी जगह में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं आ रहे, टाटा की एक यूनिट बंद हो गई यहाँ पर देखिए। सो यू नो दिस क्राइसिस इज देयर इन इंडिया ऑल्सो, नॉट जस्ट इन बंगाल, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रास्ते तो बहुत अच्छा हुआ, आप देख रहे हो रास्ते घाट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ जरूर लोगों में गुस्सा था, स्पेशली इन द लास्ट 5 ईयर्स काम ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ और वो नौकरी चले गए, वो पैसा मंत्री के घर में पाया जाना, करप्शन एंड ऑफ कोर्स लेड, एवरीथिंग वाज लेड बाय एसआईआर। एसआईआर आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर, एसआईआर वाज अ फैक्टर। अब क्यों ये मान लेते हैं हम 40 लाख लोगों की वोट अधिकार छीन लिया गया, क्यों क्यों, और कब ये लोग मिलेगा? देखिए आज इन लोगों का जो ट्राइबुलेंस के जो हेड थे वो एक चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट रिजाइन कर दिया। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि 4 मिलियन।
1: मैं लौटती हूँ, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वहां पर साष्टांग प्रणाम किया पश्चिम बंगाल की जनता को, वहां की जनशक्ति को। प्रधानमंत्री के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बात, ये जो क्लिप है उसे पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया जा रहा था तो उन्होंने झुककर प्रणाम किया, जो सामने पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो सब मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सबको प्रणाम किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भी लिखा भी है कि जनशक्ति को
2: जो इमोशनली कनेक्ट करता हो। प्रधानमंत्री यदि साष्टांग प्रणाम करते हो, मैंने ऐसी तस्वीरें तो पहले नहीं देखी है कि किसी प्रधानमंत्री को इस प्रकार से साष्टांग प्रणाम करते हुए जनता को, मैंने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी है। और ये वाकई ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक इमोशनल मोमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। और वाकई वे लोग जो चले गए, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ वाकई में खप गई हैं। और एक एक अरमान था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वेस्ट बंगाल कैसे जीत सके, जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे उर्वरा भूमि थी, क्योंकि वो बंकिम की भूमि थी, विवेकानंद की भूमि थी, महर्षि अरविंद की भूमि थी, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी कह, मुझे लगता है 2014 के बाद वाकई में ये सबसे बड़ी जीत है आइडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: सुभाष चंद्र बोस भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है पूरे संपूर्ण देश की,
3: एक मैं इंपॉर्टेंट बातें कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पश्चिम बंगाल हमेशा समय से बहुत आगे रहा है।
1: वो
3: हम इसको शायद रियलाइज नहीं करते, सांस्कृतिक चेतना जो भारत की जागी राजा राम मोहन राय के जमाने से, वो उसकी शुरुआत वहां से हुई और उस वक्त कलकत्ता की तरफ पूरी दुनिया देखती थी, भारत देखता था, भारत की राजधानी भी एक तरीके से वहीं पे थी। और उसके बाद भी अगर आप देखें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तीन सबसे बड़े पुरस्कार मिले, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, अभिजीत गांगुली, जिनको नोबेल प्राइज मिले लिटरेचर में और साथ ही साथ अर्थशास्त्र में, और सत्यजीत रे को जो फिल्म को लेकर के लेकर जिस तरीके से ऑस्कर का अवार्ड मिला, भारत में किसी और को नहीं मिला है।
1: सही बात।
3: अगर आप देखिए तो भारत में और लोगों को भी मिला लेकिन उस स्तर का नहीं मिला कि एक ही प्रदेश के तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिलना, सत्यजीत रे को ऑस्कर मिलना। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल पिछड़ता चला गया और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आर्थिक स्तर पर जिस विचारधारा को दुनिया ने 1990 में त्याग दिया था, साम्यवाद को त्याग दिया था, उसको पकड़कर हम आगे बढ़ते रहे। और वही कारण था कि जब ममता बनर्जी ने जब आंदोलन किया और वो नैनो का जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन था वो जब चला गया, टाटा मोदी जी ने अपने यहाँ गुजरात में बुला लिया, तो पूरे देश में दुनिया में संदेश चला गया कि बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं लग सकती, यहाँ लगाना बड़ा मुश्किल काम।
1: वहां से राजनीति को बदलने में भले थोड़ा समय लगा हो, लेकिन जो आशुतोष जी कह रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा देश कल सोचता है, भारत कल सोचता है। तो ये उस प्रदेश की बात हम कर रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण अभी हुआ है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
9: La Que Buena.
8: ESPN Radio.
10: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
8: The Daily.
11: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
8: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
13: Thank God I get to wake.
12: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: आप सब मेरे लिए काम करेंगे?
15: करेक्ट।
14: रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, वो भी फ्री में?
15: करेक्ट।
14: आप क्या आसमान से टपक पड़े?
15: स्काई से, HDFC स्काई, ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट ऐप।
16: डाउनलोड टुडे HDFC स्काई। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।
3: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

से दुर्गम किले पर लहराया केसरिया ध्वज, शुभेंदु ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, पीएम मोदी ने गले लगाया, सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया, नए इतिहास का गवाह बना कोलकाता का ब्रिगेड परेड मैदान। शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ, गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी की टॉप लीडरशिप, मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री।

तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर लोक भवन। सूत्रों के अनुसार फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट।

मुख्यमंत्री का पेच, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बढ़ी खींचतान, आज दिल्ली आ रहे हैं केरलम कांग्रेस के नेता, राहुल और खड़गे लेंगे अंतिम फैसला।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु प्रधानमंत्री के पास गए, उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आर एन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने आज शपथ ली है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की कैबिनेट का विस्तार होगा और नए नाम शामिल किए जाएंगे उसमें। लेकिन आज की जो प्रमुख तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने पुष्प अर्पित किए। फिर जब मंच के सामने से लोगों ने बड़ी संख्या में नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया, तो प्रधानमंत्री भी साष्टांग प्रणाम करते हुए सबको दिखाई पड़े। शुभेंदु अधिकारी, जो आज पूरी तरीके से भगवा में सज्जित थे, उन्होंने आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और उसके बाद से चर्चा में यह है कि अब आगे क्या। अभी जो 5 नाम नजर आए हैं उनके साथ एक संतुलन, एक ऐसे प्रदेश का जिसकी अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, पहाड़ों से और समुद्र से सीमाएं लगती हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए आशुतोष, तो मिनी इंडिया है वहां पर। अगर पश्चिम बंगाल के संपूर्ण नक्शे को ही आप देख लें, और अगर बीजेपी आज लेफ्ट और टीएमसी के दौर को पीछे छोड़कर एक नए सवेरे की बात कर रही है, तो उसको एक बहुत बहुत कठिन रास्ता आगे बढ़ना है। शुभेंदु अधिकारी का अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि टीएमसी का कामकाज कैसा रहा और बीजेपी क्या अपेक्षा कर रही है, इससे बंगाल उम्मीदें कर सकता है?
1: नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो लेगेसी है वो ना तो ममता बनर्जी से जाके मिलती है और ना ही वामपंथ से जाके मिलती है। तो ऐसे में उनको एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से ढालना भी पड़ेगा और लोगों को ये भरोसा भी दिलाना पड़ेगा कि जिस तरीके की चुनौतियाँ, आर्थिक चुनौतियाँ इस वक्त पश्चिम बंगाल के सामने हैं, उसका समाधान उनके पास है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल एक बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश है, लेकिन वहाँ पिछले कुछ सालों के अंदर एक ऐसी जड़ता आ गई जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आर्थिक नीतियाँ वहाँ लागू की गई, जिस तरीके से ट्रेड यूनियनिज्म वहाँ पे है, जिस तरीके से सिंडिकेट का एक तरीके से कब्जा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको नहीं तोड़ पाए तो फिर शुभेंदु के लिए भी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें जो ममता बनर्जी से थी वो पूरी नहीं हो पाई, अब शुभेंदु से वो उम्मीदें होंगी। अगर शुभेंदु भी इस घेरे को नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी। सर, पहली चोट करनी पड़ेगी उस सिंडिकेट के ऊपर जो कटमनी लेती है, जो लोगों को स्वतंत्र काम नहीं करने देती।
0: उम्मीद की जा सकती है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता, पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। और पीयूष, वो एक तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता से आशीर्वाद ले रहे हैं, हालांकि 98 वर्ष की उनकी आयु है, देखकर उनका फिटनेस जो लग रहा है इस समय, एक लंबी विरासत, एक लंबा संघर्ष पार्टी का पश्चिम बंगाल में, उसके बीच में माखनलाल सरकार नाम के ये जो कार्यकर्ता हैं जिनको सम्मानित किया है प्रधानमंत्री ने और उनसे आशीर्वाद लिया है, ये तस्वीरें आज के शपथ ग्रहण के साथ बहुत समय तक चर्चा में रहेंगी। पीयूष
2: जी, बिल्कुल श्वेता, और ये इतिहास बन चुका है क्योंकि माखनलाल सरकार वो कार्यकर्ता है बीजेपी के, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा लहराया था, वो कार्यकर्ता है जिन्होंने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कई इलाकों में लोगों से संपर्क साधा और लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया बीजेपी के लिए, और ये काम उन्होंने सन 1980 के बाद किया। और इसीलिए पिछले जब से बीजेपी का गठन हुआ है तब से ही बीजेपी की कोशिश ये रही कि पश्चिम बंगाल में सरकार बने, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी जो विचारधारा है उसकी जननी का जन्म यहीं पर हुआ और पश्चिम बंगाल वो अंग भंग कलिंग का हिस्सा है जिसको विकसित भारत का सपना जिसके विकास के हुए बिना नहीं पूरा हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन कार्यकर्ताओं को नमन किया जो स्टेज पर मौजूद थे। 98 साल के वह कार्यकर्ता जो पिछले काफी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर तो दिखाई रहा हूँ पूरे पश्चिम बंगाल की श्रोता, लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर बतानी कि आज ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम बंगाल ही कोलकाता उमड़ पड़ा है। मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं, आप ये देखिए कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड से मैं अब कम से कम 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिधर नजर दौड़ाए वहां बाइक पर झंडे लिए जय श्री राम कहते हुए यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं और सबके गले में भगवा अंगोछा है। हर कोई जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा हो लेना चाहता था, इसीलिए कई लोग तो ब्रिगेड ग्राउंड तक पहुंच भी नहीं पाए। और ये भी समस्या हो गई है कि ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास सब इतने लोगों के पहुंचने के बाद नेटवर्क का भी नए लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए आप?
3: हम हैं कलकत्ता टालीगंज बड़ुआपाड़ा रीजन पार्क थाना से। एक तो टाइम था जब मेरे पास काम वाम कुछ नहीं था, तो मेरा घर बाड़ी तोड़ दिया था टीएमसी अभिषेक बनर्जी, हम मेरा घर बाड़ी तोड़ दिया था। आज मेरे पास काम धाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे मेरा सरकार आया है अब कुछ कर।
2: क्यों तोड़ दिया था आपका
3: घर? मेरा घर तोड़ दिया।
2: क्यों तोड़
3: घर तोड़ दिया? जानते नहीं, हम पार्टी वार्टी कुछ करते नहीं थे, ठीक है, मेरा घर तोड़ दिया। अब चाहेंगे कि मेरा घर बार अब फिर से मिले।
2: तो ये भी उम्मीदें हैं श्वेता लोगों की कि अब जो नई सरकार है वो काम करे लोगों के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करे। ये बता रहे हैं कि कल्याण बनर्जी के जो गुंडे हैं उन्होंने इनका घर तोड़ दिया था। आप कहाँ से आए?
4: मैं काचरापाड़ा से आया हूँ, मेरा नाम राजा प्रसाद आर्य है।
2: आप में से कोई ब्रिगेड ग्राउंड पहुँच पाया था?
4: हाँ मैं था। मैं बोल रहा हूँ कि आज जो जीत है ये साधारण जनताओं का जीत है। इतना बड़ा जो मैंडेट जो अमित शाह जी बोल रहे थे कि 200 पार 200 पार, तो अगले बार भी इसी तरीके का शक्ति लगाया गया था, लेकिन इस तरीके की कुछ कारगुजारियां की गई थी जिसके वजह से हमारी शक्ति जो है वापस नहीं आ पाई। इस बार जो है जिस तरीके से मैंने वोटिंग हुआ, सचमुच लोगों को एहसास हुआ कि पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके से वोटिंग कराया जा सकता है, जहां पर कि 0% टॉलरेंस का सिद्धांत।
2: 2021 में भी आपको लग रहा था कि सरकार आ सकती थी?
4: आ सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि उस समय जो है इस तरीके से इनके गुंडे, इनके जो भी मशीनरीज, इलेक्शन मशीनरीज जो इनका काम कर रहा था। आज मैं शुभेंदु अधिकारी जी को यहाँ से शुभेच्छा देना चाहता हूँ, उनके जी उनको चयन करने के ऊपर में कई प्रकार के विषय हो सकता था।
2: जी, तो आप देखिए, मैं आपको लगातार श्वेता तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सामने ये ट्रक देखिए, ट्रक जो है उस पर कार्यकर्ता काफी दूर से आए हुए हैं और इन्हीं तरह के ट्रक्स में जो है वो ट्रैवल करते हुए अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। आइए कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए दादा आप लोग? कहाँ से आए आप? पश्चिम ब्रिगेड ग्राउंड तो
5: हम रानागढ़ से, हम रानागढ़ से, नोदिया का रानागढ़ से।
2: हो गया शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा?
5: कौन हो गया?
2: जाम में फंसे हैं? जाम में कब से फंसे हैं?
6: जाम में तो 1 घंटे का ऊपर फंसा हुआ हूँ। आधा लोग पहुँच नहीं पाए, आधा लोग पहुँच नहीं पाए।
5: जय जय श्री राम।
2: कैसे यहाँ पर जो कार्यकर्ता निकलते हुए नजर आ, नितिन गडकरी सामने जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वो भी जाम में फंस गए, और ये देखिए कि यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्थिति इस वक्त कोलकाता की है कि काफी देर से मंत्रीगण भी इसमें जाम में फंसे, क्योंकि उसका कारण ये भी है श्रोता कि पूरा कोलकाता आसपास के लगभग 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता जो है वो ऐसा हो गया है कि हर तरफ सिर्फ आपको कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। सड़कों पर जाम लगा हुआ है, बाइक पर लोग निकल रहे हैं, हाथ में जो झंडा है बीजेपी का वो लेकर चल रहे हैं और जय श्री राम के लगातार नारे लगा रहे हैं। दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे, जहां नजर दौड़ाएंगे वहां आपको सिर्फ जाम नजर आएगा, वो इसलिए
0: अच्छा, ये एरिया है जो जो सबसे जो शहर का सबसे खुला खुला एरिया जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा जाम भी इधर ही लगता है, चाहे वो ब्रिगेड ग्राउंड उधर हो या फिर आगे जाकर आप मुड़े तो ईडन गार्डन का क्षेत्र आ जाता हो, तो चाहे मैच का समय हो, रैली का टाइम हो, हमेशा इस तरह की तस्वीरें रहती हैं। लेकिन पीयूष ये बताइए कि जो आज हमने जो पांच चेहरों को शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण करते हुए देखा है, उसमें क्या जिम्मेदारियां इनकी स्पष्ट हैं अभी विभाग क्या या आने वाले दिनों में होगा, साथ ही आने वाले दिनों में कब विस्तार होगा, क्या ये चीजें अभी पता है या फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार?
2: जी देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिन छह लोगों ने शपथ ली है जिसमें शुभेंदु अधिकारी खुद हैं, इन सबका जो पोर्टफोलियो है वो कुछ दिनों के बाद डिसाइड होगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, लेकिन फिलहाल छह नेताओं ने शपथ ली है और इन सभी के जो पोर्टफोलियोज हैं उसको लेकर मंत्रणा होगी, डिस्कशन के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा। आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री और पांच मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं, और इस मंत्रिमंडल के पीछे भी कहीं ना कहीं एक कारण है। बीजेपी ने जो कास्ट फैक्टर है उसको साधा है, और मैं एक बार आपके सामने उस कास्ट फैक्टर को रख भी देता हूँ। जो जानकारी हमें अपने सूत्रों से मिली है कि शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मण है, दिलीप घोष ओबीसी से हैं, अग्निमित्र पॉल कायस्थ हैं, अशोक कीर्तानिया मतुआ कम्युनिटी से आते हैं, साथ साथ खुदीराम टुडू जो है वो ट्राइबल है, और निशित प्रमाणिक राजवंशी है। तो ये जो कास्ट इक्वेशन है उसको भी कहीं ना कहीं इस वक्त साधा गया है बीजेपी की तरफ से, और सभी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिले। पहली कैबिनेट के अंदर जो पहला जो छह लोग जिन्होंने शपथ लिया है सभी को का प्रतिनिधित्व हो, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कल बैठक की। आपको याद होगा कि कल जब 4:15 के आसपास गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे बिस्वा कन्वेंशन सेंटर, तो उससे पहले लगभग 11 बजे से वो लगातार बैठकें कर रहे थे। उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी, शमिक भट्टाचार्य, सुकांत मजुमदार, अग्निमित्र पॉल और इन कई बड़े नेताओं के साथ हुई, लेकिन आखिर का जो एक घंटा था वो 1-to-1 मुलाकात उनकी शमिक भट्टाचार्य के साथ हुई। तो संभवतः उसी मुलाकात में ये तय हुआ कि सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो पहली कैबिनेट में हो, सभी जो जातियों से प्रतिनिधित्व हो कैबिनेट के अंदर, और ब्राह्मण शुभेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण थी और वो पिछले 15 सालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री रही, तो अब उसी को कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू किया जा रहा है और ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री भी बनाया गया है।
0: और अभी तक सिर्फ ये 6 चेहरे हैं अनुपम, लेकिन एज प्रोफाइल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर दिलीप घोष को छोड़ दें जो कि 61 वर्ष के, मतलब मैक्सिमम उनकी उम्र है, जो बाकी सब हम देख रहे हैं 40 से लेकर 55 तक की का एज ग्रुप सभी इन मंत्रियों का और खुद मुख्यमंत्री का। अनुपम का फोन फिर कट गया। पीयूष, यही बात आपसे कि काफी एक यंग प्रोफाइल भी रखा गया है।
2: जी, यंग प्रोफाइल भी रखा गया है श्वेता, वो इसलिए भी है क्योंकि युवाओं ने काफी भारी संख्या में बढ़ चढ़कर बीजेपी को समर्थन दिया है, और जितने भी चेहरे इस वक्त हम इस वक्त देख रहे हैं बाइक पर लोग चल रहे हैं, हाथ में झंडा लिए जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं, इसमें से 80-90% युवा है, तो युवाओं को भी उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनका प्रतिनिधित्व हो, वो सभी को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ महिला प्रतिनिधित्व भी रखा गया। अग्निमित्र पॉल जो एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता है बीजेपी की, और हमें याद है जब 2016 में बीजेपी की सीट सिर्फ 3 आई थी, उस वक्त अग्निमित्रा ने बहुत बहुत मेहनत की थी। कुछ लोग हैं, आइए इनसे कुछ बात भी कर लेते हैं क्योंकि काफी देर से जाम में फंस के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
7: कस्बा से आ रहा है, कस्बा आ रहा है, बहुत नजदीक से आ रहा है, हम लोग ज्यादा दूर से नहीं आ रहा है।
2: जाम में ज्यादा आप लोग नहीं फंसे?
7: नहीं, सब एकदम ओके है, जाम कोई बात ही नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का जाम है, जितना लगे उतना अच्छा है।
8: चोरू चक्कू का तो जाम नहीं है ना, जो लोग वोट दिया है जिनका मतदान हुआ है उनका ही जाम है, चलता है। मेरा नाम है रुद्रा नारायण पाड़ुई। बोलिए,
2: क्या नारा लगाते हुए बड़े जोश में आप आ रहे हैं, जोश कैसे भर गया मन में इतना?
8: भाई जब भगवान फहराएगा ना पूरा इंडिया में, जोश अपने आप आएगा। आप सोचिए ना, जिस देश में
9: जिस देश ने थ्योरम जैसा प्रोजेक्ट दिया है उस देश का चार साइंटिस्ट बंगाल से उठा है। उसका बजट लिस्ट निकला था 2026 और 27 का 82 सीआर दिया है। इसका जगह माइनॉरिटी एडजस्टमेंट में 5700 कोटी दिया है। इसलिए आया भाई, रिसर्च करते हैं हम लोग, अभी एडुकेशन का सब चल
10: रहा है। कुछ महिलाएं भी है स्कूटी पर, कितनी देर से स्कूटी चला रही हैं आप, कितनी देर से जाम में फंसी।
0: चलिए, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर खासकर कोलकाता में आज अब कुछ देर ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, अनुपम, आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: आप सब मेरे लिए काम करेंगे?
17: करेक्ट।
16: रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, वो भी फ्री में?
18: करेक्ट।
16: आप क्या आसमान से टपक पड़े?
17: स्काई से, HDFC स्काई, ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट ऐप।
19: डाउनलोड टुडे HDFC स्काई। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: सबसे दुर्गम किले पर लहराया केसरी का ध्वज, शुभेंदु डली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ, पीएम मोदी ने गले लगाया, सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया, बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने किया दंडवत। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ, गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी की टॉप लीडरशिप, मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने मंच पर लिया बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सिपाही का आशीर्वाद, 98 साल के माखनलाल सरकार के छुए पांव, दृश्य देखकर भावुक हुआ कोलकाता का ऐतिहासिक सैलाब। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय, तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर, लोक भवन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं दी तारीख, कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट। केरलम में फंस गया मुख्यमंत्री का पेच, के सी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों में बड़ी खींचतान, आज दिल्ली आ रहे हैं।

शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, श्रुतिराम टुडू और अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसके बाद दिलीप घोष ने पीएम मोदी और सभी नेताओं का आशीर्वाद लिया। बनगांव उत्तर से नवनिर्वाचित विधायक अशोक कीर्तनिया ने भी शपथ ग्रहण की। वो लगातार दो बार से विधायक है और मथुआ समुदाय के कल्याण के लिए सक्रिय रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल ने भी दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में शपथ ली। फैशन डिजाइनर सीनीता बरी अग्निमित्रा आसनसोल दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक हैं। रानीबांध सीट से पहली बार के विधायक क्षुदीराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली। पेशे से शिक्षक क्षुदीराम बंगाल बीजेपी का आदिवासी चेहरा। बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक रूपा गांगुली ने शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण पर कहा, यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन, हम राज्य का विकास पक्का करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया, उनके पांव छुए, आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने पूरा करेगी। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद बंगाल की जनता का किया अभिवादन, मंच पर से दंडवत प्रणाम किया। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी घर पर ईडी का छापा। चंडीगढ़ से दिल्ली एनसीआर तक रेड, पीएमएलए के तहत कार्रवाई की जा रही है। करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे ईडी अधिकारियों ने भारी सुरक्षा के बीच सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा के लिए करीब 3 दर्जन सीआईए एसएफ जवान तैनात। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। छापेमारी से पंजाब में सियासी भूचाल। सीएम मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पंजाबी मोदी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। पंजाब ईडी और बीजेपी के इस अनैतिक गठबंधन को खत्म कर देगा। आप नेता संजय सिंह ने तंज कैसे कहा, पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे सरकार। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दूसरी बाइक बरामद, फर्जी नंबर प्लेट से बड़ी जांच की पेचीदगी, पुलिस ने तेज की कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या मामले में एसआईटी टीम यूपी रवाना, तकनीकी और फील्ड इनपुट जुटाने में जुटी है। बारासात में दूसरी बाइक बरामद, एयरपोर्ट इलाके से मिली पहली बाइक के बाद दोनों वाहनों के नंबर प्लेट फर्जी निकले। 7 से 8 हमलावरों की आशंका, 4 पहिया वाहन की तलाश में पुलिस, यूपी बंगाल लिंक भी जांच रही है। 36 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, बॉर्डर जिलों में हाई अलर्ट, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मदद से जांच तेज। तमिलनाडु में विजय की शपथ पर सस्पेंस बरकरार, 116 विधायकों के समर्थन के दावे के बीच राज्यपाल ने अभी तक नहीं दी तारीख। लोक भवन सूत्र के मुताबिक विजय को फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, बहुमत के लिए जरूरी संख्या पर संशय है। तमिलनाडु में नई सरकार गठन पर पेच फंसा हुआ है, राज्यपाल की मौजूदगी और शपथ तारीख को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता जारी है। राज्यपाल की मंजूरी को लेकर गुरुग्राम की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बंगाल और असम चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, चुनाव चोरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा, बंगाल और असम में सरकार ने चुनाव में गड़बड़ी की, एसआईआर प्रक्रिया से लाखों नाम हटाए गए। टीवीके ने जारी किया वीडियो, एएमएम के विधायक कनक राज के समर्थन पत्र को लेकर सियासी विवाद गहराया, पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया। टीवीके का बड़ा आरोप, टीटीवी दिनाकरण फैला रहे हैं गलत जानकारी, समर्थन पत्र को लेकर बयानबाजी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में टीवीके को लेकर दायर हुई याचिका, राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने का न्यौता देने और शपथ की प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज हुई। टीवीके की याचिका में दावा, 2026 चुनाव में त्रिशंकु परिणाम, टीवीके 108 के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बहुमत विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पहले शपथ और फिर फ्लोर टेस्ट की मांग की। केरला में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत का दावा, 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों के साथ सरकार गठन की तैयारी तेज हुई। नए मुख्यमंत्री को लेकर केरल कांग्रेस में खींचतान तेज, वी डी सतीशन और के सी वेणुगोपाल के नामों पर अनरूनी चर्चा जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री चुनने को लेकर सत्ता और पद पाने की होड़ में लगी है। केरल में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज, बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस गठबंधन में असमंजस। पटना में कल अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का

बीजेपी परिवार का हक मांगने पर दी जाती लाठियां, बीजेपी का भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है। असम में कांग्रेस की बड़ी समीक्षा बैठक आज गुवाहाटी में जिला इकाइयों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस संगठन में गहन समीक्षा, सभी उम्मीदवारों से लिया जा रहा है फीडबैक। 126 सीटों में सिर्फ 19 सीटें मिलने पर कांग्रेस का आत्ममंथन, चुनावी रणनीति और संगठन पर होगी विस्तृत चर्चा। जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक, चुनावी नतीजों पर होगी गहन समीक्षा। असम कांग्रेस में हार के बाद सुधार की कवायद तेज, संगठन को मजबूत करने और रणनीति बदलने पर जोर। गुजरात के गिरनार के जंगलों में शेरों की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए वन विभाग की बड़ी पहल, हाईवे पर तैनात की गई विशेष पेट्रोलिंग टीम। शेरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क, कई मौकों पर ट्रैफिक रोककर शेरों और शावकों को पार करवाया जा रही है सड़क। वन विभाग हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी साइन बोर्ड लगाने की कर रहा है तैयारी, कैमरा और सेंसर सिस्टम लगाने की योजना। जूनागढ़ वन विभाग की लोगों से अपील, सड़क पर अगर शेर दिखाई दे तो वाहन धीमे चलाएं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के सनशाइन पीक से 24 सैलानियों को रेस्क्यू किया गया, बिगड़ते मौसम की वजह से फंस गए थे। दिल्ली के स्कूलों का सीएम रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ पानी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। क्लासरूम में सीएम रेखा ने बच्चों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। गांधीनगर में एयरक्राफ्ट लीडिंग समिट 2.2 का आयोजन, अहमदाबाद एयरपोर्ट को 2030 तक विश्व स्तरीय बनाने की योजना। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से भारत पहुंचेगा मानसून, 1 जून को केरल तट पर बरसेंगे मानसून के बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आना करीब 2 हफ्ते दूर, भारत में सबसे पहले यहीं पर होती है बारिश। उत्तराखंड में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी, मौसम बिगड़ने की संभावना है। 10 मई से सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 और 10 मई के बीच मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी, बारिश के चलते तेज हवाओं की संभावना। पटना में कल शाम आए आंधी और बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति, लोग घंटों फंसे रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला भी पटेल गोलंबर के पास जाम में फंस गया, तेजस्वी यादव ने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी और अपनी आवास तक गए। झारखंड के रामगढ़ में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जल गया। नासिक धर्मांतरण और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक, नासिक में लव जिहाद मामले की संदिग्ध निदा खान को 4 दिन की हिरासत। भोपाल में टीटीई की गुंडागर्दी, एसी कोच में चढ़ने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को घूसा मारा, ट्रेन छूटने के डर से एसी कोच में चढ़ी थी महिला। झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाजार में मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हुए, कई की हालत गंभीर। द्वारका में बवाल, पुलिस रिपको की झड़प के बाद 5 राउंड फायरिंग, धार्मिक कार्यक्रम में रैली के दौरान पुलिस और रिपको के बीच हुई कहासुनी ने बड़ा विवाद का रूप ले लिया। कानपुर में आईएएस का साला चूड़ी कारोबारी की हत्या करके फरार हो गया, हत्या से पहले कारोबारी को घटनास्थल पर लाता हुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। गुजरात एसओजी ने भावनगर में बड़ी कार्रवाई की, 5 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया, बांग्लादेशी सिम कार्ड बरामद। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार पिता और पुत्र की मौत, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से परिवार में मातम। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने गई आबकारी टीम पर महिलाओं का हमला, हमलावर महिलाओं ने पुलिस और अधिकारियों को खदेड़ दिया। गांव छावनी में बदल गया, अभी आबकारी विभाग की 2 गाड़ियां गांव वालों के कब्जे में हैं, नाम सहित 45 और 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, ज्यादातर महिलाएं। द्वारका के समुद्र तट पर एक बार फिर बरामद हुई चरस, हर्षद दरिया तट से कई किलो अवैध बैग में चरस मिली है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर छेड़छाड़ के मामले में तीर्थयात्रियों पर हमला, कुछ अज्ञात युवकों ने महिला तीर्थयात्रियों के साथ छेड़छाड़ की। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में टेस्टिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, धमाके में 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक। गोंडा में पुलिस ने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के बहाने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से सोना चांदी बरामद। आगरा में आयकर विभाग के एक रिकवरी इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की, इनकम टैक्स ऑफिस की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दी। राजनंदी गांव में पद्मश्री फूलबासन यादव अपहरण मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 महिलाएं 3 पुरुष। पुणे के एमआईआईडीसी इलाके में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, तेंदुए
खुलेआम घूमता देखा सीसीटीवी में कैद हुआ। मेरठ में खेत से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा। ओडिशा के बालासोर में युवक को पीटते देखी भीड़, युवक पर महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप। एसीबी ने विद्युत विभाग के लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, 25,000 की रिश्वत मांगी थी। अररिया में एक तरफा प्यार से युवक ने 17 साल की लड़की को गोली मारी, मौके पर मौत। अलीगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 एएमयू छात्र सहित 12 गिरफ्तार, 6 अवैध हथियार बरामद। सहारनपुर में खूंखार कुत्तों का कहर, कुत्तों ने 110 भेड़ों को नोचा, पशुपालक को नुकसान। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में लगातार चौथी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने 142 रन बनाए, कोलकाता ने 14 ओवर में ही जीत लिया। फिन एलन ने 47 बॉलों में 100 रन की पारी खेली, 5 चौके 10 छक्के लगाए। कैमरन ग्रीन के साथ कोलकाता की आसान जीत, दिल्ली की प्लेऑफ उम्मीदों को झटका, केकेआर की बरकरार। प्लेऑफ में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज, दादी की शादी में एक्टर नहीं हूं समेत कई फिल्में सिनेमाघर में रिलीज हुई। दादी की शादी में नीतू कपूर, कपिल शर्मा समेत कई कलाकार, रिद्धिमा कपूर साहनी ने डेब्यू किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा, सतरूपा की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं ने थिएटर्स में दस्तक दी, शोबिस की काली सच्चाई दिखाने में कमजोर रही। अल्ताफ खान, ऋतिक पारेख की सटायर, ड्रामा, मिस्ट्री डग डग सिनेमाघरों में रिलीज, समाज के अंदर श्रद्धा पर कटाक्ष करती है फिल्म। हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट 2 दुनिया भर में रिलीज, कार्ल अर्बन, एडलाइन रुडोल्फ, जेसिका मैकनेमी और लुइस चैन मेन कैरेक्टर। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की भूत बंगला ने धूम मचाया, 21 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाई 235 करोड़ के पार। रितेश देशमुख की राजेश शिवाजी की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63 करोड़। दुनिया भर में फिल्म पैट्रियट का जलवा बरकरार, दुनिया भर में 73 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। बॉक्स ऑफिस पर जुनैद खान साई पल्लवी की जोड़ी का नहीं चला जादू, फिल्म एक दिन ने एक हफ्ते में महज 4 करोड़ का बिजनेस किया। दुनिया भर के थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद धुरंधर 2 OTT पर रिलीज होगी, 14 मई नेटफ्लिक्स पर।

0: और अब बात पंजाब की करते हैं, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी जारी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 के आवास नंबर 43 पर ईडी के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी कई गाड़ियों से मौके पर पहुंचते हैं, कई गाड़ियों से मतलब कई गाड़ी, और कार्रवाई शुरू करते हैं। ईडी ने पीएमएलए के आरोपों के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। भारी सुरक्षा के बीच सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। अब बताया जा रहा है 10 से 15 उससे भी ज्यादा गाड़ियों के साथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। संजीव अरोड़ा के सरकारी आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। सेक्टर 2 शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण हो चुका है और अब वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं, ले चलते हैं।
1: आमी चाहे शुभ बुद्धि हृदय हो, आमी शुद्ध बोलबो जरा एखनो समालोचना करछेन তাদের চৈতন্য উদয় আসুন। বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। আজ কা দিন বহুত মহত্বপূর্ণ হ্যায় দেশ কে লিয়ে, বঙ্গাল কে লিয়ে। ইসলিয়ে প্রধানমন্ত্রী কা ইচ্ছা থা নয়া সরকার রবীন্দ্র জয়ন্তী কা দিন আপনা কার্যকাল শুরু করে। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए, आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। একটাই তো কথা, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত গৃহের প্রাচীর।
0: টেগোর কি আজ জয়ন্তী হ্যায়, আজ কা দিন শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায় আর ইয়ে উনকা ঘর হ্যায় জহাঁ পর ইস ওয়াক্ত শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছে হ্যায় और पत्रकारों से यहां पर बातचीत की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी, अब आप ऐसे समझिए कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बंगाल के, और अब इनका राजतिलक हो चुका है। इनके साथ में 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब वो क्या उनको पदभार मिला, क्या विभाग मिला, वो बाद में पता चलेगा, स्पष्ट होगा। लेकिन अभी आप देखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का घर कोलकाता में, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है बीजेपी के लिए। आज से आज सभी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ था, वो तस्वीरें भी आपने आज तक पर देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से उन्होंने पहले सबसे जो बुजुर्ग कार्यकर्ता बीजेपी के थे माखनलाल सरकार, सिलीगुड़ी से आते 98 वर्ष के, उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, पहुंची। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं कि जब राजतिलक हो गया, शपथ ग्रहण हो गई, उसके बाद सबसे पहले उस मंच से जो परेड ब्रिगेड ग्राउंड है वहां से सीधे शुभेंदु अधिकारी आते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के घर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, और ऐसे में आप ये तस्वीरें देखिए तो आप समझेंगे कि ये तस्वीरें खास क्यों हैं। ये देखिए माल्यार्पण करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में उनको कितना माना जाता है ये आपने देखा होगा। और आप ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल उस कैनवास की तरह है जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों, अपनी कविताओं से उसमें अमर रंग भर दिए हों। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल का रिश्ता देह और प्राण जैसा रहा है। और सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी भी यहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
5: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आप मेरे लिए स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे?
3: That's right.
2: 50 शेयर्स खरीदूं या 5,000? ब्रोकरेज इज
4: जस्ट 20 रुपीज।
2: आपके आसमान से टपक पड़े
4: स्काई से। HDFC Sky, all-in-one investment app.
5: Fixed brokerage on stocks and F&O. HDFC Sky. Download today. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
6: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
8: आप मेरे लिए स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे?
9: That's right.
8: 50 शेयर्स खरीदूं या 5,000? ब्रोकरेज इज
10: जस्ट 20 रुपीज।
8: आपके आसमान से टपक पड़े
10: स्काई से। HDFC Sky, all in one investment app.
11: Fixed brokerage on stocks and F&O. HDFC Sky. Download today. Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
12: लाठियाँ जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियाँ जो है वो चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए।
13: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, तियारी फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
14: लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियाँ बरसी है।
15: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है।
16: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है। पटना की सड़क गवाह बनती है। पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र हैं या कोई छात्रा। दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है। दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहां पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था, वहां प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
2: TRE-4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
16: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए, वहां लाठीचार्ज की इजाजत क्यों दी गई। रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सबसे दुर्गम किले पर लहराया केसरिया ध्वज। शुभेंदु ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ। पीएम मोदी ने गले लगाया, सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया। बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने किया दंडवत। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ। गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने मंच पर लिया बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सिपाही का आशीर्वाद। 98 साल की माखनलाल सरकार के छुए पांव, दृश्य देखकर भावुक हुआ कोलकाता का ऐतिहासिक सैलाब। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय, तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर। लोक भवन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दी तारीख, कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट। बांग के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी घर पर ईडी की छापेमारी। 20 गाड़ियों से आए थे अफसर। स्थानीय निकाय बिजली और उद्योग मंत्रालय देखते हैं अरोड़ा, केजरीवाल ने लगाए आरोप। तो सबसे पहले बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की आवाज पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यहां पर छापे मार रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 के आवास नंबर 43 पर ईडी के अधिकारियों ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी कई गाड़ियों से आए मौके पर, और यह बताया जा रहा है कि करीब 20 गाड़ियां थीं। 20 गाड़ियों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आते हैं और कार्रवाई अभी भी जारी है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपों के तहत कार्रवाई की है। भारी सुरक्षा के बीच सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। असीम बसी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए अभी आपके पास क्या खबर आ रही है इस छापेमारी से जुड़ी हुई?
1: जी हाँ, ये लगातार जो है दूसरी रेड है। एक महीने में संजीव अरोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं। हम इस वक्त संजीव अरोड़ा का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है सेक्टर 2 में, उसके करीब हैं बिल्कुल। और आप देख सकते हैं पुलिस ने चाहे आगे जो है जाने नहीं दे रहे, लेकिन ये लगातार जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 15 से 20 गाड़ियां जो है लगातार ये पूरा कॉन्वॉय गाड़ियों का ये ईडी लेकर आई है। और सामने जो बिल्कुल आपको माथे पे घर नजर आ रहा है उसके साथ वाला घर 43 नंबर हाउस जो साथ वाला घर है वो है, क्योंकि सामना जो घर है वो सीएम रेजिडेंस है, उसके साथ वाला जो घर है 43 हाउस नंबर है सेक्टर 2 में, वो संजीव अरोड़ा का है। सो लगातार एक बैटरी ऑफ कार्स आई, काफी ऑफिशियल्स आए। सुबह 5:30 बजे सर्च ऑपरेशन जो है यहां पर सर्चेज जो है ईडी की चल रही हैं। पीएमएलए के तहत जो है वो उनकी ट्रांजैक्शन चेक की जा रही हैं, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं आपको बता दूं लुधियाना में इनका बेस है, पहले भी पिछले तीन रेड्स हो चुकी हैं, पिछले एक महीने में 2 रेड्स हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है ये राज्यसभा में गए थे 2022 में, लेकिन इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाया। इनके पास लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है। और पिछले दिनों ये हॉलैंड में भी गए थे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड, नीदरलैंड्स भी गए थे मुख्यमंत्री के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी इनके पास है। सो एक बड़ी कार्रवाई है, ईडी लगातार जो है एक्टिव है पंजाब के अंदर। परसों भी कुछ बिल्डर्स के ऊपर रेड हुआ था, जिसमें प्रेस नोट में ईडी ने अमन अरोड़ा जो कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के चीफ हैं उनका नाम आया था, और अब उनका नाम लिया था। और अब आज जो है बड़ी रेड यहां पर हो रही है। पिछले दिनों अशोक मित्तल पे भी रेड हुई थी जो कि राज्यसभा एमपी थे लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए। सो एक बड़ी रेड यहां पर एक, एक, चल रही
0: इसी ठिकाने पर रेड हो रही है या फिर और भी कई ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रेड कर रहे हैं?
1: नहीं, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली और गुड़गांव लगभग टोटल 5 लोकेशंस पे रेड हो रही है इस पूरे पीएमएलए के तहत। और करोड़ ऑफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका एलिगेशन है, उसको फैक्ट वेरीफाई करने के लिए यहां पहुंची है। क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लेकिन ईडी जहां लगातार एक्शन में है वहां पॉलिटिक्स पूरी गर्म है। बीजेपी जो कहती है कि रॉन्ग डूइंग्स हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स की, वो आगे आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया।
0: देखिए आपने इस बात का जिक्र भी किया, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखा रिएक्शन भी आया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या रिएक्शन है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जरा वो हम आपको बता देते हैं इस वक्त की एक जो बड़ी खबर आ रही है। ईडी की रेड हो रही है और ईडी की छापेमारी पर अब केजरीवाल का बयान आया है। पंजाब सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं।
2: पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा जी के घर पे ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं।
0: और चलिए अब आपको बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल में आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बंगाल में आज एक नया सूर्योदय हुआ है। आजादी के बाद पहली बार भगवा की बयार आज बंगाल में देखी गई, बीजेपी की सरकार देखी गई। आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया, उनके पांव छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया।
3: With your permission, sir, I now read out the order of appointment.
4: Chief Minister, what would you like to say to the people of Bengal?
5: Today is auspicious Ravindra Jayanti. I came here to offer my best regards and tribute to Thakur Kavi Guru. It's a Joda Sako, historic place.
0: रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और शपथ ग्रहण करने के बाद गुरु टैगोर के घर पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि बहुत विशेष दिन चुना है शपथ ग्रहण के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर और बंगाल का रिश्ता तो अब आप जानते ही हैं, देह और प्राण जैसा है। उनके लिए बंगाल केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक जीती जागती भावना थी। बंगाल की मिट्टी हो, यहाँ की नदियों का संगीत हो और यहाँ की लोक संस्कृति उनके साहित्य की आत्मा रही है। अब बात रविंद्रनाथ टैगोर की जा रही है, जिनको गुरुजी भी कहा जाता है। और इसीलिए ये बात कही गई कि सबसे पहले जैसे ही शपथ ग्रहण हुई, शपथ ग्रहण के बाद बंगाल में जैसे ही नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, तो सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो सीधे उन्हें गले लगा लेते हैं। अब टीम शुभेंदु में 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें निशित प्रमाणिक भी हैं, जिसमें अग्निमित्रा पॉल भी हैं, जिसमें दिलीप घोष भी हैं, जिसमें क्षुदीराम भी हैं। और क्या आज हुआ, किस तरह से तस्वीरें आज देखी गई, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।

0: बंगाल में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं, बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मथुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदिराम टूडू और निश्चित प्रमाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया और उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25,000 प्रेसिडेंट से बीजेपी का उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लादवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा शरद के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी। वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया। अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
0: पीएम मोदी के सम्मान को बीजेपी सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रही है। दरअसल उत्तर बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इसी इलाके से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ऐसे में माखनलाल सरकार को मंच से सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया बल्कि उत्तर बंगाल को भी सीधा राजनीतिक संदेश दे दिया। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ पीयूष मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो बंगाल में आज के दिन तो ऐतिहासिक था बीजेपी के लिए। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, आज बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इतिहास बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आज एक तस्वीर जब माखनलाल सरकार के पांव छूते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको गले लगा देते हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि कार्यकर्ताओं को सबसे आगे बीजेपी की तरफ से रखा जाता है, और काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर थी।
3: जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की ओर से ये बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। आज वो माखनलाल सरकार जो 97 साल के हैं उन्हें आज कोलकाता में न्योता देकर बकायदा सिर्फ इज्जत नाज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने उनके पांव छूकर उन्हें गले लगाकर उनको वो दिया जो शायद ही कोई सोच सकता था। ऐसा ऐसा एक भावुक पल रहा वो। और ये सिर्फ माखनलाल सरकार नहीं, ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो इस पार्टी को आज इस मुकाम तक लाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, अपने बलिदान दिए हैं और अलग अलग समय पे बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए इस पार्टी को आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। तो ये संदेश भाजपा के तरफ से, प्रधानमंत्री के तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को जरूर है कि आप अगर हमारे इस पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो ये पार्टी आपको याद रखती है, ये देश आपको याद रखेगा। और उसी का एक झलक माखनलाल सरकार और प्रधानमंत्री के बीच। जो
4: तापस एक और तस्वीर आज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो भी आज हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी दावा भी करती रही है कि बहुत से कार्यकर्ता ने अपनी जान गंवा दी बीजेपी को स्थापित करने के लिए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए ये वो तस्वीर है, यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनके अपने जान गंवा चुके हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तापस जुड़ी हुई हमारे साथ। तापस, ये तस्वीर भी जरूर चर्चा का विषय बनेगी कि जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को मजबूती दिलाने में अपनी जान गंवा दी उनको भी पूरा सम्मान बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद उनके परिवार वालों से मुलाकात की।
3: जी बिल्कुल, देखिए 2008, 2009, 2011, 16, 21 इन तमाम वर्षों में जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी, यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही थी, तब ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और ऐसे कई सारे परिवारों के सदस्यों को बुलाया गया जिनसे प्रधानमंत्री अलग से कई समय तक आज बातचीत किए, उनको उनके साथ खड़े होने का भरोसा उन्हें दिलाया। ये एक संदेश आज के कार्यकर्ताओं को भी है कि वो आज जिस मुकाम पे इस पार्टी को देख रहे हैं इसके लिए बहुत सी मेहनत बैकड्रॉप में हुआ है, बहुत सा संघर्ष, बहुत बलिदान अतीत में किया गया है, उसी का स्वरूप है कि आज भाजपा पश्चिम बंगाल में अपना सरकार बनाई है। यह आसानी से सरकार नहीं बना है, यह आज के कार्यकर्ताओं के लिए भी है और उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है जो सालों से, बरसों से, दशकों से इस पार्टी के लिए लोहा लेते आए हैं, लेकिन ये पार्टी को आज इस मुकाम पे लाने के लिए उनकी भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ये याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का ये जो जेस्चर है ये काफी सराहने
4: बिल्कुल। और इन तस्वीरों की, इन वीडियोस की काफी चर्चा भी हो रही है और बात भी हो रही है कि कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात जो बीजेपी करती है वो दिखाई भी देता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तापस, जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
8: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Tech is moving fast, and employers want people who get it. At WGU, you'll earn a computer science degree that teaches you the skills behind AI. Online, accredited, built for what's next. Get started at wgu.edu.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Or more country roads.
13: Thank God I get to wake
12: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: TuneIn has the music.
12: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
15: TuneIn Poolside has the music I love.
12: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आप मेरे लिए स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे?
3: That's right.
2: 50 शेयर्स खरीदूं या 5,000? ब्रोकरेज इज
4: जस्ट 20 रुपीज।
2: आपके आसमान से टपक पड़े
5: स्काई से। HDFC Sky, all-in-one investment app.
6: Fixed brokerage on stocks and F&O. HDFC Sky. Download today. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

दुर्गम किले पर लहराया केसरिया ध्वज। शुभेंदु ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ। पीएम मोदी ने गले लगाया। सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया। बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने किया तंडवा। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ। गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने मंच पर लिया बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सिपाही का आशीर्वाद। 98 साल के माखनलाल सरकार के छुए पांव। दृश्य देखकर भावुक हुआ कोलकाता का ऐतिहासिक सैलाब। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय। तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर। लोक भवन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन। राज्यपाल ने नहीं दी तारीख। कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट। भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी घर पर ईडी की छापेमारी। 20 गाड़ियों से आए थे अफसर। स्थानीय निकाय बिजली और उद्योग मंत्रालय देखते हैं अरोड़ा। केजरीवाल ने औरंगजेब से की बीजेपी की तुलना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बंगाल में आज नया सूर्योदय हुआ। आजादी के बाद पहली बार भगवा की बयार है, बीजेपी की सरकार है। और आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया तो सीएम योगी उन्हें भगवा गमछा पहनाते दिखे। शुभेंदु के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नाम और ओबीसी चेहरा दिलीप घोष के साथ फायर ब्रांड महिला नेता अग्निमित्रा पॉल भी शामिल है। मतुआ और आदिवासी समुदाय से भी मंत्री बनाए गए हैं। इसमें अशोक कीर्तनिया और क्षुदीराम टुडू हैं। साथ ही निशित प्रमाणिक को भी मंत्री बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठाकुर बाड़ी पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने आज तक से खास बातचीत की।

0: come here to offer my best regards and tribute to Thakur Kavi Guru. It's a Joda Sako, historic place.
1: तो देखिए शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लिया. जितने भी लोग मंच पर मौजूद थे उन सब से मुलाकात की, सब ने शुभकामनाएं दी, बधाई दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा गमछा था वो उनको पहना दिया और उसके बाद सीधे ठाकुरबाड़ी जाते हैं. चूंकि आज 9 तारीख है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है, तो ये देखिए यहां पर वो आए गुरुदेव का घर और यहां पर सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा थी उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए. ये देखिए ये वो तस्वीर. और रविन्द्रनाथ टैगोर और बंगाल का रिश्ता देखिए, जैसे पहले भी बताया देह और प्राण जैसा है और उनके लिए बंगाल केवल भूभाग नहीं है बल्कि एक जीती जागती भावना थी. बंगाल की मिट्टी हो, यहाँ की नदियों का संगीत हो, यहाँ की लोक संस्कृति हो, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की साहित्य की आत्मा रही है. और इसका जिक्र बीजेपी की तरफ से भी कई बार कहा गया है. सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो टैगोर ने बंगाली भाषा को विश्व पटल पर पहचान दिलाई थी, नाम रोशन किया था.
2: दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे. इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है. और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर.
1: तो जिनको भी आप सुन रहे थे वैसे शपथ तो उन्हीं की थी, शुभेंदु अधिकारी की, लेकिन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखा गया. जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रोड शो के साथ एंट्री की. उनके साथ में सौमिक भट्टाचार्य भी थे, उनके साथ में शुभेंदु अधिकारी भी थे, दाएं और बाएं. मंच से बंगाल की जनता को साष्टांग उन्होंने प्रणाम भी किया. वो तस्वीरें आप सबसे पहले आप देख रहे हैं. इस तरफ बंगाल के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता जो 98 साल के थे, जिन्होंने कई किलोमीटर तक कई सालों तक घूम के 10,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा, उनके पैर भी छुए. और उसके बाद जो आप इस तरफ ये दोनों तस्वीरें देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी की शपथ हुई और उसके बाद दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उनको गले भी लगा लिया, वो देखिए पीठ भी थपथपाई. और आपको याद होगा जब अमित शाह आए थे 8 तारीख को विधायक दल की बैठक में, तो जैसे ही एयरपोर्ट पर मिले थे शुभेंदु अधिकारी से, उसी वक्त उनकी पीठ थपथपाई थी. और पीठ थपथपाने वाला काम शुभेंदु अधिकारी ने किया भी है बीजेपी के लिए. 2020 में शामिल हुए, उसके बाद बीजेपी को जो मजबूती दी, फिर चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, मुकाबला किया ममता बनर्जी का, उनको हराया. और फिर 2026 में फिर से चुनाव हुए और फिर से ममता बनर्जी का मुकाबला किया और फिर उनको हराया. 3 से 77 और 77 से 207 सीट तक बीजेपी पहुंची है. और ये देखिए ये वो तस्वीर है जो चर्चा का विषय है. माखन लाल सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता, 98 साल के. 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वो कश्मीर भी गए थे और वहां पर कश्मीर में झंडा फहराने के आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल में भी रहे, कई बार जेल भी गए. बीजेपी के गठन के बाद संगठनात्मक समन्वयक वो बने. पश्चिम दिनाजपुर में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में वो सक्रिय रहे, लोगों के घरों तक गए, बीजेपी का प्रचार प्रसार किया. साल भर के भीतर 10,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जो आंकड़ा भी हम आपको बता रहे थे एक साल के अंदर. 1981 से लगातार 7 साल बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं माखनलाल सरकार.
3: बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ हम लोग का परिवार, जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25,000 प्रेसिडेंट थे बीजेपी का. उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया, तपन सिंह दर का काम किया, हरिपद भारती बोल के एक बंगाल का एमएलए था उनका साथ काम किया बाबा.
4: अब जो छोटे थे तब से क्या देखते
3: बाबा? यही देखते थे बाबा, तो एकदम नॉर्मली जीवन जमन करते है, बाबा का कोई फैंटासी नहीं है.

0: दिखाना उखाना नहीं है, ऐसे ही चलता है बाबा। और हम लोगों का मोहल्ला में सब लोग बाबा को बहुत प्यार करते हैं।
1: पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बंगाल चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक हरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाइए। पीयूष, आज कई तस्वीरों की चर्चा हो रही है, बीजेपी के लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है ही। शुभेंदु अधिकारी ठाकुरबाड़ी में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर के घर पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता के जब पांव छूते हैं तो वो माहौल देखकर काफी भावनात्मक माहौल उस वक्त हो गया था, और इन तस्वीरों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है।
2: जी बिल्कुल हिमांशु, इन तस्वीरों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और क्यों ना हो, ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने बीजेपी की नींव पश्चिम बंगाल में रखी। ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने श्यामलाल मुखर्जी के साथ श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर तक की यात्रा की। ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने 1980 के बाद से एक्सपेंशन किया बीजेपी का, कई कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ा। तो आज जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है तो सबसे बड़ा श्रेय उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने पिछले कई सालों तक लगातार मेहनत की, संघर्ष किया, और इनमें से तो वो कार्यकर्ता भी हैं मानसू जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ गया, कई ऐसी महिला कार्यकर्ता जिनके साथ जघन्य अपराध हुआ। तो सबसे पहला प्रणाम उस कार्यकर्ता को जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नींव रखी। आपको बता दें कि न सिर्फ माखनलाल सरकार से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई बल्कि उन्होंने उन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जिन्होंने अपने परिवारजनों को राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर खोया। अब तक कई लोगों की जाने जा चुकी, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं बीजेपी के लिए, इसीलिए ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, ऐसा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। लेकिन ये बात और समझने की जरूरत है मानसु कि अब नया सूर्य उदय हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, और उस नई सरकार का जो मुखिया है वो है शुभेंदु अधिकारी। अब तक कल तक जब मैं आपसे बात कर रहा तब यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का राज था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है और बीजेपी का राज यहाँ पर है। जो वादे, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, साथ साथ जो राजनीतिक हिंसा है, जो वादे बीजेपी के द्वारा किए गए यहाँ की जनता को, अब उनको पूरा करने का समय आ गया। लेकिन इन वादों को शुरू करने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने आज रविंद्रनाथ
1: पीयूष में आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन देखिए चिराग पासवान भी इस वक्त कोलकाता में है, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं उनको।
3: करेंगे, इस अहंकार ने ही इनका ये पतन किया।
1: तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि इस अहंकार ने ही उनका यह पतन किया है। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, जिस तस्वीर का आपने जिक्र किया फिर आपको सुनवाते हूं।
4: नंदन, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और शुभेंदु अधिकारी जी को आज उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और उनके साथ उनके मंत्री परिषद के जो सभी नए साथी हैं सबको बहुत बधाई। लेकिन बदलाव का ये मौका है, बहुत भरोसे के साथ बंगालवासियों ने एक परिवर्तन लाने का काम किया है, बहुत बड़ा दायित्व है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नया विकास का युग, एक नया विकास का अध्याय बंगाल की जनता को समर्पित होगा।
1: तो देखिए रिएक्शन आते रहेंगे, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं और टीएमसी पर निशाना भी साध रहे हैं। तो देखिए आज से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। जैसा अभी कहा जा रहा था, शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, और इस समारोह में पीएम थे, गृहमंत्री थे और भी कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने।
5: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
6: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়, পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়, পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে।
5: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
7: আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন।
6: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
7: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री।
6: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी पहुंचते उससे पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। मंच पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा तो था ही, साथ ही सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी की ताकत में इजाफा करने के लिए मौजूद थे।

0: मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर काली और टैगोर की तस्वीर लगी थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं।
0: तमाम खास लोगों की मंच पर मौजूदगी थी। इस बीच बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर भी पहुंची थी।
2: श्री माखनलाल सरकार।
0: इस दौरान पीएम ने बीजेपी के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें भारत संविधान एवं भारत वर्षर अखंडतार जन्य
3: शुभेंदु अधिकारी।
0: उत्साह, जोश, उमंग के तमाम भावों के बीच वो पल आया जब राज्यपाल ने शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया।
3: भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब।
0: शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे मुलाकात की, पीएम के पैर छुए। लेकिन असली मैसेज इस तस्वीर से मिला। जब शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो योगी ने अपना भगवा गमछा शुभेंदु के गले में डाल दिया। ये मैसेज था कि अब बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल चलेगा या बंगाल में नए मॉडल का शासन चलेगा। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी। बंगाल में परिवर्तन पर पीएम मोदी ने भी बंगाल की जनता का आभार जताया, सिर झुकाकर लोगों को प्रणाम किया। आज तक ब्यूरो।
4: शुभेंदु का राज तिलक और इस जीत के हीरो शुभेंदु अधिकारी को ही कहा जा रहा है, क्योंकि 2020 के बाद जिस मजबूती के साथ बीजेपी को मजबूत करने में शुभेंदु अधिकारी जुटे। देखिए, अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए थे शुभेंदु अधिकारी। 2020 का वक्त था और उसके बाद से जब भी चुनाव हुआ बीजेपी को मजबूत करते गए। अभी ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बंगाल में बीजेपी सरकार की सबसे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ उसकी तस्वीरें। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, अशोक कीर्तनिया, क्षुतिराम टूडू और निशित प्रमाणिक इनको मंत्री बनाया गया है। और अभी आने वाले वक्त में और भी कई चेहरे होंगे जो इस मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे, विस्तार होगा। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत लंबे वक्त से यह इंतजार किया जा रहा था। कई चुनावों में बीजेपी की हालत पहले बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि ममता बनर्जी लगातार जीतती आ रही थी, बीजेपी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव में कूदी और उसके बाद अब बंगाल में 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और उसके बाद दंडवत किया बंगाल की जनता को, मंच से ही दंडवत किया बंगाल की जनता को। और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे रखती है, बीजेपी जनता का हमेशा सम्मान करती है, ये संदेश देने की कोशिश की। और ये जो तस्वीरें हैं ये आने वाले वक्त में इनके बारे में चर्चा जरूर की जाएगी। अब देखिए, हालांकि ये भी सवाल उठ रहा है कि एक मुख्यमंत्री तो यहां पर बन गए, क्या किसी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? क्या अग्निमित्रा पॉल उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं या फिर क्या दिलीप घोष उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हालांकि ये अभी आगे की बात है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात वो ये कि बंगाल में एक नया उदय हुआ है और आप कह सकते हैं कि अब बीजेपी का राज। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, बहुत लंबा इंतजार बीजेपी ने किया और वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बीजेपी तो आज बहुत ज्यादा खुश है। शुभेंदु अधिकारी को भी हमने देखा कि टैगोर भवन जाते हैं, वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं और आम जनता के आगे दंडवत हो रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश आज बीजेपी की तरफ से की गई इन तस्वीरों के जरिए?
5: जी देखिए, बीजेपी के लिए अभी हाल के दिनों में ये सबसे बड़ी जीत है। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह ने जब पिछले चुनाव में प्रचार के दौरान कई बार कहा है कि बंगाल जीत का सपना उनका बहुत बड़ा सपना है, और उसकी एक वजह भी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म यहाँ पे हुआ, वो यहीं के थे, लेकिन यहीं पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कभी सत्ता हासिल नहीं की थी। तो ये जब जीत हासिल हुई तो आज सुबह से जो हमने देखा, सबसे पहले तो माइक पर रविंद्र संगीत बज रहा था। अब इसके पीछे का मैं बैकग्राउंड भी बता देता हूं कि बीजेपी को पिछले 10-12 सालों में जब से वो विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब से उसको एक बात जरूर सुननी पड़ी, ताना सुनना पड़ा, वो ये कि बाहरी पार्टी है, बाहर के लोग हैं, बंगाल की अस्मिता, बंगाली संस्कृति को ये नहीं समझते हैं। तो ऐसे में आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें सुबह से रविंद्र संगीत बज रहे थे और उसके बाद माइक में और कुछ बज ही नहीं रहा था। आज जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड था उसके आसपास रविंद्र संगीत बज रहा था और रविंद्र जयंती के दिन आज इस कार्यक्रम को रखना, ये बंगालीपन से खुद को ओतप्रोत बताने और का संदेश एक तरह से बीजेपी ने आज दिया। इसके अलावा जो 5 लोगों को शुभेंदु अधिकारी के अलावा आज शपथ दिलवाई गई है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो पूरे पश्चिम बंगाल को समाहित करने का एक संदेश है। उत्तर बंगाल से निशित प्रमाणिक को दिया गया, उत्तर बंगाल ने भर भर कर वोट दिया बीजेपी को इस बार चुनाव में, और सिर्फ इस बार नहीं पिछले कई सालों से उत्तर बंगाल बीजेपी को अच्छा खासा वोट दे रहा है। इसके अलावा जंगल महल पुरुलिया से रघुनाथ टूडू को, खुदीराम टूडू को वोट शपथ दिलवाई गई तो जंगल महल का एक प्रतिनिधित्व हुआ। खड़गपुर से दिलीप घोष जीते थे तो वहां से उनको एक शपथ दिलवाई गई। दिलीप घोष पूर्व अध्यक्ष और बंगाल में जब 2 सीटों से 77 सीटों पर आई थी बीजेपी उसके बीच का जो सफर था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था जिसमें दिलीप घोष ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो उनको पुराने कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी और आरएसएस के से जुड़े हुए कार्यकर्ता के तौर पर उनको ये सम्मान दिया गया। अग्निमित्रा पॉल महिला एक चेहरा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पिछले 15 सालों से एक महिला थी, ममता बनर्जी थी, तो ऐसे में एक महिला चेहरा रखना ज़रूरी था। आसनसोल दक्षिण से वो जीती, उनको टिकट दिया गया। अब मथुआ की तरफ, मथुआ वोट पिछले कई सालों से बीजेपी को मिलता आ रहा है, खासतौर पर 2014 में जब प्रधानमंत्री ठाकुर नगर गए थे उसके बाद से जो मथुआ वोट बैंक था वो तृणमूल से छिटक कर धीरे धीरे बीजेपी की ओर बढ़ता रहा। और इस बार भी जब टीएमसी की ओर से लगातार आरोप लगाए गए कि मथुआ समुदाय का वोट कट गया है, आप लोग बीजेपी को वोट मत दीजिए, आपका ही वोट काट दिया गया, उसके बावजूद मथुआ समुदाय ने काफी संख्या में अच्छे खासा वोट बीजेपी को दिया। तो ऐसे में अशोक कीर्तनिया को वहां से खड़ा करना, उत्तर बनगांव से वो हैं एमएलए, तो उनको खड़ा करना एक तरह से
4: देने की कोशिश की है कि जो भी उस मुश्किल वक्त में बीजेपी के साथ था, बीजेपी हर उस शख्स का सम्मान करती है, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से जताने की गई है। वहीं एक और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बदला है, सोशल मीडिया अकाउंट का बायो ममता बनर्जी ने अपडेट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछली विधानसभाओं के दौरान का सीएम लिखा है ममता ने, ये बड़ी खबर है। टीएमसी का फाउंडर चेयरपर्सन भी ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया बायो पर लिखा है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
7: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
9: You're listening to MSNBC.
7: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: आप सब मेरे लिए काम करेंगे?
12: करेक्ट।
11: रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, वो भी फ्री में?
12: करेक्ट।
11: आप क्या आसमान से टपक पड़े?
12: स्काई से, HDFC स्काई, ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट ऐप.
13: डाउनलोड टुडे HDFC स्काई. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
2: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना ना भूले, सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर।
3: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्य मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। आमि शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय जहाँ आमार विवेचनार जन्य आनीत हइबे बा आमि ज्ञात हइब ताहा मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूहेर यथाযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্যতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दुर्गम किले पर लहराया केसरिया ध्वज, शुभेंदु नली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ, पीएम मोदी ने गले लगाया, सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया, बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने किया दंडवत। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ, गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी की टॉप लीडरशिप, मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने मंच पर दिया बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सिपाही का आशीर्वाद, 98 साल के माखनलाल सरकार के छुए पांव, दृश्य देखकर भावुक हुआ कोलकाता का ऐतिहासिक सैलाब। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय, तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर, लोक भवन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 116 विधायकों का ही समर्थन, राज्यपाल ने नहीं थी तारीख, कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट। भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी घर पर ईडी की छापेमारी, 20 गाड़ियों से आए थे अफसर, स्थानीय निकाय बिजली और उद्योग मंत्रालय देखते हैं अरोड़ा, केजरीवाल ने औरंगजेब से की बीजेपी की तुलना।

तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे आए, 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन सरकार पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे सस्पेंस थ्रिलर कोई मूवी होती है, ऐसा ही इस वक्त तमिलनाडु की सियासत चल रही है। एक दिन पहले टीवी के प्रमुख विजय तीसरी बार लोकभवन पहुंचे, राज्यपाल को 118 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा किया गया उनकी तरफ से, जिसके बाद AMMK पार्टी के महासचिव TTV दिनाकरन ने विजय की पार्टी पर अपने दल के समर्थन वाला फर्जी पत्र राज्यपाल को सौंपने का आरोप लगा दिया। दिनाकरन ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायक कामराज की ओर से TVK के समर्थन में एक पत्र जारी किया गया, जिसके बाद मैंने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें असली पत्र दिखाया। दिनाकरन इसके बाद चेन्नई के गुइंडी थाने पहुंचे और फर्जी पत्र के मामले में पुलिस को औपचारिक शिकायत की। पुलिस में जाके दिनाकरन ने TVK के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत कर दी है। वहीं विजय की पार्टी ने दिनाकरन के आरोप खारिज करते हुए MMMK के विधायक S कामराज का एक वीडियो जारी किया। उधर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में VCK सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरी है। VCK प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने शुरुआती संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी वाम दलों की तरह TVK को समर्थन दे सकती है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है, कभी हां कभी ना, और बीच में अटकी हुई है विजय की ताजपोशी। तमिलनाडु में खींचतान के बीच कांग्रेस के 4 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। अब देखिए, बेंगलुरु पहुंचा दिया गया है कि कहीं 4 में से कोई कम ना हो जाए, कांग्रेस के 5 विधायक हैं, 4 बेंगलुरु पहुंच गए हैं और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि 118 का आंकड़ा विजय कैसे जुटाएंगे। VCK के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। VCK के 2 विधायक साथ देंगे कि नहीं देंगे, यह भी खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी CM का उनको पद चाहिए। अब VCK के प्रमुख हैं थोल थिरुमावलवन, शुरुआती संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी वाम दलों की तरह TVK को समर्थन दे सकती है, क्योंकि CPI और CPIM ने समर्थन दे दिया है, 2-2 विधायक उनके TVK के साथ आ गए, और इसीलिए कहा जा रहा था कि 118 का आंकड़ा तो मिल गया है, 118 बहुमत के लिए चाहिए। उससे पहले 2 बार मिल चुके थे राज्यपाल से, लेकिन बात नहीं बनी, तीसरी बार भी राज्यपाल से मिले, और अब ये देखिए ये गुणागणित आप समझिए, 3 पार्टियों का समर्थन फिर भी बहुमत से एक कम क्यों। TVK 108 सीट, कांग्रेस 5 विधायक उनके साथ में है, CPI 2, CPM 2, अब कुल हो गए 117। अब हालांकि इसमें से भी आप देखिए कि विजय 2 सीटों से लड़े हैं, तो 107 मान के चलिए, फिलहाल 108 सीट TVK की आप देखिए और कुल 117 है। अब अहम किरदार यहां पर कौन निभाएगा, अहम किरदार यहां पर VCK निभाती दिखाई देगी। अनघा केशव तमिलनाडु में जो भी कुछ हो रहा है उसकी खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रही है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अनघा, क्या बात बनती हुई दिखाई दे रही है, विजय के लिए कुछ शुभ समाचार मिल रहे हैं कि नहीं? दोबारा जुड़ेंगे अनघा से, अनघा बताएंगी हमें कि A to Z क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए ये समझिए कि विजय एक्टर रहे हैं और सस्पेंस थ्रिलर से कम इस वक्त तमिलनाडु की मूवी नहीं चल रही है, क्योंकि 3 बार मुलाकात हुई गवर्नर से, अब लगता है कि बात बन जाएगी, लेकिन बनते बनते समझ नहीं आता कि बात कहां पर अटक जाती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि विजय की ताजपोशी अभी अटकी हुई है, क्योंकि 118 वाला जो आंकड़ा है वो 116 पर ही अभी अटका हुआ है। अनघा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया तमिलनाडु की हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। अनघा, क्या वहां कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है TVK के लिए कि नहीं? फिर से जुड़ेंगे, देखिए बारिश हो रही है वहां, लेकिन 2 विधायकों की बारिश, नंबर की बारिश होगी कि नहीं होगी उसका इंतजार अभी करना होगा, और जो थलपति विजय के चाहने वाले हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये आंकड़ा 118 पर पहुंच जाए। तो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी TVK अभी बहुमत साबित नहीं कर पा रही, अंकगणित हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु में जीत हासिल की वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। विजय ने कैसे अपने लिए जीत की राह तय की, वो भी सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनाई, उसके बाद ऐसा कमाल किया कि तमिलनाडु की राजनीति को पलट कर रख दिया, हुआ कैसे ऐसा? आपके मन में सवाल चल रहा होगा, तो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको जवाब देते हैं।

0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं।
1: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 दिन से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलपति विजय की टीवी के ने ध्वस्त किया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। 2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खाली पल था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि अब स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भरा। उनकी रैलियों की भीड़ बता रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके वोटर्स भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलपति विजय ने तो इतिहास रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मदद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के, लेकिन उन्हें युवाओं का या जेंसी का नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एआईएडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। आज तक पेरो
1: विजय थलपति की शपथ में देरी से उनके समर्थक भी बहुत परेशान हैं। आज अगर विजय तमिलनाडु की सबसे बड़ी सियासी आवाज बन गए हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह विजय की फिल्में हैं जो प्रशंसकों को धीरे धीरे उनके पक्ष में लामबद्ध करती गईं।
2: राजनीति में थलपति विजय को यह कामयाबी अचानक नहीं मिली है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन में भले धमाका दिखे, लेकिन ये इससे कहीं गहरा है। विजय अपनी कामयाबी की नींव धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म अपने प्रशंसकों के दिल में रखते गए। विजय के वो दर्शक आज उनके वोटर भी हैं, जो विजय को उनकी तकदीर बदलने वाले की भूमिका में वर्षों से देख रहे हैं, जो उनकी हालत बदलने के लिए कब पसंदीदा बन गए ये किसी को पता नहीं चला। साल 2012 में आई फिल्म थुपक्की को याद करना होगा। पहली नजर में ये भले एक शानदार एक्शन फिल्म लगे, लेकिन भाग दौड़ भरे दृश्य और दबंगई के पीछे एक नैतिक स्पष्टता छिपी थी। विजय सिर्फ खलनायकों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि किसी बड़ी बुराई से रक्षा भी कर रहे थे। उनमें अनुशासन, संयम और अपने फर्ज को लेकर वो संजीदगी थी जो वोटरों को तमिलनाडु के मौजूदा नेताओं में ढूंढने पर नहीं मिलती। इसके 2 साल बाद आई फिल्म कथी ने सिनेमा घरों का माहौल बदल दिया। सीटियां थम गई, तालियां थोड़ी देर बाद और जोर से बजने लगी। ये अब सिर्फ प्रशंसकों की दीवानगी नहीं थी, ये सहमति थी कई लोगों के लिए, जिनके लिए विजय सिर्फ एक स्टार नहीं रहे बल्कि एक आवाज बन गए। इसी साल 2014 में आई जिला और इसके 2 साल बाद आई थेरी जैसे फिल्मों में विजय ने समझदारी के साथ इसी संदेश को दोहराया कि सरकारी कामकाज हमेशा उस तरह का काम होता है जैसा उन्हें करना चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग से लोग हाशिए पर चले जाते हैं, ये संदेश देते हुए विजय सुपर हीरो से कब राजनीतिक विकल्प लोगों के मन में बन गए पता ही नहीं चला।
3: नी पत्र वैत्त निरुपोंद्र
2: साल 2017 में फिल्म मरसल ने विजय के संदेश को और साफ साफ तरीके से लोगों तक पहुंचाया। विजय की इस फिल्म में स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को उठाया गया, लेकिन जो बात सबसे अलग थी वो थी इससे जुड़े संवाद बोलते विजय का दृढ़ विश्वास। विजय के डायलॉग अभिनय से कहीं बढ़कर थे। ऐसा लग रहा था मानो तमिलनाडु की जनता के मन की बात कोई बिना लाग लपेट बोल रहा हो।

0: इस कड़ी को सरकार ने और मजबूत किया। फिल्म की कहानी एक वोटर के वोट छीनने के इर्द गिर्द बुनी गई और लोगों के दिल में उतर गई। विजय तमिलनाडु के लोगों की सियासी बहस का हिस्सा बन गए। साल 2019 में आई फिल्म बिगिल के साथ विजय का लहजा थोड़ा नरम हुआ, लेकिन इरादा नहीं बदला। फिर दो साल बाद आई मास्टर, जिसमें कॉलेज चुनाव के सीन भले ही छोटे लगे, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश छिपा था। जब विजय ने जेडी के रूप में कदम रखा तो वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक टूटी हुई व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म ये चुपचाप दिखाती है कि कैसे चुनाव हेर फेर होने पर अपना महत्व खो सकते हैं। तो 5 साल पहले तक लोग विजय की सिर्फ फिल्म ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उनकी फिल्मों में अपने लिए अर्थ भी ढूंढ रहे थे, जो उन्हें मौजूदा सिस्टम में बार बार ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। इसीलिए साल 2006 में जब जन नायकन की चर्चा शुरू हुई तो ये कोई चौंकाने वाली घोषणा नहीं लगी, ये एक स्वाभाविक अगला कदम लगा। मानो कहानियां इसके लिए जमीन तैयार कर रही थी, क्योंकि वर्षों से विजय ने बेहद छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम लोगों की जिंदगी में रख दिए थे, जो समय के साथ उन्हें जोड़ते चले गए। विजय के चुने गए मुद्दे या फिर उनके निभाए गए किरदार, हर फिल्म में वो जनता के रक्षक, सिस्टम को चुनौती देने वाले, समाज को सुधारने वाले रूप में सामने आए। राजनीति में नेता अपने भाषणों और चुनावी अभियानों से अपने समर्थन में कहानी गढ़ते हैं। विजय ने ये काम अपनी फिल्मों से किया। बार बार उन्होंने अपने पक्ष में दर्शकों के दिल में जगह बनाई। उन्होंने एक ही बार में जनता का दिल जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए उन्होंने लंबा लेकिन सधा रास्ता चुना। इसलिए थिएटर में उनके लिए बजने वाली सीटी केवल उत्साह नहीं थी, बल्कि समर्थन थी। उनके फैंस की तरफ से दोहराया गया विजय का संवाद केवल दीवानगी नहीं था, बल्कि उनकी याद था। इसीलिए जब विजय ने अचानक अविश्वसनीय सियासी छलांग लगाई तो जनता को आश्चर्य नहीं हुआ। वो जान गए कि विजय के लिए जो पसंद उनके दिल में चुपचाप आकार लेती रही, वो आखिरकार उनकी जीत के रूप में सामने आ गई है।
1: एक एक्टर और उनकी फिल्मी कहानी एक सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने का सफर भले ही आसान लगे, लेकिन उनकी कामयाबी के इस महल की नींव उनके पिता चंद्रशेखर ने रखी, जिन्होंने पहले अपने बेटे को तमिलनाडु के लोगों की नजरों में सुपरस्टार बनाकर थलापति की उपाधि दिलाई और फिर धीरे धीरे उनके लिए सियासी आधार तैयार किया। लेकिन इस कहानी में रोचक मोड़ भी आए।

इस कहानी के नायक विजय से कहीं ज्यादा क्या उनके पिता हैं, जिन्हें दुनिया एस ए चंद्रशेखर के नाम से जानती है। विजय को भले ही आज हर कोई जानता हो, लेकिन उन्हें सब जाने ये महत्वाकांक्षा उनके पिता की रही, जिन्होंने दोनों के रिश्तों को कामयाबी की सुनहरी यादों के अलावा अलगाव के अंधेरे भी दिखाए। बाप बेटे की अदालती लड़ाई भी इसे सबसे अनोखी बनाती है। विजय की जिंदगी की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, जिसमें आखिर में सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाला हो जाता है।

0: बिल्कुल फिल्मी कहानी, विजय और उनके पिता की कहानी, राजनीति से फिल्मों तक की सबसे मशहूर कहानी बन गई, जिसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ साल 2020 में आया जब तब
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Accogay, the number one Korean skincare brand.
6: AI is changing what it takes to move forward in tech. And staying relevant isn't about chasing trends, it's about building the right skills. At WGU, our online technology master's programs focus on skills you can actually use at work. No filler courses, no busy work, just affordable programs designed for working adults with real schedules. You can learn at your own pace, build confidence as you go, and graduate ready for what's next. If you're ready to get started, learn more at wgu.edu.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
5: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: Accogay, the number one Korean skincare brand, now in India.
8: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
10: How they looked after game one.
11: I mean, they were frustrated.
9: The Daily.
12: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
9: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: आप सब मेरे लिए काम करेंगे?
14: करेक्ट।
13: रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, वो भी फ्री में?
14: करेक्ट।
13: आप क्या आसमान से टपक पड़े?
14: स्काई से, HDFC स्काई, ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट ऐप।
15: डाउनलोड टुडे HDFC स्काई। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
16: लाठियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए,
17: मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टियारी फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए।
18: लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो है उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है।
19: पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है।
20: पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तनातनी शुरू होती है। पटना की सड़क गवाह बनती है, पुलिस की लाठियां भूल गई सामने छात्र हैं या कोई छात्रा। दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार बार टाल दिया जा रहा है। दावा है कि छात्र परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से भी नाराज है। जहाँ पहले एक चरण में एग्जाम हो जाता था वहाँ प्री और मेंस दो चरण में चुनने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब ये सम्राट सरकार के सामने चुनौती है कि छात्रों की मांग सुनी जाती है या नहीं।
11: टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठी चार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी, यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही ना कार्रवाई हो रही है।
20: सबसे गंभीर सवाल ये कि छात्रों की मांग को जहां सुनकर उनकी समस्या और चुनौती का निदान होना चाहिए वहां लाठी चार्ज की इजाजत क्यों दी गई। रोहित सिंह के साथ अनिकेत कुमार, पटना आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
21: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

किले पर लहरा केसरिया ध्वज, शुभेंदु ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ, पीएम मोदी ने गले लगाया, सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया, बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने दंडवत किया। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ। गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी के टॉप लीडरशिप, मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने मंच पर लिया बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सिपाही का आशीर्वाद, 98 साल के माखनलाल सरकार के छुए पांव, दृश्य देखकर भावुक हुआ कोलकाता का ऐतिहासिक सैलाब। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय, तमिलनाडु का सीएम बनने की राह में 118 का स्पीड ब्रेकर, दो सीटों वाली वीसी के थोड़ी देर में लेगी समर्थन पर फैसला, कांग्रेस के 5 एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट। भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी घर पर ईडी के छापे मारे, 20 गाड़ियों से आए थे अधिकारी, स्थानीय निकाय बिजली और उद्योग मंत्रालय देखते हैं अरोड़ा। केजरीवाल ने औरंगजेब से की बीजेपी की तुलना।

0: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। तो बंगाल में आज से बीजेपी युग का आगाज हो गया। शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो गई है। बंगाल अब शुभेंदु के हवाले है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज शुभेंदु अधिकारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के खुले कार में पीएम मोदी मंच पर आए और फिर मंच से पीएम ने बंगाल की जनता को दंडवत किया है। तीसरी तस्वीर भी बेहद खास है। बंगाल बीजेपी के सबसे सीनियर कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को इस शपथ ग्रहण में खास तौर पर बुलाया गया था। पीएम मोदी ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया है।
0: ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे
1: बंगाल में शपथ ग्रहण हो चुका है। अब असम की बारी है। 12 मई को असम में शपथ ग्रहण की तैयारी है। असम में बीजेपी ने जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया। जल्द ही ये लोग असम पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक भी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग

0: सरकार आपकी बनी, लेकिन दोनों ही मौके पर असम में बीजेपी की तरफ से सीएम का फेस स्पष्ट नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार ये जीत आपकी है। आप सोचिए कि 100 से ज्यादा, शायद पहली बार गठबंधन में किसी ने 100 से ज्यादा सीटें लाई हैं।
1: अंजना जी, देखिए, असम का जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी का ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। 2016 से 2026 तक असम में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम हुए। प्रधानमंत्री जी ने 50 बार से ऊपर असम आए और एक तरफ हिंसा से ग्रस्त एक प्रदेश को आज एक डेवलपमेंट का मॉडल का रूप से देश का सामने खड़ा करने का काम किए हैं। डबल इंजन सरकार के लिए ये बहुत है और मैं असम का जनता को भी मेरा आभार व्यक्त करूंगा कि असम का पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी किसी गठबंधन और पार्टी ने इतना सीट नहीं मिले थे। ये एक प्रकार से एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। मैं असम का जनता को मेरा आभार व्यक्त करता हूं।
0: इससे पहले कांग्रेस ने बहुत पहले 70-80 के दशक में 90 के आसपास का आंकड़ा 90-92 छुआ था। पहली बार 82 सीटें बीजेपी की आई हैं, जो कि बीजेपी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपका डांस बहुत वायरल हो रहा है हेमंता जी, आपका डांस बहुत वायरल हो रहा है।
1: देखिए, हम लोग का एक कोशिश था कि इलेक्शन को हम लोग एक फेस्टिवल बना दे। असम एक कल्चरली असम बहुत रिच है और असम का लोग हमेशा जब एक कल्चरली कनेक्ट करने का कोशिश होता है तो जनता इसको बहुत अच्छा पाते हैं। तो हमने एक प्रयोग किए थे कि चुनाव में हम किसी का खिलाफ नहीं बोलूंगा, हमारा बातें बोलूंगा, बीच में नाचूंगा, बीच में गाऊंगा और जनता से खूब मिलूंगा और रिजल्ट आपका सामने है। मैंने खाली डांस नहीं किया, पूरा जनता ने डांस किया और ये चुनाव का दौरान कम से कम मैं 200 से ऊपर सभा किया। हर सभा में लोगों में और साथ में मैं भी डांस भी किया, गाना भी गाया और साथ में मिलके पूरा चुनाव को एक फेस्टिवल तक हमने बदल दिया।
0: अच्छा, ये चिट दिखाइए जरा, ये आपकी हैंडराइटिंग है क्या? तो हम लोग तो आपको पॉलिटिशियन ही समझते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सेफोलॉजिस्ट भी बन गए हैं। दिखाइए, जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं आप कि आपने ये पहले कहा था, क्या लिखा है इसमें? बेस्ट 101, बेटर 80+, और नहीं तो 88 लिखा आपने, क्या मतलब सेफोलॉजिस्ट?
2: 90+
0: वर्स्ट
2: 88+
0: सेफोलॉजिस्ट भी बन गए क्या?
1: तो ये सीट लिख के मैंने हमारे असम से भारत सरकार में मंत्री हुए पवित्र मार्गरिटा, उनका जेब में मैं रख दिया था। मैं बोला चुनाव का दिन अगर इससे कम हुआ तो सीट फाड़ देगा, अगर उससे ठीक ठाक हुए तब आपको जो करना है सीट का साथ आप करिए। तो किसी प्रकार से सीट अभी आपका पास भी आ गया,
0: सेम आ गया, मतलब 102 पर आप पहुंचे हैं। अभी मैं लौटूंगी, आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि
1: एक ज्यादा ही
0: कांग्रेस के 30 टिकट मैंने ही दिए, मैं उस पर लौटूंगी। अभी तो पूरा समझना है आपसे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को डिफाई करना, 10 साल तक आप शासन में रहे हैं, उसके बावजूद एनडीए की सीटें जो है पिछली बार 75 थी, इस बार 102 हुई है, लगभग 36% का ये इंक्रीज है। और जब आप आए थे भारतीय जनता पार्टी में साल 2011 में, तो लगभग 5 सीटें हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तब 5 सीटें थी। और माना जा रहा है कि आपने बड़ी काम किया बीजेपी में भी और साथ ही काम कर दिया कांग्रेस में भी, जिसकी वजह से आज उन 5 सीटों से 82 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है, सही है क्या?
1: हम बीजेपी इस बार टोटल 90 सीट में कॉन्टेस्ट किया और बाकी सीट गठबंधन को दिया गया, और आउट ऑफ 90 वी गॉट

0: 90 में हम 82 सीट जीते और हम कुल कॉन्टेस्ट किया था 90 सीट में। इसका कारण एक ही है अंजना जी, हमारा पूरे टीम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को जो बहुत सपोर्ट मिला, असम जैसा प्रदेश में सेमीकंडक्टर जैसा इंडस्ट्री आए, असम जैसा प्रदेश में देश का एक फर्टिलाइजर यूरिया का हब बनाने जैसा बहुत बड़ा फैक्ट्री का सैंक्शन हुआ, रेलवे का जो एक्सपांशन हुए, नेशनल हाईवेज का एक्सपांशन हुए, और एक लिबरल हमें भारत सरकार से असिस्टेंस मिले, और संगठन का रूप से भी हमने कभी रेस नहीं लिया। पूरा पार्टी का टीम ने 5 साल हम लोग एक साथ काम करते रहे। बीते लोकसभा चुनाव में भी हम लोग 94 सीट में लीड मिले थे और 11 सीट में जीत हासिल किए थे। असम में जो मॉडर्न डेज में कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 सीट कभी नहीं मिले थे लोकसभा में आउट ऑफ 14। तो हमारे स्ट्राइकिंग रेट लोकसभा में भी काफी अच्छे थे, इस बार भी काफी अच्छा है। और मैं आपको ये भी बोल पाऊंगा कि अगले 5 साल भी हम इसी लेवल में रहूंगा। किस लिए? हमारे लिए असम का जनता को सेवा करना, असम को सुरक्षित करना और असम को एक प्रकार से देश का मेन स्ट्रीम में ले जाना हमारे लिए एक राजनीति नहीं है, हमारे लिए जीवन भर का मिशन है। और इसीलिए हम लोग सब पूरा टीम इसी काम में लगे रहूंगा और आगे भी ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने मिलेगा।
1: ठीक है, एक इंटरव्यू में आपने मुझे हेमंता जी कहा था कि जो मियां मुसलमान है वो मुझे प्यार करते हैं, वो कहते हैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। हाँ। आपने इस चुनाव में मियां मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया, वो कहते हैं काम नहीं, इसकी वजह से हेमंता जीते हैं, आपकी पहचान एक हार्डलाइन फेस की बन चुकी है, क्या ये आपकी पर्सनल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या विपक्ष का सिर्फ आरोप है?
0: नहीं अंजना जी, एक्चुअली दिल्ली में जो लोग बैठते हैं ये लोगों का एक इश्यू है कि असम इतना दूर है तो बहुत क्लोजली चुनाव असम का चुनाव मॉनिटर नहीं करते हैं। मैं घुसपैठिया का बात बोलता हूं, बांग्लादेशी मियां का खिलाफ मेरा स्टैंड सब जानते हैं, लेकिन चुनाव जो दिन अनाउंस हुआ वो दिन से आज तक ये टॉपिक में टच ही नहीं किया। किस लिए? मैंने ये संदेश देना नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसे जीता है कि किसी का साथ नकारात्मक राजनीति करके हमने जीता है। तो हमने जो दिन चुनाव घोषित हुआ वही दिन से हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहां से आगे तक हम खाली प्रधानमंत्री जी का बात बोलूंगा, असम का विकास का बात बोलूंगा। इसीलिए इस बार असम चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का एक भी कंप्लेन नहीं किए, असम में कोई घटना नहीं घटे। वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट टाइम में एक पीसफुल इलेक्शन का हमने उदाहरण भी देश का सामने रखे। और ड्यूरिंग द इलेक्शन, आज आप पूछे तो मैं फिर बांग्लादेशी मियां का बात बोलूंगा, लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन आई थिंक ऑलमोस्ट 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ अनाउंसमेंट टिल टूडे मैंने बांग्लादेशी मियां वाला टॉपिक को ही टच नहीं किया हूं। किसलिए? मुझे चुनाव जीतने के लिए वो नहीं चाहिए, वो चाहिए मुझे असम को सुरक्षित करने के लिए, असम का अस्तित्व को रखने के लिए, हमारा आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। चुनाव जीतने के लिए मुझे ये मुद्दा का जरूरत नहीं है।
1: ठीक है, इस पर मैं वापस आऊंगी कि उन्हीं घुसपैठियों को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन अगला पिछले इंटरव्यू में एक और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के 30 टिकट तो आप दे रहे हैं, तो ये जो 19 विधायक उनके जीते हैं जिनमें से 18 मुस्लिम जीते हैं वो भी आप ही ने दिया था क्या?
0: उसमें से है हमारा ये जो 19 लोग जीते हैं इसमें से हमारा है, और जब प्रेसिडेंट इलेक्शन आएगा आप देखिए 102 का जगह में बीजेपी 108 मिलेगा।
1: तो ये छह जो आप कह रहे हैं तो हम माने कि ये मुस्लिम विधायक भी आप ही ने अपने प्लांट किए थे वहां पे कैंडिडेट?
0: हाँ, असम में मुस्लिम विधायक हो, हिंदू विधायक हो, क्रिश्चियन विधायक हो, सब मोटा मोटी हमारा साथ अच्छा ही संबंध होते हैं। बिकॉज व्यक्तिगत दौर से व्यक्तिगत लेवल में मैं सबका साथ अच्छा संबंध रख के ही चलता हूँ।
1: अच्छा, कितने टिकट आपने कितने आपके कैंडिडेट थे आप ही से जानते हैं? आपने कहा था 30 टिकट मैं दूंगा, कितनों को टिकट दिया?
0: कांग्रेस में 30 सीटें हम लोग का साथ जो अच्छा है वो लोगों को मिले थे और 30 में से जीते।
1: अच्छा ठीक है, अब आते हैं इस बात पर कि आपने
0: कांग्रेस का बड़ा नेता ही मदद करते हैं।
1: हाँ कौन?
0: हाँ, खुल के आप ही अंदाज कीजिए कि कौन कर सकता है। किसलिए हमें हमारा एनिमी कैंप में भी हमें ऑपरेट करना है,
1: इसीलिए तो उधर से आप यहाँ आए।
0: आपको उधर देखा ना, पाकिस्तान में जैसे काम करते थे।
1: अच्छा बताइए कैसे कैसे?
0: तो हमारे भी धुरंधर कांग्रेस में भी है।
1: अच्छा, आपके स्पाइज है कांग्रेस में?
0: स्पाइस नहीं है, वो लोग भी अपना पॉलिटिकल करियर है, बीजेपी आने में वो लोग नहीं जीतेंगे, इसलिए वो लोग उनका एक अलग परिचय है। तो इसीलिए उनको कांग्रेस में ही रह के देश का सेवा करना है, थोड़ा बीजेपी को भी मदद करते रहना है।
1: तो आपको खुश करने से उनको क्या मिलता है? अगर वो कांग्रेस पार्टी में ही है तो उनको क्या मिलेगा?
0: कुछ नहीं, वो लोग जानते हैं कि हम लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, असम के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, और वो लोग भी खुश रहते हैं कि इसलिए असम में कोई पॉलिटिकल एनिमिटी नहीं होते हैं, सब मिलके रहते हैं, तो इसीलिए संबंध भी अच्छा होते हैं।
1: अच्छा, आपने चुनाव
0: जीत, आपको तो मैं पहले नहीं जानते थे लेकिन जब से बातचीत शुरू किया तब से आप मेरा इंटरव्यू ये शायद तीसरा बार ले रहे।
1: जी सर जी। अच्छा हेमंता जी, अब अगले सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम माओवादी लीग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और आपने भी कहा कि 19 में से 18 सांसद इनके देखिए विधायक है। आपने कहा कि देखिए ये सारे मुस्लिम को ही जिताते हैं, मुस्लिम लीग बन गए।
0: एक जो हिंदू जीते है वो जो एक हिंदू जीते हैं वो भी मुसलमान वोट से ही जीते हैं, किसलिए वो शेड्यूल का रिजर्व सीट थे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो हिंदू हो गए।
1: अच्छा,
0: तो पूरा कांग्रेस असम में मियां मुसलमान का ही पार्टी है, ना हिंदू लोग उन्हें वोट देते हैं ना हिंदू लोग उन्हें वोट देना पसंद करते हैं।
1: अच्छा, वो तो कुछ और कह रहे हैं हेमंता जी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो आप 19 में से 18 और मुस्लिम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे चुनाव आयोग की 2023 की परिसीमन प्रक्रिया है जिनमें उन सीटों की संख्या घटाकर लगभग 36 से 22 कर दी गई जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक थे। कुछ इलाकों को बांटा गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ सीटों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया गया जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों तक पहुंचने का मौका मिला। आपका जवाब?
0: देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सब बोलने के लिए शर्म आना चाहिए। किस लिए? जो गौरव गोगोई का अपना पार्लियामेंट्री सीट है जोरहाट, परिसीमन का बाद उन्होंने जोरहाट सीट 2026 का लोकसभा में जीते थे एंड उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 सीटों का 9 सीटों में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको लीड मिले थे। लेकिन इस बार गौरव गोगोई खुद भी हारे और सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो गौरव गोगोई 26 में लीड मिले थे, हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जीत हासिल हुए। परिसीमन का बात का यह घटना है, जो परिसीमन का बात 2024 में जो सीटें कांग्रेस ने जीते वो सीट इस बार बीजेपी जीते। तो उसका मीनिंग क्या है। दूसरा, आप थोड़ा वोट परसेंटेज देखिए, हम सीट नहीं जीते हैं, साथ साथ में हमारा एब्सोल्यूट वोट परसेंटेज भी 50 तक पहुंच चुका है। तो ये खाली सीट का काम नहीं है, पॉपुलर वोट भी 50% हुए हैं। ये लोग बोल सकते थे परिश्रमन के लिए हम जीते, अगर हमारा सीट बढ़ते थे वोट नहीं बढ़ते थे। आप अगर आपका अच्छा डेटा टीम है आप देखिए, असम का 2016 में एक 16 में पहले चुनाव हुआ, 16 में विधानसभा हुआ, हमें एक परसेंटेज ऑफ वोट मिला, 21 में हुए हमारे वोट बढ़े, और 2026 हमारे वोट परसेंटेज 50 तक पहुंचे।
1: ठीक है, एक बार फिर से वो डेटा दिखाइएगा जिसकी चर्चा वो तो भी कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर। वोट परसेंटेज 2021 में जब आपकी 60 सीट आई थी
0: हाँ,
1: तो 33% के करीब आपका वोट परसेंटेज था, इस बार 38% सिर्फ बीजेपी का है, लगभग 6.5% असम गण परिषद का है, उसके बाद आपका अलायंस में जो पार्टनर है बीपीएफ उनका 10 सीट है, वहां भी आपको 4% के करीब है, तो मिलाकर हो गया, और कांग्रेस पार्टी 29% पर है, वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एक और, आज ये तो अब जीत आपकी हो ही गई है,
0: हाँ, आप देखिए ये वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं हमारे।
1: ठीक है, अब असल मुद्दे पर आते हैं, घुसपैठ जो सबसे बड़ा मुद्दा बना, और शायद यही वजह है कि असम से लेकर बंगाल तक, और बंगाल में ऐतिहासिक पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है आजादी के बाद, घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा। फिर मुझे याद आ रहा है पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं उनको आता हूं, रखता हूं, खाना वाना खिलाता हूं, भेज देता हूं, इनको कैसे आप बंगाल में, देखिए बंगाल का जो पूरा चिकन नेक है, इधर असम में आपकी सरकार, बिहार में सरकार, लेकिन बंगाल में सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की है, आप लोग कैसे मिलकर घुसपैठ के इस मुद्दे का हल निकालेंगे, या घुसपैठ सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है आपके लिए?
0: देखिए अंजना जी, पहले आपको समझना चाहिए, जब बंगाल में बीजेपी का जीत हुए, मैं परसों दिन से बोल रहा हूं ये बीजेपी का जीत नहीं, ये भारत का जीत है। कारण क्या है, भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, पांच स्टेट इसको शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल, और जो सबसे ज्यादा सीमा है वो पश्चिम बांग्ला में है। नाउ हम लोगों ने फेंसिंग खड़ा किया, मिजोरम में फेंसिंग हुए, मेघालय में फेंसिंग हुए, असम में फेंसिंग हुए, त्रिपुरा में फेंसिंग हुए, लेकिन डीडी ने वेस्ट बंगाल में हमें फेंसिंग बनाने नहीं दी। और सबसे जो बड़ा 800 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो पश्चिम बांग्ला में ही पड़ते हैं। तो हम अगर कोई बांग्लादेशी को पुशबैक करता हूं, या बांग्लादेशी को आने में बीएसएफ रुकवाने के लिए कोशिश करता है, वो लोग तुरंत पश्चिम बांग्ला तक पहुंच जाता है, वहां का बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, वहां से ये लोग भारत और असम बंगाल हमारा तरफ घुस जाते थे। दूसरा, अगर हम कुछ क्रिमिनल का ऊपर एक्शन लेते हो, ये लोग पश्चिम बांग्ला से बांग्लादेश तक चला जाते हैं, 2-3 साल का बाद नया रूप से वो लोग दोबारा भारत आते हैं, और फिर वो लोग भारत में अपना काम शुरू करते हैं। कैटल स्मगलिंग, हमारे जो ड्रग्स का व्यापार हो, कैटल स्मगलिंग हो, काउंटरफिट का जो रैकेट्स हो, ये सारे सीमा का उस पार से क्रिमिनल ऑपरेट करते हैं, और फेंसिंग नहीं होने का कारण हम लोग उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। पश्चिम बंगाल का पुलिस को अगर हम लोग कॉन्टेक्ट करते थे, वो लोग हमेशा बोलते थे कि हमारा पास पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। तो घुसपैठियों को बाहर निकालना पहला, लेकिन पहला काम, सबसे पहला क्या है कि घुसपैठिया और नहीं आए, ये जो बड़ा काम थे ये काम अभी तक हुए नहीं था। मेरा विश्वास है बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ पश्चिम बांग्ला में बांग्ला सरकार बीएसएफ को जमीन देगा, हमारा फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे देश को सुरक्षा का दृष्टि से बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। फिर ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक का दोनों ओर बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठ गया है। एक तो हम चिकन नेक का बात करता हूं 22 किलोमीटर, लेकिन ये 22 किलोमीटर ऐसा 22 किलोमीटर नहीं है, ये पूरा 22 किलोमीटर में बांग्लादेश से आए हुए, कौन सन में आए हैं वो अलग बात है, बांग्लादेश से आए हुए लोग दोनों ओर बैठ चुका है। इसका कारण कभी हम झूठ नहीं साधता हूं और मेरा लगता है बांग्लादेश में फ्रेंडली गवर्नमेंट है, झूठ का योट का कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन हमारे जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक में अगर बांग्लादेशी ओरिजिन लोग बैठे रहे तो देश का सुरक्षा का दृष्टिकोण से तो, वो कितना
1: तो
0: हम शिकार कर सकता हूं।
1: तो क्या कीजिएगा
0: चिकन नेक को दोनों
1: हेमंता जी का, जी वही उसी का जवाब मैं मांग रही हूँ आपसे। आपने कहा था बांग्लादेशी मियाओं की हमने राजनीतिक रूप से हाथ पैर तोड़ दिया है, इस बार सत्ता में आएंगे तो बांग्लादेशी मियाओं की कमर तोड़ देंगे। भाई कैसे
0: नहीं, क्या तो, करेंगे? वो तो मैं असम देखिये, मैं तो असम का कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोले थे। असम का कॉन्टेक्स्ट में तो उनका पैर हमने तोड़ा है पॉलिटिकली, इस बार तो कमर भी तोड़ दूंगा। मतलब क्या है, वही लोग हमारा टेम्पल का जमीन कब्जा करते थे, फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करते थे, हमारा बेटियों का ऊपर लाभ जिहाद जैसा काम करते थे, अब सारे तमाम अपराधी कामों में वो लोग इन्वॉल्व होते थे और पूरा दिसपुर में वो लोगों का कब्जा थे, शासन तंत्र वही लोगों का हाथ में थे। तो लास्ट 5 सालों में मैं ये लोगों का कमर तोड़ा, 50,000 एकड़ जमीन ये लोगों का कब्जा से मैंने मुक्त करवाया है।
1: कांग्रेस पार्टी के आपके दो पसंदीदा नेता, एक तो है गौरव गोगोई जिन पर उन पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरे हैं पवन खेड़ा।
0: हाँ।
1: जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने आपकी पत्नी पर आरोप लगाए हाँ। थे और आपने कहा उनको पेड़ा बना दूंगा, मुकदमा हुआ, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, मुझे फंसाने का प्रयास किया गया था, अब आप आगे क्या करेंगे?
0: जमानत मिलना और केस खत्म होना दो अलग बात है, उसका ऊपर केस चलेगा, उनको नोटिस मिलेगा, वो असम का थाना में आएगा, असम पुलिस इंक्वायरी करेगा कागज कहां से मिला, इसको हम लोग पूछूंगे और केस को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाऊंगा,
1: छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि अब चुनाव खत्म हुआ,
0: जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है
1: कि पूरी करवाहट खत्म, ऐसा नहीं है।
0: ना ना ना ना नहीं नहीं अंजना जी, मैं आपको एक मिनट लेके एक बहुत सीरियस बात बोलता हूं। 2026 का जब पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे, गृहमंत्री अमित शाह जी एक हैदराबाद में स्पीच दिए थे, उनको एआई का जरिए ये लोगों ने तोड़मोड़ किया, डिस्टॉर्ट करके लोगों का सामने प्रस्तुत किया, हमने खंडन किया, लेकिन तब तक हर लोगों का व्हाट्सएप में वो जा चुके थे। इस बार भी चुनाव का पहले मेरा पत्नी का ऊपर गलत सलत एआई से फोटो बनवा के, डुप्लीकेट कागज बनवा के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एग्जैक्टली 3 डेज बिफोर, मतलब हमें क्लारिफिकेशन देने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा जो संदेह है, मैं तो ऐसे मजाक में पवन खेड़ा का बात बोलता हूं, लेकिन आप थोड़ा देर के पवन खेड़ा को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को मेरा लगता है राहुल गांधी का यह नया टूल किट है कि चुनाव का एक दिन पहले एआई का इस्तेमाल करके, 2 दिन पहले एआई का इस्तेमाल करके बीजेपी का ऊपर कुछ सनसनी वाला एलिगेशन लाया जाए या वीडियो रिलीज किया जाए, नहीं तो पवन खेड़ा को यह गलत दस्तावेज का साथ कांग्रेस का ऑफिशियल पार्टी ऑफिस से और ऑफिशियल मीडिया रूम से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूर इजाजत कोई नहीं देते थे। तो पवन खेड़ा इज जस्ट ए प्रेजेंटेटर, यह कागज किसने बनाया कि यह कांग्रेस का साजिश है, पूरा देश में रेप्लिकेट करेगा, आगे यूपी का चुनाव में करेगा, उत्तराखंड में करेगा, तो ये इलेक्टोरल आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये मेरा पत्नी और पवन खेरा का जुट नहीं है। हमारा सार्ज है कि ये टूल किट है टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इलेक्शन, टू इन्फ्लुएंस द हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का, ये एक साजिश थे। तो इसीलिए पवन खेरा का वो दिन मैं गुस्सा में था, पवन खेरा को बोला, लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर पवन खेरा एंड अन जो बाकी लोग एंड आदर्श, मतलब अच्छा। हमें जाना है कि पवन खेरा का पीछे कौन है, क्या एक राज्यसभा में सीट के लिए ही पवन खेरा ये काम किए थे कि इसका आगे भी कुछ और षड्यंत्र है। तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली लेना है और ये इन्वेस्टिगेशन को हमें लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है।
1: ठीक है, अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी ने पोस्ट किया है वोट चोरी से, अभी से 9 घंटे पहले उनका एक पोस्ट है, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार, लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर अगर आप देखें तो हर छठा सांसद चोरी से जीता है, पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें या हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड है, उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं।
0: तो निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है? क्या यहां में कोई आर्मी ने वोटिंग करवाया है? क्या कोई यहां में कोई लोगों ने आपको बताया है कि आसाम का लोगों ने आपको बताया है कि इस चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुआ है? राहुल गांधी तो ओमान में है, उनको कैसे मालूम हुआ असम में चुनाव कैसे
1: हुआ? आपको कैसे पता चल गया वो ओमान में है?
0: अगर असम में चुनाव निष्पक्ष, वो तो सोशल मीडिया में पूरा पब्लिसिटी है, कैप लगा के घूम रहा है उधर, यहां कांग्रेस हारा है वहां वो लाइफ एंजॉय कर रहे। अच्छा आप मुझे बताइए, एक समय केरला का चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुए, असम का चुनाव हुए, असम एंड बांग्ला का चुनाव सूरी हुए और केरला का चुनाव निष्पक्ष हुए। असम और बंगाल का ईवीएम गलत है, केरला का ईवीएम सही है। असम और बांग्ला में सूरी हुए, तमिलनाडु और केरला में कुछ नहीं हुए। तो ये या तो एक क्रिमिनल बोल सकता है, नहीं तो एक पागल बोल सकता है, नहीं तो जो भारत का दुश्मन है वही लोग ऐसा बोल सकता है दुनिया में हमारा प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए।
1: ममता बनर्जी ने अपने आप
0: अभी मुझे बताइए, इंडिया टुडे का गलत है, आज तक का रेग है।
1: अच्छा,
0: तो आप लोग का एक ही चैनल है, इंडिया टुडे गलत है, आज तक अच्छा है, ये हो सकता है क्या? अगर गलत है, पिक्सर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो दोनों टीवी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन एक ही चैनल एक ही कार्यालय, तो एक में हमको अच्छा नहीं देख रहा हूं, दूसरा में हमें अच्छा देख रहा हूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो राहुल गांधी अगर अच्छा राजनेता होते थे वो बोलते थे असम और बंगाल का चुनाव गलत है और केरला का चुनाव भी गलत है, पूरा पासु प्रदेश का चुनाव गलत है, बट आप क्यों हमें ह्यूमिलेट करते हो? असम का साथ आपका दुश्मनी क्या है? केरला अच्छा है, असम खराब है, तमिलनाडु अच्छा है, असम खराब है, आप इसी का कारण असम का लोग आपको यह ट्रीटमेंट दिया है।
1: ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं, आप पर फोकस करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आप कांग्रेस से साल 2015 में आए, जिसका मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, साल 2011 में जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो उसकी 5 सीटें आई थी, वहां से लेकर 82 सीटों का यह सफर है, इस बार आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अब चर्चा हो रही है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, इधर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा असम के एक बड़े ताकतवर बीजेपी नेता बन रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में असम के बाहर भी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडरशिप की लिस्ट में भी आपकी ताकत बढ़ेगी?
0: देखिए अंजना जी, एक थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है। असम में जो हम लोग कर रहा हूं ये हमारे लिए जीने और मरने का लड़ाई है। वी आर फाइटिंग ए बैटल इन असम अगेंस्ट बांग्लादेशी घुसपैठिया एंड टू सिक्योर असमिस आइडेंटिटी। मेरा जीवन ही, जब मैं क्लास फाइव में थे तब मैं असम एजिटेशन में शामिल हुए थे 1979। मेरा जीवन ही असम को सुरक्षित करने के लिए समर्पित है। तो मेरा पॉलिटिकली दिल्ली जाना, नेशनल लीडरशिप होना, ये एक अलग ट्रेजेक्टरी है। लेकिन मेरा जो काम है ये असम को सुरक्षित करने का काम है। इसीलिए हमारे लिए जो हम लोग जो राजनीति कर रहा हूं ये राजनीति हमारे लिए जीने और मरने का है। बाकी एक पॉलिटिकल सब लोगों का ऊपर जाते हैं, अच्छा पोजीशन लेते हैं, लेना भी चाहिए, अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो हमारा जो पीढ़ी असम में राजनीति कर रहा हूं, हम लोगों के लिए असम का सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी हमारा पार्टी का अपना अंदाज है, काम करने का अपना तरीका है। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो निर्णय होगा वो निर्णय होते रहेगा, लेकिन हमारे लिए पॉलिटिक्स इज नॉट ए पॉलिटिक्स लाइक व्हाट वी डू इन द ऑर्डिनरी लेवल। हमारे लिए पॉलिटिक्स है असम को सुरक्षित करने का एक लाइफ लॉन्ग मिशन है, लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है।
1: कई लोग ये भी मानते हैं कि महिलाओं का आपको इसलिए वोट मिला है, इस पर जरा आती हूं, क्योंकि स्कीम्स पर बड़ी चर्चा होती रही है। हालांकि इस चुनाव ने डिफाई कर दिया, 1500 रुपया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी देती थी और अनुसूचित जाति के लोगों, मतलब दलितों को वो 1700 महिलाओं को देती थी, लेकिन वो हार गई। आपने भी बहुत वहां पर पैसा दिया और एक साथ आपने बीहू बोनस ज्वाइन करके, जितना मुझे याद आ रहा है, 8000 या 9000 दिया था आपने, क्या उसकी भी भूमिका रही आपको चुनाव?
0: 9000
1: क्या उसकी भी भूमिका रही आपको चुनाव जिताने?
0: देखिए देखिए मैं आपको एक ही बोलता हूं कि जरूर आप जब माताओं को कुछ मदद करते हैं, माताओं का एक ग्रेटिट्यूड वाला एक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हमारा असम में जो हम ये सारे स्कीम करता हूं इसका कोहोर्ट बहुत छोटे है। 9000 रुपया दिया लेकिन कितना माताओं की दिया? 1.5 करोड़ या 3 करोड़ पॉपुलेशन का अगेंस्ट में वी गेव इट टू ओनली 35 लाख। हमारा कोहोर्ट बहुत छोटा है। उल्टा जो लोग नहीं मिले वो लोग नाराज होने का संभावना ज्यादा थे। इसलिए हमने कभी, जैसे वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार, इट इज ए जनरल यूनिवर्सल स्कीम है। झारखंड में माइया यूनिवर्सल स्कीम है। बंगाल में, महाराष्ट्र में लाडली बहना यूनिवर्सल स्कीम है। असम में ये यूनिवर्सल स्कीम नहीं है। बहुत ही छोटे कहूत में हम लोगों ने कुछ करने का काम किया। जहां आप बोलते हैं हम इकट्ठा क्यों दिया, कारण बिहू का समय और एक सरकार आने में, नया बजट होने तक वोट ऑन अकाउंट से यह पैसा नहीं ला जा सकते थे। और असम में लोग बिहू में अगर नहीं मिलते थे तो ये गरीब को उधार लेने पड़ते थे, तो इसीलिए हमने ये किया। और इस बार नहीं किया, हर साल ये हम करता हूं, हमने कोई नया काम नहीं किया हूं। हमारे जो स्कीम 2019 से सलाह हुए थे उसी को हमने आगे बढ़ाते रहा।
1: अच्छा, आप मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, क्योंकि आप आपके बड़े सारे वीडियो पूरा कर लीजिए।
0: हाँ, ये जो 2021 का चुनाव में भी ये सारे स्कीम थे, बट वी लॉस्ट मेनी सीट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ठीक है, थोड़ा मदद मिलते हैं, लेकिन यही एक एब्सोल्यूट रीजन नहीं हो सकता है। अगर गांव का रोड खराब है तो 1000 रुपया पॉकेट में जाने से गांव का अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर मेडिसिन नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आई थिंक दिस ओनली कैश ट्रांसफर इज नॉट द अल्टीमेट मेडिसिन कि आप इसी से चुनाव जीत जाएगा।
1: बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ कि महिलाओं को ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पैसे की वजह से वो वोट दे देंगी किसी पार्टी को। लेकिन हेमंत बिस्वा सरमा जी, इस जनादेश ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली है। असम में जिस सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं भी वहां लोगों से मिली, उन्हें बहुत उम्मीदें हैं आपसे और वो चाहते हैं कि आप हर घर में किसी ना किसी तरीके से परिवर्तन लाए, हर आदमी को किसी ना किसी तरीके से आपका काम छुए। अब ऑन अ लाइटर नोट, चूंकि इस इंटरव्यू के अंतिम हिस्से में मैं आ रही हूं, तो दो तीन हल्के फुल्के प्रश्न मैं करना चाह रही थी। आपके एक्सपीरियंसेस मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि बड़े सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई आपसे आपके स्किन के बारे में पूछता है, कोई आपसे आपके रूटीन के बारे में पूछ रहा है, महिलाएं बच्चियां सब आपसे इंटरैक्ट कर रही हैं, तो आप उनसे उनको क्या कहते हैं? कुछ अगर चुनाव के वक्त प्रचार के दौरान के आपका अनुभव रहे तो बताइए हमारे दर्शकों को, जो दिलचस्प वाले हो वही।
0: तो मेरा आपको मैं इतना ही एक्सपीरियंस बताऊंगा। असम में मैं जब भी चुनाव में जाता हूं या सभा में जाता हूं, 80 ईयर्स का ग्रैंड मदर से लेकर 16 साल तक जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, सभी लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मतलब इन ए पॉजिटिव सेंस, हमें सुम्मा भी दे देते हैं और पूरा नाखून से पकड़ के मेरा खून भी निकाल देते हैं। तो मेरा आशीर्वाद यात्रा किया, हर दिन कम से कम मेरा नाखून से काटने का कारण हर दिन मेरा 40 या 50 इंजरी होते थे। हमें टिटेनस ऑक्साइड से लेकर गमसा से उसको कवर करने तक बहुत सारे हम लोगों ने फेस किया। और ये एक बहुत ही प्यार मोहब्बत, एक बहुत भी किसी ने मुझे अपना भाई, किसी ने मुझको बेटा, उसी लेवल में हम लोग ने मिलके चुनाव को संभाला। अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ है, वाइफ मुझे बोल देते आई लव यू, मैं भी उनको बोल देता हूँ आई लव यू, तब हस्बैंड भी मुझको बोलते हैं आई ऑल्सो लव यू। तो ऐसा हम लोगों ने असम में एक परिवार जैसा माहौल मिले। दूसरा, हमने देखा इस चुनाव में, अब बहुत सीरियस बात बोलते हैं, कोई लोग समझते हैं, कोई लोग नहीं समझते हैं, लेकिन एक अच्छा अगर आपका पास थीम सॉन्ग होते हैं, सारा स्कीम सारा बातें आप जो बोलना चाहते हैं ये समाहित हो जाते हैं, उसी गान को आप अगर गाते हैं, नाचते हैं, लोगों में जबरदस्त मैसेज जाते हैं। असम में गाने हैं, मैं असमीस में बोलता हूं फिर मैं हिंदी बोलता हूं, आको एबार मोदी सरकार, और एक बार मोदी सरकार, ये जो गाना है ये गाना असम का हिस्ट्री में सबसे हिट सॉन्ग है। किसलिए ये गाना असम का हर परिवार, हर माता, हर पिता, हर बेटा, हर बेटी जानते हैं, और इस गान अगर कहीं भी बजा दिया जाता है लोग नाचना शुरू कर देते हैं। किसलिए ये गान में ये जो पर्टिकुलर एक गाना प्रस्तुत किया गया उसमें पूरा बीजेपी का मैसेज है, डेवलपमेंट का बात है। अगर मीटिंग में मैं भाषण भी ना दो, खाली ये गाना को बजा के हम लोग नाचते हूं, मेरा मीटिंग कंप्लीट हो जाते हैं। मैं कोई सारा मीटिंग में स्पीच नहीं दिया, खाली 3 बार ये गाना को बजा के हम लोग ने नाचे और मैं फिर सल वहां पास आ गया। समय का काम था, फटाफट 15 मिनट्स में मेरा मीटिंग ओवर भी हो जाते थे। ये गाना इतना स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होते हैं। मेरा ये 25 साल, ये 13 मई मेरा राजनीति का 25 साल होगा, मतलब एमएलए बनते हुए 2001 में मैं पहला बार एमएलए बना था, 13 मई मेरा 25 साल होगा। मैंने ऑबलेट मैंने मेरा एक असम का कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक इनोवेशन है कि चुनाव सभा में बहुत ज्यादा सीरियस बात आप ना बोले, नाच के गान के गा के वेरी लाइटर
1: हेमंता जी वो वीडियो है, थोड़ा सा सुना देते हैं हेमंता जी, बिल्कुल लोगों, एक सेकंड सुनिए ना, आप ही का गाना है, सुनाइए। हाँ।

0: का मंत्र भी जनता ने सुना और जो आपने पहले किया है वो भी देखा है, जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी।
1: अंजना जी मैं एक मिनट लेता हूँ,
0: जल्दी से
1: अंजना जी मैं एक मिनट लेता हूँ
0: जी,
1: एक सेकंड। आपने ये गान का सुने, इसमें हमने क्या बोला कि मोदी जी ने स्किल इंडिया किया, भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, असम में ब्रह्मपुत्र का ऊपर 3 पुल बनाया, सारे डेवलपमेंट का बात हम एक गीत का जरिए, गान का जरिए हमने जनता का पास लेके गया और अब जनता का उत्साह आपने खुद भी देख रहा है।
0: जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसी बात पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत बिस्वा सरमा जी, और एक बार फिर से बधाई।
1: धन्यवाद अंजना जी।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: आप मेरे लिए स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे?
6: That's right.
5: 50 शेयर्स खरीदूं या 5,000? ब्रोकरेज इज
7: जस्ट 20 रुपीज।
5: आपके आसमान से टपक पड़े?
7: स्काई से, HDFC Sky. All-in-one investment app.
8: Fixed brokerage on stocks and F&O. HDFC Sky. Download today. Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रो फाइबर है।
17: माइक्रो फाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
17: हमारे सीमेंट में नहीं है,
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
20: The taste of success.
21: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
22: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: विमल बोलो जुबा केसरी,
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
5: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
6: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बंगाल में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं, बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मथुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदिराम टूडू और निश्चित प्रमाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया और उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं। पीएम मोदी के सम्मान को बीजेपी सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रही है। दरअसल उत्तर बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इसी इलाके से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ऐसे में माखनलाल सरकार को मंच से सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया बल्कि उत्तर बंगाल को भी सीधा राजनीतिक संदेश दे दिया। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार वही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ पीयूष मिश्रा, कोलकाता आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

से दुर्गम किले पर लहराया केसरी ध्वज, शुभेंदु ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ, पीएम मोदी ने लगाया गले, सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया, बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने किया दंडवत। शुभेंदु के साथ दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल समेत पांच मंत्रियों ने ली शपथ, गंगोत्री से गंगा सागर तक जश्न का साक्षी बनी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। मंच पर मौजूद रहे एनडीए के सभी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर लिया बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग सिपाही का आशीर्वाद, 98 साल के माखनलाल सरकार के छुए पांव, दृश्य देखकर भावुक हुआ कोलकाता का ऐतिहासिक सैलाब। बहुमत के भंवर में फिर फंसे एक्टर विजय, तमिलनाडु का सीएम बनने की राह पर 118 का स्पीड ब्रेकर, दो सीटों वाली वीसी के थोड़ी देर में लेगी समर्थन का फैसला, कांग्रेस के पांच एमएलए बेंगलुरु शिफ्ट।

जंग की चिंगारी भड़कने लगी है क्योंकि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को जख्मी करना शुरू कर दिया। रणभूमि स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में खटपट लगातार इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि नए महायुद्ध की तैयारियां चल रही है। वजह का खुलासा भी हम इस बुलेटिन में आपके सामने करेंगे। और रणभूमि स्पेशल में हमारी तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि ईरान की सैन्य रणनीति में सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खमनेई का पूरी तरीके से कमांड संभाल चुके हैं। रणनीति से लेकर वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उनके हाथ में पूरी तरीके से आ चुकी है। रणभूमि स्पेशल में एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो रशिया से आ रही है। मॉस्को में रूस ने अपनी ताकत दिखाते हुए विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने दुनिया के सामने एक बार फिर से अपनी सैन्य क्षमता और अपने शौर्य का परिचय दिया। रणभूमि स्पेशल में आखिरी बड़ी खबर होगी, चीन ने आखिरकार ये मान ही लिया है कि एक साल पहले भारत के ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान को लगातार तकनीकी रूप से मदद कर रहा था, इसका भी खुलासा करेंगे। और आज हमारे साथ रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर होंगे और विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े होंगे। तो रणभूमि स्पेशल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर, जहां डील अगर सील हो गई तो जंग छिड़नी लगभग तय मानी जा रही है, यानी अगर डील नहीं बनी तो फिर एक और महायुद्ध होगा। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है जिसकी आज आने की उम्मीद है। देर रात तक ईरान का जवाब आ सकता है, लेकिन यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे के स्टैंड पर दोनों अड़े हुए हैं, यानी अब युद्ध होगा या सहमति, यह आज रात के बाद ही तय होगा।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा।
1: And blow them up a little bit because you're not going to have enough. And then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin.
0: इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं।

0: यूरेनियम के अलावा होर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: तो आपने देखा कि सहमति अब भी दोनों के बीच में उन्हीं दो मुद्दों को लेकर नहीं बन पाई है जिसको लेकर इन ऑपरेशन एंड जंग की शुरुआत हुई थी। अब आपको पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच में युद्ध को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, यह अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं 10 बड़े अपडेट कौन कौन से है जो टॉप वॉर अपडेट आपके सामने है। हॉर्मुज में बड़ा है टकराव आपने सामने अमेरिका और ईरान। दरअसल ऐसा लग रहा था कि 30 दिन के बाद शायद शांति धीरे धीरे आनी स्थापित होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। महीनों तक नौसैनिक गतिरोध बन सकता है। ईरान और यूएस खुफिया रिपोर्ट के दरअसल ये माना जा रहा है कि ये गतिरोध कुछ एक दो हफ्ते नहीं, ये लंबे समय तक चलने वाला गतिरोध बन सकता है। तीसरा बड़ा अपडेट, यूएई ने ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, यानी यूएई में भी ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए। अब तक इन देशों पर हमला करने से ईरान बच रहा था और ये कह रहा था कि सिर्फ हमारे हमले अमेरिकी बेसिस पर है। चौथा बड़ा अपडेट क्या है, हॉर्मुज में ईरान के दो तेल टैंकरों पर भी अमेरिकी हमले किए गए हैं। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका जो है वो ईरान के टैंकर्स पर अटैक कर रहा है। अब चौथा नहीं पांचवा बड़ा अपडेट क्या है, ट्रंप के प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का इंतजार है। आज रात ये जवाब आ सकता है और माना जा रहा है कि इसी जवाब के बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार क्या है आगे की रणनीति, कैसे आगे दोनों बातचीत के लिए बढ़ सकते हैं। अब छठा अपडेट क्या है, वो है ईरान की सैन्य मदद करने वाले देशों के खिलाफ एक्शन ले सकता है अमेरिका, यानी वो देश कौन से हैं, वो चीन है, वो लगातार रूस है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस समय चीन को लेकर अमेरिका का। अब सातवां बड़ा अपडेट क्या है, ईरान की सैन्य रणनीति में मुस्तफा खामनेई का पूरा कंट्रोल हो चुका है। दरअसल माना जा रहा था कि वो घायल है और उसके बाद उनका कंट्रोल इस तरीके का नहीं है, लेकिन अब रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा आ रही है कि पूरा कंट्रोल इस समय नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का है। बार बार अमेरिका समझौते में अटक रहा है और रोड़ा बना रहा है, ये ईरान का दावा। ईरान ने कह रहा है कि देखिए हम तो तैयार हैं, लेकिन अमेरिका अपनी स्ट्रेटजीज को अपनी रीइंफोर्समेंट को पीछे हटाए, शायद वही सबसे बड़ा बैरिकेड है। लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल ने बमबारी करनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि साउथ लेबनन के अलावा बेरूत के आसपास के इलाकों में भी इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है और लगातार इसराइल ने सीज फायर एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया है। 14 और 15 मई को इसराइल लेबनन में फिर से वार्ता होनी है, लेकिन ये वार्ता इसराइल और लेबनन में होनी है। हिजबुल्ला को लेकर अब भी इसराइल ने अपना रुख वही रखा हुआ, यानी अब आपको बताएं कि कैसे लगातार इन 10 बड़े अपडेट के साथ आप समझ सकते हैं कि गतिरोध या डेडलॉक इसी तरीके का बचा हुआ है। अब एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट आपको बता दे जो फारस की खाड़ी से मिल रहा है। दरअसल खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज में ईरान ने अपनी छोटी और तेज नावों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें लगातार सामने आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि 100 से ज्यादा ऐसी छोटी बोट्स को एक बार फिर से ईरान ने इलाके में तैनात किया। अमेरिका की नाकेबंदी और ईरानी जहाजों पर उसके हमलों को देखते हुए IRGC ने फैसला लिया है। और चलिए आपको एक बार फिर से बड़ी वॉल पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से, देखिए ये बहुत कम विजिबल है। दरअसल अगर आप देखें ये जो एरो हमने लगाया हुआ है और ये आपको सर्कल करके दिखा रहे हैं, ये छोटी छोटी जो आप चीजें देख रहे हैं ये है दरअसल लगातार वो बोट्स जो सैटेलाइट तस्वीरों की तरफ से आपको नजर आएगी। और ये बोट्स लगातार छोटे छोटे यानी 5-5, 7-7 के ग्रुप में लगातार आगे बढ़ रही है और फारस की खाड़ी के इन इलाकों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में ये पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और ये इसलिए क्योंकि पहले माना जा रहा था कि इनकी संख्या महज 40 से 50 है, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों में जो तस्वीरें सामने आई उसमें इनकी संख्या करीबन 100 से ज्यादा बताई जा रही है। यानी आप मानिए कि ईरान अब छोटी छोटी बोट्स अपनी माइंस और कहा जाता है कि अंडर वाटर ड्रोन जो ईरान के पास मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कर अब इस इलाके में अपनी मुस्तैदी बढ़ा रहा है। ईरान का फोकस बहुत क्लियर है कि वो इसी तरीके से अपने कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करता रहेगा। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें खाड़ी क्षेत्र से, जहां पर लगातार ये खबर आ रही है कि ईरान ने अभी अमेरिका के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज रात तक ईरान की तरफ से कोई जवाब आ सकता है। अमेरिकी मीडिया यानी ABC नेटवर्क के मुताबिक वॉशिंगटन को ईरान के जवाब का इंतजार है, क्योंकि उसी के बाद कोई कार्रवाई कोई फैसला लिया जाएगा, कोई आगे स्ट्रेटजीज पे चला जाएगा। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान को तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपने ये खबरें देखी, लेकिन अब आपको सीधे ईरान लिए चलते हैं जहां पर आज तक की संवाददाता गीता मोहन इस समय मौजूद है। गीता मोहन ने तेहरान में उस म्यूजियम सेंटर का भी मुआयना किया जिसे अमेरिका और इसराइल ने अपनी बमबारी में तबाह कर दिया था। गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
2: फिरोजी स्ट्रीट के इस इलाके में है जहां पर आपको नजर आएगा कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहां पे एक जलाल बिल्डिंग था जो 23 मार्च में को अटैक, जिस पर अटैक कर दिया गया, अमेरिकी इजरायली अटैक्स थे। ये एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था जिसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। वजह क्या है, ये आज तक यहाँ जो उसको ओन करते हैं म्यूजिक टीचर हामिद, वो नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि ना कोई टारगेटेड किलिंग हुआ इस अटैक से, आसपास बस लोग रहते हैं और ये एक इंस्टीट्यूट था जो बिल्कुल खाली था। सारे जो इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे सब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक ऐसा कपल हामिद और उनकी बीवी जिन्होंने एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट शुरू किया फारसी कल्चर, फारसी म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए, उसको ध्वस्त कर दिया गया और आज वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के यहाँ पर खड़े थे। आज वो सोच रहे हैं कि वो फिर से कैसे अपनी जिंदगी शुरू करे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।
1: गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल कहते हैं कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है। गीता मोहन ने दिखाया कि कैसे अमेरिका और इसराइल की इस वॉर के अंदर, स्ट्राइक्स के अंदर, वहां के कल्चर सेंटर, उनके म्यूजियम, उनके कई अस्पतालों को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है। अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर यह दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपनी ताकत के तौर पर ईरान ने अब दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कब्जा है और ईरान के लोगों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझाई जा रही है। गीता मोहन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: मैसेजिंग की बात करें तो हमने आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिखाई बड़े से पोस्टर में। इस स्क्वायर में अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दर्शाया गया है और एक बहुत बड़ा जाल जिसमें अमेरिकन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग्ड एयरक्राफ्ट, अमेरिकन फ्लैग्ड शिप्स आपको दिख रहे हैं। मैसेज केवल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की कोशिश करेंगे या यहाँ वहां पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे तो जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उनका हाल यही होगा, उस बड़े से जाल में फंस जाएंगे। चाहे ये पोस्टर हो, चाहे ये जो म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर वो हो, या फिर वहां पे जो लड़कियां हैं जो बहुत बड़े ईरानियन फ्लैग को लहरा रहे हैं, मैसेज केवल एक है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने देश को किसी और देश की वजह से यहाँ से ना छोड़ेंगे, ना उसकी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज होने देंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।
1: गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ये तेहरान से देख रहे थे। दरअसल ईरान एक मैसेजेस दे रहा है लगातार दुनिया भर को कि देखिए इस युद्ध के अंदर आखिरकार विजेता वही साबित हुआ। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे जुड़े हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर है और हमारे साथ रविंदर सचदेव सर भी है। सबसे पहले संजय सोई सर, गीता मोहन की रिपोर्ट हमने दिखाई, लगातार अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और न्यूक्लियर यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ही पेश फंसा हुआ है और एक बार फिर से 40 दिन की वॉर के बाद और 30 दिन के सीज फायर के बाद ऐसा लग रहा है कि ढाक के तीन पात यानी वहीं आकर ईरान और अमेरिका खड़े हुए हैं जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी।
3: बिल्कुल सुमित जी, ऐसा है कि देखा जाए इस समय में सीज फायर चल रहा है और झड़पें भी चल रही है साथ साथ में। पिछले तीन चार दिन से हमने देखा है, 4 तारीख के बाद से काफी आपस में झड़प हो रही है। यूएई के ऊपर भी बम्बार्डमेंट हो रहे हैं कि आपस में भी बमबारी हो रही है, ईरान के ऊपर भी यूएस ने काफी बड़े हमले किए हैं तो देखते हुए, लेकिन अभी भी जो डिक्लेयर्ड है वो सीज फायर है। यानी कि अभी भी कोशिश ये है कि किसी प्रकार से इस चीज से आगे निकल जाए। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो एक शुरू से मैं भी ये कहता आ रहा हूँ, आपके चैनल पे भी ये दिखाएगा कई बार, कि भरोसे की कमी अभी मैं अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात कही जाए कि पार्शल हॉर्मूज को खोल दिया जाए, हॉर्मूज को कुछ खोला जाए और अमेरिका भी ब्लॉकेट हटाए तो एक पॉजिटिव बिगनिंग बन जाती है, एक शुरुआत हो जाती है जिसके कारण दुनिया भी राहत की सांस लेगी और अगली बातें छोटी छोटी बातें कि न्यूक्लियर के ऊपर बात चल रही है, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बातचीत चल रही है, सैंक्शन हटाने के ऊपर बातचीत चल रही है, दोनों तरफ की कुछ कुछ मांगों के ऊपर बातचीत, तो बातचीत चलती रहेंगी, 3 महीने 6 महीने चलेंगी बातें, लेकिन एक सीज फायर बना रहेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलने से थोड़ा सा लोगों के अंदर काफी राहत आएगी, लेकिन ईरान क्या चाह रहा है, ईरान की यही एक नस पकड़ी हुई है, कह रहे जैसे आपकी गीता मोहन जी दिखाती कि जाल में और उसे जो निकलने की कोशिश करेगा उसको वो फंस जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी उन्होंने न्यूक्लियर हथियार या एक उन्होंने सबसे बड़ा हथियार जो है उनके पास यही है, क्योंकि वो और कोई मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास इतनी एयरफोर्स नेवी आर्मी नहीं है कि वो कड़ा मुकाबला कर सके। वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर सकते हैं, गुरिल्ला युद्ध कर सकते हैं, जैसे अभी आपने दिखा है कितनी स्पीड बोट्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं कि वहां पे कुछ छोटे छोटे बोट है मतलब शिप का लिए एक न्यू स्वर्म अटैक कर देंगे, पता चला 50 बोट एक साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आ गई, तो साथ में उनके पास एक्टिव शिप मिसाइल्स हैं, उनके पास माइंस हैं, टॉरपीडोज़
1: हैं। सर ये सारी बातें तो पिछले 40 दिन के उस युद्ध के अंदर और 30 दिन के करीबन सीज फायर के अंदर, यानी करीब करीब अगर आप माने 70 दिन हो चुके हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि देखिए परिस्थितियां तो वैसी की वैसी। हमारे साथ रविंदर सचदेव सर भी है। रविंदर सचदेव सर, अमेरिका को इंतजार है ईरान के इंतजार फैसले का, उसके जवाब का, आज रात तक वो जवाब दिया जाना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर या यूरेनियम को लेकर ईरान को ऐसा जवाब दे देगा जो 360 डिग्री का टर्न होगा, या ईरान दोबारा से वही के वही चीजों को परिस्थितियों को खड़ा कर देगा कि हम इन दोनों चीजों के ऊपर नहीं मानते, आपको जो करना है आप करिए?
4: नहीं, 360 डिग्री टर्न दोनों पर नहीं होगा। देखिए पहले तो जब वॉर शुरू हुई तो मामला तो केवल यूरेनियम का था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है ट्रंप को चाहिए था वो प्राइस, कि वो यूरेनियम ड्रम्स में हो बड़े बड़े तेहरान एयरपोर्ट पे और अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन उन ड्रम्स को लेके उड़ जाए तो मैं कहूं देखो मैंने ईरान से उसका एनरिच्ड यूरेनियम निकाल दिया। ट्रंप को वो प्राइस चाहिए, ईरान वो प्राइस दे नहीं सकता जितनी लंबी ये जंग चल रही, क्योंकि मामला अब ईरान की सॉवरेनिटी का हो गया है टोटल, राइट? तो वो नहीं होगा, तो कोई और बीच का रास्ता बनेगा यूरेनियम को लेके कि ईरान के अंदर ही डायल्यूट हो इत्यादि। तो पहले तो वो था, कॉम्प्लिकेशन जो और हो गई इस जंग में, एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया जो आप भी कह रहे हैं, संजय सोई जनरल भी कह रहे हैं और सब समझते भी है। इस जंग से पहले हॉर्मूज नामक कोई जीव जंतु कोई इशू थी ही नहीं, ये तो इस जंग में पैदा हुआ है सुपर वेपन, और ये सुपर वेपन जो पैदा हुआ ईरान ने इस्तेमाल करा, अमेरिका की पूरी फायर पावर, इसराइल की पूरी फायर पावर बम, अमेरिका के पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इकोनॉमिक बॉम्ब, इन सब से ये सुपर वेपन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो एक तरह से कहे ना मिलिट्री में बैटल टेस्टेड हो गया है सुपर वेपन। इसको ईरान अब कभी गिव अप नहीं करेगा, इसको इनफैक्ट मैं नाम दे रहा हूं, जैसे आप जाल दिखा रहे थे, मैं इसको कह रहा हूं कि एक नया वेपन बना है हॉर्मूजी पंजा, राइट? अ क्लॉ है। तो अब जो भी होगा हॉर्मूज को लेकर के, हाँ हो सकता है बाकी चीज में ईरान कहे आप ब्लॉकेट हटाओ मैं भी हॉर्मूज का ब्लॉकेट हटाता हूं, परंतु शिप्स जाएंगी यहां पर ऐसे जाएंगी, और अगर किसी ने मिसबिहेव किया मैं फिर से बंद कर दूंगा।
1: सर संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। संजय सोई सर देखिए आप, अमेरिका निकला तो इस चीज को लेकर था कि देखिए मैं यूरेनियम को अपने कैप्चर में ले लूंगा, ईरान की मिसाइलें तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे सबसे ज्यादा बड़ा मसला जैसा रविंद्र सचदेव भी बता रहे थे कि देखिए आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खड़ा कर दिया, आज के टाइम में वो ट्राई एंड टेस्टेड ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है, यानी अगर ये परिस्थितियां ठीक भी हो जाती हैं तो ईरान की मनमानी अगर चलेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कभी बंद कर देगा। तो क्या अमेरिका के लिए चुनौती या चिंता इस समय ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने पैदा कर दी है?
3: नहीं बिल्कुल सुमित, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इन्होंने शुरू किया था रिजिम चेंज, न्यूक्लियर और मिसाइल, वो छोड़ के इस समय में सबसे बड़ा जो मुसीबत आगे वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोले, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर है, मध्यपुर का भी प्रेशर है, गल्फ कंट्री भी चाहते हैं, क्योंकि उनका तेल भी नहीं बिक पा रहा है, अगर उनका तेल नहीं बिकेगा उनकी इकोनॉमी इसी तेल पे चल रही है, वहां पे हड़कंप मचा हुआ है, साथ साथ उनका राशन पानी भी वहीं से होके आना है, उनका भी सर्वाइवल है। तो देखा जाए तो दोनों ही बायर और सेलर दोनों का प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है, साथ साथ अमेरिका की अपनी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, उनके यहाँ तेल की गैस की कीमतें बढ़ गई है, वहां पर विरोध शुरू हो गया। तो अमेरिका के सामने एक तरफ वो कह रहे हैं हमने इनकी मिलिट्री और नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, जो बात सच है, काफी हद तक उन्होंने नुकसान बहुत किया।
1: बिल्कुल सर, देखिए बात तो यही कही जा रही है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने इनकी मिलिट्री को खत्म कर दिया, रिजिम को खत्म कर दिया, लेकिन जब ये सारे दावे अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका इतना ज्यादा बेबस नजर आता है कि दुनिया देखती है कि अमेरिका शायद उस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत ही नहीं कर पा रहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज रणभूमि में इतना ही, और हमने आपको बताया कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर इस युद्ध क्षेत्र को लेकर तमाम बड़े अपडेट हम आप तक पहुंचा रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिरकार कैसे एक बार फिर से महायुद्ध की आशंकाएं प्रबल होती जा रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Sokudo.
1: आप सब मेरे लिए काम करेंगे?
10: करेक्ट।
1: रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, वो भी फ्री में?
11: करेक्ट।
1: आप क्या आसमान से टपक पड़े?
10: स्काई से, HDFC Sky, ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट ऐप।
12: डाउनलोड टुडे HDFC Sky. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
17: जेके वॉल मैक्स।
18: बेस्ट पेंट
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
16: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
16: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
21: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
22: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें। 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
23: एक बजे अचानक अपने बॉस को कौन मैसेज करता है? नहीं करता है ना। अगर करेगा भी तो एक आध दो मिनट बात करके रख देगा ना।
24: वैसे भी तो कुछ फूट रहा था।
25: कुछ भी नहीं फूट रहा था।
26: छुपा के रखा है वो बच्चे को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एंड देट वुड बी इलीगल।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Your Saturday nights will never be the same.
6: The biggest hits back to back in the mix.
7: Get ready for the biggest mix show on the planet.
8: The Tailgate Block Party.
5: The Tailgate Block Party.
7: 6 hours non-stop. Non-stop.
8: The best DJs from around the world.
5: The Tailgate Block Party.
7: Saturday night.
5: 8 p.m. Eastern.
8: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
7: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: नमस्कार, मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ के बाद से अब तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी हलचल है। तमिलनाडु में बहुमत के भंवर में विजय फंसे हुए हैं, तो केरल में नई सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है, तो वहीं यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर आज शाम को योगी राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। खबर यह भी है कि कल यूपी में कैबिनेट का विस्तार होगा, और इन तीनों ही खबरों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, कई सारे चेहरों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जातीय समीकरण को साधने का प्रयास भी बताया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में रहेगा। तो सबसे पहले बात हम उत्तर प्रदेश की ही करेंगे, जहां पर अब कल कैबिनेट का, योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल शाम को योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर योगी आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा जाट चेहरा है, मनोज पांडे ब्राह्मणों की नाराजगी के बीच में, इनको मौका दिया जा सकता है। पूजा पाल मंत्री बन सकती है। कुछ और भी नाम चल रहे हैं, मसलन रामनाथन कुशवाहा, कृष्णा पासवान, ये नाम जो चल रहे हैं, पद्मसेन, आशीष कुमार आशु। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस समय 6 पद रिक्त भी हैं और उन 6 पदों को भरा जा सकता है कल, और 6 नए मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम काफी ऊपर बताया जा रहा है, इसके साथ साथ पूजा पाल का नाम चल रहा है। ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में रखने के लिए, दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए कृष्णा पासवान का भी नाम चल रहा है। संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संतोष, कल कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और हो रहा है, किस किस के नाम की चर्चा चल रही है, क्या समीकरण बिठाने का प्रयास हो रहा है इस बार?
10: देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अब बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2027 एक दूसरा सबसे बड़ा किला है, और इसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। और चर्चा है, जो जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज से, कि मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नाम पर चर्चा होनी है, जिसमें एक नाम बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का है, समाजवादी पार्टी से बागी होकर आए मनोज पांडे और पूजा पाल है। पूजा पाल के अलावा जो 6 नाम है, कुल मिलाकर के 6 नाम है, उसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के स्तर के मंत्री को कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा, उनका प्रमोशन होगा। तो इस तरीके से पूरा 6 नामों के साथ साथ एक पूरा जातिगत समीकरण ठीक करने की कोशिश होगी। पूजा पाल है, उनके नाम की भी चर्चा, कृष्णा पासवान के नाम की चर्चा, मनोज पांडे से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। तो पूरा जातिगत समीकरण के साथ, क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, तो बीजेपी अब इस कैबिनेट विस्तार के जरिए एक तरीके से जातिगत जो किलेबंदी है उसको मजबूत करने की कोशिश में कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लंबे समय से चला आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना है, तो उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री 6:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी करेंगे। तस्वीरों से दिखाते हैं कि गहमागहमी किस तरीके से तेज हो गई है। राजभवन के गेट पर खड़ा हूं, चूंकि 6:30 बजे मुख्यमंत्री का मूवमेंट है, तो यहां पर मीडिया मीडिया का भी जमावड़ा होगा, कैबिनेट की चर्चा हो रही है कैबिनेट विस्तार की, तो पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है, पीएससी के जवान आ गए हैं ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा लंबे समय से चली आ रही थी, आज 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और संभवतः कल शपथ ग्रहण भी
9: कल शपथ ग्रहण। तो संतोष ये बताएं कि ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, संतोष कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या सिर्फ 6 ने सिर्फ प्रमोशन इस बार हो रहा है, किसी का डिमोशन भी होगा?
11: देखिए अभी चर्चा ये है कि कुछ लोगों को हो सकता है बदला भी जाए, लेकिन वक्त कम है कहा जा रहा है कल, क्योंकि शाम को ये शपथ ग्रहण हो सकता है, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो 6 सीटें खाली हैं, फिलहाल 6 सीटों पर ही नए जो मंत्री हैं उनकी उनको शपथ दिलाई जाएगी। और जो नाम चल रहे हैं बड़े साफ साफ इस वक्त दिख रहे हैं, मनोज पांडे हैं, पूजा पाल हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, इसी तरीके से एक दो दलित चेहरे भी हैं जिसमें कृष्णा पासवान का नाम है। तो इस तरीके से कई नाम एक एक करके उभर रहे हैं, लेकिन चौंकाने के लिए जानी जाती है बीजेपी। कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि अब 24 घंटे का वक्त बचा है, कल 6:30 बजे का जो समय संभावित माना जा रहा है, ऐसा लगता है कि फिलहाल 6 मंत्री ही शपथ लेंगे। एक थ्योरी ये है, दूसरी कही जा रही है कि देर रात होते होते अगर किसी को शिफ्ट करना हुआ, यानी किसी को संगठन में शिफ्ट करना हुआ, अगर कुछ कहा जा रहा है कि अगर कोई उम्र दराज मंत्री हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग, हालांकि अब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में किसी को भी हटाने का जोखिम इस वक्त लेना बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन जो एक थ्योरी चल रही है वो ये है कि तकरीबन 10 से 12 हो सकते हैं, या फिर 6 वो मंत्री जिनके लिए जगह जिनकी जगह खाली है वहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जो नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिलेंगे और कल संभवतः ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा।
9: क्या कुमार अभिषेक पहले से तय था कि कैबिनेट का विस्तार करेंगे इस समय करेंगे, या फिर ये एकाएक लिया गया फैसला है?
11: नहीं, इसको लेकर के आप देखें तो पिछले 1.5 महीने से कवायद चल रही थी, लगातार विनोद तावड़े लखनऊ में मौजूद थे, एक एक करके उन्होंने तमाम बड़े बीजेपी के नेता, पूर्व अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री, सबों से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी, दोनों डिप्टी सीएम की कई बार मुलाकात हो गई थी। लेकिन चूंकि विनोद तावड़े की जो मुलाकात थी उसको माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने एक तरीके से पार्टी के भीतर पूरी राय शुमारी कर ली थी, और मुख्यमंत्री का क्या कोई पसंद है, देखना पड़ेगा कि क्या इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ लोगों को चाहते थे कि उनको भी लिया जाए, तो वो नाम इसमें आते हैं कि नहीं ये तो कल पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार अब लगभग होने जा रहा है, ये तय है, 6 बनेंगे या 12 बनेंगे ये देर रात तक या कल सुबह तक पता चल पाएगा, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि 6 मंत्री जिनकी जगह खाली है वो बनेंगे, और सब कुछ तय हो चुका है पिछले 1 महीने से, ये कवायद हम लोगों ने देखी है, और इसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित माना जा रहा है इनको ही इनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, इसलिए क्योंकि एक तो यूजीसी का बिल को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी, और दूसरा पीडीए कार्ड जो अखिलेश यादव चल रहे हैं उसके काउंटर के लिए, तो मोस्ट लाइकली कल शाम को ये शपथ ग्रहण हो जाए।
9: ठीक है कुमार अभिषेक, आपका और संतोष आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में कैबिनेट का विस्तार आज मीटिंग और कल माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं तमिलनाडु से, बड़ी खबर आपको देते हैं तमिलनाडु में, जहां पर विजय सरकार का रास्ता पूरी तरह से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय अब मुख्यमंत्री बनने का उनका रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है, क्योंकि समर्थन पत्र बताया जा रहा है कि सौंप दिया गया है। तो तमिलनाडु में विजय, जहां पर अभी तक ब्रेकर बना हुआ था उनके सीएम बनने को लेकर, तो अब ये क्लियर हो गया है, वीसीके ने सपोर्ट कर दिया है, वीसीके ने टीवीके को अपना सपोर्ट दे दिया है, और जो समर्थन के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता थी वो अब 118 विधायक टीवीके के पास में हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार का रास्ता पूरी तरह से साफ अब दिखाई दे रहा है। एक ये बहुत बहुत बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि इससे पहले 3 बार राज्यपाल ने लौटाया, 2 बार शपथ ग्रहण कैंसिल हुआ तमिलनाडु में विजय के। ये जो टीवीके है उसका जो रास्ता अब क्लियर, क्योंकि पहले 118 विधायकों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था, दलपति विजय शपथ ग्रहण 2 बार टाल चुके थे, सस्पेंस लगातार बना हुआ था, और वीसीके पर सबकी निगाहें थी कि उनका निर्णय क्या होगा। तो वीसीके की तरफ से बहुत बड़ी क्लैरिटी है, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है और विजय अब मुख्यमंत्री बनेंगे तमिलनाडु के। 2 साल पहले जो पार्टी खड़ी करते हैं और 2 साल में वो तमिलनाडु के अब मुख्यमंत्री के रूप में बहुत जल्द शपथ लेते हुए भी दिखाई देंगे। अब तक कुछ राह में रुकावट थी, कुछ संकट था, लेकिन अब वो संकट के बादल छंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी के एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभी, लेकिन बहुमत से वो कम थे, लेकिन इस बीच में उनके जो समर्थक है वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे
12: हैं।
9: तो उनके समर्थक जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल से भी मिले लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी, लेकिन अब जब सपोर्ट मिल गया है उनको तो उसके बाद से उनके समर्थकों का उत्साह तस्वीरों में देख सकते हैं। टीवी के को समर्थन दे दिया गया है और अब कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला था, अब 118 का सपोर्ट मिल गया है टीवी को, तो विजय सरकार बनाने की तरफ अब आगे बढ़ते हुए संभवतः अब जल्द ही राज्यपाल से मिले और सरकार का जल्द ही गठन होगा। 7 मई को विजय राज्यपाल से लगातार दूसरे दिन मुलाकात करते हैं, समर्थन देकर कहने की बात करते हैं, लेकिन नंबर नहीं था उनके पास 118। फिर अब उनको बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें मिल गया है और इस बीच में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विजय के समर्थकों का हुजूम दिखाई दे रहा है। 118 का जो मैजिक अंक है वो 118 उनको मिल गया है, उसी पर अड़े रहने के लिए कहा भी गया था राज्यपाल की तरफ से कि जब तक 118 आपके पास होगा नहीं तब तक मुश्किल है, तब तक आपको हम इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन आप 118 का सपोर्ट, क्योंकि वो जो समर्थन पत्र है जिसकी आवश्यकता विजय को थी वो समर्थन पत्र उनको दे दिया गया है और अब ये जश्न उनके समर्थकों की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो 5 कांग्रेस की तरफ से सीपीआई के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और वीसीके के भी अब सपोर्ट मिलने के बाद से ये विजय की राह बिल्कुल आसान अब मुख्यमंत्री बनने की दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी पहली बार चुनावों में उतरी और पहली बार इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हुए और अब मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द विजय सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, जरूरी समर्थन जो अब तक उनको नहीं मिला था टीवीके ने अब जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है और उसके बाद समर्थक आप देखेंगे कार्यालय के बाहर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए, जश्न मनाते हुए और विजय थलपति ने सरकार बनाने के लिए अब समर्थन जुटा लिया, क्योंकि कांग्रेस का, सीपीआई का, सीपीएम का, वीसीके का सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट था मिल गया है और अब सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आज की वो तो सुबह से चर्चाएं चल रही थी लेकिन फिर नंबर उनके पास नहीं था तो ऐसे में शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, तो शपथ ग्रहण टाल दिया गया। अब नई तारीख सामने आएगी लेकिन टीवी के समर्थक अब आप तस्वीरें देखेंगे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बीसी के आईयूएमएल की ओर से समर्थन और वीसीके का जो समर्थन है उसके मिलने के साथ ही अब विजय की जो सियासी पारी है वो बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं इस बीच में जनता से वो सब अब उनको पूरे करने होंगे, सत्ता में वो बनते हुए पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में संकट के बाद बादल मंडरा रहे थे डीएमके, एआईडीएमके, उनकी अपनी चर्चाएं, उनकी अपनी राजनीतिक की चर्चाएं हो रही थी। इस बीच में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस पार्टी ने जो सपोर्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने एक इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है कि विजय की सरकार बनाने में अदा किया, जिन्होंने जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ बातचीत करके उनको कन्विंस किया और वो इस एक टेबल पर उनको लेकर आए, एक राय बनाई और उसके बाद अब विजय थलपति मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं लेकिन कब लेंगे इस बारे में अभी जो है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे साथ सगाई राज, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। सगाई राज, विजय थलपति मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट कर दिया है, किन शर्तों पर किया है, क्योंकि अब तक तो आनाकानी थी ही।
13: देखिए अभी वीसी के विद्यालय चिरते कच्चे का सपोर्ट लेटर मिल चुका है और उसमें उन लोगों ने साफ साफ बताया गया कि अनकंडीशनल सपोर्ट है तमिलग वेट्रिक कड़गम को कि टीवी के विजय को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वन्नी अरस और ज्योतिमणि जो भी एमएलएस है वीसी के पार्टी का, उनका दोनों का सिग्नेचर भी है और लेटर भी आदव अर्जुना को हैंड ओवर कर दिया है सिरमा वड़वल, ये है मुख्यस्थ है विद्यालय चिरते कच्चे का मुख्यस्थ है, डी ए चीफ है, इन्होंने लेटर लिखा है और गवर्नर को भी इस बार एड्रेस किया गया है कि उनका अनकंडीशनल सपोर्ट टीवी के पार्टी के लिए है।
9: ये बहुत बहुत बड़ा ये जो सपोर्ट है ये उनके लिए, लेकिन कैसे, किसने मनाया, इंटरनल स्टोरी क्या सामने आ रहे हैं, कैसे मनाया गया वीसी को?
13: देखिए आप देखा है तो सुबह 10 बजे थे जो भी नेगोशिएशन चल रहा था वो शुरू हो गया था और तकरीबन अभी 4 बज रहा है, अभी इन्होंने लेटर हैंड ओवर किया गया था। हमारा सूत्रों के अनुसार नेगोशिएशन यही था कि तोल तिरमा वड़वन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, मगर अभी तक जो भी नेगोशिएशन है, अभी तक जो भी फाइनलाइज हुआ है उसके बारे में अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, मगर लेटर में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये अनकंडीशनल सपोर्ट टीबीके को दिया गया है।
9: अब वो कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे इस बारे में जानकारी मिल रही है?
13: देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हम विजय के घर के बाहर है, अभी जोर से बारिश हो रहा है और कभी भी ये गवर्नर से अपॉइंटमेंट लेके निकल सकते हैं, आधा वर्जन लेटर लेके शायद यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ से सब लोग मिलके चौथा बार, एक हफ्ते में चौथा बार, फोर्थ टाइम विजय गवर्नर से मिलने जाएंगे और जब भी उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके हिसाब से वहाँ चले जाएंगे और चौथा बार वो स्टे क्लेम करने का लेटर गवर्नर को देंगे।
9: ठीक है सगाई राज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीवीके का रास्ता साहब, क्योंकि वीसीके ने सपोर्ट कर दिया है और अब राज्यपाल से समय मांगा जाएगा, सरकार गठन की तैयारियां भी अब तमिलनाडु में शुरू हो गई हैं। और अब बात करते हैं केरल की, जहां पर नई सरकार को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस में बैठक जारी है, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के सी वेणुगोपाल, अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन इस बीच में जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी अपनी तरफ से डिमांड्स भी रखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई हैं, वी डी सतीशन, के सी वेणुगोपाल, इसके साथ रमेश चन्नीथला, कोई अपनी सीनियोरिटी की बात कर रहा है, कोई अपने पास ज्यादा एमएलएज की बात कर रहा है। बहरहाल दिल्ली में लेकिन चिंतन मंथन का दौर जारी है, कांग्रेस में अभी यहां चिंतन मंथन का दौर ही देखने को मिल रहा है। और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

0: पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, चुनावी संघर्ष खत्म हुआ, सत्ता बदली तो जमीन पर खूनी जंग शुरू हो गई। कहीं पत्थर चले, कहीं दफ्तर में आगजनी हुई, कहीं बम बरसाए गए तो कहीं पर गोलियां चली। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या से ये हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। बीते चार दिनों से पश्चिम बंगाल के कई इलाके हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। उपद्रव बेहिसाब है और हालात बेहद खराब। अभी शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की जांच चल ही रही है। इस बीच उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बर्दपुर और बाराबनी क्षेत्र में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बिलिया घाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के वेश में उपद्रव कर रहे हैं।
1: ये प्री प्लान्ड है, आपने हमें बताया, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर।
0: चुनावी नतीजों के बाद से पश्चिम बंगाल में उपद्रव जारी है, तनाव बना हुआ है। हिंसा पर काबू पाना प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

मुलाकात कर सकते हैं विजय। यूपी में कल हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी समेत 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। केरल में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला जल्द, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक जारी, राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद। सबसे दुर्गम किले पर लहराया केसरिया ध्वज, शुभेंदु ने

भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के सरकारी घर पर ईडी की छापेमारी, 20 गाड़ियों से आए थे अफसर। स्थानीय निकाय, बिजली और उद्योग मंत्रालय देखते हैं अरोड़ा। केजरीवाल ने औरंगजेब से की बीजेपी की तुलना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास अब बदल गया है। पहली बार बीजेपी सत्ता में है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और शपथ ग्रहण के मंच पर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी रखा गया है। पीएम मोदी ने जहां जनता को साष्टांग प्रणाम किया, वहीं 98 साल के बीजेपी कार्यकर्ता के पैर छूकर सम्मान भी किया। दूसरी तरफ इस समारोह में एनडीए की एक जबरदस्त एकजुटता भी देखने को मिली। सभी सहयोगी दल एक मंच पर एक साथ और एक सुर में दिखाई दिए, लेकिन विपक्ष की सियासत का हिस्सा दरारों से भरा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की सियासत कई सवाल खड़े कर रही है। बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते अब टूट चुके हैं। वही पंजाब और हरियाणा में भी सहयोगी दलों ने अलग अलग राह चुन ली है। नतीजा ये हुआ है कि आपस में लड़कर इंडिया गठबंधन अपनी ताकत कमजोर कर चुका है। तो क्या इंडिया की ताकत उसकी एकजुटता है और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अंदरूनी अविश्वास की खड़ी है? आखिर विपक्ष का भविष्य क्या होगा और क्या सिर्फ मोदी विरोध के सहारे कोई गठबंधन लंबी राजनीति कर सकता है या नहीं, इसी बात पर बहस होना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस ने जब पीवीके को समर्थन देने का फैसला किया तब यही कहा कि हम सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते हैं। ये कब तक होगा, इसी पर आज हमारी बहस होगी। लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई हमारी एक खास रिपोर्ट है।

0: ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি,
1: আমি শুভেন্দু অধিকারী।
2: पश्चिम बंगाल जहां 34 साल तक लेफ्ट का राज रहा, फिर तीन टर्म तक ममता बनर्जी सीएम रही, लेकिन अब वहां पहली बार बीजेपी सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली और इसी के साथ बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया। इस खास मौके पर बंगाल की जनता का पीएम ने साष्टांग दंडवत किया। वहीं 98 साल के बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के करीब गए, शॉल ओढ़ाया, गले लगे और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राजनीति में कुछ तस्वीरें चुनाव से बड़ी हो जाती हैं। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की एकता या यूं कहें कि शक्ति परीक्षण भी देखने को मिला। एक मंच पर एनडीए के नेता मौजूद रहे, पीएम मोदी सभी के पास गए, एक एक करके मुलाकात की, नमस्कार किया और बातें की। यहाँ जब सब साथ साथ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी के नेता राहुल गांधी ताल ठोक कर बता रहे हैं कि और कोई पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती।
3: आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी।
2: यानी राहुल का बयान सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी के लिए नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी है। वैसे सहयोगी के नाम पर ना तो नीति दिखती है ना ही नीयत। बंगाल चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां ममता का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से भी था। बंगाल चुनाव में टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे।
4: जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, 1900 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में ये वायदा किया था ममता जी ने, आपको क्या रोजगार दिया? यहाँ पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, ये बंगाल की सच्चाई है।
2: ये हाल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इंडिया गठबंधन में खंड खंड विखंड का दायरा दूसरे राज्यों में भी दिखती है। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित यूडीएफ का मुकाबला लेफ्ट समर्थित एलडीएफ से था, जबकि दोनों इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं। तमिलनाडु में भी यही हाल है, भले ही डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों में जब डीएमके का पलड़ा हल्का हुआ तो कांग्रेस ने तमिलनाडु में सबसे बड़ी विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर नया रास्ता अख्तियार कर लिया, जिसके बाद डीएमके का गुस्सा चढ़ गया। डीएमके सांसद कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की है।

0: ये उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती, और इस बार जो मल्टी लेयर माफिया गिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे।
1: ये कोई पहला एपिसोड नहीं है जब इंडिया गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकते दिखे। पंजाब और हरियाणा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, यानी दिल्ली में दोस्ती लेकिन राज्यों में सीधी लड़ाई। फिर सवाल उठता है कि अगर सहयोगी दल ही एक दूसरे को हराने में जुटे हों तो जनता किसे असली विकल्प माने। यूपीए एक और यूपीए दो के दामन से बाहर निकलने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नीतीश की पार्टी आज बीजेपी के साथ बिहार और केंद्र में सरकार चला रही है। राजनीति सिर्फ अंकगणित नहीं होती, केमिस्ट्री भी चाहिए, और फिलहाल एनडीए में वही केमिस्ट्री दिखाई देती है जबकि इंडिया गठबंधन में सियासी केमिकल लोचा है। इंडिया गठबंधन में हर राज्य की राजनीति अलग, हर नेता की महत्वाकांक्षा अलग, हर दल की प्राथमिकता अलग। किसी भी गठबंधन को बाहर का विरोध नहीं तोड़ता, अंदर का अविश्वास तोड़ता है, और यही सवाल अब इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा है। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का परचम बुलंद है। भारत के करीब 75% हिस्से में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन लोकतंत्र में राजनीति स्थायी नहीं होती। आज एनडीए मजबूत है तो कल विपक्ष नए रूप में लौट भी सकता है, क्योंकि भारत की राजनीति में शून्य कभी स्थायी नहीं रहता। आज तक ब्यूरो।
2: तो वहां पर बंगाल में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब एक तस्वीर उभर कर सामने आई। 21 राज्यों से एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे। उसमें एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी वहां पर बुलाया गया था, और एक तस्वीर दिखाई गई कि एनडीए पूरी तरीके से एक साथ वहां पर कैसे दिख रहा है, वो तस्वीर जरा दिखा दीजिएगा। वही दूसरी तरफ जो तमिलनाडु के भीतर हो रहा है उसमें ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेज पर एनडीए के तमाम अलग अलग राज्यों के नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे। और दूसरी तरफ तमिलनाडु के भीतर डीएमके की चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को कि हम आप अलग बैठेंगे, हम इंडिया अलायंस के साथ में नहीं बैठेंगे। कारण यह दिया गया है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने अपना कैरेक्टर दिखा दिया, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहा है, तो इंडिया अलायंस क्या छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुनील राजपूत पर एक बहुत अहम भूमिका रहेगी कांग्रेस को डिफेंड करने की, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि वही है जो बीजेपी या आरएसएस को डिफीट कर सकती है, और बाकी जो उनके घटक दल आसपास बैठे हुए हैं उनमें से किसी में वो ताकत नहीं है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। एनडीए की तरफ से धीरेन्द्र कुमार भी इस चर्चा में होंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा, और ये चर्चा पूरी तरीके से पॉलिटिकल होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी व्यक्ति नेता के खिलाफ ये चर्चा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल चर्चा है पूरे देश में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर। पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडिया गठबंधन जुड़ रहा है या बिखर रहा है, क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से दूर रखना है तो हमारे साथ जुड़ी है और इसीलिए हम गठबंधन बदल सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई उसकी कमजोरी की वजह बनती जा रही है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की जगह किसी और को इंडिया अलायंस का नेता बनना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन अब सबक सीखेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के तीन घटक दल तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सीपीएस सीपीएम अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और मैसिव मैंडेट से वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई यहां पर नजर आ रही है। शुरुआत सुरेंद्र राजपूत आज आप ही से करनी होगी। डीएमके का जो खत भेजा गया लोकसभा स्पीकर को, आपने एंटीसिपेट किया था कि डीएमके आप पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का आरोप लगाएगी, क्योंकि आपने तो कह दिया कि हम तो सेक्युलर फोर्सेस को साथ में रखना चाहते हैं और सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए हम वहां पर टीवीके के साथ जा रहे हैं।
3: साहिल भाई, दो चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर किसी को चोट लगेगी तो उसे दर्द होगा, हमें उसके

0: दर्द का एहसास है। जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु में हमारी हार हुई, बंगाल में हमारी हार हुई, असम में हमारी हार हुई और केरल में हम लोग जीते, तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु में जो परिस्थितियां बनी, सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी ने एमके स्टालिन साहब को कॉल किया, ममता बनर्जी साहिबा को कॉल किया, सोनिया जी ने कॉल किया, जो हमारे हारे इंडिया गठबंधन के नेता थे। चुनाव लड़ते समय की बात अलग थी, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद हम सब साथ में रहे, इसको लेकर के हमें कोई वो नहीं। और जिस तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यपाल के तरीके जरिए एक एजेंट प्रोवोकेटियर का काम कर रही थी, कि राज्यपाल तय कर रहे थे कि राजभवन में तय होगा फैसला कि क्या नाम कौन वहां से सत्ता बनाएगा, जबकि बहुमत का फैसला सदन में होता है। एसआर बोम्मई केस में संविधान पीठ ने भी निर्णय दिया, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजभवन में फैसला कराना चाहती थी अपने एजेंटों के द्वारा, उसको उससे बचने के लिए, वहां हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए ये की सारी बात की, हम लोगों ने टीवीके का साथ दिया और उनको कंडीशनल सपोर्ट दिया, स्टालिन साहब से भी बात की। इसमें कहीं कोई उसमें आज की डेट में ये बात अपने आप में सच है कि हम लोगों ने चुनाव डीएमके के साथ लड़ा, डीएमके आज भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसा हमारा विश्वास
1: सुनील राजपूत जी, आप एक डिटेल को थोड़ा मिस कर रहे हैं। सुनील राजपूत जी, देखिए डीएमके ने आपके मन को पढ़ लिया था इससे पहले, क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि आप झटपटा रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, उनको लग रहा था डीएमके का प्रदर्शन ठीक नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि हम अलायंस पार्टनर को बदल दे वहां पर तमिलनाडु के भीतर। इसीलिए आपके नेता पहले से ही टीवीके के पास जाकर आए थे, उनसे बातचीत कर आए थे, लेकिन जब टीवीके ने कहा कि नहीं नहीं विजय ने कह दिया कि हम तो आपसे फिलहाल अलायंस नहीं करना चाहते, आप तो डीएमके के साथ बने रहिए, चुनाव आपने लड़ लिया उनके साथ में और उसके बाद तुरंत आपने जम कर लिया वहां पर, डीएमके को दर्द वहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने उनसे पूछा तक नहीं, बातचीत तक नहीं की कि हम आपका साथ छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम टीवीके के साथ जाएंगे किसी स्पेशल पर्पस के साथ में। गवर्नर का तो बाद में हुआ है ना सुनील राजपूत जी?
0: नहीं नहीं नहीं, गलत, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता साहिल भाई आप जैसे शख्स को बतानी भी चाहिए इतने जिम्मेवार चैनल पर। सच तो ये है कि टीवीके ने हमसे चुनाव से पहले कहा था 75 सीटें टीवीके हमें दे रहा था, हमने तो 28 सीटों पर चुनाव लड़ना मंजूर किया अपने पुराने डीएमके के साथ में, साथी के साथ में जो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, हमने उनके साथ में 28 सीटों पर चुनाव लड़ना मंजूर किया। टीवीके ने जो हमें 75 सीटों का ऑफर किया, तो आधिकारिक ऑफर है, ऑफिशियल ऑफर है, आपके सामने है, पूरे सारे मीडिया में उपलब्ध है वो, हमने तो उसको ठुकराया था चुनाव से पहले, ये तो बात गलत है। और सच बात यह है कि वहां पर जिस तरीके से राज्यपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी खेल खेलना चाहती थी, एक विधायक के जरिए सीएम बनाना चाहती थी, उस खेल को खत्म करने के लिए हमने टीवीके को सपोर्ट दिया, कंडीशनल सपोर्ट दिया। और इस बात से पहले एमके स्टालिन साहब से बात हुई है, ऐसा नहीं जिस दिन चुनाव हारे एमके स्टालिन थिरू स्टालिन उस दिन हम लोगों ने बात की और आगे भी हमारी बात चलेगी। और कल एमके स्टालिन साहब ने भी एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया कि हम भी कोई किसी तरीके से विवाद नहीं चाहते और हम यहां चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार गठित हो। उनका भी इशारा श्री राहुल गांधी जी की तरफ था, उनका भी इशारा श्री राहुल गांधी जी के लिए ही था। तो यह बात अपने आप में एक आधी अधूरी जानकारी लेकर के नोएडा से लोग जो लोग मिस इंटरप्रिटेट राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को करना चाहते हैं, वो लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुंह की खाएंगे। दूसरी बात, अभी मणिशंकर अय्यर के जरिए एक बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को नेतृत्व इंडिया गठबंधन का छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, मणिशंकर अय्यर जी तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन जो नोएडा के चैनल से इनको क्या हो गया है भाई? इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी है क्या? इंडिया गठबंधन तो सामूहिक नेतृत्व में चल रहा है, ममता जी भी अध्यक्ष है, राहुल जी भी अध्यक्ष है, ठाकरे साहब भी अध्यक्ष हैं, उद्धव ठाकरे साहब भी, हेमंत जी भी हैं, अपना तो सारे के सारे शरद पवार साहब भी हैं जी।
1: मैं जी, आपको शहजाद पूनावाला यहां पर बैठे हुए, उनका एक बयान आया हुआ है, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और शहजाद के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर नोएडा के चैनल्स या पत्रकार क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रख रहा है कि डीएमके खत लिखकर लोकसभा स्पीकर को यह कह रहा है कि अब हम इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं रहेंगे, हमारी बैठने की जो जगह है वो बदल दीजिएगा। समाजवादी पार्टी ट्वीट करके ये बता रही है कि भाई मुश्किल के समय भी किस तरीके से अखिलेश यादव दोस्ती निभा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं उससे जरूर फर्क पड़ेगा। एक बार फिर मैं आखिर में आपसे पूछूंगा, उसके बाद शहजाद के पास जाऊंगा उनके बयान को लेकर, एक एक जवाब मुझे दीजिएगा, क्यों डीएमके ने इंडिया अलायंस को छोड़ना तय किया? क्यों डीएमके ने इंडिया अलायंस ने इंडिया अलायंस को छोड़ना तय किया, क्यों डीएमके कह रही है कि आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है कांग्रेस पार्टी।
0: साहिल भाई पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं। पहली चीज तो नोएडा चैनल के कहने का अर्थ मेरे लिए आपको टारगेट करना नहीं था। वो कहते ना कि सीधी सच्ची बात
1: है, मैं जनरली कह रहा हूं सर, मैं जनरली कह रहा हूं, मैं बहुत जनरली कह रहा हूं,
0: सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना सर, कहते ना कि सीधी सच्ची बात है कोई झूठ नहीं, और चोट लगाकर कहते हो कि रूठ नहीं, और खुद भी भरते जाते हो गुब्बारे को और कहते हो गुब्बारे फूट नहीं। तो सच बात यह है कि आज की डेट में इंडिया गठबंधन तो हमारा एक, आपने ममता बनर्जी के बयान को जानबूझ करके नहीं लेके आए, चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बयान लेके आप आए क्या? आपने सारे बयान दिखा दिए, आपने सारी चीजें दिखा दी, आपने ममता बनर्जी का वो बयान, आपने ममता बनर्जी का वो बयान नहीं दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे।
1: ममता बनर्जी का बयान लेकर भी आऊंगा,
0: आप एक बयान एमके स्टालिन साहब का दिखाइए, आप एमके स्टालिन साहब का एक बयान दिखाइए जिन्होंने जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, आप बताइए ना। हाँ, रही बात प्रस्ताव है कि तो निश्चित तौर पर उन्हें कष्ट,
1: तन्नी मौली क्यों कह रही है कि प्रस्ताव है, कहा है ना उन्होंने,
0: आप तो ले लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं
1: है पब्लिक डोमेन,
0: हाँ बिल्कुल कहा है, मैं तो कहता हूं ना सर कहा है, मैं तो खुद मान रहा हूं कहा है, और मैं तो खुद कह रहा हूं कि उन्हें चोट है, हम तो मान रहे हैं, हम तो उनके चोट पे भी मरहम लगाए,
1: शहजाद पूनावाला
0: हमारी बात चल रही है,
1: आपका स्टेटमेंट में देख रहा था, आपका स्टेटमेंट में देख रहा था, और आपके स्टेटमेंट में आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि धीरे धीरे भरोसा उड़ जा रहा है, पूरी तरीके से टूटना शुरू हो चुका है। आप कैसे साथ में रख लेते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है कि सत्ता के वजह से आप साथ में रखते हैं, लेकिन कोई तो आपके पास एक नुस्खा होगा कि जिसके वजह से आपने सबको साथ में रख पाए।
2: साहिल जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज जो आपने तीन तस्वीरें देखी, एक तो प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होकर जनता को धन्यवाद किया, ममता बनर्जी जनता का अपमान करती है, हमने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया 98 वर्ष के हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का, वहां पर तो सत्ता को ही नमन करते हैं, और तीसरी तस्वीर थी कि एनडीए का मजबूत परिवार जो 10 स्टेट से शुरू हुआ 2014 में, मिशन विशन था तो 22 स्टेट तक पहुंच गया, और इंडिया अलायंस का जो परिवार है, मजबूर अलायंस जिसमें मिशन विशन नहीं, केवल कमीशन, करप्शन, डिवीजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन और अपना अपना एम्बिशन था, तो जो 10-12 स्टेट में हुआ करता था वो सिकुड़कर आज 5-6 स्टेट में आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाकी नोएडा चैनल की क्या धारणा है इंडिया अलायंस के बारे में और कांग्रेस के बारे में, छोड़ दो, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो नोएडा से थोड़े खफा रहते थे परंतु उनका बयान अच्छा है, सुनिए।
3: कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया।
2: अखिलेश यादव जी का एक बहुत पुराना बयान है कि कांग्रेस जैसी चालू चालबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी कभी आपने देखी नहीं होगी, और उन्होंने वैसे ट्वीट भी किया है, और उसके बाद उनके एक नेता रविदास मेहरोत्रा जो कि एक विधायक है वो भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है उस पर भरोसा करना, मतलब सांप पे भरोसा कर दो, इस पर भरोसा मत करो। डीएमके ने साफ शब्दों में कह दिया, आजकल तो डीएमके का स्पॉटीफाई पे पता है कौन सा गाना चल रहा है साहिल भाई, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, इन डी मुझे तेरा एतबार ना रहा। अरे भाई, राहुल गांधी ने बोला माय ब्रदर स्टालिन, और मैं किसी और को ब्रदर नहीं बोलता, और फिर कटप्पा की तरह है छुरा भोग दिया पीठ में स्टालिन जी की, और 3 घंटे नहीं हुए, रिजल्ट आ रहा था, 3 घंटे नहीं हुए कि टीवी के साथ चले गए और बोलते हमको पॉलिटिकल सिचुएशनशिप चाहिए, मतलब दिल्ली में डीएमके का हाथ पकड़ेंगे और तमिलनाडु में टीवीके का हाथ पकड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने किसको नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा? देखिए ना, बिहार में आरजेडी को लूटा, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी को लूटा महाराष्ट्र में, लेफ्ट को लूटा दिल्ली में, केरलम में जाकर दोस्त कुश्ती कर दी, आम आदमी पार्टी को लूटा दिल्ली में, फिर उसके बाद आपने देखा है जम्मू कश्मीर में लूटा इन्होंने, हर जगह हर साथी को केवल एक परजीवी की तरह लूटा। इसीलिए सभी क्षेत्रीय दल, सभी अलायंस पार्टनर बोलते हैं कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा है। और मैं पूछना भी चाहता हूं, देखिए आज साहिल भाई मैं इस डिबेट में आया तो मैं एक बाइनोक्यूलर लाया, क्योंकि आपने तस्वीर दिखाई, जरा दिखाना प्रोड्यूसर साहब तस्वीर, हमारे स्वेरिंग इन की, आज रविंद्रनाथ जी के जयंती पे आपने स्वेरिंग इन की तस्वीर देखी, पूरा एनडीए पर। मैं इसलिए बाइनोक्यूलर लाया, मैं देख रहा हूं ये इंडी कहां दिख रही है, तो मैंने जूम किया बंगाल पर, अच्छा बंगाल में तो इंडी नहीं है, फिर मैंने जूम किया केरलम पर, अरे केरलम में भी नहीं है, फिर मैंने जूम किया दिल्ली में, अरे दिल्ली में भी इंडी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, अरे अरे कर्नाटका में भी नहीं, ओहो मध्य प्रदेश में भी नहीं, अरे ओडिशा में भी नहीं है, अरे हरियाणा में भी नहीं है, अरे किधर है ये इंडी, ये इंडी अच्छा तमिलनाडु में भी नहीं, ये इंडी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसीलिए सुरेंद्र राजपूत को ये गिफ्ट करूंगा आज, सुरेंद्र राजपूत ही देखकर दिखाए कि इंडिया अलायंस है किधर, केवल कागज और आज तक की 5 बजे की डिबेट के अलावा, लाइन के अलावा कहीं नहीं है।
0: साहिल भाई ये बाइनाकुलर अगर असली हो तो आप ले लीजिएगा, लखनऊ मेरे को कोरियर करा दीजिएगा, शहजाद करेगा नहीं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। ये मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा बाइनाकुलर ये हमें भी भेजे और सही में सही तरीके से भेज दें, और अगर ये क्या नाम झूठ बोलते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। अगर मुझे कल तक या परसों तक ये बाइनाकुलर नहीं मिलता है तो अच्छे वाला, अगर ये प्रोटोटाइप हुआ तो आपका पूरे तरीके से पोल खोलूंगा मैं, ठीक है ना। नंबर एक। नंबर दो, जैसे कहते हैं ये लोग, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, पार्टियां बर्बाद करके रख दी, पीडीपी से समझौता करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र विरोध के नाम पर उनसे समझौता तोड़ देंगे, जनता दल यूनाइटेड का पूरे के पूरा अपहरण कर लेंगे, शिवसेना को दो पार्ट में, आनंद दुबे बैठे हुए हैं, शिवसेना को दो पार्ट में खंड खंड कर देंगे, अकाली दल को खत्म कर देंगे, दुष्यंत चौटाला को 5 साल उप मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, चुनाव के टाइम उनको भगा देंगे, नवीन पटनायक को खत्म कर देंगे, वाईएस जगन रेड्डी को खत्म कर देंगे, जितने क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, और एक बात और, हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मां बहन की गाली देते हैं इनको और अपनी सुविधा से उनको कभी मंत्री बना देते हैं, कभी उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सुबह विरोध में खड़े होते हैं, शाम को मां बहन की गाली देने लगते हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी, और छोटी मोटी गाली नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, वो गालियां देते हैं जो आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक बड़े प्रवक्ता ने मेरी मां को दी थी, इस तरीके की गालियां राजभर जी देते हैं, और तमाम लोग जिस तरीके की बातें करते हैं उसके बाद उन्हीं को साथ भी रखते हैं, उन्हीं के विरोध में भी रहते हैं। राजभर अगर बिहार में इनके खिलाफ लड़े तो यह एनडीए मजबूत हो रहा है। और रही बात ये जो बाइनाकुलर से देखने की, तो बंगाल में अगर आपने देखा तो बंगाल में इंडिया गठबंधन है, ममता बनर्जी के बयान को देखिए आप, तमिलनाडु में आपने देखा
1: चुनाव के बाद इंडिया
0: गठबंधन है,
1: सुनिए राजपूत जी, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है,
0: सुनिए ना,
1: चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन, चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन नहीं है। और जरा वो राहुल गांधी का बयान भी हम मुझे निकाल कर दिखाना है, क्योंकि आप जो है मेरे पास तीन पार्टनर यहाँ पर इंडिया अलायंस के बैठे हुए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित, आशुतोष वर्मा और आनंद दुबे, उनके पास भी मुझे जाना है, जरा वो बयान निकालिएगा, अभी हमारी स्टोरी में वहां पर चला था, क्योंकि वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है और उस बयान के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें निकलेगी। शहजाद जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद जरा मुझे बाकी पार्टनर्स के पास जाना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मिस्ट्रीक तो आप भी करते हैं आपके अलायंस पार्टनर्स को, चारा नहीं है उनके पास में।
2: अच्छा
4: कांग्रेस पक्षाला,
2: मुझे तो पता नहीं कि कौन सी ओरिजिनल वाली शिवसेना थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन करना चाहती थी। साहिल, आपकी तो पूरी जिंदगी हमारे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को कवर करने में चली गई। बाला साहेब ठाकरे जी के क्या शब्द हुआ करते थे, आज ओरिजिनल शिवसेना बाला साहेब जी के विचारों के साथ हमारे साथ है और जो नकली सेना है वो उनके साथ है। भाई असली सेना वाले, चलिए एक टेस्ट करते हैं, आनंद दुबे जी से पूछे 370 के हटने पर स्टैंड, वो बोलेंगे बिल्कुल सही हटाया, और पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से स्टैंड, ये तो मतलब अच्छा राम मंदिर पे स्टैंड पूछे, राम मंदिर बनने का गर्व है आनंद को और सुरेंद्र राजपूत तो बाबरी लेकर बैठे हैं, तो इनमें कौन सा गठजोड़ है। वीर सावरकर पे पूछिए, वीर सावरकर जी को गाली देते सुरेंद्र राजपूत और आनंद दुबे बोलेंगे गाली देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो ऐसा गठबंधन है जैसे सांप और नेवले का, छोड़िए ना।
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर हमारे एलजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान के भाषण हम सुना करते थे पार्लियामेंट के भीतर, उसमें वो राम मंदिर को लेकर या अयोध्या को लेकर उनके भाषण अगर पुराने निकाले तो कुछ और ही बातें निकल कर आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको साथ में रखने में बीजेपी कामयाब रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को क्या हो गया है, जरा वो स्टेटमेंट हम सुनाएंगे। लेकिन आशुतोष वर्मा, आपसे शुरुआत करनी है मुझे, वो ट्वीट हमने देखा बड़ा दिलचस्प लगा हमें, अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं कि मुश्किल के समय भी, और उसमें स्टालिन का फोटो भी डाला है उन्होंने, ममता जी को तो वो मिलने गए, उन्होंने खुद भी कहा कि राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो चुकी है और इंडिया अलायंस को रिवाइव करना है वो कह चुकी है ममता बनर्जी, लेकिन स्टालिन का फोटो भी आपने उसमें डाला था। ये बड़ी दिलचस्प बात है आशुतोष वर्मा।
5: धन्यवाद साहिल जी। देखिए मुझे लगता है कि पहले इस बात को बहुत क्लियर कर लिया जाए कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता नहीं है कि वो 21 में बना रहे हैं या 22 राज्यों में। इंडिया अलायंस टूट गया इसकी खुशी अभी मना रहे हैं। अरे भाई सरकार बनाई उसकी खुशी मना लो। इंडिया अलायंस मजबूत है और हम भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हुए हैं, टीएमसी वाले भी बैठे हैं। इंडिया अलायंस में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जिनको तकलीफ है वो पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू, एआईडीएमके, एजेपी और एजीएसयू, उनसे पूछे जाके कि उनके दिल पे कितनी चोटें हैं कि आज कहाँ है उनके घटक दल। तो अलायंस करना भारतीय जनता पार्टी की उसमें नहीं है।
1: ट्वीट चलाइए जरा, मैं आ रहा हूं। वो ट्वीट चलाइए, ट्वीट देखिए आशुतोष वर्मा जी, ट्वीट मुझे एक्सप्लेन कराइए प्लीज।
5: हाँ ठीक,
1: वो जरा दर्शकों को एक्सप्लेन करवा दीजिएगा, बताइए। हम वो नहीं जो मुश्किलों में किसी का साथ नहीं छोड़ते, ठीक है, हम वो नहीं जो मुश्किलों में किसी का साथ छोड़ देते। दरअसल कहने का मतलब ये था, और दो फोटोग्राफ्स वहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किए थे, जरा इसका मतलब समझा दीजिए।
5: ठीक, देखिए साहिल जी, मैं दोनों ही बात बहुत साफ तरीके से बोलना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इसको अक्षरा इसको अक्षरशता इसको मानती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगभग आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो चार ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की भी सरकार है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और लगभग केरला में भी, तो चार राज्यों में इनकी सरकार है। तीन जगह इंडिया अलायंस की कॉन्स्टिट्यूएंस है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और झारखंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से। लेकिन अगर हम इसके अलग हम देखें तो जो प्रिंसिपल्स अपोजिशन है, तो इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल अपोजिशन इस समय नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहां पे उनका है, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, गोवा। लेकिन जब इंडिया अलायंस बना था तो इस बात को साफ साफ कहा गया था, जिस जगह पर जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको वहां पर बड़ी वरीयता मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी वाला, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, नागालैंड में एनसीपी, मेघालय में यूडीपी, मणिपुर में एनपीपी, मिजोरम नेशनल फ्रंट और पौंडीचेरी में डीएमके।
1: ठीक है,
5: तो बात यह है कि अगर हमको कोई भी चुनाव लड़ना है तो जब तक हम संगठन के साथ में नहीं लड़ेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात आप भूल जाइए। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक हम तारीफ करते हैं वो एक उनकी जो सबसे अच्छी तारीफ है वो है उनकी संगठनात्मक तरीका।
1: अभी भी आपने मुझे वो ट्वीट नहीं समझाया आशुतोष,
5: नहीं समझाया। अब हम देखिए
1: तंज किसके खिलाफ था वो नहीं बताया आपने,
5: हम बता रहे ना। हम जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो अखिलेश जी दिल्ली गए थे, अरविंद केजरीवाल से बात हुई कि उन्होंने आप आएंगे, हमने कहा बिल्कुल ठीक है हम आएंगे। ममता जी से जब बात हुई, ममता जी ने कहा नहीं अभी जरूरत नहीं है, हमने भी कोई ऐसी पहल नहीं करी। बिहार में हमको बुलाया गया, हम कहीं भी चुनाव नहीं लड़ते, हम बिहार में गए, हमने बिहार में लड़े। हम मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते थे, भारतीय जनता कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम नहीं लड़ा सकते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। हम सिर्फ कांग्रेस से ये कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की गद्दी आपके हाथ में है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए, बड़े भाई की तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसिपल फैक्ट है, इंडिया अलायंस बनते वक्त उस समय तत्कालीन नीतीश कुमार जी भी थे, सबने थे, कि जिस राज्यों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको उतनी वरीयता देनी चाहिए।
1: इसका लगभग जवाब यह है, नहीं मिली आपने सुन लिया होगा,
5: एमके स्टालिन के साथ में भी
1: आप घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा आशुतोष जी, आप सीधे शब्दों में नहीं कह रहे हैं, आप सीधे शब्दों में नहीं कह रहे हैं, आप बहुत घुमा रहे हैं, मतलब इतना लंबा चौड़ा आप जवाब दे रहे हैं उसमें। देखिए यहां पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी हंस रहे हैं, मैं उनके पास चला जाता तो दो लाइनें सुनाकर उन्होंने अभी तक जवाब दे दिया होता इस बात का। आप बहुत घुमा रहे हैं आशुतोष जी,
5: नहीं नहीं घुमा,
1: जल्दी से बता दीजिएगा वो तंज जो है वो किसके खिलाफ है और किसके बारे में।
5: किसके खिलाफ नहीं है, हम तो कहते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस जहां मांगेगी वहां हम उसके साथ उस राज्य में उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये सोचने वालों काम है।
1: देखिए शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद
2: देखिए सर, इन्होंने कहा कि वो ट्वीट उनके खिलाफ नहीं है, ये अभी रविदास मेहरोत्रा का आज का बयान, कांग्रेस कोलिशन धर्मा नहीं फॉलो करती है, कांग्रेस अलायंस बनाने के बाद हमें छोड़ देती है, कांग्रेस हमारे खिलाफ प्रत्याशी देती है। आज साहिल जी इनकी जूम मीटिंग करवा देते डिबेट के बदले, ये सभी जो घटक दल है ना इंडिया अलायंस के, इनकी जूम मीटिंग करवा देते तो कम से कम सोच समझ के ही झूठ बोलते। अच्छा इनसे पूछिए आशुतोष जी से कि डीएमके अच्छा, ने कांग्रेस को बैकस्टैबर बोला, डीएमके सही या कांग्रेस का टीवीके को सपोर्ट देना सही?
5: हमारे पास तो जूम मीटिंग के लिए लोग बचे हैं, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं बचे हैं, सब वापस चले गए हैं।
2: तमिलनाडु में किसको बुलाएंगे, टीवीके या डीएमके? अरे तमिलनाडु में कौन होगा जूम मीटिंग में?
5: जेडीयू
2: तमिलनाडु से किसको बुलाओगे?
5: तो बैठा लेते।
2: तमिलनाडु से किसको बुलाओगे, टीवीके या डीएमके?
5: शिरोमणि अकाली दल से
2: तमिलनाडु से किसको बैठाओगे भाई? यहाँ पे तो जूम एडमिन कौन बनेगा, उसी में लड़ाई है।
1: एक और एक चीज,
2: जूम एडमिन कौन बनेगा?
1: राहुल गांधी का जो बयान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आशुतोष वर्मा, सुनील राजपूत, आशुतोष वर्मा भी एक बात कह चुके हैं, इसलिए राहुल जी का वो बयान जरा सुनाना बहुत जरूरी है। जरा वो स्टेटमेंट मैं दिखाना चाहूंगा, वो स्टेटमेंट जरा सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे उस स्टेटमेंट के इर्द-गिर्द में, क्योंकि उसी स्टेटमेंट को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से भी मुझे सवाल पूछना है और आशुतोष वर्मा जी से भी मुझे सवाल पूछना है। चलिए दिखाइए वो जरा स्टेटमेंट।
6: जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, 1900 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5,00,000 लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में ये वायदा किया था ममता जी ने, आपको क्या रोजगार दिया? यहाँ पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84,00,000 बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, ये बंगाल।
1: स्वयं प्रकाश पुरोहित, यही बात आशुतोष वर्मा यहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी रहती चुनाव के पहले तो हो सकता है कि कुछ आप इंडिया अलायंस के तौर पर बीजेपी के सामने खड़े हो सकते थे, लेकिन तब पता नहीं किसका ईगो आड़े आ गया, आपका या कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस कहती है कि आपने उनको भाव नहीं दिया, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी। इसी ईगो बैटल में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस तितर बितर हो रहा है ना।
7: नहीं नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया अलायंस की सरकार नहीं थी, पश्चिम बंगाल में बामाटी मानुस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2024 का जब चुनाव होने की पहले की जब शंखनाद हुआ था उस समय हमने आपस में ये बात की थी कि जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ेगा, जैसे एनडीए वाले लड़ रहे हैं हम लोग वैसा नहीं लड़ पाए। नीतीश बाबू जिद में अड़ गए, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नाम दिया था। अभी जिस तरह से अखिलेश यादव आए, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी से मिले, ममता बंदोपाध्याय से मिल करके आए और उन्होंने उनके साथ खड़े रहे और कहा दीदी आप हारी नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया की याद दिलाता है कि जिस तरह से राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की बात की थी और जो लोग समाजवाद समान विचार के नेता है, आइडियोलॉजी की बात है, उस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में हम लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले नारे देते हैं ना, ये जीत दिखाते आइडियोलॉजी की, मगर काम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस से तोड़ रहे हैं। इनके पास विचारधारा नहीं है, विचारधारा की बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। शहजाद के इतिहास के बारे में भी आप पता कर लीजिए, विचारधारा की बात नहीं है। जो विचारधारा की लड़ाई करेगा वो इस देश के अंदर में संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश के अंदर में काफी संघर्ष किया है नेताओं ने और अंग्रेजों
1: की ताकत की। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं यहां पर देख रहा हूं, देखिए इस पैनल में जरा पूरा पैनल दिखा दीजिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पर देख रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत इंडिया अलायंस का घटक दल है, स्वयं प्रकाश पुरोहित की पार्टी इंडिया अलायंस का पार्टनर है, शिवसेना यूबीटी इंडिया अलायंस की पार्टनर है और आशुतोष वर्मा यहां बैठे वो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है। जब पैनल पे बात कर रहे हैं तब तो वो शहजाद पूनावाला की पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का समय आता है तब तो वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है और तब तो आप कहते हैं, आप सुनील राजपूत आप ही जवाब दे दीजिए इस बात का, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात, मुझे ये बड़ा अचरज लगता है इस बात का कि अगर आप कहते हैं कि टीवी के को हम समर्थन दे रहे हैं ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हमें दूर रखना है, लेकिन चुनाव लड़ते समय तो आप एक साथ नहीं आ सकते। ये कौन सी बड़ी ये कौन सा फर्क आ गया इसमें?
0: 2024 का जब इलेक्शन हुआ था तो इंडिया गठबंधन एक साथ ही चुनाव लड़ा था ना साहिल भाई, हम पंजाब में राज्य में हम आप पार्टी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन पंजाब में लोकसभा हमने साथ मिलकर के लड़ा था, दिल्ली लोकसभा साथ मिलकर के लड़ा था, आनंद भाई के साथ हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था, डीएमके के साथ हमने तमिलनाडु में चुनाव, इंडिया गठबंधन का जो उद्बोध हुआ था, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए हुआ था, और सही कहा हमारे भाई आशुतोष जी ने और क्या नाम स्वयं प्रकाश जी ने, जो स्पष्ट रूप से कहा कि साहब हमारा जो गठबंधन है जो जहां पर मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो समाजवादी पार्टी कर रही है, बिहार में आरजेडी मजबूत है, बिहार में नेतृत्व
1: आप इस बात का भी ख्याल करिए ना, देखिए चीजें बदल गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी जो भाषण वहां पर दे रहे थे बंगाल में जाकर, वही आरोप लगा रहे थे जो बीजेपी ममता बनर्जी पर लगा रही है, अब चुनाव के बाद में अगर राहुल गांधी आकर यह कहना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं चुनाव तो हारे बिकॉज वहां पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, उसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो कैसे लोग मानेंगे? आरोप तो आपने तब वही लगाया था जो बीजेपी आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग की भूमिका पर हम अलग से चर्चा कर चुके हैं, मैं जनता की बात कर रहा हूं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए,
0: साहिल
1: परसेप्शन बैटल को समझने की कोशिश,
0: साहिल भाई आप जवाब तो ले लीजिए सर, साहिल भाई जब 15 साल से ममता बनर्जी साहिबा वहां क्या नाम बंगाल में शासन में हैं और हम वहां चुनाव शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े ना, और जब चुनाव ममता बनर्जी साहिबा हारी है, सबसे पहले राहुल गांधी जी गए ना उनके पास बात की ना, अखिलेश यादव जी गए ना उनके पास, सोनिया गांधी जी ने बात की ना उनसे, देखिए राज्य में जब चुनाव होगा जो सत्ता होगी उसके सूची सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो एक सीधी सीधी सी बात है, वहां भाजपा की सत्ता नहीं थी
1: स्वयं प्रकाश
0: तो वहां पर हम भाजपा की सत्ता के थोड़ी क्या, हम तो केंद्र सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़े,
1: ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित,
7: अधीर रंजन चौधरी जैसे
1: स्वयं प्रकाश जी आप म्यूट पर है आप जी,
7: नहीं नहीं मैं म्यूट नहीं हूं, ठीक है अभी आ रही आवाज,
1: हाँ बोलिए,
7: देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था ना, वो नैरेटिव इनका समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुनाव हुआ ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव कराया है वो भारतीय जनता पार्टी के चोली दामन का रिश्ता साफ साफ है, अब कांग्रेस पार्टी को हम दोष देने नहीं जाएंगे, क्यों नहीं देने जाएंगे, कांग्रेस को खुद को सोचना था कि हम 294 कैंडिडेट क्यों उतारे,
1: लेकिन अगर बीजेपी वहां पर आग लगा रही थी तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के खिलाफ, तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा बहुत घी डाली रही थी वहां पर, ऐसा तो नहीं है
7: उनकी मजबूरी,
1: अगर उन्होंने चिंगारी लगाई थी तो उसमें थोड़ा बहुत घी तो कांग्रेस के तरफ से भी डाला जा रहा था, अधीर रंजन चौधरी जाकर यह कह ही रहे थे कि गुंडागर्दी बंगाल के भीतर चरम पर है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए, यह कहा ही जा रहा था उस वक्त।
7: साहिल जी 10 सेकंड एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा कि देखिए राहुल गांधी को यह सोचना है कि अगर विचारधारा की लड़ाई है, महात्मा गांधी के विचारों को ममता बनर्जी जितना मानती है पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि 10 नेता भी मानते होंगे, जीते होंगे, तो ममता बनर्जी के जीवन के अंदर में कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि उसने जिया है, और आप आइडियोलॉजिकल लड़ाई के अंदर में हर समय खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है, जैसे आपने स्टालिन के साथ किया, आपको समय ले लेना चाहिए था, उनसे भी बात करनी चाहिए थी कि हम ये विचारधारा की लड़ाई है,
1: सुनिए सुनील राजपूत जी
7: सपोर्ट कर रहे हैं, हमें करना चाहिए था।
1: आप मीडिया पर बोल रहे थे, आप बड़े तो, ना, आप तो देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित खुद भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं,
7: अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब देश के अंदर में यूनाइटेड फ्रंट चलाया था, इंडिया गठबंधन बनाया था, दीदी भी थी, वो सबको लेकर के चलते थे, 52 पार्टियों का गठबंधन था,
1: तो अगर आपको जवाब दीजिए
7: गठबंधन अगर चलाना है तो आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए,
1: बड़े भाई
0: दो चीजें हैं, हम हा हा हम पुरोहित जी के इस मतभेद का स्वागत करते हैं, हमारे यहां मतभेद की जगह है, विवाद का समाधान संवाद से होता है इंडिया गठबंधन में, लेकिन आप हमें एक बात बताइए ना जरा सा कि एनडीए में आज तक आपने कहीं कोई बात देखी, राजभर ने कुछ टिकट मांगे थे बिहार में, उसको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल करके फेंक दिया, राजभर वहां 55 सीटों पर चुनाव लड़ा, और मैं चुनौती देता हूं फिर से आपके सारे चैनलों को कि अगर एक चैनल ने भी राजभर की और बीजेपी की वहां पर जो अलग अलग लड़ाई हुई थी उस पर कोई डिबेट की हो, हमारे यहां तो विवाद है, विवाद का समाधान भी है संवाद, और संवाद के जरिए अगर कोई दिक्कत होती है राज्य स्तर पर, जैसे
1: महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद छीना गया तब उस डिबेट में शहजाद पूनावाला खुद वहां पर बैठे हुए थे, बिहार के भीतर जब नीतीश कुमार वहां से हटे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस डिबेट में धीरेन्द्र कुमार भी थे और उसके साथ साथ शहजाद पूनावाला भी बैठे हुए थे। ये तो डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं। यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना। देखिए, धीरेन्द्र कुमार की पार्टी रामविलास पासवान के पुराने बयानों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कैसे तैयार नहीं है। देखिए, आनंद दुबे अभी दो दिन पहले, उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भीतर सावरकर स्मारक का उद्घाटन किया हुआ है, कांग्रेस पार्टी को यह बहुत छला होगा, अभी दो दिन पहले की बात है। देखिए, आनंद दुबे भी यहां पर हंस रहे। दूसरी और एक बात है, कांग्रेस पार्टी यानी जो बीजेपी कहती है, एक वक्त पे जब जेपी नड्डा अध्यक्ष थे तब उनका बयान बड़ा वायरल हुआ था कि रीजनल पार्टी सब खत्म हो जाएगी। आपके नेता भी वही कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कि अगर आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सिर्फ अकेले कांग्रेस लड़ सकती है, यानी आशुतोष वर्मा की पार्टी कुछ नहीं कर सकती। यहां पर अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित ममता दीदी को सबसे बड़ा चैलेंजर कह रहे थे कि जो आरएसएस विचारधारा के खिलाफ लड़ सकती है वो भी नहीं लड़ सकती, सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं। सही है ना आशुतोष वर्मा जी, स्टेटमेंट तो वही निकल के आता है ना इसका मतलब।
0: राहुल गांधी जी ने तो सही कहा, अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सार्वदेशिक पार्टी तो कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ राज्यवार चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती है। सार्वदेशिक रूप से मुकाबला तो कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, इसमें किसी को क्या आपत्ति, इसमें आपको भी क्या आपत्ति।
1: आनंद दुबे, सही है ये बात,
0: शिंदे वाली बात
1: और
0: नहीं
1: एक और एक सवाल का
0: मैंने किसी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी थी कि ओम प्रकाश राजभर पर कोई डिबेट करी, ओम प्रकाश राजभर पूरे बिहार में चुनाव लड़ा था, निकाल लीजिए साहिल जी कोई डिबेट।
5: साहिल जी, मैं आना चाहूंगा।
1: वो तो शिवसेना, आशुतोष जी एक मिनट जरा, आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहना है कब से, वो मतलब वो सामना में लिखते रहते हैं संजय राउत, उससे अच्छा आज आनंद दुबे क्या बोल रहे हैं वो सुनना है मुझे। और एक सवाल का जवाब आनंद दुबे जी दे दीजिएगा, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने आपका जिक्र किया है, आपको असली चोट किससे मिली है, आपके पुरानी सहयोगी से या नए सहयोगी से, वो भी जरा साफ कर दीजिएगा एक बार।
8: खूब सारा चिंतन
1: आ गए आपकी आवाज आ गई, बोलिए।
8: चुनाव दर चुनाव हार कर हम लोग करते हैं खूब सारा चिंतन, दही को मत कर बना देते हैं छाछ और कर देते हैं मंथन, इसीलिए हमारा नाम है इंडिया गठबंधन। हम लोग बहुत मजबूत गठबंधन है साहिल भाई, हम चुनाव के पहले अपने सहयोगियों से कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और चुनाव के बाद हम कहते हैं हम साथ साथ हैं, इसमें किसी को क्या तकलीफ हो रही है भाई। ये हमारा एक महान गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, ये चार पांच वर्षों में इसकी इतनी मीटिंगें हो गई, इतनी चर्चाएं हो गई, इतने इसके ज्यादा चिंतन बैठकें हो गई कि आप लोग तो बेहोश हो गए होंगे ये सब देख के। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, आज नहीं कल 10-20 साल 25-50 साल में जरूर एक दिन बीजेपी को हरा डालेंगे, क्योंकि हम लोग उतने ऊर्जावान है। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि गठबंधन में चल क्या रहा है, तो देखिए हम सब तो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस बहुत मजबूत और पुराना दल है। हम सबका सपना है 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें, तो राहुल गांधी जी की पार्टी को बड़ा हृदय करके आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और उसके बाद जेएमएम, सभी को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राजपूत भैया की पार्टी को बनना है। या तो आप कहें कि आनंद दुबे जी की पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगी 29 में, तो ये कार्यवाही हम निभाएंगे, हम मेहनत से सबको साथ लेकर चलेंगे, हम जोश में काम करेंगे। लेकिन आपका ये है, अगर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के वोटा परसेंटेज मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। तो मेरे भाई ये आपने को करना पड़ेगा, ये एक डिबेट के 40 मिनट में नहीं होगा, 400 घंटे लगा के
1: आनंद दुबे जी
8: खपाना पड़ेगा।
1: ये बात तो ठीक है, लेकिन आनंद दुबे जी आप देखिए, आप पुराने बयानों पर लड़ते रहते हैं। देखिए, मैंने धीरेन्द्र कुमार जी की पार्टी का मैंने इसीलिए उदाहरण देने की कोशिश की, क्योंकि उस दिन मैं YouTube पर रामविलास पासवान जी के पुराने भाषण सुन रहा था, वो सुनेंगे तो बात ही कुछ और निकल कर आ जाएगी। लेकिन आज उनकी पार्टी इसके बारे में बात करती है क्या? नहीं करती है, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है और ऐसे बयानों पर वो चर्चा नहीं करना चाहते कि जिसकी
8: वहां नेतृत्व है। साहिल भाई, अभी हमारे बड़े भाई राजपूत साहब ने कहा इंडिया गठबंधन में हर आदमी अध्यक्ष है, अखिलेश जी भी अध्यक्ष हैं, उद्धव साहब भी अध्यक्ष हैं, ममता जी, जिस दल में 36
1: यही कारण है ना कि इंडिया एनडीए गठबंधन मजबूत है कि पुरानी बातें नहीं निकालते हम, आगे का सोचते हैं, पहले जो नेता कह चुके वो हो चुका, अब आगे का सोचते हैं।
9: अहिल जी 2014 से आप लगातार देखिए कि हमारे जी में मजबूती से हैं और दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और हमको बढ़ने से रोका जा रहा है। बिहार में भी गठबंधन करते हैं हम, झारखंड में भी सीटें मिली है मुझे, दिल्ली में भी मुझे सीटें मिली, नागालैंड में भी मेरे एमएलए है, अगर बंगाल में जरूरत थी तो हमने सहयोग किया। हम आपस में देश को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, और सबसे ज्यादा एनडीए में खुशी तो है, बंगाल में हम लोगों के जीतने की खुशी है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए से ज्यादा खुशी अगर किसी एक पार्टी में तो वह आदरणीय राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को सुरेंद्र राजपूत जी को, चूंकि ये जनता का विश्वास तो इन लोगों ने पहले ही खो दिया था, अब एक दूसरे का भी विश्वास ये लोग खो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कभी चुनाव आयोग से कि वो गलत कर रहा है, तो कभी किसी और पे आरोप लगाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे।
1: ठीक है,
9: एक्चुअल में ये लोग मुद्दे पे पकड़कर राजनीति।
1: चलिए अभी ऐसा है, अगले चुनाव तो उत्तर प्रदेश के भीतर होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तब इंडिया गठबंधन की एक और एक टेस्ट वहां पर होगी, यानी और एक परीक्षा वहां पर होने वाली है। वो परीक्षा कैसे वो पास करते हैं उस पर नजर बनी रहेगी। और देखिए यूपी से ये अलग खबर आ रही है कि यूपी में कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 8 से 10 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, और थोड़ी देर में राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी मिलने वाले हैं, मुलाकात करेंगे, 9 से 10 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं, यह खबर भी उत्तर प्रदेश से वहां पर आ रही है। तो यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमिलनाडु के भीतर जो मामला फंसा हुआ है वो क्या होगा उस पर भी नए हम लोग ये नई खबर देखिए, यूपी में 6 नए मंत्री कल शपथ ले सकते हैं, कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां एक तरीके से शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे ये भी मंत्री बन सकते हैं, यानी चुनाव के पहले अलग अलग जाति समूहों को भी एडजस्ट करने की तैयारी उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
11: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: presented by
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Hey Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: Patanjali Dant Kanti.
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रोफाइबर है.
6: माइक्रोफाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
6: हमारे सीमेंट में नहीं है?
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स.
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स. बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स.
10: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स.
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
15: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है.
16: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है. तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम.
15: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है.
17: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद.
18: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर. हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
19: विमल, बोलो जुबां केसरी.
20: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
21: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
22: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रोफाइबर है.
6: माइक्रोफाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
6: हमारे सीमेंट में नहीं है?
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
23: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: तमिलनाडु में टीवी के सरकार का रास्ता साफ। वीसीके और आईयूएमएल ने विजय को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं विजय। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। यूपी में कल हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। भूपेंद्र चौधरी समेत 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। केरल में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला जल्द। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल। सबसे दुर्गम किले पर लहरा केसरिया ध्वज। शुभेंदु ने ली बंगाल के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ। बंगाल की जनता को पीएम ने किया दंडवत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। केजरीवाल ने औरंगजेब से की बीजेपी की तुलना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल में आज एक नया सूर्योदय हुआ। भारत के पूर्वी राज्य में पहली बार बीजेपी का सूरज उगा है, जहां शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में, जिसको कई लोग शक्ति प्रदर्शन भी कह रहे हैं एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उस मंच पर मौजूद थे, अनेकों मुख्यमंत्री थे। शपथ के साथ शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लिया तो सीएम योगी ने भगवा गमछा पहनाया। शुभेंदु के साथ पांच मंत्रियों ने शपथ ली, इनमें बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नाम और ओबीसी चेहरा दिलीप घोष के साथ फायर ब्रांड महिला नेता अग्निमित्रा पॉल शामिल है। सवाल है कि बंगाल में सत्ता तो बदल चुकी, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन क्या सत्ता पाने के लिए जिन जिन वादों गारंटीज का बीजेपी ने ऐलान किया, जो अपेक्षाएं वहां पर अब जनता को है, क्या जनता ने जिस भरोसे से बीजेपी को ये छप्पर फाड़ वोट दिया है, 207 सीट, हालांकि इसका आकलन करना फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन विपक्ष के आरोपों का तो है तो सवाल पूछे ही जाएंगे। आज हल्ला बोल में हम बहस करेंगे इसी के इर्द गिर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन साष्टांग प्रणाम किया है बंगाल की जनता को, ये रिपोर्ट देखिए।

0: बंगाल में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब।
0: शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं, बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मथुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदिराम टुडू और निश्चित प्रमाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया और उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ हम लोग का परिवार। ये इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट थे बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लादवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा शरद के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
0: पीएम मोदी के सम्मान को बीजेपी सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रही है। दरअसल

0: काम करना इतना साल बहुत मुश्किल की बात है। विधानसभा का अंदर आप विधायक हो, आपका माइक बंद कर दिया जाता है। कोई भी इश्यू, आज बोकटुई में हमारे मुस्लिम महिला लोगों को जला दिया गया, उसमें डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन करने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, मार्शल देकर हम लोग को बाहर कर दिया गया। बहुत बार हम लोग सस्पेंड हुए, अपना असेंबली में जब जाएंगे, असेंबली में जा रहे, डोर टू डोर कर रहे, तब टीएमसी का कैडर आके आपको अपमान करेंगे, हैकल करेंगे। और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। काम करने एमएलए फंड से जो काम, जो पैसा हम लोग को मिलता है, जो हमारा अधिकार है, उसमें डिले किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा है। इसके ऊपर तो जैसे हम तो डिजाइनर होके हम आए हैं, और मेरे नाम में मर्डर केस है, मेरे नाम में आर्म्स केस है। तो एक क्या बोले, कोई भी कार्यकर्ता के लिए, भाजपा कार्यकर्ता के लिए पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी रेजिम में काम करना बहुत ही मुश्किल था। और आज जब सरकार आ गया है तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये सपना हम लोग पूरा किए। उनका पश्चिम बंगाल में आज उनका ही, वो जिस पार्टी के स्रष्टा है, वो पार्टी आज सरकार बना रहे, ये हम लोग का अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है।
1: अग्निमित्रा जी, आपने खुद ही बताया आप फैशन डिजाइनर हैं, आप कपड़े डिजाइन करती थी और कांथा वर्क को भी आपने खूब प्रमोट किया। और खुशी की बात तो ये है कि जो पांच लोगों ने शपथ ली उनमें एक महिला के तौर पर भी आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये भी एक खुशी है। लेकिन दरअसल बंगाल में एक वक्त ऐसा भी आप लोगों ने देखा ही होगा जब बीजेपी के लिए मतलब लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था भाई। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग मिलते नहीं थे, खोजने से भी नहीं मिलते थे, है ना। तो आपने वो दौर भी देखा होगा, वहां से लेकर आज का ये स्टेज, वो ट्रांजिशन बताइए, शुरू में क्या प्रॉब्लम्स होती थी?
0: देखिए पहले तो एक टीएमसी के तरफ महिला का एक बहुत विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं बोलेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री उनको कन्विंस किए, और सबसे ज्यादा वो लोखीर भांडार जो ₹1,000-1,200 का अनुदान दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा चीज, एक गेम चेंजर हुए टीएमसी के लिए। 15 साल वो लोग कुछ काम नहीं किए। हम एक बीजेपी का कार्यकर्ता होके नहीं बोल रहे, आप किसी भी गांव में जाओ, किसी भी स्टेटा का लोगों से पूछो, कोई काम नहीं किया। लेकिन 50% महिला वोटर है। जब ये लखीर भंडार उन लोगों को मिला तो छप्पड़ भार के वो लोग वोट दिए थे। लेकिन अब हम लोग ये लास्ट 5 साल, स्पेशली लास्ट 2-3 साल, जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, आरजी कौर डॉक्टर अभया को जिस तरह मारा गया, दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट उड़ीसा से आया था, उसको 8 बजे के बाद वो खाना लेने गए, उसका दर्शन कर दिया, और मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद बोल रहे कि 8 बजे के बाद निकलने का जरूरत क्या है। मैंने 8 बजे के बाद कोई विभिन्न पुलिस ऑफिसर हो तो थाना नहीं जाएंगे, कोई महिला डॉक्टर हो तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। ये सब देख के ना, महिला जो 50% वोटर, और जो हमारे मातृतांत्रिक समाज है, बंगाल माँ दुर्गा माँ काली का देश है, जो महिला का सम्मान करते हैं, वो लोग भी आज टीएमसी के विरुद्ध में हो गया है। और हम लोग जिस तरह से बोले, बहुत डिफिकल्ट था, घर घर जाते थे, हमको बोलते आपको तो विधायक बनाए हैं, आप हमको घर क्यों नहीं दिए, आप हमको नौकरी क्यों नहीं दिए, घर में पानी क्यों नहीं दिए। तो हम उन लोग को यही बोले कि देखो, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहे तृणमूल, पंचायत चला रहे तृणमूल, सरकार चला रहे तृणमूल, इस बार सरकार को बदलाओ और दीदी को भी, दीदी भाई को भी तुम जिताओ, सब कुछ देंगे। तो लोग ना समझे और विश्वास किए कि हाँ, इस बार हम लोग सरकार, सिर्फ दीदी भाई को नहीं जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। और यही विश्वास सारे बंगाल के लोगों को हुआ कि नहीं, मोदी का सरकार जब बनेगा, भाजपा की सरकार जब बनेगा, एक बार हम लोग चेंज करके देखते हैं। कांग्रेस को हम लोग अपॉर्चुनिटी दिए, सीपीएम को दिए, टीएमसी को दिए, इस बार कंपटीशन होता है, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होगा, भाजपा को एक बार मौका मिलना चाहिए। तो इस बार और भी ज्यादा चैलेंज है, अभी तो सरकार बन गया है, लेकिन आगामी दिन में जो जो हम लोग प्रॉमिस,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी
0: सारी प्रॉमिस हम लोग को डिलीवर करना है ये 5 साल में।
1: और इतना बड़ा मैंडेट है अग्निमित्रा जी, वो अपने आप में हम्बल करने के लिए बहुत है। 207 आपको जितने वादे किए हैं सब पूरा करना होगा। पश्चिम बंगाल में मतलब मूल चूक परिवर्तन आप लोगों को करना होगा। अच्छा ये बताइए कि क्या अग्निमित्रा जी अभी तक क्लियर है कि क्या मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ दो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्या कुछ आप लोगों को बताया गया है इस बारे में, आपके जिम्मेदारी के बारे में।

0: पर्सनली मंत्री के तौर पर?
1: नहीं, अभी तक हम लोग का कुछ जिम्मेदारी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, तो अभी शीर्ष नेतृत्व बोलेंगे, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बताएंगे, कोई हमारा मंडे को सोमवार को हम लोग जाएंगे, एक मीटिंग बुलाया गया है, बैठक बुलाया गया है, लेकिन वो कितने बजे है ये टाइम अभी तक आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा।
0: डेप्यूटी सीएम को लेकर कुछ बात है क्या?
1: नहीं, मेरे साथ इसका विषय में कुछ चर्चा नहीं हुआ है।
0: अब ये सबसे बड़ा एजेंडा, अगर अग्निमित्रा पॉल जी को आज बोला जाए, क्योंकि आसनसोल में मैंने भी जाकर देखा, अभी बहुत सारे मतलब पूरे बर्धमान जिले में मतलब कई जगहों पर देखकर आंखें ऐसी खुली रह जाती थी कि बदलाव बिल्कुल नहीं पहुंचा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला काम अगर कुछ मंत्री बनने के बाद आपको करना है, पहला काम अगर कोई चूज करना हो, क्या करिए?
1: देखिए, पहला काम होगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इधर नहीं है, और 15 साल और उसके आगे 34 साल नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर को वापस एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भुगते हैं सॉफ्ट टारगेट महिला। आज 8 महीना का बच्चा बोलिए फुटपाथ से उठाकर उसको धर्षण किया जा रहा है, और 80 साल के महिला बोलिए उनको भी धर्षण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और जितना भी घटना हुआ स्ट्रेंज लगता है कि ममता बनर्जी ऐसे किए क्यों, एक महिला होने के नाते उनको तो ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए था, उनको तो ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था महिला का विषय में, लेकिन जब भी हुआ ना धर्षण, जब भी अत्याचार हुआ, वो हमारा ही कैरेक्टर का असैसिनेशन करते हैं, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका उसके साथ अफेयर था, मैंने एक अद्भुत उनका एक क्या बोले सोच है कि एक महिला मुख्यमंत्री के कभी महिला के साथ नहीं खड़ा रहे, 1,500 रुपया का लखीर भंडार मिला लेकिन महिला का कोई इज्जत नहीं मिला, और ये माँ दुर्गा माँ काली का देश है। आज रेप का रेट बना दिया था, फुल रेप का ये रेट, हाफ रेप का ये रेट, बताइए। तो आज एक तो लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना है, बाकी देखिए घर नहीं है, आप तो आए थे आसनसोल, आपसे हम मिल नहीं पाए, लेकिन आज जिस अवस्था में महिला लोग को ज्यादा हमको खराब लगता है, मिट्टी का घर, लाइट नहीं है, ऊपर से पानी टपक रहा है, बाल्टी लगाकर रखे बारिश में, तो घर देना है, शौचालय नहीं है, ग्रामीण में तो ठीक है आप तो मैदान में जा सकते हैं, लेकिन अर्बन इलाका में रात को 3 बजे उठकर नाली में वो लोग बाथरूम जाते हैं, तो शौचालय देना है, और पानी, इतना समस्या है पानी का, सारी नदी को बाली चोरी करके नाली को नदी को खत्म कर दिया, पूरा पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया, और हर जगह में वाटर का शॉर्टेज। एक साल आगे हमारे आसनसोल में दामोदर के ऊपर ये बाली चोरी करने का विषय में वो जो मेन पाइपलाइन था वाटर सप्लाई वो टूट गए, उन लोग के लिए आज उन लोग बाली चोरी किए हैं, उसलिए ये ब्रिज तोड़ गए, माने ये हो गया, एक साल हो गया अभी तक उसको ठीक नहीं किया। इस सरकार का क्या अकाउंटेबिलिटी है बताइए, क्या 51 विलेजेस में ये मेन पाइपलाइन वाटर सप्लाई करता था, आज तक वो ठीक नहीं किया।
0: अब तो आप लोग सरकार है,
1: सरकार नहीं जाएगा तो कौन जाएगा बोलिए।
0: ठीक है, बट अग्निमित्रा जी चलिए, जनता
1: लोग सरकार है,
0: जनता ने बाजी पलटी है,
1: हम लोग इधर सेवा करने के लिए आए हैं।
0: ठीक है, ठीक है, अब इस तस्वीर पर मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ।
1: मोदी जी मेरा लोगों को सिखाया कि सेवा करो, शासन नहीं।
0: पीएम ने आज कुछ बोला?
1: नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि पूरा एकदम बहुत काम है, मन लगाकर काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी यही बोले सबको।
0: ये विजुअल एक बार दिखाते हैं, और मेरा आखिरी प्रश्न यही है, मंच था और भगवा रंग हावी दिख रहा था वहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग किया वहां पर लोगों के लिए, हम लोग तो तस्वीरें दूर से देख रहे थे, बट आप वहां पर मौजूद थी शपथ लेने के लिए, ये तस्वीरें आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को?
1: एक हमारे प्रधानमंत्री, एक भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरा साष्टांग होकर प्रणाम किए बंगाल के जनता को ये मैंडेट देने के लिए, और एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम लोग देखे हैं जो कुछ काम नहीं किए, सिर्फ लोगों का अंडू एडवांटेज लिए, और बोले कि वो माँ शारदा है, माँ शारदा हमारे भगवान है, और बोले वो माँ शारदा है, तो एक कंपैरिजन की अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल ये भाजपा सरकार है हर टाइम लोगों के लिए। इसीलिए आज 21 राज्य में 21 राज्य में हमारा सरकार चल रहा है। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, बंगाल के सेवा करने के लिए आए हैं, शासन नहीं।
0: ठीक है, अरे ममता बनर्जी तो लेकिन मान नहीं रही हैं। वो एक तो उन्होंने पहले भी इस्तीफा के लिए कह दिया कि मैं क्यों जाऊं, मैं हारी नहीं हूं। दूसरा वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग की वजह से आप लोग जीते हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को अब अपना विरोध छोड़कर लेफ्ट को भी आमंत्रण दे रही हैं, लेफ्ट को भी आमंत्रण दे रही हैं, कांग्रेस को दे रही हैं, सभी पार्टियों को दे रही हैं एकजुट होने के लिए। सुनिएगा अग्निमित्रा जी, उस पर रिएक्शन दे दीजिएगा आप अपना तुरंत, जल्दी से सुना दीजिए क्या कहा उन्होंने।
2: তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন। আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। এবং আজকে যা অবস্থা, বিজেপিকে যদি রুখতে হয় লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব।
0: সারি পার্টিও কো একজুট হোনে কা আহ্বান কর রহি হ্যায় অগ্নিমিত্রা পল জি।
1: দেখিয়ে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স মে তো আপনে আপনি ইউনিটি নেই হ্যায়। আজ ইলেকশন কে বাদ কংগ্রেস কে রাহুল গান্ধী নে বোলা কি আজ মমতা ব্যানার্জি কে লিয়ে बीजेपी का ये एंट्री हो गया। एक दूसरे जन का दोष देते हैं, दिल्ली में जाके फिश फ्राई खाते हैं और इधर आके कुश्ती करते हैं। ममता बनर्जी जिस रिस्पेक्ट, श्रद्धा, भरोसा 2011 में मिला, वो अगर भरोसा और श्रद्धा अगर रखते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज विभ्रांत करने का राजनीति जो ममता बनर्जी ने किया है ना, उसके लिए आज ये अवस्था हुआ है। और आज अगर वो बोलेंगे कि आज चोरी किया है, वो करने नहीं दिया, हमको मारा है, हमको ये किया है, कोई बिलीव नहीं करेगा। क्योंकि आप ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का राजनीति ममता बनर्जी आप किए हैं, और विभ्रांत, कन्फ्यूशन क्रिएट करने का राजनीति। SIR कन्फ्यूशन क्रिएट करो, वका फाइन कन्फ्यूशन क्रिएट करो, CAA कन्फ्यूशन क्रिएट करो, तो एक क्रेडिबिलिटी होता ना, वो क्रेडिबिलिटी ममता बनर्जी आप खत्म कर दिए, आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी।
0: अग्निमित्रा पॉल जी, आप आज तक पर आए, आपका बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई फिर से मंत्री पद के लिए, लेकिन जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब उम्मीद है कि जनता से जो जो आप लोगों ने वादे किए वो पूरा करेंगे, धन्यवाद। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मानव जायसवाल हमारे साथ प्रवक्ता TMC के जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब जो संघ से जुड़े हुए हैं वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अजय आलोक जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल की जनता के सामने साष्टांग किया है। बंगाल की जनता की जो उम्मीदें हैं, मतलब इस तरफ आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कदम होगा, इन सब पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये तो है कि इससे ऐतिहासिक कुछ बीजेपी के लिए हो नहीं सकता था, वहां पर आप पहुंच गए जहां पर जन्मे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
3: मैंने ये कहा था कि गृहमंत्री जी ने इस देश के कहा, उन्होंने कि चुनाव के दौरान कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को लेकर हम डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट करेंगे। अब सरकार बनने के बाद फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब फॉर्मूला रहेगा PRT, जो प्रधानमंत्री का फॉर्मूला है, परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें परफॉर्मेंस भी होगी, रिफॉर्म भी किया जाएगा और पूरे बंगाल को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। देखिए, बंगाल में अद्भुत क्षमता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था अर्ली 1900s तक। ब्रिटिशर कोई पागल नहीं थे कि बंगाल आके ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था। लुक एट ईस्ट पॉलिसी में एक सबसे बड़ा कमर्शियल हब हमारा ग्रेट निकोबार और बंगाल हो सकता है, जो कि प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ट्रेमेंडस पोटेंशियल्स है, हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास इनलैंड वाटरवेज है, बंगाल की धरती इतनी फर्टाइल है, पूरा गैंजेटिक बेसिन का लैंड है हमारे पास। आप ये सोचिए कि एक नदियों से घिरा हुआ राज्य होने के बावजूद, समुद्री सीमा होने के बावजूद, बंगाल को मछली के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे राज्यों पे। इसको कहते हैं मिस गवर्नेंस। हमारी आकलन के अनुसार बंगाल से हम $1 बिलियन की का प्रॉन सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं अगर उसको ढंग से मैनेज किया।
0: ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक रोडमैप आप दे रहे हैं अजय आलोक जी, मैं एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, आज जो वहां पर ये मतलब जो शपथ ग्रहण हुआ उसको कई लोग शक्ति प्रदर्शन भी कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि भगवा कुर्ता, भगवा कपड़ा, भगवा भाई लहरा गया, इसी में आप लोग रह जाएंगे सांकेतिक रूप से, या जिन मुद्दों पर आप सत्ता में आए कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा है, जिन मुद्दों पर आप आए जिसमें घुसपैठ का मुद्दा आपने किया, जिसको गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, इन पर डिलीवरी कब?
3: जिस दल की सांस्कृतिक परिभाषा जिसको नहीं आती हो तो उस दल का कभी भला नहीं हो पाता है। जो दल अपने सांस्कृतिक मर्यादाओं को याद रखता है वही दल आगे बढ़ता है। कल्चरल नेशनलिज्म हमारे अंदर घुसा हुआ है। मत भूलिए कि बंगाल से हमारी उत्पत्ति हुई थी, हम यहीं से पैदा हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही पार्टी की नींव रखी थी और भारत के पहले चुनाव में 4 सीटें हमें यहीं बसी बंगाल से आई थी। तो बंगाल हमारे लिए बहुत इमोशनल इशू है। और आज बंगाल में भगवा लहरा रहा है जो कि 70 साल पहले लहराना चाहिए था। आज ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पूरे भारत, ऑलमोस्ट पूरे भारत को कवर करते करते आज हम बंगाल में पहुंचे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल मुद्दा था, न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि उन 350 कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री जी उन कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों से भी मिले। हमारे अब सोचिए 98 वर्ष के कार्यकर्ता वहां मंच पे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जिनके पैर छू के आशीर्वाद दिया। और जहां तक हम ये काम करने की बात है, ये दोनों दो अलग चीज है। ये हमारा सांस्कृतिक मिशन है जो कि कंप्लीट हुआ। काम करने की बात तो आप कोई भी स्टेट लाइन से उठा के देख लीजिए। 1991 से गुजरात में पहली बार सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्यों में गई उसे चूसा हुआ आम मिला। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो राज्य सींचा हुआ पेड़, सींचा हुआ खेत दिखता है। अच्छा। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मैं लाइन से गिना दूंगा इसमें।
0: ठीक है मानव जायसवाल जी, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, आप लोगों की ये हालत नहीं हो गई क्या? कांग्रेस से भी लड़ लिए, राहुल गांधी भी 10 शब्द बोल के मतलब, और अब तो राहुल गांधी दम भर रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस ही हराएगी। और वहां उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वही करती है बंगाल में जो केंद्र में मोदी जी करते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ मतलब वही चुनाव आयोग ने हरा दिया या समझेंगे? क्योंकि कई नेता आपके भी ऑन ग्राउंड देख रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको। मनोज जी, जायसवाल जी, 3 सवाल है।
4: पहले आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है अंजना जी। बहरहाल आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई, 3 चीजें आपने गिनवाई, और एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ओम प्रकाश रावत जी, 2018 से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका भी एक बयान आया है। ये कभी नहीं हुआ पूरे देश में जहां इतने लोग इलेक्टोरल रोल से आउट हो गए। इलेक्शन कमीशन की नाकामयाबी को उन्होंने पूरे देश के सामने अवगत कराया है। और इसी तरीके से अनंत लोग बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम वही सुने जो हम सुनना चाहते हैं। देश बहुत कुछ बोलता है और आपको सब सुनने की आदत होनी चाहिए, जो हमें भी है। जहां तक बात है हमारी रणनीति की, हमारी नीति की, हमारे धैर्य की, जो परीक्षा अभी ली जा रही है वो सही है। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि बहुत ही सुंदर बंगला के इन्होंने आगाज किया है, बहुत अच्छा बंगला है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस तोड़ी जा रही है, आपका स्टेटमेंट एक आ रहा है, आपके सड़क पे अलग चीज दिख रही है, मुख्य दर्शक बन के बैठी है जो 3.5 लाख मोटा मोटी इनकी जो फोर्स आई हुई थी बंगाल में, हमारे लोग गए उनको वोट देने के लिए, आप बुलाए थे कि भाई सबको वोट हो, वोटिंग हो गई तो पता चला वोटिंग के लिए नहीं, आपको काउंटिंग रोकने के लिए उनको बुलाना पड़ा कि भाई काउंटिंग हमको कैसे भी मैनिपुलेट करना है, क्योंकि दिखा है सीसीटीवी फुटेज है।
0: मानव जी, चूंकि आपके और अजय आलोक जी के साथ ये विजुअल चल रहा है, मैंने उनको भी टोका था, जरा इस पर भी कुछ बोलिए। आज अच्छा है कि आपने तस्वीर पीछे लगा रखी है, लेकिन ममता दी को न्योता तो गया ही होगा, क्या शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए? हम लोकतंत्र खाली लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन एक ग्रेसफुली हार भी तो उसी का एक हिस्सा है ना। आपके कई 2-3 नेताओं ने खुलकर उसको स्वीकारा भी, लेकिन आप लोग लग रहा है कि अभी भी सेंस ऑफ डिनायल में है।
4: देखिए सेंस ऑफ डिनायल एंड सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एंड एंड सबसे बड़ी बात होती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सच में है। 30 लाख लोगों को काट दिया गया, नाम काट दिया गया, 7.5 लोगों को अचानक ऐड कर दिया गया, सीसीटीवी फुटेज को छुपा लिया गया, 2 बजे तक जहां 10% वोटिंग नहीं हुई पूरे देश में पूरे मीडिया चैनलों ने 200 बार का नारा लगा दिया, हमारे बूथ तोड़ना शुरू हो गया।
0: मानव जी आप लोगों को छोड़ के, एक सेकेंड सुनूंगी मैं आपका, इतने दिन से सुनी रही हूँ। हारने के बाद आपका खींच ज्यादा दिख रहा है, जब तक आपको भरोसा था जीतेंगे तब तक आप ठीक से बात कर रहे थे। आज भी सुनिए, इसकी गलती उसकी गलती उसकी गलती, यही कर रही है विपक्ष की पार्टियां। ये बताइए 27 लाख वोट जो डिलीट हुए हैं उस पर अपने हर डिबेट में मैंने सवाल पूछा या नहीं पूछा है? भाई उस मुद्दे को उठा ही तो सकते हैं। लीगली आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो किया वो भी सबने देखा, कुछ केसेस जो उन्होंने सुनवाई पूरी की वो किया और बाकी कहा वोटिंग होने दो। तो कोर्ट ने किया है ना, पहला। दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का, नहीं सुनिए आप बोलिएगा अपनी बात, लेकिन सब कुछ एक कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। 90 लाख वोट जो कटे, अब इतने मृत लोग, इतने जो गलत वोटर्स उसमें शामिल थे या फिर दूसरी जगह जा चुके थे, उनके वोट से अगर आप जीत रहे थे तो उस पर तो किसी ने नहीं चिल्ला चिल्ली की कि भाई ममता बनर्जी 3 बार से गलत तरीके से जीत रही थी ना भाई। उनमें से अनेकों मृत और दूसरी जगह में मौजूद लोग थे ना SIR के पहले। अभय दुबे जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सिंपल सी बात है कि वोटर्स लिस्ट को लेकर अजय आलोक जी, ठीक है एक बार अजय आलोक जी रिस्पॉन्ड कर दे उनकी बात पे, फिर आ रही हूँ अभय जी, छोटा सा 3 लाइन का रिस्पॉन्स।
3: मैं बस 3 लाइन का मैं कह रहा हूँ, 27 लाख वोटर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सबको पता है। मुझे उसके बाद इन्होंने हंगामा करना शुरू किया, क्या कि मथुआ वोटर बीजेपी के वोटर ने उनका वोट काट दिया, इनको कैसे पता लगा कि 27 लाख वोटर इनके हैं? बात नंबर एक, लोकतंत्र का ये आदर होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानो? लोकतंत्र का ये आदर होता है कि मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए इस्तीफा ना दे?
0: नहीं नहीं अजय आलोक जी, वो किसी के भी वोटर
3: का आदर होता है,
0: एक भी वोटर अगर अपना वोट नहीं दे सकता है
3: वो किसी के भी,
0: वो नागरिक है इस देश के और उनका पहला राइट
3: ये भी वोटिंग राइट, ये भी अंजना जी ये भी पश्चिम बंगाल सरकार के तंत्र की कमी थी। ये ऑफिसर उपलब्ध नहीं करवा पाए SIR के लिए टाइम पर, इसका एफिडेविट दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे, तब सुप्रीम कोर्ट ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए झारखंड और उड़ीसा से,
4: इलेक्शन कमीशन ने कराया,
0: अभय जी
3: झारखंड सरकार का एफिडेविट, इनकी फेलियर
4: है, ये भी बोगस है।
0: अभय दुबे जी आज बड़ा सवाल यही है कि आप भी जमीन पर थे, मैं किसी को कोट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सबको दिख रहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। ये भी एक सच्चाई है कि 27 लाख वोटर्स वोट नहीं डाल पाए हैं और वो सच्चाई बोली जाएगी, लेकिन इससे पहले जब शुद्धिकरण नहीं हुआ था तब 90 लाख वोटर भी ऐसे थे, है ना, जिनके नाम बाद में काटे गए या तो उनमें से कई मृत थे या दूसरी जगह चले गए थे। इसी पे अटक के रहना है या समझना है? और आपने तो सर हर जगह लड़ाई मोल ले ली है, DMK के साथ वहां तमिलनाडु में ले ली है, TMC के साथ यहां पर ले ली है, तो अकेले ही अपने दम पर 29 की लड़ाई लड़नी है क्या?
5: अंजना जी आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय हुआ है, तो भ्रष्टाचार के काले घनघोर अंधियारे बादल के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब 2016 में आए थे आपने कहा प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी क्या अपने वादे पूरे करेगी? क्या सबसे पहला वादा था? वादा यह था कि 389 जो केसेस शारदा स्कैम के थे जिसमें 25 लाख लोगों के 20,000 करोड़ रुपए लूटे गए, उन केसेस का क्या न्याय प्रधानमंत्री जी ने कहा दिलाएंगे? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपको, 11 दिसंबर 2020 को सुदीप्तो सेन ने जेल में से एक प्रिजनर्स पिटीशन आपको संबोधित की थी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, और उसमें लिखा था कि करोड़ों रुपए सुबेंदु अधिकारी ने मुझसे लिए हैं और मैंने इस बात की सूचना CBI को दी है, CBI ने इंटरोगेट भी किया था। आज वो सुदीप्तो सेन को बेल मिल गई, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके वकील ने आर्ग्यू किया कि CBI अगर अदालत में केस चलाना ही नहीं चाहती तो ये हमारा आरोपी कितने सालों तक जेल की सजा काटेगा। प्रधानमंत्री 2016 के भाषण में आपने कहा था कि टेलीविजन पर लोग पैसे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के लिए आपने कहा था प्रधानमंत्री जी, और उस नारदा स्कैम के बारे में आपने हवाला दिया था प्रधानमंत्री जी कि नगद खाते हुए दिखाई दिए, उस मुकदमे का क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? जिस पिटीशन का मैं जिक्र कर रहा हूं 11 दिसंबर 2020 की, याद कीजिए 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, भ्रष्टाचार के सारे पाप धुल गए, आपने कार्यकर्ताओं का पैर छुए, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा कि एक राजनीतिक दल ने दशकों तक अगर संघर्ष किया उसके बाद कम से कम सत्ता आपने हासिल की, लेकिन अपने कार्यकर्ता को सत्ता नहीं दिलाई। सत्ता किसको दिलाई? सत्ता दिलाई दूसरे राजनीतिक दल से आए हुए लोगों के खिलाफ को सत्ता दिला दी, और आरोप आपने लगाए टेलीविजन पर, आरोप आपने लगाए, आपकी सीबीआई ने, आपकी ईडी ने मुकदमा चलाना तक उचित नहीं समझा। यही आरोप हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ भी उस शारदा स्कैम में लगाए गए थे कि करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे और मंचों से नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे और ये प्रचारित करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्म दिवस के दिन मैं ये शपथ विधि आयोजित कर रहा हूँ।
0: जी दो लाइन में अपनी बात आप पूरी कीजिए। ममता बनर्जी अब आह्वान कर रही है कि भाई सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, अब कैसे होगा? मतलब आप लड़ाई पहले कर लीजिए, अब वो कह रहे हैं फिर एकजुट हो जाएगा, जनता भी तो ये देखती है ना। आप ही के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम फुटबॉल की टीम है, यहाँ पर हम अलग अलग खेलते हैं, केंद्र में एक बनकर खेलते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला चल नहीं रहा है।
5: अंजना जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जहां तक हम इस देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई ये साथ में लड़ेंगे, चाहे वो ममता जी हो, स्टालिन हो, टीवी के हो, सारे राजनीतिक दल। हमारी मतभिन्नता, वैचारिक प्रतिबद्धताएं राज्यों में अलग अलग हो सकती है,
0: डीएमके वाले तो सांसद अलग जगह मांग रहे हैं बैठने को, डीएमके के सांसद तो अलग जगह मांग रहे हैं बैठने को।
5: हाँ बिल्कुल, उनका उनको उनका राजनीतिक दल पृथक है, उनको ये अधिकार है, लेकिन जो तमिलनाडु का मैंडेट था उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व था, और वो सब सेक्युलर राजनीतिक दल है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से आखिरी बार, क्या 2016 में जो आरोप लगाए थे शुभेंदु अधिकारी पर, क्या जो सीबीआई ईडी की जांच चल रही है वो बरकरार रहेगी, या हेमंत बिस्वा सरमा जैसा जवाब दे देंगे कि ये प्रश्न व्यर्थ के करना बंद कर दीजिए? शुचिता की राजनीति का कोई तो मूल्य होगा प्रधानमंत्री जी, कहीं तो जाकर ये ठहरेगा। वोट आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, शुचिता की राजनीति को ऐसे लोगों को नियुक्त करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां आखिर प्रजातंत्र को ले जाना चाहते हैं देश? ये सवाल करता रहेगा।
0: इन सारी बातों का जवाब देंगे वो मानव जायसवाल जी की भी बातों का और अभय जी की जवाब देंगे, लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, अब विपक्ष तो ये कह रहा है कि दो वजह से ये जीते हैं, मानव जायसवाल को आपने सुना ही, एक तो चुनाव आयोग ने उनकी नजर में जिताया है और दूसरा वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जीता है।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन निसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अंजना जी, हमने माता रानी से जो वचन दिया था वो वचन पूरा किया, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, ये तो हम माता रानी के चरणों में नमन करते हैं, बंगाल की जनता को नमन करते हैं। अब आइए टीएमसी की बात पर, और अभय जी तो और कांग्रेस पार्टी तो अप्रासंगिक है इस डिबेट में, और बंगाल चुनाव में भी पता नहीं वो लोग क्यों बीच बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। मैं टीएमसी को कहना चाहूंगा, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। आप हकीकत को देखिए, जब आप 15 साल से थे तब चुनाव आयोग भी अच्छा था, तब ईवीएम भी अच्छी थी, तब सुप्रीम कोर्ट भी अच्छा था, ईडी भी अच्छी थी, सेना भी अच्छा था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, ईडी गड़बड़ी कर रहे हैं, सीआरपीएफ वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है। आप चाहते हैं कि वो लोग बैठे रहे सत्ता में, लगातार रोहिंग्याओं को बुलाते रहे, बांग्लादेशियों को बुलाते रहे, और अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करते रहे, जो ये कहता है कि वोट देने का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को है। अब वास्तव में भारतीय नागरिकों को ने वोट दिया और एसआईआर के तहत बांग्लादेशी रोहिंग्या और जो लोग खत्म हो चुके थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था उन्हें हटा दिया गया, तो आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको लोकतंत्र का सम्मान करना सीखना चाहिए, कम से कम बुद्धदेव भट्टाचार्य जी से सीखना चाहिए जब वो चुनाव हारे थे तो किस तरीके से शांतिपूर्वक अपना ऑफिस छोड़कर चले गए थे। और फिर मैं कह रहा हूं बात यहां हिंदू मुसलमान की नहीं है कि हिंदू मुसलमान से जीता, बात रोहिंग्या बांग्लादेशी और भारतीय लोगों की है, भारत के जो बंगाली है उनकी है। भाई ये देश, ये बंगाल की जो भूमि है ना, ये काबा मदीना करके जो तुष्टिकरण कर रहे थे, शिवलिंग का अपमान कर रहे थे, ये वो सयानी घोष की भूमि नहीं है, ये भूमि उस शांति घोष की है जो अंग्रेज अधिकारियों के सीने पर चढ़कर उन्हें गोली मारी थी, ये माँ शारदा देवी की भूमि है, ये सिस्टर निवेदिता की भूमि है, ये सुनीति चौधरी की भूमि है, ये शांति घोष की भूमि है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, ये चैतन्य महाप्रभु स्वामी विवेकानंद की भूमि है, सचिंद्रनाथ शान्याल की भूमि है, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की भगवा भूमि है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भूमि नहीं है, अब उनकी यहाँ पर नहीं चलेगी।
0: इसने बार बार देंगे ना, उन्होंने सयानी घोष पर भी बोला है, ठीक है ठीक है।
4: छोटा सा
0: मोहम्मद फैज
7: रुक
0: जाइए,
7: देखिए
5: श्यामा
7: बहुत बहुत भावुक है मोहम्मद फैज भाई, बहुत अच्छा।
5: ये क्या श्यामा प्रसाद जी की भूमि है जिन्होंने 1941-42 में अंग्रेजों के समर्थन में सरकार बना ली और प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ और उस फजलुल हक के साथ बना ली जिसने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि बताते हो आप इसको? ये भूमि है माता की हाजरा की जिसने वंदे मातरम के उद्घोष के साथ 3 गोलियां अपने सीने में खाई,
6: बांग्लादेश बना दिया, अक्साई चीन चीन को दे दिया, पाक
5: अरे सुबेंदु अधिकारी
6: पाकिस्तान को दे दिया,
7: आपने आपको ज्ञान ही नहीं है,
5: वो बुकर
7: क्षमता रखिए दृश्य सुनने की,
0: ठीक है बोलिए
7: बोलिए जी, दूसरा शांत रहने। ये मोहम्मद फैज भाई जो है बड़े भावुक है, बड़े भावुक व्यक्ति हैं, पूरे देश को भगवा में लहरा दिया, इनका बहुत प्रतिनिधि है, इनके बड़े प्रतिनिधि हैं, मोहम्मद फैज भाई खुद एक प्रतिनिधि है भाजपा के, इन्होंने लेजिस्लेशन इलेक्शन असेंबली में इनके बड़ा योगदान रहेगा, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ,
0: मेंबर है, संयोजक है,
7: नहीं कई सांसद भी है, क्या सांसद भी है, सांसद होंगे या विधायक होंगे, कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक होंगे।
0: देखिए अगर आपकी पार्टी अच्छा करेगी तो आपका भी नंबर आएगा। मैडम मानव जी,
7: मैडम मैडम मैडम मैडम, मेरी पार्टी ने अच्छा किया है,
0: लेट हिम स्पीक अप प्लीज, हाँ बोलिए।
7: 1660 ही नाम ऐड हुए इलेक्शन कमीशन ने ऐड किया, इसके वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया, क्या ये जुडिशरी ये गलत लोग हैं, इन्होंने गलतियां पकड़ी, 1717 नाम ट्राइब्यूनल से इन्होंने पारित करी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 1607 नाम ऐड करे, ये पारदर्शिता है, ये लोकतंत्र है। और इसका मोखाल जब इलेक्शन कमीशन धज्जियां उड़ा रहा है, उनके पास ना सीसीटीवी है, और जिस तरीके से 4 बजे के बाद जो गुंडई हुई है काउंटिंग में, 2 बजे तक आपने अपने चैनल में दिखाते रहे कि भाई भाजपा जीत रही है जहां 10% वोट नहीं हुआ, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के लिए हम ताली मार रहे हैं, ये है आपका 15 साल का जो हमारा क्रेडिबिलिटी है उसको चैलेंज करने का नतीजा।
0: अजय आलोक जी अब आप जवाब दिए, मानव जायसवाल जी पूरे वोटिंग के दौरान आपका इतना अच्छा व्यवहार रहा मेरे साथ और आपके सारे प्रवक्ताओं का, और इस बात का मैं क्रेडिट देती हूं, कई राज्यों में चुनाव के वक्त लोग आक्रामक हो जाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन हमने भी आपको पूरा मौका दिया और आपने भी कभी भी अपशब्द नहीं बोले, लेकिन अगर ये नतीजे आपके पक्ष में आ जाते ना तो आप मानव जायसवाल जी उतना ही मीठा बने रहते, आपके खिलाफ आ गया है तो अब हम लोग पर भी टूट पड़ रहे हैं। अरे आप तो हमारे स्टूडियो से लेकर हमारे मतलब ऑन ग्राउंड के शोज में आए हैं, आप तो जानते हैं, आप तो कम से कम सोच समझ के बोलिए, पार्टी लाइन टो करने की ऐसी क्या मजबूरी है कि सबको गलत बता दीजिए, दिस इज नॉट इन गुड स्पिरिट। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, अब घूम फिर कर बात वहीं आ रही है, दो उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर अभय जी का सवाल है और मानव जी का वही है कि 1600-1700 लोगों को तो मिल गया वोट करने का अधिकार, बाकियों का क्या? जल्दी से
3: देखिए अंजना जी, रुदाली की ट्रेनिंग लेके जो अगर डिबेट पे बैठते हैं ना लोग, तो उनका यही ऐसा ही प्रदर्शन रहता है, सब रुदाली की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, ये लाइन याद रखते तो बहुत अच्छा रहता वाजपेयी जी की, कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे ये भी मिला हुआ है,
0: मुझे बीच में आपको टोकना पड़ रहा है, टाइम टोकना पड़ रहा है, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: चले तमिलनाडु से बड़ी खबर आपको देते हैं। थलापति विजय राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। 6:30 का समय उनको फाइनली मिल गया था और समर्थन मिल चुका है उनको VCK और IUML का, और उसके बाद से अब राज्यपाल से फाइनली मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं विजय। इससे पहले 3 बार पहुंचे जब तो उनको लौटा दिया गया, एक बार फिर से आज पहुंचे थे लेकिन तब राज्यपाल ने समय नहीं दिया, फिर इंतजार वो कर रहे थे। 6:30 का समय दिया गया और 6:30 यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश करने का ये 6:30 का समय, जहां टीवी के चीफ विजय पहुंचे हुए हैं। उनके पास अब लगभग 120 विधायकों का समर्थन है, उनको VCK IUML ने समर्थन दे दिया। सगाई राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सगाई राज, कितनी देर हो गई मीटिंग को शुरू हुए, मुलाकात फाइनली हो गई है?
9: हाँ जी बिल्कुल, मुलाकात फाइनली हो गई। 4 बार उन्होंने गवर्नर ऑफिस पहुंचने के लिए ट्राई किया था और चार बार उन्होंने गवर्नर ऑफिस पहुंचे हैं और 4th बार उनके लिए लकी है क्योंकि गवर्नर को मीट किया है और
8: शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है,
9: इस बार उनको तकलीफ नहीं होगा।
8: ठीक है, नहीं नहीं आपके बोलिए बोलिए सगे राज बोलिए।
9: हाँ जी, एक हफ्ते में 4 बार विजय गवर्नर के ऑफिस पहुंच चुके हैं और 4th बार शायद उनको लकी होगा क्योंकि इस बार उनके पास सब 120 MLAs का सिग्नेचर है और कांग्रेस का 5, IUML का 2, CPI CPM का 2-2 और विडदले चिरते कच्छी VCK का 2, कुल मिला के तकरीबन उनके पास अभी 120 MLA का सपोर्ट है, जहां पे हम आसानी से कह सकते हैं अभी विजय सेफ है, वो स्टेक क्लेम कर सकते हैं। और 1 घंटे से पहले हमने सुना कि उनको अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, उन्होंने जब यहां से निकले थे 1/2 घंटे के बाद वापस आए थे। अभी सूत्रों के अनुसार जो भी ट्रिप था गवर्नर का वो लास्ट मिनट में कैंसिल हो गया है और उसके वजह से विजय को 6:30 अपॉइंटमेंट दिए गए हैं। जब हम ऐसे बात कर रहे हैं अभी गवर्नर को विजय मीट कर रहे हैं लोकभवन पे।
8: ठीक है, नजर बनाए रखे सगराज, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस समय राज्यपाल के साथ मीटिंग चल रही है विजय की, और एक और बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां राज्यपाल से मुलाकात चल रही है लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कल कैबिनेट का विस्तार उत्तर प्रदेश में, जहां पर 6 नए मंत्री बताया जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं, उनके नाम भी चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल से, कल 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कई मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल, कृष्णा पासवान, जो ये नाम है ये चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं और यूपी में कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच में, चर्चाओं के बीच में ये मुलाकात, और कल माना जा रहा है कि ये कैबिनेट का विस्तार होगा और लगभग नाम वो बीजेपी ने फाइनल भी कर लिए हैं, बस उनका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। तो कल यूपी में कैबिनेट का विस्तार, उससे पहले राज्यपाल से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो कि अपना उत्तराखंड का दौरा पूरा करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में पहुंचकर अब कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं, जो कि इस समय राजभवन की बारी है। संतोष, कितनी देर हो गई मुलाकात को और क्या कुछ चर्चा आज होने वाली है दोनों के बीच में, क्या हो रही है?
10: मुख्यमंत्री का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात था और करीब 10 मिनट हो चुके हैं, काफिला अंदर जा चुका है और जो सबसे बड़ी बात है कि कल होगा शपथ ग्रहण या इसके बाद होगा, दिन तय होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण के बाद सीधे एक कार्यक्रम पुलिस का था, उसके बाद सीधे राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो दूसरे टर्म की सरकार का पहला ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसमें 6 नए नाम शामिल किए जाने की चर्चा है कि 6 नए चेहरे शामिल होंगे और जो 6 नए चेहरे हैं उसमें जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से बागी होकर आए, पूजा पाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दलित चेहरा है, फतेहपुर खाका से 3 बार के विधायक है, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, पूजा पाल ये प्रयागराज से आई है।
8: ठीक है संतोष, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कैबिनेट विस्तार के संबंध में इंपॉर्टेंट मुलाकात मानी जा रही है। अब अपने छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
13: So they were disallowed from speaking their language.
12: In-depth conversations with A-list celebrities.
14: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
12: True crime podcasts you just can't stop listening to.
15: Others escape justice to live and die in infamy. These
12: plus the news and sports content you crave in podcast form.
16: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
12: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
17: TuneIn's How-To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices, from your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
19: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
20: इसमें माइक्रोफाइबर है.
19: माइक्रोफाइबर यानी
20: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
19: हमारे सीमेंट में नहीं है.
20: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
21: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
22: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा.
23: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
24: विक्रम, एक हिंट तो देते.
25: विक्रम!
24: हिंट.
23: बड़े आराम से.
26: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
27: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
28: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
29: और वही कहाँ गए थे घूमने?
30: जीके मैक्स.
31: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
30: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
31: जेके वॉल मैक्स
30: बेस्ट पेंट.
31: जेके मैक्स.
30: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
32: बहुत टायर्ड हो गई.
33: No added sugar, preservative के बिना. डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
34: लायन डेट नट बाइट्स.
35: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
36: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
19: यार, ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
20: इसमें माइक्रोफाइबर है.
19: माइक्रोफाइबर यानी
20: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
19: हमारे सीमेंट में नहीं है.
20: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
21: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: विमल, बोलो जुबा केसरी।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
7: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
8: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
9: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
8: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
10: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
7: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
3: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
13: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

तमिलनाडु में टीवी के सरकार का रास्ता साफ। वीसी के और आईयूएमएलए विजय को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। राज्यपाल से विजय ने की मुलाकात। यूपी मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। यूपी में कल हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री। भूपेंद्र चौधरी समेत 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ।

0: कांग्रेस की बैठक, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता इसमें शामिल। सबसे दुर्गम किले पर लहराया केसरिया ध्वज, शुभेंदु ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम की शपथ, बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, केजरीवाल ने औरंगजेब से बीजेपी की तुलना की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कहीं शब्द तो कहीं अग्निपथ। जी हाँ, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अब राज्यों में सरकार बनाने का काम अपने अंतिम चरण में। पश्चिम बंगाल में आज सुबह हिंदू अधिकरण ने शपथ ले ली है, वहीं तमिलनाडु में जोड़ का खेल। इसके बीच में विजय के सीएम बनने पर रोज नया पेच फंस रहा है। और इसके अलावा केरलम की बात करें तो सीएम को लेकर माथापच्ची चल ही रही है। आपको विस्तार से इन राज्यों का पूरा खेल समझाएंगे, लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कल योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है, योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कुछ नाम जो चल भी रहे हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, इस समय वहीं पर भी मौजूद हैं। सूत्रों से खबर है कि कल शाम को योगी कैबिनेट का विस्तार संभव। हम जो इस समय तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज की मुलाकात की, लगभग 6:30 बजे वो पहुंचे और ये शिष्टाचार उनकी फिर मुलाकात हुई और उसके बाद कैबिनेट विस्तार पर चिंतन मंथन संभव। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल शरीर के 6 नाम इस समय जो चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टॉप पर भूपेंद्र चौधरी है, मनोज पांडे का भी नाम चल रहा है, पूजा पाल का भी नाम चल रहा है। मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि हर वर्ग को साधने का प्रयास रहेगा, जिसमें ओबीसी, दलित, कुर्मी, ब्राह्मण। तो जाति समीकरण के हिसाब से कैबिनेट को बिल्कुल बैलेंस करने का प्रयास होगा, जिसमें ओबीसी, एससी समाज से जुड़े हुए नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कई विभाग बदले भी जा सकते हैं। और इस खबर पर लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए। संतोष, अब तो लगभग आधे घंटे का समय हो गया है मुख्यमंत्री को मुलाकात किए हुए, क्या इस समय भीतर से जानकारियां मिल रही हैं?
1: देखिये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 6:30 बजे का उनका वक्त था और वो अंदर जब उनका कॉन्वॉय पहुंचा और अब लगभग आधा घंटा पूरे हो चुके हैं और अभी भी वो अंदर ही है। उनका काफिला मैं इस समय पर जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आवास है जन भवन, वहां पर मौजूद हूं और अभी ये मंत्रणा ही चल रही है। वजह यह है कि जिस तरीके से जो प्रोसेस होता है, देखिए अलर्ट भी हो गया, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी का अलर्ट हो चुका है और इस अलर्ट के साथ यानी कि जो मुलाकात है वो दौर खत्म हो गया है। योगी कैबिनेट का पहला विस्तार होगा ये, दूसरे जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, ये पहला विस्तार हो रहा है और इसमें जातिगत समीकरण, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, पूजा पाल का नाम चल रहा है तो पाल बिरादरी से, महिला सशक्तिकरण का भी मैसेज देने की कोशिश होगी। कृष्णा पासवान फतेहपुर खागा से तीसरी बार के विधायक हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं जो संगठन से भी जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो भूपेंद्र चौधरी को हटना पड़ा, तो भूपेंद्र चौधरी एक अनुभवी नेता पहले भी रहे हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का नाम, मनोज पांडे, पूजा पाल, कृष्णा पासवान, ये नाम ऐसे हैं जिनको की इंडक्ट किया जाएगा।
0: संतोष, क्या सिर्फ एडिशन की खबर है, जोड़ने की खबर है, कुछ डिलीशन भी होगा?
1: देखिये, डिलीशन अभी तो ये 6 लोगों के जोड़ने की खबर है। डिलीशन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास डबल चार्जेस हैं तो उनके डबल चार्ज कम होंगे, किसी के पास 2 विभाग है उनके पास 1 विभाग रहेगा। और इसके साथ ही प्रमोशन की बात है कि जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में एक राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार, दलित कोटे से आते हैं, नौकर शाह रहे हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि उनको प्रमोट किया जा सकता है कैबिनेट मंत्री में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक पूरा जो मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होता है पूरा लेगा, जब 6 मंत्री और आ जाएंगे। और देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला निकल रहा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात का दौर खत्म हो चुका है और कह सकते हैं कि करीब आधा घंटे तक ये मुलाकात चली, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में ये आधा घंटे की मुलाकात चली। इसमें जो औपचारिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है कि ये कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा वो कब होगा, राज्यपाल कब फ्री है, उनका टाइम लिया जाएगा, उसके बाद उन जो मंत्री हैं उनको फोन करके बुलाया जाएगा कि लखनऊ में, तो उसी यही सब तमाम चीजें हैं, उन नामों की जो सूची दी जाएगी और सूची देने के बाद जो अवेलेबिलिटी होगी महामहिम राज्यपाल के टाइमिंग की, उसके हिसाब से तब ये शपथ ग्रहण होगा। तो एक संभावना जताई जा रही है कि कल ये शपथ ग्रहण,
0: कल शपथ ग्रहण संभव, बिल्कुल ठीक है। संतोष, नजर बनाए रखिए, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 6:30 बजे जहां उत्तर प्रदेश में मुलाकात शुरू हुई थी, वहीं एक और मुलाकात 6:30 बजे तमिलनाडु में भी हुई है और सीएम को लेकर यहां खींचतान लगातार जारी है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आपको देते हैं, जबरदस्त सियासी ड्रामा यहां देखने को मिला है, लेकिन विजय 4th बार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। क्या इस बार भी खाली हाथ लौटेंगे? इस बार इसकी संभावनाएं कम है। विजय के पास इस समय 120 विधायकों का समर्थन पत्र है और उस समर्थन पत्र को लेकर वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। लगभग 6:30 बजे का उनको समय दिया गया था। इससे पहले एक्टर विजय अपने घर से लोकभवन जाने के लिए निकले, आधे रास्ते से ही वापस लौटे। वो बहुमत जुटाने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन विजय ने बहुमत मिलने के बाद 6 बजे का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें

0: राज्यपाल ने 6:30 बजे का समय दिया। सगाई राज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। सगाई राज, कुछ पॉजिटिव लेकर निकलेंगे आज विजय, क्या अपडेट भीतर से?
1: हफ्ते में चौथा बार मिल रहे गवर्नर को और इस बार शायद उनको लकी होगा, क्योंकि जब भी पिछले 3 बार मीट किया था उस टाइम पे उनके पास जो भी मांग रखी थी गवर्नर ने, 118 का सिग्नेचर, 118 एमएलए का सिग्नेचर उनके पास नहीं था। अभी फिलहाल 120 एमएलए का सिग्नेचर है, सपोर्टिंग का लेटर है, सब कुछ है और इस बार शायद उनको स्टे क्लेम करेंगे और कब शपथ लेंगे उसके बारे में थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अभी फिलहाल विजय लोकभवन के अंदर है, राजभवन सॉरी गवर्नर से मीट कर रहे हैं और अभी भी बातचीत हो रही है।
0: अब समर्थन उनके पास है सगर, जिसमें तो कोई अब दो राय बची नहीं है, तो शपथ ग्रहण कब संभव है?
1: शायद विजय कल ले सकते हैं, नहीं तो वो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसके वजह से कौन सा समय शुभ समय है, कौन सा दिन शुभ दिन है, वो पूरा देख के शायद वो डिसीशन ऑलरेडी उनके पास रहेगा। शायद वो डेट के और टाइम के हिसाब से गवर्नर से मांग रखेंगे।
0: आधे घंटे तो हो गए सगेराज, के भीतर से कुछ अभी खबर नहीं मिल रहे हैं, टीवी के समर्थकों की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है?
1: फिलहाल कुछ भी खबर नहीं है, अंदर विजय है, गवर्नर से मिल रहे हैं, बातचीत हो रहा है और जो भी प्री रिक्वेस्ट फॉर्मेलिटीज होता है होते की सर में नहीं है वो भी होगा। और जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी अंदर लोकभवन में गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात हो रही है और उनके साथ बातचीत हो रहा है।
0: ठीक है सगर राजा, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। बात अब केरलम की भी कर लेते हैं, उससे जुड़ी भी बड़ी खबर आपको देते हैं। केरल में मुख्यमंत्री को लेकर लगभग 3 घंटे से कांग्रेस के हाई लेवल मीटिंग जो है वो चली और वो मीटिंग समाप्त हो गई है। सीएम के नाम को लेकर मंथन कांग्रेस पार्टी में, मीटिंग आज दिल्ली में जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठकर चिंतन मंथन करते हुए दिखाई दिए, वो बैठक समाप्त हो गई है। इसमें केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जैसे तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खींचतान है, सीएम को लेकर खींचतान है और जो केरल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और अपनी अपनी दावेदारी है, कोई संख्या बल पर दावेदारी, कोई सीनियोरिटी पर दावेदारी और इन दावेदारियों के बीच में चिंतन मंथन चल रहा है। राहुल गौतम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। राहुल, बैठक काफी लंबी चली है, तो क्या क्या निकल कर आया बैठक में, किसने दावेदारी पेश की है, कहां फंस रहा है पिच?
2: देखिए राजीव, 3 घंटे ये बैठक चली मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दशहरा जी मार्ग, जिसमें तमाम जो दावेदार हैं यानी वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीतला ये मौजूद थे। और आप ये कह सकते हैं कि जो गेंद है वो आला कमान के पाले में है। दरअसल विधायक दल की बैठक पहले ही ट्रिवेंडर में कराई जा चुकी है और वहां पर एक प्रस्ताव पहले ही पारित कराया जा चुका है कि आला कमान फैसला लेगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसी की कवायद के लिए आज तमाम नेता यहां पर जुड़े थे। अलग अलग नेताओं की अलग अलग खूबियां हैं, कमियां हैं। एक तरफ केसी वेणुगोपाल है, राहुल गांधी के करीबी हैं, 4 बार के सांसद हैं। इसके अलावा रमेश चेन्नीतला हैं जो कि 6 बार के विधायक हैं और 4 बार के सांसद हैं, वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वीडी सतीशन हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं वहां के कार्यकर्ताओं के अंदर। तो ऐसे में जो संख्या बल है वो भी ये बताया जा रहा है कि जो नंबर 1 पसंद है विधायकों की वो केसी वेणुगोपाल है, लेकिन अभी तक भी आप कह सकते हैं कि तस्वीर साफ नहीं है और अभी भी जो नेता है वो अंदर मौजूद है। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक मजबूत टिकाऊ सीएम दिया जाए केरला को, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है और उसके बाद 5 साल तक खटपट
0: हमने तो कॉन्फ्रेंस कभी भी कर्नाटक में देखा ही है राहुल, लेकिन अब केरलम की पिक्चर कब तक क्लियर हो सकती है?
2: देखिए आप मान के चलिए कि या तो अभी थोड़ी देर के अंदर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, जो ऑब्जर्वर्स हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद यहां पर अनाउंसमेंट कर देंगे, या फिर जो तमाम जो नेता हैं जो दावेदार हैं वो वापस ट्रिवेंड्रम जाएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और वहां पर फिर अनाउंसमेंट की जाएगी कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा केरलम का। कोशिश यही है कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, कोई भी फैसला थोपा ना जाए, क्योंकि जाहिर है अगर बाकी 2 लोगों को नहीं बनाया गया और 1 व्यक्ति को सीएम बनाया गया तो उनमें नाराजगी होगी, तो वो नाराजगी ना हो इन तमाम चीजों का ध्यान रखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा समय लग रहा है।
0: जी बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान

0: से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां पर आज शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জী যিনি ভারতের সংবিধান।
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তৌর পর শপথ।
3: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদি কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীও নে ভী শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভী রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভী টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्ज्वल भविष्य का भरोसा दिया।
4: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
5: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
7: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
8: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शटील, कोलकाता आज तक।
9: आज से पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो वहीं बीजेपी के लिए ये किसी भावुक पल से कम नहीं था।
3: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
3: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
10: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना, ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
2: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
9: तो शपथ ग्रहण हुआ है और अब बड़ी जीत के बाद बड़ा काम भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को करके दिखाना होगा। शंखनाद में अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
7: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स। बेस्ट फुटी
11: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
14: यार
15: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
15: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
15: हमारे सीमेंट में नहीं है।
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
8: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
9: एक हिंट तो देते।
10: हिंट बड़े आराम से।
11: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
14: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
14: हमारे सीमेंट में नहीं है।
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
17: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
18: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
19: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: ये एक पिता और बेटे के रिश्ते की भी कहानी जो पूरी फिल्मी है। इस कहानी के नायक विजय से कहीं ज्यादा क्या उनके पिता है जिन्हें दुनिया एस ए चंद्रशेखर के नाम से जानती है। विजय को भले ही आज हर कोई जानता हो लेकिन उन्हें सब जाने ये महत्वाकांक्षा उनके पिता की रही जिन्होंने दोनों के रिश्तों को कामयाबी की सुनहरी यादों के अलावा अलगाव के अंधेरे भी दिखाए। बाप बेटे की अदालती लड़ाई भी इसे सबसे अनोखी बनाती है। विजय की जिंदगी की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है जिसमें आखिर में सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाला हो जाता है। बिल्कुल फिल्मी कहानी विजय और उनके पिता की कहानी राजनीति से फिल्मों तक की सबसे मशहूर कहानी बन गई जिसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ साल 2020 में आया जब तमिलनाडु की जनता की धड़कन बन चुके विजय ने अपने ही माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसकी वजह थी विजय को बताए बिना उनके पिता ने पार्टी बना ली ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम नाम से उसे रजिस्टर भी करवा लिया। खुद को महासचिव और पत्नी को कोषाध्यक्ष बनाकर विजय के लिए फिल्मों की तरह सियासी आसमान में छा जाने के सपने सजाए जाने लगे। लेकिन विजय से इतनी नाराज हुए कि उन्होंने खुद को पिता की राजनीतिक गतिविधियों से अलग कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। विजय को थलपति बनाने वाले माता पिता बेटे के कानूनी केस के शिकार हो गए। विजय ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके माता पिता उनकी तस्वीर और उनकी लोकप्रियता का कोई राजनीतिक फायदा न उठा सके। तमिलनाडु और तमिल सिनेमा दोनों विजय की इस हरकत से दंग रह गए। पहली बार किसी बड़े सितारे ने इस तरह से अपने माता पिता के खिलाफ तब अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसका नतीजा पिता पुत्र के बेटों में दूरियों के रूप में आ गया। बातचीत बंद हो गई। पूरा राज्य इस विवाद को हैरानी से देखता रहा। वजह सबको पता थी। सब जानते थे कि ये विजय के पिता चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने 1990 के दशक में अपने बेटे जोसेफ विजय चंद्रशेखर को स्टार बनाने का बीड़ा उठाया। विजय ने अभिनय की दुनिया में कदम पिता की फिल्मों से ही रखा। साल 1992 में 18 साल की उम्र में विजय को नालाया थिरुकु से हीरो के रूप में लॉन्च किया गया। फिल्म फ्लॉप हुई लेकिन उनके पिता चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेतुरा पांडे रसीगढ़ विष्णु और देवा जैसी फिल्मों से बेटे को लगातार स्क्रीन पर बनाए रखा। धीरे धीरे विजय थलपति बन गए। विजय थलपति बने वो कमांडर जिनकी फिल्मों का स्वागत मंदिर की रस्मों और ढोल की गड़गड़ाहट के साथ होने लगा। लेकिन इनके पिता इससे भी कुछ बड़ा अपने बेटे के लिए देख रहे थे। बेटे के प्रशंसकों की भीड़ में उन्हें सियासी समर्थक दिख रहे थे जो उनके बेटे को वहाँ पहुँचा सकते थे जहाँ तक रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े अभिनेता भी नहीं पहुँच पाए। साल 2009 से ही विजय के पिता ने बेटे की राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी। विजय के पिता ने सबसे पहले तमिलनाडु के सभी विजय फैन क्लब्स को एक ही संस्था में विजय मक्कल यक्कम में मिला दिया। इससे साफ हो गया कि विजय भले ही एक स्टार बनकर खुश है लेकिन उनके पिता बेटे के लिए एक सेना खड़ी करते रहे। इसीलिए जब विजय ने अपने पिता चंद्रशेखर के खिलाफ केस किया तो सब हैरान रह गए। लेकिन साल 2026 में विजय की जीत ने पिता पुत्र के इस रिश्ते को लगी चोट पर मरहम लगाने का काम किया। जीत की खुशियों में पुरानी कड़वी यादें बह गई। विजय की जीत को चंद्रशेखर ने ऐतिहासिक बताते हुए बिना गठबंधन किए लड़ने के बेटे के फैसले की तारीफ की।
1: पिरोजी स्ट्रीट के इस इलाके में है जहां पर आपको नजर आएगा कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहां पे एक जलाल बिल्डिंग था जो 23 मार्च में को अटैक जिस पर अटैक कर दिया गया। अमेरिकी इजरायली अटैक्स थे। ये एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था जिसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। वजह क्या है ये आज तक यहाँ जो उसको ओन करते हैं म्यूजिक टीचर हामिद वो नहीं समझ पाए हैं क्योंकि ना कोई टारगेटेड किलिंग हुआ इस अटैक से। आसपास बस लोग रहते हैं और ये एक इंस्टीट्यूट था जो बिल्कुल खाली था। सारे जो इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे सब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक ऐसा कपल हामिद और उनकी बीवी जिन्होंने एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट शुरू किया फारसी कल्चर फारसी म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए, उसको ध्वस्त कर दिया गया और आज वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के यहाँ पर खड़े थे। आज वो सोच रहे हैं कि वो फिर से कैसे अपनी जिंदगी शुरू करे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

तमिलनाडु में टीबी के सरकार का रास्ता साफ। बीसीके और आईयूएमएल ने विजय को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। राज्यपाल से विजय की मुलाकात। यूपी मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। यूपी में कल हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री भूपेंद्र चौधरी समेत 6 ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। केरल में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला चल। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल। शुभेंदु अधिकारी ने ली बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की शपथ। बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने किया दंडवत। ममता ने विपक्षी नेताओं से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।

0: की तुलना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कल योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और कुछ ही देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कल शाम योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और 6 मंत्री अब उनके कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल सरी के कई नाम इस समय चर्चा में चल रहे हैं। कृष्णा पासवान, रामनंदन कुशवा, मनोज पांडे, आशीष कुमार और बहुत सारे नाम चल रहे हैं। और राज्यपाल से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं और जाति के समीकरण के हिसाब से कैबिनेट को बैलेंस करने की कोशिश रहेगी, जिसमें ओबीसी एससी समाज से जुड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कई विभाग भी बदले जा सकते हैं। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो यूपी में कैबिनेट का विस्तार और कल कैबिनेट का विस्तार संभव है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लगभग 6:30 बजे वो राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और लगभग 1.25 घंटे की ये मुलाकात रही है और उस मुलाकात के बाद सीएम निकल गए। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी में कैबिनेट का विस्तार जब चुनावों के बेहद निकट उत्तर प्रदेश है, ऐसे में यूपी में कैबिनेट का विस्तार इसके मायने क्या है ये भी एक बड़ा सवाल है। 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज राज्यपाल से मिलकर स्वाभाविक किस समय उन्होंने मांगा और संतोष हमारे संवाददाता इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या पद रिक्त थे इसलिए कैबिनेट का विस्तार हो रहा है या कुछ और भी इसके पीछे के कारण है और जो कारण है वो आप समझाएं।
1: देखिए, ये पद रिक्त तो पहले से थे तो कोई ऐसी अर्जेंसी भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये जातिगत समीकरण को ठीक करने की कोशिश, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद बीजेपी के लिए अब एक अपना पुराना जो परंपरागत किला है जो 2 बार से सरकार बना चुके उत्तर प्रदेश, जो पावर हाउस है बीजेपी के लिए, उस पावर हाउस को सस्टेन करने के लिए, उस पावर हाउस को मेंटेन करने के लिए वहां पर इलेक्शन होना है और 2027 के चुनाव को देखते हुए ये कैबिनेट विस्तार दिया जा रहा है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी तो ये पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। पहली बार सरकार बनी तो उन लोगों ने शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन ये कैबिनेट एक्सपेंशन ये पहली बार हो रहा है और इस बार 6 नामों की चर्चा है कि 6 लोग इस 6 नए चेहरे शामिल होंगे और इन 6 चेहरों के पीछे चेहरे को नाम क्या होंगे, लेकिन जो मोटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मोटिव है जातिगत समीकरण को ठीक करना। इसमें ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए मनोज पांडे का नाम चल रहा है
0: जी,
1: महिलाओं के लिए पूजा पाल का ओबीसी के चेहरे।
0: संतोष, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं एक बार जरा जो संभावित नाम है वो संभावित नाम भी दर्शकों को बता देते हैं। ये वो संभावित नाम है। वैसे आज के समय में जाति की राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, यूपी है तो वहां पर जाति की राजनीति होती है। भूपेंद्र चौधरी जाट चेहरा है, बड़ा चेहरा है। मनोज पांडे है ब्राह्मण चेहरा है, यूजीसी के बाद से ब्राह्मण नाराज भी बताए जा रहे हैं। पूजा पाल है जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। कुछ और संभावित चेहरे हैं, अशोक कटारिया जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, और ऐसी पासी समाज से आती हैं, कृष्णा पासवान हैं। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकते हैं। उसमें पूजा पाल अभी तक तो एकमात्र, और इसके साथ साथ कृष्णा पासवान, ये 2 महिलाएं भी इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरा का पूरा बैलेंस महिला भी है इसमें, पुरुष भी हैं और हर जाति को यानी कि तरजीह देने का प्रयास। और संतोष भी यही समझा रहे थे कि संतोष मकसद ये है जातीय समीकरणों को साधना, और क्या जो संभावित नाम है क्या ये माना जाए कि यही नाम भी है जो जिन पर अंतिम मोहर लगनी है, अभी भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं इनमें।
1: देखिए, अभी ये संभावित नाम है, जो सोर्सेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है उन नामों की है। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, उसके बाद जब राज्यपाल का जो फ्री टाइम होगा शपथ ग्रहण के लिए वक्त वो मुकर्रर होगा और उसके बाद इनको फोन जाएगा, संगठन से फोन जाएगा, राजभवन से फोन जाएगा कि आपको लखनऊ में 1 बजे आना है, तो तब ये पूरा सीन क्लियर होगा। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 6 नाम है जिसमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल, कृष्णा पासवान के साथ साथ महेंद्र सिंह का भी नाम एक अभी जुड़ा है कि महेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। महेंद्र सिंह संगठन के चेहरा है, संगठन के जानकार रहे हैं। पहली कैबिनेट जो योगी सरकार बनी थी उसमें जल संसाधन मंत्री भी थे, असम जैसे तमाम राज्यों के प्रभारी रहे, तो संगठन सरकार के अनुभवी नेता है महेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वस्त हैं, करीबी रहे हैं, तो महेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है। तो ये छह नाम ऐसे चल रहे हैं।
0: लेकिन संभावित नाम है, हम जातियों की तो बात कर रहे हैं संतोष, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखते हैं क्षेत्र बड़ा महत्व रखता है, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, तो क्या इसका भी बीजेपी ध्यान रख रही है?
1: देखिए, बीजेपी हर चीज का ध्यान रखती है, वो अपने कील कांटे हर तरीके से दुरुस्त रखती है। जातिगत समीकरण में उसने ब्राह्मण चेहरा, पासवान चेहरा, पाल चेहरा, जाट चेहरा सभी को समाहित किया। वहीं क्षेत्रवार भी भूपेन चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मनोज पांडे रायबरेली से आते हैं, रायबरेली में एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ है, और वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए तो उसका भी उनको इनाम मिलना है। पूजा पाल प्रयागराज से आती है, एक कहा जाए कि महिला की लड़ाई का एक सबसे बड़ा चेहरा है, पाल बिरादरी से आती हैं तो वो जातिगत समीकरण ठीक होता है। कृष्णा पासवान फतेहपुर से आती हैं, फतेहपुर खागा की हैं, दलित महिला हैं और तीसरी बार की विधायक रही हैं, तो वो फतेहपुर वाली बेल्ट को संभालेंगी। तो इस तरीके से जातिगत समीकरण और क्षेत्रवार समीकरण सभी को दुरुस्त करते हुए, क्योंकि अब इसके बाद सीधे से बीजेपी को चुनावी समर में उतरना है, और चुनावी समर में उतरने के लिए क्षेत्र और जाति ये दोनों ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वही मैसेज देने की कोशिश होगी।
0: जी संतोष, मनोज पांडे भी संभावित नामों में से एक है, तो क्या ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी इससे?
1: देखिए, मनोज पांडे का दो कारण है। मनोज पांडे तो समाजवादी पार्टी में एक मुख्य सचेतक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहे, एक बड़े नेता के तौर पर रहे, नेता विरोधी दल रहे, तो वो छोड़ करके आए समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में, और वो उस समय आए जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी, क्रॉस वोटिंग की, तो उन्होंने जो कुछ किया वो खुला खेल फरुखाबादी किया, बीजेपी के लिए उन्होंने खुला खेल कर दिया, तो ऐसे में बीजेपी की बारी है उनको इनाम देने की। और मनोज पांडे के आने से एक तरीके से जो ब्राह्मण जो नाराजगी की बात की जा रही है, जो खास करके समाजवादी पार्टी हमलावर होती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसका जवाब देने की कोशिश है कि ब्राह्मणों का सम्मान भी रखा जा रहा है, तो मनोज पांडे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है अगर उसका नाम शामिल होता है। पूजा पाल की बात करें तो पूजा पाल प्रयागराज से आती है, वो भी समाजवादी पार्टी से बागी होकर के आई हैं। उन्होंने अतीक अहमद की जब हत्या हुई तो उन्होंने खुल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी, तो उसके बाद से पूजा पाल भी बीजेपी के खेमे में शामिल हो गई, तो उनका भी नाम बनता है। इसके बाद भूपेन चौधरी का नाम इसलिए लाजमी है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन के भी मंत्री, संगठन को भी चलाया और सरकार के भी अनुभवी है, तो भूपेन चौधरी के नाम तो हर व्यक्ति की अपनी अहमियत है, उसकी वजह से ये नाम चर्चाओं में।
0: ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, और बड़ी खबर तमिलनाडु से। टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की है और विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विजय 120 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। चुनावों में दो दो सीटें जीतने वाले बीसीके और आईयूएमएल ने विजय की टीवीको को अपना समर्थन दे दिया है, और इसी के साथ टीवीके के पास में बहुमत के लिए जो जरूरी 118 विधायकों की संख्या है वो पूरी हो गई या उससे ज्यादा भी अब नंबर हो गया है। बीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद विजय के पास अब 120 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसके बाद पिछले चार दिनों से चल रहे सियासी जो ये ड्रामा है वो अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई से प्रमोद माधव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, तो फिर कब ले रहे हैं विजय शपथ?
2: जी, अभी चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट विजय अभी अंदर है गवर्नर का लोकभवन पे, जो देख रहे हैं वो है लोकभवन, यहाँ पे लगभग आधा घंटा के ऊपर हो गया है, और अभी यहाँ पे सब लोग, उनका फैन और केडर सब लोग भी यहाँ पे हुए हैं, और सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि उनको सीएम डेजिग्नेट विजय को देखने के लिए, क्योंकि अभी भी आज जैसा आपने बोला 120 नंबर है उनके पास, और वो जो लाइक डिफिकल्ट नंबर था वो है बीसीके का विदर्भ सुत्तेकल कच्ची, वो भी यहाँ पे आ गया है, और उनके साथ सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल भी यहाँ पे है, सो उनको लगभग 120 नंबर्स अभी आ गया है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ, ये जो फैंस है यहाँ पे, आप क्यों यहाँ पे हैं?
3: विजय को देखने,
2: विजय को देखने के लिए। क्यों?
3: विजय रसिक है,
2: विजय रसिक, विजय फैन। आप क्यों इधर है?
4: विजय को देखना,
5: विजय को देखने, विजय को देखने,
2: कलापति और सीएम,
3: सीएम विजय,
2: सीएम विजय। आप क्यों इधर है?
4: विजय को देखना है।
2: अच्छा, ठीक है। सो ऐसा
0: ही
2: लाइक बहुत ज्यादा लोग हैं,
0: बिल्कुल क्रेजी हैं उनके। लेकिन मैं प्रमोद थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि राज्यपाल का पहले कुछ कार्यक्रम बताया जा रहा था, तो क्या उनका वो कार्यक्रम रहेगा? शपथ कल संभव है या नहीं है? उनको टाइम मिलेगा कल का या नहीं? क्या इस बारे में जानकारी मिल रही है उनके, राज्यपाल के आगे के कार्यक्रमों के लिए?
2: जी यहाँ आज का एजेंडा ऐसा है कि पहले दो बार विजय ने अभी आकर यहाँ का गवर्नर को उन्होंने मीट किया था, पर उस वक्त पहले उन्होंने वोट परसेंटेज लेकर आया था और उसके बाद अभी पिछले बार उन्होंने 117 नंबर का डिटेल्स लेकर आया था क्योंकि उस वक्त 233 होगा अगर विजय रिजाइन किया त्रिची ईस्ट से, पर आज के दिन के लिए उनके पास 120 नंबर एमएलए नंबर भी है और उसके साथ ये जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है सीपीआई सीपीएम बीसीके कांग्रेस और जो जो पार्टी उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव को भी उन्होंने साथ लेकर गए हैं, इसीलिए बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए विजय सीएम डेजिग्नेट विजय को बुलाने के लिए। और उसके साथ अभी हमको एक और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कल 3:15 पीएम पॉसिबल है अगर सब कुछ यहाँ ठीक चलेगा तो अगर गवर्नर इनको इनवाइट किया विजय को इनवाइट किया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो फिर कल 3:15 पीएम भाई एक टाइम है उस वक्त विजय सीएम ओथ सेरेमनी लेने का पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है।
0: थोड़ा क्लियर 3:15 आप कह रहे हैं 3:50 पर शपथ ग्रहण होगा कल अगर आज सब चीज ठीक रही तो
2: मैं आज जब सब अगर आप सब कुछ ठीक चलेगा तो 3:15 पीएम का कल का पॉसिबिलिटीज है।
0: ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप ये बताएं कि शपथ ग्रहण कहां होगी, लोकेशन कहां पर होगी, क्या इस बारे में क्योंकि विजय बहुत बड़ा नाम है तो कब बड़ा मैदान होगा या फिर राजभवन में कहां पर शपथ लेंगे वो?
2: जी हाँ दोबारा मैं यहाँ से क्राउड दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये इस पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और आंसर इस पे है क्योंकि पहले जब एमके स्टालिन ने यहाँ पे वोट सेरेमनी लगा था वो वोट सेरेमनी लोकभवन की अंदर एक लॉन पे हुआ था, पर जयललिता जब वो वोट सेरेमनी ले रही थी उस वक्त उन्होंने एक मद्रास यूनिवर्सिटी का एक बॉल रूम में कर रहे थे, पर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये जो नेचुरल क्राउड है जो विजय के लिए आए हुए हैं ऐसा एक बहुत ज्यादा क्राउड उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो ये वोट सेरेमनी जैसा नहीं लगेगा, ये तो एक ऑडियो लॉन्च लगेगा ऐसा लगने का पॉसिबिलिटीज है, सो इसीलिए उन्होंने यहाँ का नेहरू स्टेडियम को बुक किया है, वहां पे लगभग 5 तारीख के ही वहां पे शुरू हो गया सब कुछ, पर यहाँ गवर्नर से सब परमिशन और गवर्नर का सब फॉर्मेलिटीज क्लियर होने के बाद कल नेहरू स्टेडियम में 3:15 PM पॉसिबिलिटी है ओथ सेरेमनी के लिए।
0: प्रमोद आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, नेहरू स्टेडियम में 3:15 पर शपथ ले सकते हैं विजय, आप थोड़ा नेहरू स्टेडियम उसकी कैपेसिटी कितने लोग आ सकते हैं उसके बारे में बताएं।
2: नेहरू स्टेडियम एक लोकेशन है चेन्नई पे, एक स्टेडियम वहां पे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लोकेशन है, उसमें एक लोकेशन इंडोर स्टेडियम है आउटडोर स्टेडियम है, पर एक नंबर देख सकता हूँ 10,000 पीपल कैन बी अकोमोडेट उधर अंदर भी, सो ऐसा भी प्रिपरेशन होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी उधर है, सो मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि विजय अंदर है, विजय का टीम हमको बोल रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे ठीक चलेगा तो 3:15 PM का पॉसिबिलिटी एक टाइम उन्होंने चुना दे हैव सेलेक्टेड इट बट एवरीथिंग शुड गो वेल इन द लोकपाल नाउ।
0: जी यानी कि विजय का मंच पूरी तरह से तैयार है, स्टेडियम तैयार है, बस राज्यपाल से एजेंडे का इंतजार है। प्रमोद आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ये बड़ी खबर हमारे संवाददाता दे रहे थे कि 3:15 पर कल शपथ दे सकते हैं अगर आज राज्यपाल से पूरी तरह से क्लियरेंस मिल जाता है, नेहरू स्टेडियम में शपथ दे सकते हैं तलपति विजय। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं, बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मथुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदिराम टुडू और निश्चित प्रमाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया और उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं। पीएम मोदी के सम्मान को बीजेपी सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रही है। दरअसल उत्तर बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इसी इलाके से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ऐसे में माखनलाल सरकार को मंच से सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया बल्कि उत्तर बंगाल को भी सीधा राजनीतिक संदेश दे दिया। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ पीयूष मिश्रा, कोलकाता आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

तमिलनाडु में टीवी के सरकार का रास्ता साफ। वीसीके और आईयूएमएल ने विजय को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। राज्यपाल से विजय ने की मुलाकात, कल ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। यूपी में कल हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री भूपेंद्र चौधरी समेत 6 मंत्री पद के लिए सकते हैं शपथ। केरल में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला जल्द। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा बंगाल के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने किया दंडवत प्रणाम। ममता ने विपक्ष नेताओं से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। भगवंत मान के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। केजरीवाल ने औरंगजेब से की बीजेपी की तुलना।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ बीजेपी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दशकों पुराना सपना पूरा हो गया। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की जैसी तस्वीरें दिखी वो अद्भुत थी। मंच पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री एनडीए परिवार के सदस्य थे और सामने मोदी मोदी के नारे लगाती पश्चिम बंगाल की जनता।

0: बंगाल की जनता का स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव एक दूसरे का धन्यवाद अदा कर रहे थे। ...2016 में तीन सीट से 2026 यानी ठीक एक दशक बाद बहुमत से सरकार का उत्साह उत्सव में बदल रहा था। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मंच सजा था शुभेंदु अधिकारी की शपथ के लिए। हर किसी को उस पल की प्रतीक्षा थी, लेकिन निगाहें उठ रही थी पीएम मोदी की ओर। बीजेपी के 46 वर्ष के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल ने विजय का ध्वज बीजेपी के हाथों में थमाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने दंडवत प्रणाम करके अपना श्रेष्ठ धन्यवाद प्रस्तुत किया। गुरुदेव टैगोर की जयंती पर पुष्पों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ सामने थे, कुछ मंच पर थे, लेकिन वो सब थे जिन्होंने अपनी आंखों में एक दिन बीजेपी का दीपक जलाए रखने के संकल्प को जिंदा रखा था। पीएम मोदी इसी क्रम में 98 साल के माखनलाल सरकार की ओर बढ़े, उनका सम्मान किया और उनके पैर छूकर अपनी भावनाएं प्रकट की। माखनलाल सरकार बीजेपी के बीज पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। उन्होंने दशकों विचारधारा का झंडा बुलंद रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में जेल गए। कांग्रेस और घोर लेफ्ट सरकारों के दौर में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार करते रहे। ये सम्मान सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का था और संदेश सबसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए कि संगठन सर्वोपरि है। मंचीय औपचारिकताओं के बाद शपथ की बारी आई। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेकर बंगाल में बीजेपी शासन का आधिकारिक ऐलान कर दिया।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: शुभेंदु के बाद दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, निशीत प्रमाणिक ने शपथ ली। इन शपथ के बाद तय हो गया कि ये पांच सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम।

0: मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
1: शुभेंदु अधिकारी पर अब उस राज को संभालने की जिम्मेदारी है जहां राजनीति दशकों से भावनाओं, विचारधाराओं और टकराव के बीच चलती रही है। उन्हें उस विश्वास पर खड़े उतरना है जिसका बीज कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोया था, अटल ने सींचा था और पीएम मोदी ने बड़ा किया।
2: बंगाल की पावन धरा पर एक नया सूर्योदय हुआ है जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है।
1: शुभेंदु के सामने जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र टंगा है जिसमें एक एक करके पार्टी की सारी आकांक्षाएं भी अंकित हैं। सांप्रदायिक संतुलन और सामाजिक सामंजस्य, पश्चिम बंगाल की करीब 27% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। चुनाव के दौरान घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों पर लगातार वार पलटवार होता रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी के समर्थन में हिंदू वोटों का झुकाव भी देखने को मिला, लेकिन अब सवाल सरकार चलाने का है।
3: हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जे जे गारंटी दिए सब गारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय, आम्रा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। भय आउट, भरसा इन।
1: विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। चुनाव से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी बंगाल को असम बनाना चाहती है, लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के बीच सही रास्ता निकालना। बॉर्डर फेंसिंग और घुसपैठ, भारत बांग्लादेश सीमा बंगाल की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से एक है। कई इलाकों में अब भी सीमा पर पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो सकी है। शपथ से एक दिन पहले भी अमित शाह ममता सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार ने केंद्र का सहयोग नहीं किया, अब सरकार के सामने सीमा को सुरक्षित करने की चुनौती होगी।
4: घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर दे।
1: लेकिन असली चुनौती सिर्फ बाड़ लगाने की नहीं है। घुसपैठ रोकना, स्थानीय लोगों का भरोसा बनाए रखना और सीमा पर रहने वाले नागरिकों की जिंदगी प्रभावित न हो, ये सब एक साथ संभालना होगा क्योंकि सीमा का मुद्दा बंगाल में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीति और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। गोरखालैंड मुद्दा, दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों में गोरखा समुदाय लंबे समय से अलग राज्य की मांग करता रहा है। बीजेपी ने चुनावों में वादा किया था कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा।
4: 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। 10 को जूनी 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे।
1: यही सबसे कठिन सवालों में से एक है क्योंकि अगर अलग राज्य की मांग को ज्यादा हवा मिलती है तो बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति में नया टकराव पैदा हो सकता है।
5: राजनीतिक हिंसा रोकना, बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और हत्याओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। चुनाव के बाद कहीं पार्टी दफ्तर जलाए जा रहे हैं तो कहीं जुलूसों पर हमला हो रहा है। यानी सरकार के सामने पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को बहाल करना। प्रशासन और भ्रष्टाचार, पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने कटमनी, शिक्षा भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी सिस्टम को राजनीतिक

0: दबाव से निकालकर विकास केंद्रित बनाना।
1: ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा ना राजनीति का अपराधीकरण होगा, ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है।
0: बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन सोनार बांग्ला की जिस सोच की बात की गई उसकी असली परीक्षा बंगाल की जमीन पर होगी, क्योंकि जनता ने सत्ता तो दे दी है, अब सरकार की जिम्मेदारी है भरोसा हासिल करने की।
2: ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल में केवल चुनाव नहीं जीता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। एक तरफ पीएम मोदी के रैलियों में उमड़ा जन सैलाब और मोदी मोदी के नारों ने माहौल बनाया, दूसरी तरफ अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति ने हर सीट पर जीत की जमीन तैयार की। कभी बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाले बंगाल में भगवा लहराना इस बात का संकेत है कि मोदी का करिश्मा और शाह की रणनीति जब साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
2: बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस। बांग्लाए परिवर्तन होएगे छे।
0: बंगाल में सत्ता का बदला हुआ फसाना कह रहा है कि मोदी है तो जीत मुमकिन है, कह रहा है कि इस आवाज में वो मैजिक है जिस पर जनता यकीन करती है।
4: भाई हमें अपना जान को लिख लो, पुरानी चीजें खाने है यार।
0: दस साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय करार दिए जा रहे दुर्ग द्वार की ओर पहला पत्थर उछाल कर इशारा किया था कि वो हार मानकर बैठने वाले नहीं है।

0: ऐसे ही नहीं भगवा हो गया बंगाल की राजनीति का रंग। 19 रैलियां, 5 रोड शो किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर रैली के पीछे पूरी ताकत झोंकती थी।
1: बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है।
0: नरेंद्र मोदी असंभव को संभव बना कर उभरे, वरना बंगाल में ममता का न जलवा कम था, न जोश और न जनाधार। लेकिन जब मोदी नाम की आंधी चली तो ना ममता का आत्मविश्वास बचा और ना उनके आक्रामक तेवर और ना ही पार्टी का रुतबा।
2: इस बार बीजेपी का प्रचार अभियान जो 6 महीने पहले शुरू हुआ था, तब ये माँ दुर्गा, माँ काली, दक्षिणेश्वर टेम्पल, इसी के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया। पहले दफा है कल्चरल, दूसरे दफा है तृणमूल से नहीं आना, तीसरा जो है वो बार बार बंगाल प्राइड के ऊपर हाथ कर रहे थे, चौथा है एक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बंगाल का जो चुनाव करते हैं पुलिस जो है सरकारी कर्मी है, उसको डीए का बहुत दिन से ठीक से नहीं मिल रहा था। इस बार बीजेपी का पहले से नारा था कि हम लोग पावर में आएगा तो आपको डीए मिलेगा, आपका वेतन बढ़ेगा, तो सरकारी कर्मचारी का मन भी वो जीत लिया।
0: इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर है, लेकिन कामयाबी की इस अद्भुत कहानी में अहम किरदार गृह मंत्री अमित शाह भी है।
3: सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है, इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है।
0: अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। कुल 256 चुनावी कार्यक्रमों का प्लान तैयार किया गया, जिनमें 97 बड़ी रैलियां, 54 रोड शो, 6 मंदिर दर्शन, 14 जनसंपर्क कार्यक्रम और 1 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम भी शामिल था। और ये पूरा कार्यक्रम खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया था। जब अमित शाह बंगाल में लगातार भाषण दे रहे थे तो सब सोच रहे थे उन्हें बांग्ला भाषी राज्य में कौन सुन रहा होगा, लेकिन जब नतीजे आए तो अमित शाह ने भाषा और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़ डाला था।
3: बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा।
4: प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, चुनाव।
0: अमित शाह ने सफलता का जो पैमाना रच दिया है वो अपने आप में राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए शोध का विषय है। कहा जा रहा है कि ए से ई तक के वर्ग बनाए गए थे। ए कैटेगरी में वो सीटें थी जहां जीत निश्चित मानी गई, बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहां पार्टी के लिए माहौल अनुकूल था पर लगातार प्रयास जरूरी था, सी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी, डी कैटेगरी में वो सीटें थी जहां पार्टी के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और वहां ग्राउंड वर्क की जरूरत थी, जबकि ई कैटेगरी में उन कमजोर सीटों को रखा गया जहां पार्टी के लिए जीत की शुरुआती संभावनाएं बेहद कम थी। सीटों की स्थिति के हिसाब से चुनावी रणनीति तैयार हुई तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के सारे सितारे जुट गए।
5: बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है, बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है।
0: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जादू तो सर चढ़कर बोध ही रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की जो अलख जगाई उसने भी बड़ा काम किया। योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर बीजेपी का आक्रामक प्रचार किया, जिनमें से 19 पर बीजेपी को जीत मिली। उनका स्ट्राइक रेट 90% रहा।
6: जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा।
0: बंगाल का जश्न बीजेपी के खेमे में अभी चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू कर चुके हैं और लक्ष्य भी उन्होंने तय कर लिया है।
7: शुभेंदु अधिकारी सिटिंग सीएम को दो बार लगातार हराने वाले एकमात्र ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी मिसाल कोई और देखने को नहीं मिलती। कभी जिन हाथों से उन्होंने टीएमसी का पौधा लगाया, मेहनत से सींचा, बड़ा किया, अब उन्हीं हाथों से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़कर कमल खिलाया। शुभेंदु अधिकारी ने आज जो हासिल किया है उसके पीछे 31 सालों की कड़ी मेहनत है।
1: बदलाव की राह दिखाई थी, अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए।
0: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक कौशल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा दिया, लेकिन इस कामयाबी के लिए जमीन पर रहकर कमल खिलाने के लिए जमीन तैयार करने शुभेंदु अधिकारी ने भी खुद को पूरी तरह झोंक दिया था।
8: बहुत जरूरी था ममता बनर्जी का हराना, बहुत जरूरी था ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया, इस बार भी हारा। 15,000 से ज्यादा वोट से उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया, और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है।
0: पीएम मोदी और अमित शाह के आक्रामक प्रचार से कहीं अधिक शुभेंदु अधिकारी का ममता को उनके ही गढ़ से ललकारना टीएमसी को हार से भी अधिक चुभ रहा होगा, क्योंकि ये वही शुभेंदु हैं जो कभी टीएमसी की नींव थे पर आज बीजेपी के सिरमौर बने हुए हैं।
9: भवानीपुर में हमने कभी 2019 की लोकसभा में उस विधानसभा को हमने जीता भी है। वहाँ लोगों की नाराजगी है, एक संतरास के कारण, भय के कारण लोग वोट दे देते थे। इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह पे शुभेंदु जी का विजय होगा।
10: शुभेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1995 में कांग्रेस से की और मेदिनीपुर की कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए। 1998 में टीएमसी का गठन हुआ तो वो ममता के साथ आ गए। उनका पूरा परिवार जो स्थानीय स्तर पर बड़ा सियासी रसूख रखता था वो सब टीएमसी का हिस्सा बन गए। उनके परिवार को टीएमसी के सह संस्थापक सदस्य कहा गया। 2006 में शुभेंदु टीएमसी के टिकट पर कांथी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंचे। 2007 में समय ने शुभेंदु अधिकारी को ऐसा मौका दिया जिसने पश्चिम बंगाल और उनके राजनीतिक करियर की पूरी दिशा ही बदल दी। शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट की वामपंथी सरकार की ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की कमान नंदीग्राम में संभाली। शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का गठन किया।
11: हमरा चाहिए आरो बेशी संख्यक मानुष, आरो बेशी संख्यक संगठन, सबाई आसुन, जार जा क्षमता आछे ताई निये रास्ताय नामुन। एवं आमरा आजके आवेदन करछि जेहेतु एतो मानुषेर गणहत्या, एतो मानुषेर धर्षण, এখনও অজস্র মানুষ নিখোঁজ, তাদের কোনো ট্রেস নেই এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছু নেই, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা টোটালি গুন্ডাগিরি করা ছাড়া কিছু করছে না।
10: আন্দোলন নে পুরো পশ্চিম বঙ্গাল মে লেফট কে খিলাফ মাহল বনায়া আর 34 সাল পুরানি সরকার 2011 মে তৃণমূল কংগ্রেস নে খতম কর দি। शुभेंदु की लोकप्रियता इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इतनी बढ़ चुकी थी कि वो 2009 में तुमलुक से सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता का कहना था कि उनकी पार्टी परिवारवाद को स्वीकार नहीं करती और वो काडर को महत्व देंगी। इससे टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी को ममता के बाद नेता नंबर दो माना जाने लगा था। 2014 में शुभेंदु अधिकारी फिर टीएमसी के टिकट पर तुमलुक से सांसद बने। 2016 में उन्होंने नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री बने। पश्चिम बंगाल में आज जिन क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है उन क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी की पहचान ने ही प्रभाव बनाया था। टीएमसी में रहते हुए ममता ने उन्हें जंगल महल क्षेत्र, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा का प्रभारी बनाया था। इन क्षेत्रों में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का विस्तार किया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे कांग्रेस के असर वाले क्षेत्रों में भी उन्होंने टीएमसी का काडर मजबूत किया। शुभेंदु टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले भी गए तब भी इन क्षेत्रों में उनकी व्यक्तिगत पकड़ कमजोर नहीं हुई और ये बीजेपी के बहुत काम आया।
7: शुभेंदु अधिकारी जमीनी नेता है, जुझारूपन की राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनावों के बाद से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दखल पार्टी में बढ़ने लगा। अभिषेक को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। ममता के की वो बात उन्हें याद थी कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, इसीलिए पार्टी के तमाम लोग शुभेंदु को ही ममता की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मानने लगे थे और खुद शुभेंदु को भी यही एहसास था। लेकिन जब समीकरण बदले तो शुभेंदु का मन भी बदल गया, वो खुद को साइडलाइन होता महसूस करने लगे।
10: ।2019 के लोकसभा चुनाव आते आते शुभेंदु का मोह टीएमसी से भंग हो चुका था। वैसे भी ममता के बाद अभिषेक बनर्जी हर जगह पार्टी का झंडा उठाए दिखने लगे थे। शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के कार्यक्रमों और कैबिनेट की मीटिंग से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 10 नवंबर 2020 को उन्होंने नंदीग्राम में एक रैली आयोजित की। न पार्टी का बैनर, न खुद मंत्री होने की बात, उन्होंने जनता के बीच एक ही बात कही, मैदान जंग में मिलेंगे।
12: तृणमूल कांग्रेस में जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हो गई, जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों में होती है कि वो परिवारवाद के साथ जुड़ी रहती है, पहले लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद जो शुभेंदु हैं उनका नंबर आ सकता है, वो एक बड़े जगह पर आ सकते हैं। कम से कम ममता बनर्जी को जब रिप्लेस करना हो तो शुभेंदु अधिकारी आएंगे। लेकिन जब ममता जी ने शुभेंदु की बजाय अभिषेक को वहां पर ले लिया पार्टी में और वो नंबर टू हो गए और ये लगने लगा कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही कमान संभालेंगे, असल में हुआ तो ये कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के रहते हुए भी कमान संभाल रहे थे और शुभेंदु के लिए कोई जगह नहीं बच रही थी।
10: टीएमसी ने उन्हें मनाने की कोशिशें की लेकिन शुभेंदु अपना आगे का रास्ता सोच चुके थे। उन्होंने एक एक करके महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफों की झड़ी लगा दी। 26 नवंबर 2020 को शुभेंदु ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 27 नवंबर 2020 को ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 16 दिसंबर 2020 को विधायक के पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। 17 दिसंबर 2020 को आखिरकार तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ पहले 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए।
13: कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था? आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी?
10: 2021 में दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की तरफ से मुख्य रूप से सक्रिय थे, लिहाजा शुभेंदु को खुलकर खेलने का दायरा नहीं मिला। लेकिन 2026 में कमान पूरी तरह उनके हाथों में दे दी गई।
12: भारतीय जनता पार्टी में उनको ये मौका इसलिए दिखाई दे रहा था कि वो एक ऐसी पार्टी थी जहां पर उनको भविष्य दिखाई दे रहा था। कांग्रेस वहां पर खत्म हो गई थी, लेफ्ट का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बचा था, तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक ऐसी भविष्य वाली पार्टी दिख रही थी जहां वो कमान संभाल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि एक मजबूत बना बनाया नेता बंगाल का वहां उनको मिल रहा।
10: यहां से बंगाल में बीजेपी की विजय गाथा शुरू होती है जिसमें शुभेंदु अधिकारी अर्जुन की भूमिका में थे। नंदीग्राम की जीत के बाद मई 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। शुभेंदु बीजेपी का प्रमुख चेहरा बन गए। ...2021 के चुनाव में हार के बाद गुटबाजी से जूझ रही बंगाल बीजेपी में शुभेंदु ने नेताओं को एकजुट करने का काम किया और आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के खिलाफ शुभेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सबूतों के साथ याचिकाएं दायर की। नतीजतन अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। इसके अलावा वो सारदा चिटफंड घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार मामलों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुद्दा उठाते रहे।
14: जो सारदा चिटफंड स्कैम है उसकी मेन कॉन्स्पिरेटर और मनी ट्रेल के लिए सबसे बिग बेनिफिशियरी का नाम है ममता बनर्जी।
10: उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का पुरजोर समर्थन किया, साथ ही बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और टीएमसी सरकार पर फर्जी वोटर आईडी बनाने में मदद करने का आरोप लगाया।
15: जीत होगा, 2 करोड़ हिंदू हिंदू धर्म को रक्षा करते हुए ये लोग को सीधा सीधा बांग्लादेश से भगाया और पाकिस्तान का जिहादी ये लोग सब हिंदू को भगाया, मेरा माँ को भी भगाया, गायत्री भट्टाचार्य बरिशाल से। 2 करोड़ बंगाली हिंदू का जीत होगा, हमारी गुरुचांद ठाकुर हरिचांद ठाकुर का जीत होगा।
10: 2021 में ममता को नंदीग्राम में हराने के बाद 2026 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी ही सीट भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनौती दी। इसके जरिए उन्होंने खुद को पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित किया। इससे जनता के बीच वो बड़े और मजबूत नेता के तौर पर उभरे।
16: पसंदीदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
0: शुभेंदु पर बीजेपी का भरोसा काम आया। शुभेंदु ने खुलकर ममता को चुनौती दी और उन्हें मुद्दों पर ललकारा। ममता बनर्जी के डेढ़ दशक के शासन का अंत हुआ और इसमें शुभेंदु की भूमिका सबसे बड़े लड़िया के तौर पर सामने आई।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे न केवल बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में पक्ष विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीतिक दिशा को भी ये प्रभावित कर सकता है।
0: पीएम मोदी के गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी के विस्तार का सपना साकार होने के बाद देश के राजनीतिक मैप में बीजेपी का भी विस्तार हो गया है। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जबकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी एनडीए के तहत सरकार का हिस्सा है।
1: आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है।
0: बीजेपी की बंगाल विजय के बाद सबसे अधिक चर्चा ये है कि ये जीत देश की राजनीति में बड़ा असर छोड़ सकती है। आजादी से पहले 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रगतिशील गठबंधन की बंगाल में सरकार बनी थी। ये सरकार 1943 तक चली थी। आजादी के बाद 20 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट और 15 साल ममता ने बागडोर संभाली। अब फिर भगवा लहरा रहा है, इससे देश में हिंदुत्व की राजनीति को और अधिक बल मिल सकता है।
16: अमी कृतज्ञता प्रणाम जानाबो विश्व सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी के, आमादेर प्रधानमंत्री के, जिनी आलीपुर द्वारे प्रथम परिवर्तन संकल्प सभाय दाड़िए पश्चिम बांगलार मानुष के स्वप्न देखिएछिलेन, जिनी दमदमे कोलकाता मेट्रो उद्बोधन करते एसे पश्चिम बांगलार हित गौरव फेरानोर ग्यारंटी दिएछिलेन, जिनी ब्रिगेड पैरेड मैदाने दाड़िए पश्चिम बांगलाय भय आउट करे भरसा इन करेछेन, जाके देखे मानुष भोट दिएछे, जार जन्य आमरा जीतेछि, आमादेर नरेंद्र मोदी जी के आमी आमार अंतर थेके कोटी कोटी प्रणाम निवेदन करबो।
0: राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी विपक्षी एकता का बड़ा चेहरा मानी जाती थी। अब उनकी जिस तरह से हार हुई है उससे विपक्षी एकता का सूत्रधार चुनने में विपक्षी दलों को परेशानी होगी। बीजेपी राज्यों के विकास के लिए डबल इंजन के सरकार के नैरेटिव को और अधिक मजबूती से भुना सकती है। बीजेपी ने बंगाल चुनावों में महिलाओं को 3,000 से अधिक राशि कैश स्कीम का वादा किया, जिसका नतीजा भी वोटों में दिखा। इससे आने वाले दिनों की राजनीति में महिला वोटर्स की अहमियत और उनको लेकर स्कीम्स बढ़ सकती हैं। बीजेपी को बंगाल विजय से मॉरल बूस्टर मिला है, जो 2029 के आम चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ाएगा। विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ेगी कि अगर वो एकजुट और जनता के लिए जरूरी एजेंडे के साथ नहीं आए तो बीजेपी का विस्तार और बढ़ता रहेगा।
7: भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। 2021 में नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी तो भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री ममता बन गई थी। ये सीट ममता बनर्जी की सेफ सीट थी क्योंकि इसी इलाके कालीघाट में उनका घर भी है। ममता ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। 3 बार बंगाल की सीएम बनी थी, लेकिन इस बार अपने गृह क्षेत्र और परंपरागत मानी जाने वाली भवानीपुर सीट से वो हार गई। वो न सिर्फ अपना व्यक्तिगत चुनाव हारी बल्कि उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। 15 साल के शासन में इकट्ठा की गई सारी सियासी जमा पूंजी खत्म हो गई।
17: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा पेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, आर जो फूल खिलेंगे, आर रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे।
0: सत्ता भी गई, साफ भी गई, सीएम गिरी भी गई, विधायकी भी गई। सिर्फ पार्टी हारती और ममता अपनी सीट भी जीत जाती तो कम से कम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभाई जा सकती थी, लेकिन वो भी हो न सका। सामने सिर्फ एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह रह गया है, अब दीदी क्या करेंगी?
18: My target is very clear. I will strengthen the India team. Just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now freeborn. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or the I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So I have to do some work. That I will manage.
0: तृणमूल बहुमत से जीत जाती, ममता अपनी सीट हार जाती तो भी 6 महीने मुख्यमंत्री बनी रहती और इस बीच किसी सुरक्षित सीट से जीतकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह सकती थी, लेकिन ये विकल्प भी बंद हो गया। तो सवाल ये है कि अब ममता के पास कितने रास्ते हैं? शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीते, एक नंदीग्राम, दूसरा भवानीपुर। उन्हें इनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी जिस पर बाद में उपचुनाव होगा। इसी तरह हुमायूं कबीर रेजीनगर और 9 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई, एक सीट उन्हें भी छोड़नी होगी। इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ममता को इन्हीं छोड़ी गई 2 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ना होगा ताकि अगर वो जीतती है तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष बन सके। ममता अपने विधायकों के साथ सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाए और सरकार को खेले, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने की चुनौती का सामना पहले करना होगा। सत्ता परिवर्तन के बाद दल बदल का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल गंवाने के बाद वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो हारी हैं, उससे उन्हें विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा बनना आसान नहीं होगा। भवानीपुर जैसा अपना गढ़ हारना और सत्ता से बाहर होना ममता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब उन्हें एक बार फिर से अपनी टीम में बड़े बदलाव करने होंगे। अभिषेक बनर्जी की भूमिका और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठेंगे, जिसे ठीक करना उनकी प्राथमिकता होगी। वो नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन उसमें उम्र और मजबूत बीजेपी आड़े आ सकती है। बंगाल की राजनीति में दीदी का दबदबा रहा है, लेकिन अब हालात बदले हैं तो उन्हें बदलाव की राजनीति करनी होगी। वो ये कैसे करेंगी, इस पर तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का भविष्य निर्भर करेगा।
7: पश्चिम बंगाल में अब शुभेंदु सरकार है और पूरे देश की निगाहें उनके काम पर अब लगी रहेंगी। अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: कूल फैंस से घर को सजाएं।
3: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
2: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
5: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
14: कैसा लगा मेरा स्टंट?
15: विक्रम, एक हिंट तो देते।
16: विक्रम!
15: हिंट।
14: बड़े आराम से।
17: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
18: Take a date, not bites.
19: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
18: Lion date, not bites.
20: Character, the taste of success.
1: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
21: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: और वही कहाँ गए थे घूमने?
25: JK Maxx।
26: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
25: JK Maxx बेस्ट पुट्टी।
27: JK वॉल मैक्स
25: बेस्ट पेंट।
27: JK Maxx।
25: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx पेंट्स। JK Maxx पेंट्स, खुशियों के रंग।
28: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
29: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
30: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
29: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
30: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है,
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है,
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल। विमल बोलो जुबा केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
0: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आप देख रहे हैं बहस बाजीगर आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और यहां पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत है, खास तौर पर इस पक्ष का, क्योंकि इनका ये मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव हुए तो क्या हुए, टीएमसी हारी तो क्या हारी, हो सकता है आगे वो जीत दर्ज कर ले और विपक्ष फिर से मजबूत खड़ा हो जाए। और वही इधर वाला हिस्सा मानता है कि मोदी को हराना अब विपक्ष के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो तालियां अपने लिए बजा लीजिए। आज का विषय अपने दर्शकों को बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। वैसे तो चुनाव और चुनावी नतीजों में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 2014 से चुनाव का एक समीकरण है जो बदल नहीं रहा है और वो चुनाव दर चुनाव असर ला रहा है और वो है मोदी फैक्टर। बीजेपी का विस्तार पिछले 12 वर्षों में लगातार हुआ, बंगाल ही नहीं ओडिशा असम जैसे कई राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये सब 2014 के बाद ही हुआ है। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है आजादी के बाद, पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी आजादी के बाद, पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना 2014 के बाद। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना क्या विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है, आज इसी पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। बहस बाजीगर का आज का मोशन है, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम रहा है? तो आइए सबसे पहले आपको बता दें, ये नीले गमछे वाले वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि विपक्ष मुकाबला कर रहा है, यही मानते हैं आप लोग, और लाल वाले मानते हैं कि मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सफेद वाले लोग क्या मानते हैं? होगा तब तो इधर वाले चले जाइए। लिबरल क्या होता है? लिबरल न्यूट्रल क्या होता है, मतलब मैं समझना चाह रही हूं। चलिए माइक लेके कौन आएगा मुझे समझाइए, न्यूट्रल क्या होता है आइए बताइए। मतलब मोदी से मुकाबला कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है?
1: ऑपोजिशन को लीडरशिप की जरूरत है, नई लीडरशिप की जरूरत है। ऐसा नहीं है हमारे पास ऑपोजिशन नहीं है। साउथ की स्टेट्स में बीजेपी नहीं टैप कर पाई है ये, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी भी है अलाइव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें आई थिंक, मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की रिस्पेक्ट में बोलूंगा, दे नीड अ चेंज इन देयर लीडरशिप बिकॉज इलेक्शंस 2014।
0: आप लोग के लिए न्यूट्रलिटी का ये मतलब है? जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आओ फटाफट।
2: कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो वोट तो जनता ही दे रही है बीजेपी को, तुम कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र खतरे में है? और दूसरी तरफ ये कि जो मानते हैं कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन में है कि हम दोनों चीजें मानते हैं कि जनता वोट भी दे रही है, लोकतंत्र खतरे में नहीं भी है और कहीं ना कहीं है भी।
0: चलिए ताली बजा दीजिए, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, लेकिन न्यूट्रल होना भी अपने आप में एक पोजीशन तो है ही देश में, और अभी भी नोटा का ऑप्शन तो रहता ही है वोटर्स के पास। तो चलिए मंच पर तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले तीनों जजेस का। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। विजय त्रिवेदी पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। कमलेश किशोर और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लंबे वक्त तक बीजेपी को कवर किया है विजय त्रिवेदी ने। विनोद अग्निहोत्री भी बड़े पुराने पत्रकार हैं, मजे हुए। और तीन ताल के ताऊ कमलेश किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। और अब बारी है अपने पहले दो कंटेस्टेंट्स को बुलाने की, जिनको आप टीम लीडर्स भी कह सकते हैं। दो दो साथी उनको मिलेंगे, दो टीमें होंगी, दो दो मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे पहले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की बात को दमदार तरीके से रखते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी इन दोनों के बीच स्कोर कार्ड चल रहा है 3-1 का। शुक्ला जी 3 राज्यों में आए हैं अपनी सरकार लेके, और उधर यूडीएफ, कांग्रेस लेड यूडीएफ केरलम में आई है, तो एक उधर का भी है। तो थोड़े आलोक जी थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं मूड में आज, चलो एक तो हमारी झोली में आया है। लेकिन बंगाल का जाना क्या मायने रखता है, और ये सवाल भी कितना मायने रखता है कि क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम रहा है। आइए अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद वाजपेयी, एनडीए की तरफ से आ रहे हैं, प्रवक्ता है ये आरएलएम के, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। और आ रहे हैं मृत्युंजय अजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट चौधरी सरकार बना लिए, कैबिनेट विस्तार हो गया, तो अच्छा कि आपको टाइम मिला है, फ्री रहते होंगे आजकल। चलिए अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। मलुक नागर जी पूरे जोश के साथ आ रहे हैं भाई, स्वागत कीजिए इनका। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, तो दोनों ही टीमें जल्दी जल्दी अपनी जगह ले चुकी हैं। तो आज का मोशन है, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पक्ष में बोलने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा, विपक्ष में बोलने का, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर इन लोगों को सुनने के बाद आप में से किसी का भी मन बदलता है तो आप सफेद या नीला गमछा ले सकते हैं, आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं, सफेद वालों के पास और ब्लू वालों के पास, सफेद और लाल का रास्ता खुला हुआ है। बीच बीच में हम आपको मौका देंगे। तालियों के साथ पहले दो गेस्ट प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा दोनों को आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी अपनी टीम की तरफ से मूड को सेट कीजिए। ओपनिंग बल्लेबाज अपनी अपनी जगह ले लें, पैड हेलमेट सब लगा लें और 2 मिनट में आपको बल्लेबाजी का 2 मिनट का ही समय मिलेगा। जितना आपको चौका छक्का मारना है उसी में शुक्ला जी मारना है। आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब।
3: आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय 1980 में अरब सागर के किनारे बैठकर वक्तव्य दिया था तो कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक रहेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की विजय के साथ हम अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में कामयाब हुए हैं। यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार किया था, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 5 राज्यों में सरकारें थी। आज 21 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें हैं, तो 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व

0: लेकिन वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। दिक्कत यह है कि अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लिया जाता है, तमाम न्यायालय के निर्णयों के ऊपर आज आम चर्चा होती है कि ये निर्णय कैसे आ गया। मैं समझता हूं कि विदेश नीति जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए अर्थनीति, सामाजिक नीति, सारी नीतियां ठप हो गई हो, रुपया डॉलर की तुलना में कहां गया हो, बेरोजगारी कहां हो, महंगाई कहां हो, लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी के पैसे से, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाते हो तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को दिक्कत होगी। लेकिन ये विपक्ष की दिक्कत नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है।
1: जबरदस्त बल्लेबाजी भाई इधर से भी हुई है। आप लोग अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाइए। कोई सवाल जो जजेस की तरफ से हो?
2: प्रेम जी से एक सवाल है।
3: जी
2: प्रेम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
3: जी
2: कल मैं देख रहा था शुभेंदु अधिकारी जी एक सभा में बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच, वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास छोड़िए, अब तो जो हमारे साथ है उसके साथ है। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी का नारा पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल सारे हमारे साथ ही है ना, कौन हमारे खिलाफ है? पूरा देश हमारे साथ है। वही तो 21 राज्यों का बता रहा हूं मैं कि लगातार हमारा राष्ट्रीय विस्तार बढ़ता जा रहा है, तो सारे लोग हमारे हैं। और लोकतंत्र में तो जिसने आपको वोट दिया वो भी आपका है, जिसने आपके खिलाफ वोट दिया वो भी आपका है।
1: कमलेश जी ताऊ, विजय जी,
5: अभी बहुत कम हुई है बहस और दोनों जो है वो जो प्रत्याशित वाक्य थे वही बोले हैं उन्होंने, तो मैं अभी जाने दूंगा अगली थोड़ी देर में।
1: प्रेडिक्टेबल लाइंस में बोला उन्होंने। विजय जी के मन में एक सवाल बोल रहा है।
6: आलोक जी की जो आदत है ये बॉक्सेस की, जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छी आदत है। क्या आलोक जी को नहीं लगता कि यही आदत विपक्ष या खासतौर से कांग्रेस अपना लेती सारे बॉक्सेस को टिक करने का, तो अंजना जी का सवाल ही बेमायने हो जाता।
0: देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल हर विपक्षी दल को, राजनीतिक दल को मेहनत करनी चाहिए, और अगर हमारे दल में या हमारी मेहनत में कहीं पर कमी है स्वाभाविक है उसके अंदर सिंहावलोकन करने की, समीक्षा करने की और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, और मैं आपकी टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लेता हूं।
1: वाह, चलिए आप में से कोई जो अभी गमछा बदलना चाहता है? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी टाइम लीजिए, बदलना है उठिए, उठा जाए जिसको जिसको बदलना है। आप लोगों को तो एक ही राउंड परिवर्तन हो गया, मैं देख रही हूँ। हाँ चलिए, अच्छी बात है, चलिए जिसको जिसको बदलना है बदलिए। गमछा देखिए, आप लोग कुर्सी से उठे, कुर्सी छीन ली गई। ये दुनिया ऐसी ही है, सारी राज्य उधर, दो ऊपर में जगह है, ऊपर से चले जाए उधर से। हाँ चलिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दीजिए भाई दोनों ओपनिंग बैट्समैन के लिए, जबरदस्त। आइए तिवारी जी और वाजपेयी जी आइए, दोनों बिहार के खिलाड़ी, अब इधर आरएलएम में ये आ गए हैं लेकिन पहले उधर ही थे, साथी हैं, अभी भी साथ हैं, चिराग जी से निकल के इधर आ गए हैं। तिवारी जी का गेटअप एकदम टाइट रहता है हमेशा,
7: दोनों का गेटअप, वाजपेयी जी का
1: गेटअप, वाजपेयी जी का तो रहता है, इनका जो ये कोई मजाल है कि पूरा जो इनका गमछा हिले रात तक, अना बिंदी का टिक्का रात तक इधर से उधर होगा। चलिए वाजपेयी जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय, एक बार फिर से अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको विषय बता देते हैं, उसे भटकिए मत। क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है? इस पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
8: जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और 11 साल आपने देखा है कि 11 साल में विपक्ष ने काफी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन उनको ही सोचना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं सत्ता तक आ सकते हैं और क्यों नहीं जनता उनको वोट देती है। इससे काम नहीं चलेगा कि SIR कर ली तो इसलिए वोट नहीं मिला, इससे काम नहीं चलेगा कि वोट चोरी कर ली तो काम वोट नहीं मिला। देखिए एक कारण है और गंभीर कारण है, जनता समझती है सारी चीज, जनता जज का काम करती है, जैसे विनोद जी और सब लोग बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हैं, पाऊ जी बैठे। देखिए जनता ने क्या सोचा और जो साथ साथ हम लोगों ने भी नोट किया है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है जो जनता इनका विपक्ष का लाइक नहीं करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को आप क्रिटिसाइज करेंगे, संवैधानिक संस्था की अभी बारी बात की आलोक जी ने, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करोगे तो जनता इसको नहीं सहती है ना मानती है। ECI को, इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करोगे, अरे भाई कांग्रेस भी 60 साल सत्ता में रही है, लगातार जीतती रही, तब तो ये आरोप नहीं लगे कि SIR हो गई, SIR तब भी हुई थी, और ये आरोप नहीं लगे कि वोट चोरी हो गया, तो ये कैसे आरोप है? फिर आप क्या करते हैं, कि ट्रिपल तलाक पे भी क्रिटिसाइज करते हैं।

0: समाज का एक हिस्सा है, अगर उसके वेलफेयर में कोई काम किया है सरकार ने तो उसको क्रिटिसाइज करोगे तो जनता उसको महसूस नहीं करती है। मैं गिन देता हूँ, ये मैंने खुद लिखे हैं, महिला बिल को अपोज करोगे, एनआरसी को अपोज करोगे, राम मंदिर को अपोज करोगे, विदेश की धरती पर जाके बदनाम करोगे, सर्जिकल स्ट्राइक को अपोज करोगे, ऑपरेशन सिंदूर को अप्रोच करोगे, आर्मी चीफ को गुंडा कहोगे, गुंडा कहना जरूरी है क्या, तुष्टिकरण करते रहोगे, ये 20 पॉइंट है। जनता की नवज पकड़ी नहीं जा रही, क्यों वोट बीजेपी को मिलता है? सबका साथ सबका विकास कोई नारा नहीं है, सबके लिए काम किया जाता है। मोदी को माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, वैक्सीन को धता बताया जाएगा, मुफ्त राशन अगर गरीबों को दिया जाएगा उसको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, मीडिया को लताड़ेंगे हर वक्त, डिजिटल अकाउंट अगर गरीब खोलेगा तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, और सबसे बड़ा
1: समय निकल गया, 20 पॉइंट हो गया आपका,
0: नोटबंदी को भी क्रिटिसाइज किया।
1: अरे गुरु जी 20 देखते हैं, 20 पर आप 21 साबित होते हैं या नहीं। मिस्टर तिवारी आपका 2 मिनट का समय
2: 40
1: हो जाए बा, आपका 20 मिनट, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है।
2: पढ़ के बोल रहे थे,
1: बोलिए 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
2: देखिए लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाता है, और सत्ता अगर बौरा जाती है तो फिर जनता का भला नहीं होता है, देश का भला नहीं होता है। हम आज ठीक है उनको सत्ता मिल रही है, लेकिन सत्ता किस तरह मिल रही है जनता के मन में ये सवाल है। जनता दुखी है, नौजवान किसान मजदूर गरीब सब परेशान है, लेकिन सत्ता उन्हें हासिल हो रही है। जब अंपायर ही मैनेज हो और अंपायर ही उनके पक्ष में हो तो फिर स्वाभाविक है सत्ता उनको मिल रही है। लेकिन अब देश की जनता के अंदर जो बवंडर है, वो तूफान जिस तरह से सब लोगों ने देखा था जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, अब जनता भी ये सब समझ रही है, और जनता जब सड़कों पर उतरेगी और जब जन आंदोलन का रूप होगा तो फिर यही सत्ता किस तरह से चली जाती है सब लोगों ने इतिहास देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र, अटल जी ने भी कहा था सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए लोकतंत्र रहना चाहिए, लेकिन आज तो लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, अगर वोट प्रतिशत भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, जितना SIR में वोट काटा जाता है उतना को अगर आप कर लेंगे तो पता चलेगा 4%, 2%, 3% का खेल हो रहा है। हमारे पास भी जनता का समर्थन है, लेकिन विपक्ष को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, सत्ता के चाबुक से आप विपक्ष को परेशान करके बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कहते हैं हम होंगे कामयाब, एक दिन हमें पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब, विपक्ष को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता है, लोकतंत्र के लिए खतरे की।
1: तिवारी जी ने उम्मीद का जो तड़का लास्ट में लगाया है ना वो गजब ढा गया एकदम, गजब बहुत अच्छा। कोई सवाल, कोई कमलेश जी कुछ बताओ।
3: नहीं, तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा, ये बार बार हर इलेक्शन के हार के बाद सुनने को भी मिलता है कि जनता सब समझ चुकी है, उनसे सब पता चल गया है, और फिर वो अगले चुनाव में जनता क्या लगता है ऐसा कि जनता समझ चुकी है दोनों साइड को।
2: उसके बाद हमने एक लाइन और जोड़ा था कि जनता समझती है, लेकिन जब SIR का खेल कर आप अंपायर को ही अपने पाले में मिला लेते हैं, जब अंपायर ही किसी के पक्ष में हो जाए तो फिर उस मैच का क्या मतलब है, उस चुनाव का क्या मतलब।
3: ये बिल्कुल जनता का विषय है।
1: केरलम में अंपायर किस तरफ गया?
2: देखिए ऐसा है
1: कि और तमिलनाडु में अंपायर किधर गया?
2: नहीं नहीं, हम लोग भी जब विद्यार्थी थे ना, तो एक स्टूडेंट हमारा
1: पर्ची से करते
2: पर्ची
1: थे,
2: चोरी करता था, हमने करते थे, जो करता था तो उसके लिए भी जो कलाकारी है, उसके लिए भी जो कलाकारी है वो कर रहे हैं। तो ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है लोकतंत्र में। कांग्रेस ने भी 60 वर्षों से ज्यादा समय तक राज किया, और वो कौन भूल सकता है, इमरजेंसी लगी थी उस समय, हमारे नेता सब लोग लड़े थे। आज भी जो स्थिति है आप देखिएगा, जन आंदोलन की तैयारी है, और जब जनता का सैलाब आता है तो सत्ता इसी तरह से उड़कर बह जाती उड़ जाती है।
4: तिवारी जी, आप विपक्ष जो है
2: जी,
4: बजाय चुनाव के जरिए सरकार बदलने के, वो जन सैलाब के जरिए बदलना चाहता है।
2: देखिए ऐसा है कि आज वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है एसआईआर के माध्यम से हो, वोट चोरी हो, ईवीएम का खेल हो, जो भी हो वो करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है, शक्ति है कि जनतंत्र हार रहा है, मशीनरी तंत्र जीत रहा है, फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं, हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि यही जनता जो आज उन्हें इतना परेशानी के बावजूद सत्ता दे रही है, वही जनता फिर जब करवट लेगी तो इनकी सत्ता चली जाएगी।
1: त्रिवेदी जी,
5: तिवारी जी ने अभी कांग्रेस का जिक्र किया, इमरजेंसी का जिक्र किया, तो मुश्किल कहीं यहीं पर तो नहीं है कि अभी विपक्ष को यही तय नहीं कर पा रहे कि उनको मोदी से मुकाबला करना है या नहीं करना है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बात होगी और बाहर कहेंगे राहुल दूल्हा है इस बारात के, और फिर ममता जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहले तय तो कर लीजिए कि मोदी से मुकाबला करना है कि नहीं करना है। ये लड़ाई बहुत आगे का सवाल कर रही है अंजना जी, अभी हाँ। तो पहले खुद तय करें कि मुकाबला हाँ। होगा, फिर नाकाम होंगे या काम
2: महा मुकाबला होगा, इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम आज जो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जो पूर्व नीतीश कुमार जी थे, चीख चीख कर कहते थे परिवारवाद तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी पर, आज मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है बिहार में, आप देख लीजिए ए टू जेड मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ये परिवार का राजनीति में विस्तार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन बाबू मां जी, ये सारे लोग आप देखिए अभी क्या बोलेंगे, वो करें तो ठीक है, और विपक्ष पर जितना एक उंगली आप उठा रहे हैं तो चार उंगली आपके ऊपर उठ रहा है, ठीक है, जनता को आप भ्रम में रखकर, झांसे में रखकर सत्ता पा रहे हैं, लेकिन एक दिन इसका अंत होगा।
1: हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा।
0: तीनों जज महोदय ने पूछे सवाल, इनसे किसी का क्लियर जवाब नहीं है, तो यही तो हमने कहा कि इनको खुद
2: तीस सवाल आप पढ़ के बताए और आपको समझ में नहीं आएगा क्या, उसके लिए लिख के लाना होगा।
0: अरे सुनिए तो सही, हम तो आपकी सलाह दे रहे हैं, हम आपके पक्ष की बात,
1: गुरुजी
0: हम आपके पक्ष की बात कर रहे हैं,
2: तब ठीक है, आ जाइए इधर।
0: करना होगा आपको मंथन, करना होगा कि मोदी क्यों जीतता है, एनडीए क्यों जीतता है, और उसकी काट आपको लानी पड़ेगी, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, माफ करना, इससे ज्यादा सलाम आपको।
2: अभी तो कैमरे के बाहर आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग के भरोसे जीत रहे हैं मोदी।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
2: आपका, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: मतलब वो आपका खेल के तो आप भी सोचे इनका भी खेल कर ही दिया जाए। अरे आप भी तो तिवारी जी ना है, सामाजिक समरसता और सामाजिक सशक्तिकरण का आप देखिए उदाहरण, है यहां से वहां नाम लूं क्या या छोड़ दूं?
6: शुरू करिए
1: शुक्ला जी से, शर्मा जी तक, तिवारी। चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलुक नागर और राजकुमार भाटी जी का, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मलुक नागर जी बैटिंग करेंगे एनडीए की तरफ से, और भाटी जी एकदम लाल गमछा लेकर अपने नेता अखिलेश यादव के रंग में रंगे हुए, दो मिनट के बाद बोलेंगे क्योंकि आपका दो मिनट का समय बोलने का, मिस्टर नागर शुरू होता है अब।
7: देखिए ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, ये मोदी जी का मुकाबला कर कैसे सकते हैं? जब से लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ 1913 से, कलकत्ता में, 20-21 में दिल्ली में आया, 47 में देश आजाद हुआ, 52 में चुनाव के बाद पहली सरकार बनी, जब से अब तक एक भी कोई नेता बता दो जो लगातार चार बार मुख्यमंत्री बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, और चौथी बार मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री, और वो भी बैक टू बैक तीसरी बार का प्रधानमंत्री। तो वो आंधी वो तूफान, इसमें सारे उड़ के साफ हो गए, ये साफ मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। इसमें एक ही बात कर साथ में जुड़नी है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, लोग ये समझ चुके हैं जब वो आपस में इकट्ठी नहीं रह सकते और स्वार्थ में देश के चुनाव में आपस में लड़ते हैं, टकरते हैं, भीड़ते हैं, जूझते हैं और फट जाते हैं, और किसी भी प्रदेश के चुनाव में इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकते, तो लोगों को लगता है जब ये अपने आप को ही नहीं संभालते तो देश को और प्रदेश को क्या संभालेंगे। तो इनकी मोदी जी से लड़ाई है ही नहीं, इनकी लड़ाई आपस में है, बिल्कुल क्लियर कट। और आज ममता जी जब सीधा उठा करके चुनाव हारने के बाद कहती है इस्तीफा नहीं दूंगी, क्यों भाई? पूरे पश्चिम बंगाल में मारकाट मचवाना चाहते हो, लड़ाई करवाना चाहते हो, जो चुनाव में बड़ी मुश्किल हुआ है वो तुमने अब चुनाव के बाद करवा दिया, ऐसे में राहुल गांधी जी साथ खड़े हो जाते हैं, संविधान से सीधा छोड़ रहे हैं चुनाव में, एक किताब रखते हैं अपने हाथ में, तो इनको लोग कैसे बकस दें, कैसे ना चुनाव हरवाएं। तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं तो वहां मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं, ये आपस में ही लड़के चूर चूर हो रहे हैं, मोदी जी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते ऐसा लगता है।
1: जबरदस्त क्लोजिंग पारी बड़ी अच्छी तरह से खेली गई है, आपको भी फिनिशिंग टच देना है अपनी टीम को, जनता को कन्विंस करना है, जिसके बाद एक एक सवाल भी लेंगे और आपको मौका भी मिलेगा। राजकुमार भाटी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है।
6: पहले 4 पंक्ति शुक्ला जी के लिए कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो, वकील भी तुम दलील भी तुम गवाह भी तुम वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है, 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़े गए, किस प्रक्रिया से जोड़े गए। तो 32 लाख वोटों की धांधली हुई और 32 लाख वोट से ही पार्टी जीती है, यह संयोग है या प्रयोग है? पश्चिम बंगाल में जब ये पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो जज ने यह कहा था कि अगर किसी सीट पर कटे हुए वोटों के बराबर अंतर से या उससे कम अंतर से हार जीत हुई तो हम पुनर्विचार करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरी 50 सीट ऐसी हैं जो उससे कम अंतर से जीती गई हैं जितने वोट काटे गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पर पुनर्विचार करेगा? और अगर ईमानदारी से पुनर्विचार हुआ तो यह सरकार अवैध है। शुक्ला जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया, उनकी आधी बात तो आपको याद रहेगी कि उन्होंने एक दिन कहा था पूरे भारत में बीजेपी जीतेगी, लेकिन उनकी आधी बात आप भूल गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अनैतिकता और बेशर्मी से प्राप्त की हुई सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा, और वो तो चिमटे से भी नहीं छू रहे थे, आप तो होठों से छू रहे हो उस सत्ता को। जो आपका सवाल है अंजना जी, मोदी जी का मुकाबला तो हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, ज्ञानेश कुमार का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि वो रेफरी है, हम खिलाड़ी को हरा सकते हैं, रेफरी को नहीं हरा सकते।
1: जबरदस्त बाय क्लोजिंग, मतलब जो विपक्ष की लाइन है उस लाइन पे अगर आप बोले तो बहुत अच्छा बोला। एक सवाल मेरे मन में है, उसके बाद में 2 सवाल वहां से भी लूंगी कि क्या विपक्ष उन 50 सीटों की बात जिसका आपने मेंशन किया इसने नहीं उठा रहा है, क्योंकि 20 सीटें जिसमें मैक्सिमम डिलीशन किया गया, एक बार फिर से सुनिए मेरा सवाल, 20 सीटें जिसमें मैक्सिमम डिलीशन है उसमें 13 सीटें तो टीएमसी जीत गई है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई है और 6 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती है। तो अब विपक्ष को तो लड़ाई अंत तक लड़नी होगी ना, उस मामले को ले जाना होगा ना आगे। 20 सीटें जहां मैक्सिमम डिलीशन है वहां 14 सीट तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस जीती है।
6: इसका जवाब दूं?
1: बिल्कुल।
6: टीएमसी के पक्ष में की गई धांधली क्या धांधली नहीं है? आपको यह सवाल उठाना नहीं चाहिए कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है कि धांधली हुई या नहीं हुई, गलत तरीके से वोट काटे गए कि नहीं काटे गए, गलत तरीके से वोट जोड़े गए कि नहीं जोड़े गए, सवाल तो यह है।
1: कोर्ट में जाना होगा ना उसके लिए, कोर्ट में विपक्ष को लगातार लड़ाई लड़नी होगी,
6: समस्या की दिशा चेंज ना की जाए।
1: चलिए एक एक सवाल दोनों तरफ से लेंगे, आइए जल्दी आइए।
8: मैम मेरा सवाल ये है, विपक्ष हमेशा इलेक्शन कमीशन को दोष देता है, आप इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप लीगल तरीके से आइए हमारे से लड़िए बहस कीजिए और हमें नोटिस दीजिए बकायदा, लेकिन आप लोग विपक्ष में कोई जाना नहीं चाहता लीगल नोटिस ले, क्योंकि उन्हें पता है अगर गलत साबित हो गए तो सर पार्टी से तो जाओगे जाओगे, ऊपर से आपका जो बदनामी की वो अलग ही होगी, वो लीगल तरीके से आप लड़ो। आप हमेशा थोप देते हो जनता के ऊपर इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन में वोट चोरी करा रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए था, 2003 में भी वाला एसआईआर उसके बाद अब हुआ है, उसके बावजूद आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन गलत करा रहा है, हर जगह आपकी सरकार बन रही
6: है। जी आधी मिनट देते हैं, 10 सेकंड।
1: सफेद वाले हिस्से से कोई
9: मेरा सवाल प्रेम शुक्ला सर से है, बोल रहे थे कि हर जगह मोदी जीतते रहेंगे, अभी तमिलनाडु का चुनाव हुआ वहां पे विपक्ष भी खत्म सत्ता पक्ष भी खत्म, वहां नई पार्टी नई नवेली पार्टी थी उनकी सरकार बन गई, वहां मोदी जी का कमल नहीं खिला। बिहार में अगर आप लोगों 10,000 रुपए नहीं बांटे होते तो वहां जनसुराज की सरकार बन गई होती, तो फिर
1: जनसुराज की सरकार बन गई होती,
9: अब आप
1: नंबर 2 की पार्टी ने की नहीं बनेगी नंबर 3 की,
9: वहां पे पैसों के पैसे देकर जनता को वोट लिया गया है।
1: आप जनसुराज के समर्थक हैं?
9: आप कह सकते हैं
1: ठीक है भाई, देखो जिसके दिल में जो है सो है, इसीलिए हम कह रहे थे न्यूट्रल जो पहने हो ना बबुआ, वोट करने समय तुम जाओगे दाएं बाएं, बैठो, आपका भी सवाल लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए, एक सवाल यहाँ से लेंगे आप।
10: सर मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, पर्सनली मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है, मैं 18 साल अपने जीवन के वेस्ट बंगाल में रखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल जो टीएमसी चला है वो, मतलब अभी बीजेपी आने से पूरा बंगाल का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बीजेपी अचानक से हर चीज़ चेंज कर देगा, और टीएमसी 15 साल जो भी किया वो जनता को नहीं दिख रहा है, जनता उसको लेके अचानक से 15 साल का भूल के एक टाइम पे चेंज हो जाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है?
1: बहुत लूज बॉल दिया आपने उनको,
7: जवाब दे दूं?
1: वो तो 10 चीजें गिना देंगे अभी कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इसलिए चलिए आप छोटा सा जवाब दीजिए फिर आपके पास।
7: देखिए जो अभी पूछा है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी जो नहीं कर पाई बीजेपी वो करेगी, मेरा सीधा सा जवाब है इस बात का, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तत्कालीन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री कहते थे 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाएंगे, हमने 2025 और 26 में ही ला दी। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने करा, ना लेफ्ट पार्टीज ने करा, ना ममता जी ने करा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे आने वाले समय में।
1: चलिए ठीक है, अब आप जवाब दीजिए।
6: देश की इकोनॉमी तो पांचवें नंबर से छठे नंबर पर चली गई है, ध्यान रखें। लेकिन भाई ने एक सवाल उठाया था कि आप क्यों नहीं जाते कोर्ट, क्यों नहीं जाते? हम चुनाव आयोग भी गए हैं, हम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है, लेकिन अगर आप कानून के, संविधान के और चुनाव आचार संहिता के थोड़े बहुत जानकार हैं तो केवल 3 सवालों के जवाब अपने मन से पूछें। क्या चुनाव के समय एसआईआर कराना ठीक है? क्या शांत समय में जब चुनाव दूर हो तब एसआईआर नहीं कराना चाहिए था? क्या जो डाउटफुल वोटर कहकर 32 लाख लोगों को वंचित किया गया, क्या वो ठीक है? क्या चुनाव आयोग के भेजे हुए पर्यवेक्षक विपक्ष के प्रत्याशी के घर पे जाके धमका रहे थे, वीडियो मौजूद हैं, क्या ये पर्यवेक्षक का काम है? क्या जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यालयों पे तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, और वहां सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री है खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या ये भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या हम इस देश को लोकतांत्रिक रास्ते से हटा के तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं?
1: इन सवालों के जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ आ रहा है,
7: राजकुमार भाटी जी ने कहा कि देश की इकोनॉमी पांचवे छठे पे पहुंच गई है। अरे पूरे विश्व में पूरी आग लगी है, पूरे विश्व ऊपर नीचे हो रहा है। चौथे नंबर पे 2025 में आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी, चेक कर लो प्लीज, जरा देख लो फिर बता देना।
1: चलिए बहुत अच्छा, शुक्ला जी और शर्मा जी आइए। शुक्ला जी और शर्मा जी आ रहे हैं अपनी अपनी टीम की तरफ से। एक एक मिनट का रिबटल राउंड है। आप अपने प्रतिद्वंदी की तरफ से दिए गए विषय, जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं, जो जजेस ने पूछा, कोई सवाल अगर इन दोनों से आपका है, कोई है ताऊ?
3: नहीं, मेरा यह है कि जो आशंकाएं अभी भाटी जी ने भी व्यक्त की और शर्मा जी ने भी बोली थी और तिवारी जी भी बोल रहे थे, वो आशंकाएं जो है निराधार नहीं है। मुझे तो एक और शक है कि कहीं ये तो नहीं है कि बीजेपी अच्छा गठबंधन बना पा रही है और माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट कर रही है, इसको भी आप लोग कंसिडर कीजिए, हो सकता है ये भी सच हो। पर उससे भी बड़ी बात यह है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बंगाल में विपक्ष जीता है, 15 साल से जो सत्ता में थे वो हटे हैं, तो विपक्ष को तो खुशी होना चाहिए इस बात पे कि कभी तो, मतलब एक दिन तो रोटी पलटेगी। ये तो आपके लिए, यहां के लिए अच्छे संदेश हैं, हर जगह के लिए, इसीलिए कि वो विपक्ष सक्षम है, नाकाम है पर सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिल नाउम्मीद नहीं है, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक दिन पलटेगा सब कुछ।
1: चुनाव आयोग, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने के
4: बजाय इसका ताजा नमूना जो है तमिलनाडु और केरल भी है। केरला में भी पलटी है रोटी और तमिलनाडु में भी एक नई ताकत आ गई अचानक,
1: तो इनकी रोटी फूली है वहाँ।
11: देखिए इसमें बहुत
1: इनके, इनसे शुरू कर, आप शुरू करना चाहते हैं?
11: मैं कर देता हूं।
1: ठीक है, एक मिनट का रिबटल राउंड शुरू हो रहा है जिसमें आलोक शर्मा जी आपका समय शुरू।
12: बहुत गहराई से समझने की चीजें हैं। जहां पर 2% वोट है, केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी धांधली से बीजेपी को नहीं जिता सकता है, इसलिए वहां पर रोटी दूसरी तरह से पलटी जाती है। और ये बार बार कहना संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पे, अरे भाई अगर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं तो सैकड़ों केस जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं सब बंद कर देने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान तो स्वयं कहता है कि आप अपने फैसले को बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने फैसले बदलता है, सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए। और बार बार ये कहना कि वहां तो इलेक्शन कमीशन केरल में तो वही था, 10 घर थे एक गली में, 2 घर में चोरी नहीं हुई, 8 में चोरी हुई, सारे चोरों को बरी कर दो, क्योंकि उन 2 में तो हुई नहीं। दुर्भाग्य यह है कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। अलायंस बनाने की बात तभी वरिष्ठ महोदय ने कही, अलायंस बनाए जाते हैं ईडी सीबीआई भेजकर, थोक के भाव सांसद अपनी पार्टी में सबमिट कर लिए जाते हैं।
1: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर, समय इसमें थोड़ा सा बाधित है इसीलिए। शुक्रिया जी आपका।
11: देखिए निर्वाचन आयोग पर वो लोग बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए मौलाना आजाद के खिलाफ जो चुनाव जीता होता है, डीएम को फोन करके उसको चुनाव हरवा देते हैं। वो महान थे, लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्रवादी थे। सबसे अच्छे निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला थे, जो वॉशरूम में जाकर श्रीमती सोनिया गांधी से आदेश प्राप्त करने के बाद जो है निर्वाचन आयोग के निर्णय लेते थे। और मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप उनके सहयोगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोगी निर्वाचन आयुक्त का है। तो ये लोग बातें करते हैं। तमिलनाडु में अगर परिवर्तन हुआ, वहां भी तो SIR हुआ था, वहां SIR का कोई दोष नहीं है, तमिलनाडु परिवर्तन का कोई दोष नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोष है, क्योंकि ये जिसको चाहते थे वो नहीं जीत सका, ये जिसको चाहते थे वो, जो नहीं चाहते थे वो जीत गया। गजब है भाई, केरल में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, तेलंगाना में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, कर्नाटक में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, जहां ये जीतेंगे वहां निर्वाचन आयोग बहुत उत्तम है, भले जो है इनके टेलीफोन से परिणाम बदल जाते हो, लेकिन जहां ये हार जाएंगे वहां निर्वाचन आयोग दोषी है। ये है कि आईना देखने की बजाय।
1: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं।
13: आइए आइए आइए, वाजपेयी जी आइए, तिवारी जी और वाजपेयी जी आइए। वाह वाह कितना अच्छा है। चलिए आपका रिबटल राउंड, कोई सवाल किसी का तीनों जजेस में से, जल्दी से आप जवाब दीजिए। ठीक है,
4: वाजपेयी जी जरा जो एक सवाल उठाया था बर्तुन्ने जी ने, परिवारवाद वाला मामला है, उस पर थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहिए।
0: परिवारवाद पे हम कई बार जवाब,
4: उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे MLA भी नहीं है, वो मंत्री बन रहे हैं।
0: अरे भाई
1: दो दो बार
0: मैं जवाब देता
1: हूं, MLA बने ना MLC, जींस पहन के आ जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, क्या मतलब पिता के पुण्य का काम ऐसे ही मिले तो हम सबकी जिंदगी कैसे संवर जाए।
0: मेरा जो परिवारवाद को जब मैं अपोज करने की बात करता हूं या NDA अपोज करने की बात करता हूं, हमारे पापा नेता फर्क है,
1: ये भी एक आइडियोलॉजी है इस देश।
0: जब पूरा मानता हूं अगर परिवारवाद भ्रष्टाचार से लिप्त है, ये मैंने कई बार बात कही है, लेकिन अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और वकील का बेटा वकील बनता है और नेता का बेटा नेता बनता है, तो उसमें क्या ऐतराज हो सकता है?
1: अरे चुनकर तो आएगा कम से कम, खाली माथे पे लिखवा लेगा मेरे पापा नेता है।
0: संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था में 6 महीने में उसको चुनके आना पड़ेगा। और दीपक प्रकाश हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, वो भी चुन के आएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये चल रहा
1: था। सेट करते हैं सर, घड़ी लगाते हैं, 1 मिनट का बोलिए, कहां है आप उसमें फंस रहे हैं,
0: बताइए बताइए।
1: पहले चिराग जी के लिए बैटिंग करते थे, अब एक दूसरे मिल गए इनको दीपक प्रकाश।
0: बैटिंग तो करनी पड़ेगी, जिसके साथ है उनके उनकी बात तो रखनी पड़ेगी ना।
4: दीपक
1: चिराग थे, दीपक
0: समाजवादी
1: विचारधारा के बोलने का रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है। अब
0: देखिए, अभी सब लोगों ने अपनी बात रखी, मेरा फिर वही मानना है कि विपक्ष को अपने आप समझना पड़ेगा कि उनके लगातार हार के 11 साल से क्या कारण है। धीरे धीरे एक एक राज्य उनके हाथ से क्यों फिसला, लोकसभा में क्यों नहीं उनकी सीटें आती। अगर ये नहीं समझना चाहेंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, और फायदा जनता देती है। खाली आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका संवैधानिक व्यवस्था है। अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ी की बात आप करते हैं तो इलेक्शन पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी, माफ करना, बिगर फाइल करे आप चीखते रहिए चिल्लाते रहिए, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है, ये आप लिख लीजिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने बार बार आरोप लगाए, ईवीएम, पहले इन्होंने ईवीएम पकड़ी हुई थी कि ईवीएम गड़बड़ करती है, ईवीएम गड़बड़ करती है, और जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया इनको तो ये कोई पार्टी वाले नहीं गई थी, ये डिफेक्ट है इसमें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि विपक्ष जाने, उनका काम जाने, हम देश की सेवा कर रहे हैं।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। मिडिल ऑर्डर रुकिए, पहन के एकदम से बैठे हुए, पैड वैड हेलमेट निकल ले रहे हैं जब मन कर रहा बैट लेके। तिवारी जी आपका इस विषय में,
14: अंपायर उनका इसलिए निकल जा रहे
1: हैं, फिर हो गया शुरू, हम सोच ही रहे थे अभी तक आए नहीं,
14: आउट होके जाएंगे तब ना वो आएंगे, तो पहले शुरू हो गए।
1: अरे टिक्का बिंदी लगा कर मिस्टर तिवारी, चलिए 1 मिनट में अपना विषय रखिए, आपका समय शुरू होता है। अब
14: देखिए
15: आज ठीक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हर जगह सत्ता मिल रही है, इस बात से कोई इनकार कहाँ कर सकता है, लेकिन विपक्ष एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष से सवाल तो करेगा ही, और जो जनता के सवाल हैं, विपक्ष का धर्म है जनता के सवालों को उठाना, जनता की आवाज़ बनना, लेकिन दुर्भाग्य उस समय दिखता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सदन में हो या सड़क पर हो, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसका जवाब से भागते हैं और विपक्ष को ही नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सत्ता का अंग विपक्ष भी होता है, ये सब लोग जानते हैं। लोहिया जी ने भी कभी कहा था इस बात से सब लोगों को पता है कि जब जब सत्ता अहंकारी हो जाता है तब तब जनता का भला नहीं हो पाता है, अभी जो सत्ता है वो अहंकारी हो गया।
13: बहुत अच्छा, समय समाप्त हो गया, गजब, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, अपनी अपनी ऊर्जा बना के रखिए, बहस बाजीगर भी आज तय होना है। सेकंड राउंड में आते आते ऐसा लग रहा है कि स्टीम इंजन थोड़ा सा जो है ज्यादा काला धुआं फेंक रही है, तो थोड़ा आप लोग बकअप कर लीजिए, मोशन पर रहिए, धारदार बोलिए, दमदार बोलिए और अपनी अपनी बात रखिए। हाँ, इनका मोशन शुरू होता है इससे, गजब एकदम, अपना स्टाइल है नागर जी का। चलिए आपका है, और बहुत घाट पे गए हैं उसके बाद सीख के आए हैं। चलिए आपका इस मोशन पर बोलने का रिबटल राउंड का एक मिनट का समय शुरू होता है। अब
7: देखिए, कांग्रेस के साथ ही अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट पे बोल के गए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं खिलाफ बोलो, अरे संविधान की कॉपी लेके मत घूमो, संविधान को पढ़ो और समझो, और संविधान के अनुसार इस देश में सुप्रीम कोर्ट के बारे में केवल पार्लियामेंट के अंदर पैर जाने के बाद एमपी लोग बोल सकते हैं, हम लोग, और पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद हम भी नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, वो अलग बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ रखे हो। दूसरा बात, आपने भी एक बात कही इकोनॉमी की, इस पर चर्चा मत करो कांग्रेस, ये छोड़ दो। राहुल गांधी संसद के परिसर में संसद से बाहर निकल कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, 60 साल की अपनी डेड कर ली तो तुम इकोनॉमी पे क्या बोलोगे, कौन से नंबर पे है। दूसरा, कांग्रेस के सबसे बड़ा परिवार राहुल गांधी परिवार, उसमें प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी, दो लेडी, दोनों एमपी, और 273 का रास्ता साफ करा था 375 करोड़ में से, वो भी आपने बंद कर दिया, इसकी सजा मिली है। समझो, सीखो, आकलन करना समझो, जब ही कुछ मुद्दे उठा पाओगे।
13: समय समाप्त हुआ भाई, क्लोजिंग इधर से अच्छी हुई है। चलिए आपका भाटी जी, अब समय शुरू होता है। अब
6: एक तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। मैं अपनी पार्टी का उदाहरण देना चाहूंगा, 2019 में हमारी मात्र 5 लोकसभा में सीटें थी, अब इस समय हमारी 37 सीटें हैं, हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। और 29 में जो ये पार्टियां जिन्हें बेईमानी से हराया जा रहा है, ये सारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराएंगे। वाजपेयी जी ने एक बात कही, उसे मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, कि अगर आपको न्याय पाना है तो आपको रिट पिटीशन में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी उनके जो बिना कहे शब्द है, उनका अर्थ यह है कि मोदी जी से और ज्ञानेश कुमार से न्याय की उम्मीद मत करिए, न्याय अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, उससे पहले कहीं न्याय नहीं है। इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना या चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद करना अब इस देश में नागरिकों को, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जोड़ूंगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इस पे आप गौरवान्वित मत होइए, इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए।
13: चलिए 3 सेकंड पहले ही भाटी जी ने खत्म कर दिया, तालियां बजा दीजिए भाई। नेता अगर 5 सेकंड भी छोड़ दे पहले तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। और अब बारी है जब हमारे दर्शक अपना वोट डाल सकते हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स जो घर पर आज का शो देख रहे हैं, आप घर पर बैठे भी स्क्रीन पर जो QR कोड है उसे स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। और जो स्टूडियो में यहां पर तमाम जनता मौजूद है, फटाफट QR कोड स्कैन कीजिए, हम वोट डालेंगे। और इस बीच तीनों जजेस को एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि तीनों जजेस अब आपस में बातचीत करके ये तय कर रहे हैं कि आज का बहस बाजीगर कौन होगा। कई बार तो ये वैसे एंटी क्लाइमैक्स कर देते हैं, तीनों कहते हैं 2 जीत गए, 3 जीत गए, जनता जीत गई, एक शो में ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ। तो चलिए अब हम वोटिंग कराते हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा कि आज का बहस बाजीगर कौन है। आज का मोशन है, क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है? अगर आप मानते हैं कि हाँ वो नाकाम है, यानी आप टीम प्रेम शुक्ला के लिए वोट करना चाहते हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आप मानते हैं नहीं, तो आप आलोक शर्मा जी की टीम के लिए वोट करेंगे, और कह नहीं सकते वाले तो आजाद पंछी हैं, उनका जिधर मन करे निकल लीजिएगा। चलिए, आपके वोटिंग के लिए आपको 60 सेकंड मिल रहा है, और वो 60 सेकंड शुरू होता है अब। फिलहाल प्रेम शुक्ला की टीम आगे चल रही है, 70% के आसपास है, 51 सेकेंड बचे हुए हैं अभी भी। अभी देखते हैं, इधर आलोक शर्मा जी की तरफ 25% हैं। मुझे लग रहा है कुछ नीले गमछे वाले भी दाएं बाएं कर रहे हैं, सफेद गमछे वालों ने तो पक्का ही कुछ ना कुछ किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरे, सफेद गमछा ओढ़ लिया ताकि शांति के दूत बने रहे, बाद में कोई दुश्मन ना माने, और फिर अंदर ही अंदर वोटिंग में जो करना है वो देख ली जाएगी। अब और की नीचे हो गए 3%। हाँ हाँ, और इसी से चुनाव बदलता है। जो स्विंग वोटर होता है, जो सफेद पहन के आता है, वो कहता है बताएंगे नहीं, अंदर ही करेंगे जो करना है। और ये देखिए 25% पर, मुझे नहीं लगता है, वैसे मुमकिन है, क्योंकि इधर 72 और इधर 23%, ठीक ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है, ज्यादा नहीं। चलिए, तो क्या विपक्ष, समय समाप्त हुआ, और 72% के साथ टीम प्रेम शुक्ला जीत गई है। जो ये क्या विपक्ष मोदी से मुकाबला करने में नाकाम है ऐसा मानते हैं, वही 23% आलोक शर्मा जी की तरफ गए हैं, और कह नहीं सकते वाले 5% लोग। मुझे भी ऐसा ही लगा था आलोक जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि नीले गमछे जितने लोगों ने लिया है उन्होंने गुगली कर दी आपके साथ। चलिए, जब बताइए आज का बहस बाजीगर कौन है,
5: ताऊ बताएंगे, लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूँ अंजना जी आपकी इजाजत से, कि आज के प्रोग्राम में वाजपेयी जी को बहुत याद किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। वाजपेयी जी ने कहा ये जो प्रेम शुक्ला जी के ग्रुप है उसके लिए, कि भाई मैं सत्ता को भ्रष्टाचार के या किसी भी गलत कारण से चिमटे से भी नहीं छूंगा।
13: हाँ।
5: क्या पार्टियां जो सत्ता में बैठी हैं वो उसको सुन रही हैं? और दूसरी तरफ बार बार भाटी जी ने और लोगों ने भी जिक्र किया वाजपेयी जी का, तो वाजपेयी जी से बड़ा तो कोई हुआ नहीं जिसने गठबंधन की सरकारें बनाई सारा अहंकार छोड़कर। तो वो गठबंधन की जो राजनीति है, क्या विपक्ष सीख रहा है? यदि वो सीख लेगा तो भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि शेख सादी ने अक्सर कहा है कि चिड़िया एका कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है।
13: विनोद जी,
4: देखिए विपक्ष जो है वो भले चुनाव हार रहा है, लेकिन विपक्ष को बजाय हर बात में चुनाव आयोग और उस पर, ठीक है वो आपका आपत्तियां हो सकती हैं, इतराज हो सकते हैं, आप वो उठाइए मुद्दे, लेकिन आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा कि आपस में जिस तरह आप लोग जो है कभी तो तय करते हो कि राहुल गांधी नेता हूँ, कभी कहते हो ममता जी हूँ, कभी कहते अखिलेश जी हूँ। पहले एक बार जो 1977 में जैसे विपक्ष इकट्ठा हुआ था, जैसे 1989 में इकट्ठा हुआ, जैसे 1996-98 में इकट्ठा हुआ, 2004 में इकट्ठा हुआ, उस स्पिरिट से जब तक आप नहीं इकट्ठा होगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाओगे। आप पहले बीजेपी को समझो, उसकी ताकत को समझो, तब आप उसको हरा पाएंगे।
13: क्या हाल बना रखा है सर, जो आता है सुझाव दे के चला जाता है, जिसको देखिए थोक थोक बार सुझाव दे रहा है।
16: अटल जी ने कभी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया, नहीं तो वो एक वोट से नहीं हारते, वो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। आज चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, जीतने के बाद, जीतने से पहले, शपथ के बाद, शपथ से पहले कभी भी ईडी सीबीआई पहुंच जाती है।
13: गलती मेरी थी, माइक दे दिया मैंने नेताजी को, अब वो कहां रुकने वाले हैं। कांग्रेस करती थी या नहीं करती थी दुरुपयोग?
16: मैं फिर कहूंगा कि अगर कांग्रेस ने कोई भी सरकार,
11: कभी तत्काल बता
13: देता हूं। चलिए अब, नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग का हो गया, नेता को माइक नहीं देना चाहिए जल्दी। हाँ,
3: बंगाल में राहुल जी ने कड़ी मेहनत की और लोगों से कहा कि ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा दीजिए। तेजस्वी गए, उन्होंने कहा नहीं हटाइए। लोगों ने राहुल जी की सुन ली, उनके मन की बात कर दी।
13: हाँ।
3: जीतता कोई एक ही है, सबको तो सुन नहीं सकते। आज प्रेम शुक्ला जी की टीम के लिए बहुत आसान था, क्योंकि अभी अभी जीत हुई है तो बहुत आसान है उसको डिफेंड करना।
13: पिछली आसान था इनके लिए।
3: शर्मा जी की टीम के लिए बहुत मुश्किल था।
13: हाँ।
3: पर राजकुमार भाटी जी ने पहले राउंड में और अपने अंतिम जो 2-3 वाक्य थे उससे आज जो है बेहतरीन तरीके से बहस बाजीगर का खिताब ले लिया है।
13: वाह, ताली बजाइए भाई, भाटी जी को बहुत बहुत बधाई। सर खड़े होके एक्नॉलेज कर लीजिए, आज आप बहस बाजीगर बने हैं, बधाई ले लीजिए सबकी तरफ से। तो आज के बहस बाजीगर बने हैं समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी। इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट
3: बड़े आराम से।
6: मैं करता हूँ ना,
7: मैं करूँगा।
8: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
6: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
6: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल। विमल बोलो जुबां केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: बंगाल में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब।
0: शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं, बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मथुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदिराम टुडू और निशित प्रमाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया और उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं। पीएम मोदी के सम्मान को बीजेपी सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रही है। दरअसल उत्तर बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इसी इलाके से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ऐसे में माखनलाल सरकार को मंच से सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया बल्कि उत्तर बंगाल को भी सीधा राजनीतिक संदेश दे दिया। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ पीयूष मिश्रा, कोलकाता आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

विजय वीसीके और आईयूएमएल ने भी दिया समर्थन, 13 मई या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, कल दोपहर 3:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अब भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में एक बार फिर बारूद का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। सुलह की कोशिशों पर साजिशों के जाल फिर से हावी हो रहे हैं। कई दिनों से जारी युद्ध विराम पर एक बार फिर विराम लगता दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज में अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। उधर इसराइल लगातार लेबनन पर हमलावर है। भरोसा टूट रहा है, डर है कहीं सीज फायर भी न टूट जाए। सबसे पहले वॉर अपडेट्स।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा बयान, कहा ईरान ने डील साइन नहीं की तो ईरान पर करेंगे परमाणु हमला। पत्रकारों के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो आप ईरान से एक तेज रोशनी की चमक आते हुए देखेंगे। ईरान अमेरिका में युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों देशों ने किए एक दूसरे पर हमले। तेहरान का दावा, अमेरिका ने जांस बंदरगाह और हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसे उम्मीद है कि ईरान जल्द ही युद्ध खत्म करने के नए अमेरिकी प्रस्ताव पर जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान अगले एक महीने में हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलेगा, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। तेहरान ने अब तक साफ संकेत नहीं दिए हैं कि वो इस डील को स्वीकार करेगा या नहीं। इस्माइल बागई ने कहा है कि अमेरिकी प्रस्ताव समीक्षा के अधीन है, लेकिन किसी समय सीमा का खुलासा नहीं किया गया। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमले में 5 लोगों की मौत। IDF ने 6 गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। कहा, अपनी सुरक्षा के लिए 1000 मीटर दूर खुले में चले जाएं, हम हमला करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की खुफिया रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट वॉर में नया मोड़ ला दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बावजूद कम से कम 3 से 4 महीने तक आर्थिक दबाव झेल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगातार अमेरिकी और इजरायली बमबारी के बाद भी तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई है। CIA के विश्लेषण के अनुसार ईरान अब भी पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बनाए हुए है, जो लंबे संघर्ष की आशंका को और गहरा करता है। खाड़ी में ईरान की IRGC पर बड़ा एक्शन हुआ है। IRGC से जुड़े 41 संदिग्धों को बहरीन में गिरफ्तार किया गया है। बहरीन आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक ये लोग ईरानी नेटवर्क और सुरक्षा गतिविधियों से जुड़े थे। सरकारी समाचार एजेंसी BNA के अनुसार बहरीन ने देश के भीतर सुरक्षा अभियान और तेज कर दिया है। ईरान समर्थक गतिविधियों और हमलों के समर्थन के आरोप में कई लोगों की नागरिकता भी छीनी गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए नई सरकारी शिपिंग कंट्रोल एजेंसी बना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच, मंजूरी और टैक्सेशन इसी एजेंसी के जरिए होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैकड़ों कमर्शियल जहाज अब भी फंसे हुए हैं और खुले समुद्र तक नहीं पहुँच पा रहे।
0: कागज के पन्नों पर कलम की स्याही से मिसाइलों की रफ्तार रोकने और परमाणु शक्ति कम करने के वादों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। उधर समुद्र के ऊपर ड्रोन और मिसाइलें भी लगातार चल रही हैं। 2 महीने से अधिक चली इस हाई इंटेंसिटी जंग के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक वॉर एंडिंग मेमोरेंडम तैयार किया गया है। 14 पॉइंट्स का यह वॉर एंडिंग मेमोरेंडम ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर ब्रेक की बात करता है, तो बदले में ईरान के अरबों डॉलर के एसेट्स को अनफ्रीज करने का भी वादा करता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि युद्ध तो भड़कता दिखाई दे रहा है।
2: एक तरफ डील की शर्तें मानने का इंतजार है, दूसरी तरफ पल पल डील डीरेल होने का डर है। युद्ध अपने सबसे नाजुक दौर में है। शांति की कोशिशें हैं तो साजिशों के जाल में, बातचीत की मेज है तो आग की लपटें भी। सुलह की हल्की गुंजाइश है तो अविश्वास की मोटी चादरें भी हैं।
3: इस समय में अमेरिका और ईरान की डील को देखा जाए तो एक काफी नाजुक दौर से है, काफी जिसको मैं हिंदी में कहूँ कि पतले धागे से बंधी हुई है, कभी भी टूट सकती है। और दोनों में अविश्वास की भावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात अच्छी जो मुझे पॉजिटिव दिखती है वो ये है कि सीज फायर अभी तक चल रहा है। हालांकि बीच में अभी कुछ झड़पें हुई पिछले 2-3 दिनों में कि अमेरिका ने उसके बंदर अब्बास कश्म में अटैक किए, साथ साथ में ईरान ने भी अटैक किए यूएई में और कुछ शिप्स पर अटैक किए, तो एक एस्केलेशन री एस्केलेशन हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि सीज फायर बना रहे। इस समय में देखा जाए तो एक काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी डाउन।

0: यूएन के निरीक्षकों को ज्यादा अधिकार ईरान देगा। 9. एटमी सेंटरों के औचक निरीक्षण की इजाजत होगी। 10. ईरान एनरिच यूरेनियम के स्टॉक को बाहर भेजेगा। 11. अंडरग्राउंड एटमी साइट्स की सख्त निगरानी होगी। 12. ईरान सीमित लिमिट तक यूरेनियम को एनरिच करेगा। 13. समझौते की शर्तों का उल्लंघन होगा तो सख्त कार्रवाई। 14. ईरान के परमाणु प्रोग्राम का रोडमैप आगे तय होगा। ये तो अमेरिका का पूरा प्रस्ताव है जो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचा है। इनमें 4 खास पॉइंट्स हैं जिन पर पूरा मामला उलझा हुआ है। नंबर 1, ईरान अगले 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन को 3.67% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। ओबामा शासन के दौरान हुए समझौते में ये 15 साल के लिए था। ट्रंप पहले इसे 20 साल के लिए करना चाहते थे। दरअसल 3.67% संवर्धन ऊर्जा की जरूरतों के लिए किया जाता है। हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना होता है। नंबर 2, ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपना होगा। इसकी प्रक्रिया IAEA की देखरेख में पूरी की जाएगी। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो किसी भी तीसरे देश को न्यूक्लियर डस्ट सौंप सकता है, अमेरिका को नहीं। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है।
1: या ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम तकरीबन 450 किलोग्राम है वो हैंडओवर करने के लिए तैयार होगा? बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो ये हैंडओवर करता है तो फिर वो एक ईरान की जो प्रेस्टीज है, जो एक उसने उसके लोगों के बीच में इज्जत है, और अभी तो कई देश है अफगान्स और ये कई लोग उनको बोल रहे हैं कि ये भी एक सुपर पावर बन गया है, तो ईरान की जनता से लेके उनकी उनके अंदर भी एक बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा कि फिर हमने ये सरेंडर क्यों कर दिया, क्योंकि सारी लड़ाई का स्टार्ट पॉइंट तो ये न्यूक्लियर डील ही थी। तो मेरे को लगता है कि ईरान इस विषय पे शायद मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा।
0: नंबर 3, हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा। यहाँ टोल वसूली नहीं की जा सकती है। किसी भी देश के जहाज को गुजरने में यहाँ कठिनाई ना हो इसकी भी व्यवस्था की जाए। ईरान चाहता है कि यहाँ पर एक टोल सिस्टम हो, जहाजों से हॉर्मुज में सुरक्षित आने जाने के लिए टोल लिया जाए। नंबर 4, ईरान के जब्त पैसे वापस किए जाएंगे, साथ ही उस पर से आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। अमेरिका के पास ईरान के करीब 100 अरब डॉलर है। ईरान चाहता है कि कुछ डॉलर उसे तुरंत मिले जिससे उसका राहत एवं बचाव कार्य संपन्न हो सके। अमेरिका इसके लिए राजी है।
1: दोनों देश ये चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि इससे प्रभाव तो दोनों देश पे भी हुआ है और साथ में इकोनॉमिक प्रभाव भी दोनों देशों में और विश्व में भी हो रहा है। तो ये लड़ाई किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। अब सवाल उठता है ये डील कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और कितनी जल्दी हो सकती है। देखिए, ये डील एक तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डील होनी है और एक फिलहाल छोटी सी डील होनी है, जिसको मैं बोलूंगा एक टैक्टिकल डील है, जिसमें डी एस्केलेशन होगा और उसमें बेसिकली कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो अभी डिसाइड होने हैं ये पहली डील में, और जिसको मैं बोलूंगा एक पेज की वो बात कर रहे हैं, वो साइन करेंगे वो डॉक्यूमेंट, और वो बहुत लंबी समय चलेंगी और उसमें बहुत गंभीर विषय हैं। प्रॉक्सीज है, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी पे कोई लिमिटेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ही बंद करने की बात हो रही है, और साथ में ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो इनके जो जितने भी ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं उस पे भी एक लिमिटेशन ऑफ नंबर्स की बात हो रही है।
0: इन मुद्दों पर सहमति हो जाने पर ही फिर लंबी शांति वार्ता के लिए दोबारा बातचीत होगी, और अगर समझौता नहीं होता है तो ट्रंप ने दोबारा हमले की चेतावनी दी है।
2: समुद्री रास्तों पर अवरोध बनाए गए तो पूरी दुनिया के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। तेल के दाम समुद्र की लहरों जैसी उथल पुथल मचाने लगे। अर्थव्यवस्थाएं पानी की गहराइयों में समाने लगी। पूरी दुनिया ने कहा अब इसे खत्म करो। एशिया से यूरोप तक हर देश इस नेवल ब्लॉकेड की मार झेल रहा है। सप्लाई में जो शॉर्टेज हुई, रिफाइनरी का जो स्लो डाउन हुआ, मार्केट में एक तरीके से पैनिक की स्थिति रही। सवाल सीधा है, क्या हॉर्मुज की यह परिस्थिति जंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई?

0: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने एक बार फिर दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बारूद के मुहाने पर ला खड़ा किया है। हालात ऐसे हैं कि इस रणनीतिक समुद्री गलियारे से गुजरने वाला कमर्शियल ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो चुका है।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जहां से 20% वर्ल्ड का ऑयल जाता है और 30% एलएनजी जाती है। ईरान ने बड़े चतुराई से इस लड़ाई को एसमेट्रिक वारफेयर की तौर से इस्तेमाल किया। दो चीजें जो उसने की, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिगमगाया, जिससे फूड फ्यूल फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़े और मिडिल ईस्ट की जितनी ये खाड़ी के देश हैं सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ। और दूसरा, इनकी जो एक प्रकार से जो हमला अमेरिका और ईरान के ऊपर किया, उसका पलटवार जो ईरान ने इन खाड़ी के देशों पे किया, इनके एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान किया, प्लस इनका जो टूरिज्म था उसको ठप कर दिया। तो ये सच्चाई है कि जो पलटवार था ईरान का, ये काबिले तारीफ था और इसके कारण कहीं ना कहीं पलड़ा, ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का पलड़ा ईरान की तरफ झुका हुआ नजर आता है।
0: सूत्रों के अनुसार भारत की तरफ आ रहे कम से कम 40 मालवाहक जहाज हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं। इन जहाजों में एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल, खाद और रोजमर्रा की जरूरत का अहम सामान लदा है, लेकिन बढ़ते सैन्य तनाव के बीच इन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पा रहा। इधर जंग लगातार जारी है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। तेहरान का दावा है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह और हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया, जो संघर्ष विराम का खुला उल्लंघन है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुष्टि की है कि ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। इसके साथ ही ट्रंप ने तेहरान को जल्द से जल्द डील पर हस्ताक्षर करने की चेतावनी भी दी है।
2: A lot more than I do.
0: पिछले 48 घंटों में हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। पहले अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले, फिर ईरानी टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई और उसके बाद ईरानी बंदरगाहों और द्वीपों पर अमेरिकी स्ट्राइक। ये सारी घटनाएं खुली समुद्री जंग का संकेत दे रही हैं।
3: इस स्क्वायर में अगर आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दर्शाया गया है और एक बहुत बड़ा जाल जिसमें अमेरिकन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग्ड एयरक्राफ्ट, अमेरिकन फ्लैग्ड शिप्स आपको दिख रहे हैं। मैसेज केवल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश करेंगे या वहां पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे, तो जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उनका हाल यही होगा, उस बड़े से जाल में फंस जाएंगे। मैसेज केवल एक है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने देश को किसी और देश की वजह से यहाँ से ना छोड़ेंगे, ना उसकी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज होने देंगे।
0: उधर 48 घंटे पहले यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास एक दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई। हालांकि ईरान ने इस हमले से खुद को अलग बताया, लेकिन इसके तुरंत बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति रोक दी। इसके बाद अमेरिका ने ईरानी टैंकर हसना को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट ने टैंकर की पतवार को क्षतिग्रस्त किया। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर मिसाइलों, ड्रोन और तेज रफ्तार अटैक बोट से हमला बोल दिया। ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी युद्धपोतों ने लेयर्ड डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया और सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में उसका कोई भी युद्धपोत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन हॉर्मुज की लहरों पर अब युद्ध का साया और गहरा हो गया है।
4: लेबनन की जमीन पर धधकता बारूद, हिजबुल्ला के ठिकानों पर सटीक वार और मिडल ईस्ट में फिर भड़कते बड़े युद्ध की आशंका। क्या इजराइल अब नो मर्सी डॉक्ट्रीन पर आगे बढ़ चुका है? क्या सीज फायर केवल कागजों तक सीमित? और क्या लेबनन फिर बन रहा है पश्चिम एशिया का अगला वॉर जोन?

0: मिडिल ईस्ट की सरजमीन पर सीज फायर है लेकिन बारूद अब भी चल रही है। दक्षिणी लेबनान के आसमान में ड्रोन मंडरा रही है। इसराइल हिजबुल्ला के बीच ये संघर्ष का सबसे खतरनाक दौर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ संघर्ष विराम है, दूसरी तरफ इसराइल ने कह दिया हमलों में कोई विराम नहीं। इसराइल लगातार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। बेरूत में हिजबुल्ला के नियंत्रण वाले इलाकों में इजरायली बमबारी से भारी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लेबनान पर 2 मार्च से लगातार जारी बमबारी में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के हमलों में इसराइल के 17 सैनिक मारे गए जबकि 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। इसराइली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ड्रोन के जरिए दक्षिणी लेबनान में 2 हथियारबंद हिजबुल्ला आतंकियों पर हमला दिखाया गया है। उनकी मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश कर रहे थे तभी ड्रोन स्ट्राइक में उन्हें निशाना बनाकर मार गिराया गया। IDF साफ कर चुकी है कि सीज फायर का मतलब ऑपरेशन रुका नहीं है। अगर हिजबुल्ला का कोई लड़ाका या कमांड सेंटर दक्षिणी लेबनान में दिखता है तो हमले जारी रहेंगे। इसराइल का दावा है कि हालिया ऑपरेशनों में हिजबुल्ला के कई कमांडर और दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। वहीं लेबनान का आरोप है कि इसराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला ईरान में भी हुआ।
1: सवाल यही उठता है कि अगर आप आज ये जंग रोक भी थे तब भी यहाँ के लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं, मिनाब के पेरेंट्स, यही पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये जंग ज़रूरी था और क्या फिर अमन और शांति और ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे दोनों देश या तीनों देश अमेरिका, इसराइल, ईरान लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। क्या इन्हें लोग भूल पाएंगे ईरान के, क्या दुनिया भूल पाएगी इस जंग में कितने लोग मारे गए।
0: इस पूरे संघर्ष ने लेबनान को मानवीय संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। करीब 10 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। खेती तबाह हो रही है और सीमा के दोनों तरफ नागरिक लगातार बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं।
2: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जंग जीत कौन रहा है। आप देखते रहिए वॉर रूम,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: GK Max.
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: GK Max. Best putty.
13: JK Wall Max.
11: Best paint.
14: JK Max.
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
16: JK Max paints.
15: JK Max paints. खुशियों के रंग.
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रोफाइबर है.
17: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
17: हमारे सीमेंट में नहीं है.
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
20: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
22: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
23: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा.
24: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
25: विक्रम, एक हिंट तो देते.
26: विक्रम!
25: हिंट.
24: बड़े आराम से.
27: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
28: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ.
29: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
30: लायन डेट नट बाइट्स.
17: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
18: इसमें माइक्रोफाइबर है.
17: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
17: हमारे सीमेंट में नहीं है.
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
20: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
31: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
6: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.
7: ये जो चांस आपको सुनाई दे रहे हैं, ये एकता की आवाज है, ये वो आवाज है जहां पर ईरान के लोग कह रहे हैं ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे, वो अपने सरकार के साथ और अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाय के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ इनकलाब स्क्वायर यानी कि इनकलाब स्क्वायर में गीता मोहन आज तक। मैसेजिंग की बात करें तो हमने आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिखाई बड़े से पोस्टर में। इस स्क्वायर में अगर आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दर्शाया गया है और एक बहुत बड़ा जाल जिसमें अमेरिकन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग्ड एयरक्राफ्ट, अमेरिकन फ्लैग्ड शिप्स आपको दिख रहे हैं। मैसेज केवल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की कोशिश करेंगे या यहाँ वहाँ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे तो जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उनका हाल यही होगा, उस बड़े से जाल में फंस जाएंगे। चाहे ये पोस्टर हो, चाहे ये जो म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर वो हो, या फिर वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जो बहुत बड़े ईरानियन फ्लैग्स को लहरा रहे हैं, मैसेज केवल एक है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने देश को किसी और देश की वजह से यहाँ से ना छोड़ेंगे ना उसकी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज होने देंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।

इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा सवाल जो पहले दिन से बना हुआ है वो ये कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि ये सच है कि युद्ध जारी है और इस जंग का अभी तक कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। अमेरिका अपनी सेना को बेहतर बताता है, ज्यादा ताकत दिखाता है। ईरान ने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर प्रेशर बनाया, अमेरिका ने हवाई बॉम्बार्डमेंट किया, तो ईरान ने मिसाइल नेटवर्क, हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट से जवाबी दबाव बनाए रखा। यानी मैदान जंग में कोई नॉकआउट नहीं हुआ, बल्कि ये युद्ध एक तरीके से एक ऐसा डेडलॉक बनकर, एक गतिरोध बनकर डिफेंस के रूप में रह गया, जिसमें हर कोई जानना चाहता है कि असलियत में कौन जीत रहा है।

0: युद्ध कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध में विजय के पैमाने दोनों देशों के अलग अलग थे। लेकिन अमेरिका और ईरान को नुकसान क्या क्या हुआ, इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में कौन कितना भारी पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने तीन लक्ष्य रखे थे, क्या वो पूरे हुए? रेजिम चेंज नहीं हुआ, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना नहीं हुआ, ईरान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित करना नहीं हुआ। अपनी लगभग पूरी ताकत झोंक लेने के बावजूद अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार जो नुकसान अमेरिका को खाड़ी देशों में हुआ वो उससे काफी ज्यादा है जो अमेरिका बता रहा है। अमेरिकी नुकसान को चार अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, सैन्य क्षति, आर्थिक नुकसान, कूटनीतिक और रणनीतिक नुकसान और भू राजनीतिक क्षति। सबसे पहले देखिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वाले देश को इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ। अमेरिका को सबसे उन्नत मिसाइल इंटरसेप्टर्स का भारी नुकसान हुआ। इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल्स और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। ईरान के खिलाफ पूरी ताकत झोंकने की वजह से यूरोप और दूसरे एशियाई क्षेत्रों में अमेरिका की तैयारी पर असर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक क्षमता की कमियां उजागर हो गई। तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। खाद और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से वैश्विक आर्थिक संकट का असर अमेरिकी हितों पर भी पड़ने लगा। युद्ध शुरू करने से पहले सहयोगियों से सलाह न लेने पर रिश्तों में तनाव रहा। सहयोगी इस बात से नाराज हो गए कि ट्रंप अपनी शुरू की हुई लड़ाई में उनसे मदद मांग रहे थे। यूरोप, एशिया और कई देशों में अमेरिकी विरोधी भावना बढ़ने लगी। युद्ध के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। ऐसे में सहयोगियों की तरफ से चीन और रूस के खिलाफ भविष्य में समर्थन जुटाना मुश्किल हो सकता है। शांति के पक्षधर और नोबेल पीस प्राइज की अभिलाषा रखने वाले ट्रंप की दुनिया में स्थिरता लाने वाली छवि को झटका लगा। ईरान ने जंग को सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैला दिया। तेल के जाल में ईरान ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को उलझा दिया। इधर ईरान ने खाड़ी देशों पर अमेरिकी बेसिस पर हमला किया। इसने उस नैरेटिव को जमींदोज कर दिया कि अमेरिका है तो सुरक्षित है। सैन्य जीत के बावजूद अमेरिका के लिए रणनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी।
1: So they had a navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an air force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead. So I think we won.
0: ईरान पर हुए नुकसानों को भी अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। नेतृत्व का नुकसान, सैन्य नुकसान, परमाणु कार्यक्रम का नुकसान, प्रॉक्सी नेटवर्क का नुकसान, आर्थिक और क्षेत्रीय नुकसान। पहले ही दिन हमले में इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 40 बड़े नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को खत्म कर दिया। ये युद्ध की शुरुआत थी। 250 से ज्यादा ईरानी नेताओं की मौत, ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या, लगभग पूरी वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व संरचना खत्म हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के आसमानों पर नियंत्रण किया और अपनी मर्जी से बम गिराए। जो ईरान शुरू में मिसाइलों से लगातार हमला कर रहा था उसके हमलों की रफ्तार कम हो गई। दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल हमले 90% तक घट गए। उसके बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर और हथियार फैक्ट्रियां तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया। पारंपरिक सैन्य ताकत बुरी तरह कमजोर हो गई। दावा किया कि ईरान की 90% नौसेना नष्ट कर दी गई। एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म। भविष्य में हमलों के लिए ईरान खुला हो गया। जून 2025 में बंकर बस्टर बम गिराकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। इस बार फिर परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। दावा किया गया कि अब ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा और उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। ये भी कहा गया कि भविष्य में इजरायली हमलों के लिए परमाणु ढांचा ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इस युद्ध में इजरायल ईरान के साथ साथ लगातार लबनान पर भी हमलावर रहा, जहां से हिजबुल्ला हमला करता था। लितानी नदी पर इजरायल ने कब्जा जमाया, दूसरे प्रॉक्सी संगठन कमजोर पड़े। हालांकि जो हमले हिजबुल्ला की तरफ से इजरायल पर किए गए, उन हमलों का असर सीमित रहा। 13,000 मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स के बाद ये सच है कि ईरान को मिसाइल और सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा करने में भारी खर्चा आएगा।
2: वॉर रेपरेशंस, जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई कौन करेगा? अमेरिका कहीं ना कहीं उसका जवाब दे रहा है। शायद खुद वो वॉर रेपरेशंस ना करे, लेकिन मिडल ईस्ट कंट्रीज को करना पड़ जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। दोनों लोग अपने प्रपोजल्स को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग में आए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। उनको वेपन्स बनाने का कोई दिलचस्पी ना थी ना है। और एक फतवा सुप्रीम लीडर खामेनेई, जो जिन्हें मार दिया गया था, उन्होंने एक फतवा जारी किया था ये कहते हुए कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं, न्यूक्लियर पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए ईरान में।
0: दोनों देशों के जीत के अपने अपने दावे इस पूरे युद्ध के दौरान, लेकिन सैन्य और टैक्टिकल स्तर पर अमेरिका इसराइल को बढ़त रही। रणनीतिक स्तर पर ईरान ने सहन करो और कीमत बढ़ाओ की रणनीति से अमेरिका को बड़ी चुनौती।
3: क्या तेहरान अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को सरेंडर करेगा, या फिर यह केवल एक टैक्टिकल ब्लफ है, यानी कि रणनीतिक रूप से वो गलत बोल रहा है? अमेरिका ईरान की डील में न्यूक्लियर कैलकुलेशन भी बराबर जारी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे तेहरान नागरिकों के लिए एक एनर्जी मिशन बताता है, वो अमेरिका और इसराइल की नजर में एक साइलेंट वॉरहेड फैक्ट्री बन चुका है, उसे खतरा नजर आता है। इस जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कलम की स्याही के जरिए यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी को कम करने पर ईरान राजी होगा? हालांकि यह भी सच है कि हर डील की तरह यहां भी लाल लकीरें खींची हुई।
0: बड़ा सवाल यह है कि इस डील के जरिए क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से समझौता करने पर तैयार हो जाएगा? क्या जिस मुद्दे पर सारी जंग छिड़ी है वो मुद्दा ही इस डील के साथ खत्म हो जाएगा?
4: I think this is a one part of the propaganda of the Trump against the Iran, because they know very well the supreme leader, last supreme leader, Ayatollah Khamenei, and now the new supreme leader. Both of them, they have an order and fatwa according to the Islam religion. We never use and made and construction the nuclear bomb. This is a clear, everybody know, and we are under control of the NPT protocol.
0: ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने परमाणु प्रोग्राम को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है, ऐलान किया है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान परमाणु मुद्दे और ईरानी लोगों के अधिकारों, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार भी शामिल है, उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान शांति वार्ता के सिद्धांतों और निर्धारित सीमाओं का पालन करता है। हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता देश के लिए एक और लक्ष्मण रेखा है। दुश्मन ईरान के अंदर फूट डालकर ईरान को कमजोर स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी अधिकारी और संस्थाएं राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अमेरिका की बेजा शर्तों का विरोध करने में एकजुट और एकमत है। अमेरिका पर ईरान के अविश्वास की कई वजह हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया है, जिसमें वार्ता के बीच दो बार हमला करना शामिल है। अमेरिकी हमला हमारी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। हालांकि ट्रंप लगातार इस बात पर अड़े हैं कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हो सकता।
5: No, they want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple.
0: लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका और इसराइल ईरान की परमाणु शक्ति को खत्म कर पाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों से भारी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी करीब एक साल के भीतर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। ट्रंप का दावा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने इस हद तक तबाह कर दिए हैं कि वो अब कभी बम नहीं बना सकता। लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है ऐसा हुआ नहीं। वजह यह है कि इसराइल ने जरूर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन अमेरिका ने ईरान की पारंपरिक सैन्य ताकत, नेतृत्व और सैन्य औद्योगिक ढांचे को तबाह करने पर ज्यादा फोकस किया। हालांकि कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए, लेकिन 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम अब भी लापता है। ईरान का दावा है कि उसके पास कोई बम नहीं है, तो फिर वो परमाणु प्रोग्राम पर समझौते के लिए तैयार क्यों नहीं है? तेहरान यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार मानता है। उसका कहना है ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा जरूरतों के लिए है। दरअसल ईरान के सख्त रुख के पीछे कई मुख्य कारण
6: हैं।
0: ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गर्व, वैज्ञानिक उपलब्धि और क्षेत्रीय महाशक्ति की पहचान के रूप में देखता है। परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का सदस्य होने के नाते ईरान का दावा है कि उसे शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करने का कानूनी अधिकार है। ईरान थ्रेशहोल्ड स्टेट यानी परमाणु क्षमता की दहलीज पर बने रहना चाहता है ताकि किसी विदेशी हमले के खिलाफ उसका एक सुरक्षा कवच तैयार रहे। तेहरान का मानना है कि पश्चिम ईरान को तकनीकी रूप से कमजोर रखना चाहता है।
7: ईरान जब देखता है कि एक तरफ इसराइल है जो कि न्यूक्लियर पावर है, तकरीबन अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है, साथ साथ में सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देश हैं जिनके साथ उनका थोड़ा सा तनातनी रहती है, अमेरिका की बेसिस है, ऐसे में उसको अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे। एक तो कारण यह है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इसके ऊपर कई सालों की मेहनत है, वो इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते। तीसरी बात, ईरान ने एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा है कि वो इसका इस्तेमाल, परमाणु का इस्तेमाल पीसफुल पर्पजेज के लिए करना चाहते हैं, हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका को उसके ऊपर भरोसा नहीं है।
0: यही वजह है कि वो इसराइल के न्यूक्लियर बम बनाने के मुद्दे को बार बार उठाता रहता है।
8: This is the paradox and this is the double standard for the control of the activities of the nuclear weapon in the world. I think if they want to control, first step, they must control the Israel. But Iran under control of the NPT and supervision of that, and there is no any activities, military activities. But if we want to make a bomb, the United States cannot stop me, and they cannot control the Iran. But we don't like at this time, according the order of the Supreme Leader, to use of that. But we try to use the umbrella, atomic umbrella, because we have to defend the Iran against any threat of the nuclear power, nuclear bomb.
0: अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर बम को लेकर एक ऐसे डेडलॉक में फंसे हैं जिसका हल लंबे समय तक निकलना आसान नहीं है।
3: इस हाई वोल्टेज युद्ध में अब आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है, जहां रणभूमि में रियायतों वाला मोलभाव चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जो एसेट्स हैं, जो अभी तक फ्रीज किए हुए थे, उनको अनलॉक करने पर विचार कर रहा है। कभी सैंक्शंस की जंजीरों में जकड़ी यह रकम अब मानो डिप्लोमेटिक करेंसी बन गई है, जिसके बदले ईरान से न्यूक्लियर और रणनीतिक रियायतें मांगी जा रही हैं। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है, पर ईरान बता रहा है कि यह ब्रेक थ्रू है।
0: कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने और हॉर्मुज खोलने की एक शर्त यह भी है कि अमेरिका अरबों डॉलर की फ्रीज की हुई ईरानी संपत्ति को खोल दे। ईरान की कितनी संपत्तियां कहां कहां फ्रीज हैं, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि संपत्ति फ्रीज होने का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति, कंपनी या देश की नकदी संपत्ति या निवेश को कोई दूसरा देश, बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्थायी रूप से रोक देता है तो उसे फ्रीज असेट्स या संपत्ति फ्रीज करना कहा जाता है। इस हालत में वो देश उस पैसे या संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। आमतौर पर ऐसा प्रतिबंधों, अदालत के आदेशों, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों के कारण किया जाता है। ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों की सही रकम स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरानी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक ये राशि 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रकम ईरान की सालाना तेल और गैस कमाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है, यानी जितनी रकम का नुकसान ईरान को हॉर्मूज पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से एक साल में होता, उससे 3 गुना राशि अमेरिका अब अनफ्रीज कर सकता है। ईरान की संपत्तियां सबसे पहले 1979 में फ्रीज की गई थी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा था कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उसी समय तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में ईरानी छात्रों ने 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधन बना लिया था। 1981 में अल्जीयर्स समझौते के बाद ईरान ने बंधकों को छोड़ा तो उसके बदले अमेरिका ने कुछ ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज की थी।
6: ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी जो रियाल है करेंसी, वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुकी है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने से उसकी जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो डिगमगा गई है। मिस गवर्नेंस था, करप्शन था, और उसके काफी हद तक एसेट भी फ्रोजन थे $20 बिलियन के करीब। तो ये सच्चाई है, अगर इस लड़ाई का कोई सलूशन निकलना है तो जो इकोनॉमिक सैंक्शन है ईरान पे वो हटनी चाहिए, और जो उनके एसेट्स फ्रीजन कर रखे हैं स्पेशली $20 बिलियन के करीब, वो एक प्रकार से छोड़ने चाहिए, जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसा आए ईरान के में, और ईरान की जो इंटरनल इकोनॉमी है वो एक प्रकार से दोबारा उजागर हो।
0: ईरान की फ्रीज संपत्तियां कई देशों में फैली हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में लगभग $20 अरब, भारत में लगभग $7 अरब, इराक में लगभग $6 अरब, कतर में लगभग $6 अरब, जापान में लगभग $1.5 अरब, अमेरिका में लगभग $2 अरब और दूसरे यूरोपीय देशों में लगभग $1.6 अरब संपत्ति ईरान की फ्रीज है। इन देशों के अलावा भी कुल मिलाकर $100 अरब ईरान के फ्रोजन है। $100 अरब की रकम ईरान की GDP के लगभग 1/4 के बराबर मानी जाती है। जाहिर है ईरान के लिए ये पैसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। दशकों के प्रतिबंधों ने तेल निर्यात सीमित कर दिया, विदेशी निवेश रुक गया, उद्योग और तकनीक का आधुनिकीकरण भी धीमा पड़ गया, महंगाई तेजी से बढ़ी, ईरानी मुद्रा रियाल कमजोर होती गई। आज एक $1 की कीमत 13,12,900 ईरानी रियाल है। महंगाई की इसी हालात को लेकर ईरान में प्रदर्शन हुए थे जिसमें कई लोग मारे गए थे। ऐसे समय में फ्रीज संपत्तियां ईरान के लिए जैसे एक बंद पड़ा खजाना है जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर सकता है।
3: युद्ध मैदान जंग में लड़ी जाती है, रणनीतियां वॉर रूम में बनाई जाती हैं, हार जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, लेकिन जख्म जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: और कलिंग
3: बंगाल भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आए।
4: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून टू जैक. Every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
5: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
8: La Que Buena.
7: ESPN Radio.
9: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
7: The Daily.
10: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है.
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
12: हमारे सीमेंट में नहीं है.
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
15: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स.
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
20: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट.
20: जेके मैक्स.
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग.
21: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
22: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन.
23: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी.
24: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे.
23: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया.
25: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर.
22: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर.
0: इन एसोसिएशन विद
26: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
27: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
28: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব. আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মত ভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সময়ের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্যতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।

0: कल सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय वीसीके और आईयूएमएल ने भी समर्थन दिया। 13 मई है, उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। कल दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, सब भी बरकरार। दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक, राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। बंगाल का सीएम बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी। सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्षी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक अहम ठिकानों पर आईईडी से धमाके का खतरा। बीजेपी मुख्यालय समेत कई जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज कहानी उस त्रिकोण की जिसने कभी हिंदुस्तान की दिशा तय की, अंग बंग और कलिंग। बिहार की धरती से लेकर पश्चिम बंगाल की विचारधारा तक और उड़ीसा की ताकत तक, ये सिर्फ नाम नहीं इतिहास के 3 बड़े अध्याय हैं। बंगाल चुनाव में इनका जिक्र खूब हुआ, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ अतीत की कहानी है या भविष्य का संकेत? आज कहानी में ये समझने की कोशिश करेंगे इनकी असली पहचान, इतिहास और आज की राजनीति में इसका अर्थ।
4: अंग बंग और कलिंग।
5: अंग प्रदेश भागलपुर से लेकर आपको झारसुगुंडा तक फैला हुआ था।
6: बंगाल की जो रचना थी वो शासकीय दृष्टि से एक बड़ा प्रभावी ढंग से काम करती थी।
7: कलिंग भारत के का दुनिया के साथ होने वाले व्यापार का द्वार था।
8: अंग बंग कलिंग एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ।
3: तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि सियासत का नया संकेत है। बंगाल के कोने कोने तक जो लहर चली उसने बता दिया कि राजनीति का केंद्र अब बदल रहा है। नरेंद्र मोदी का अंग बंग और कलिंग सिर्फ नारा नहीं एक रणनीति है।
9: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
10: इस बार जीत की ये तस्वीर कुछ ज्यादा विराट है और कुछ ज्यादा वैभवशाली। ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तारित जलवा है। माँ काली के कलकत्ते से नया संदेश आया है कि बंगाल में सियासत का सिक्का बदल गया है।
11: ममता बनर्जी तो आउट, मछली इन, ममता बनर्जी आउट।
12: भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया।
13: भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपने देखा होगा, गरीबों की पार्टी है, महिलाओं के दुख दुख की साथी है।
14: ये 50 साल के बाद आज यहाँ पे बीजेपी का सरकार बना है। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म।
10: कोलकाता से सिलीगुड़ी तक और मिदनापुर से आसनसोल तक जो हवा चली है उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीति में अभिजीत बना दिया है।
4: कलिंग, स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है।
8: अंग बंग कलिंग एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई।
10: जीता कोई भी, दिखा कोई भी, लेकिन एक बात जो सनातन सत्य की तरह स्थापित हो चुकी है कि बंगाल में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जीत चाहे जहां हुई हो, विजय के सूत्रधार नरेंद्र मोदी थे।

0: जब सांस्कृतिक विषय पर जब सोचते हैं तो बृहत्तर भारत, विशाल भारत, ये भी आता है। तो धीरे धीरे उनकी जो परिकल्पना है 5000 साल पहले की या वेदकालीन, कि भी उन दिनों में आर्यावर्ष था, हिंदुस्तान था, भारतवर्ष था और खंडित नहीं था। तो ये खंडित नहीं होना चाहिए, इसके लिए अखंड भारत होना चाहिए। अब ये पुरानी जो सोच है वो केवल पुरानी नहीं है, उनको उनको वर्तमान में उनको ढालना है, और वर्तमान में ढालने के लिए उनके पास चुनाव का एक माध्यम है, और भी माध्यम है लेकिन चुनाव मुख्य रूप से है। तो चुनाव के दौरान इन प्रदेशों में, और केवल इन्हीं प्रदेशों में नहीं बाकी सब जगह भी, एक अखंड भारत के से जुड़ी हुई विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो एक निश्चय है वो भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा में दिखाई देता है।
1: जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है।
2: भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास देश के राजनीतिक समीकरणों को साधने की ऐसी कला

0: और अमित शाह ने चुनाव के दौरान जिस अंग बंग और कलिंग का जिक्र किया था वो है क्या और भारत के विकास से कैसा रिश्ता है?
1: मैं जब भारत समृद्ध था तब उसके तीन मजबूत स्तंभ थे, अंग बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा।
0: राजनीति इशारों की भाषा होती है और इशारों की भाषा समझिए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुताबिक भारत के लिए विकास का द्वार अब खुल गया है। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग बंग और कलिंग की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से क्या रही है और आज की राजनीति में इसका महत्व कैसे बदला है। क्या बिहार बंगाल और ओडिशा का ये त्रिकोण वास्तव में भारत की पूर्वी राजनीति का नया पावर सेंटर बन सकता है? ऐतिहासिक तौर पर मौर्य काल से लेकर अब तक इन तीनों क्षेत्रों का आर्थिक और रणनीतिक महत्व कितना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओडिशा के खनिज संसाधन, बिहार की मानव शक्ति और बंगाल के बंदरगाह का कॉम्बिनेशन भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है?
2: उन दिनों में वेद काल से लेकर रामायण काल तक, महाभारत काल तक, जो अंग बंग और कलिंग, ये तीनों बड़े समृद्ध थे। नेवी का वहां बड़ा विस्तार हुआ था, यानी नौसेना, और दूर तक उनका विस्तार था। आर्थिक रूप से बंग की राजधानी एक कोतालीपरा नाम की राजधानी थी, आजकल तो वो ढाका में है, वहां से ये सब शुरू होता था, तो पूरी दुनिया में उनका व्यापार चलता था। उड़ीसा में आप देखिए जगन्नाथ की यात्रा, ये धार्मिक है, लेकिन केवल धार्मिक नहीं था, वहाँ एक इस प्रकार की पूरी की जो व्यवस्था थी, आंतरिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी उन लोगों ने दूर तक व्यापार, व्यवसाय, आर्थिकता, इसका ख्याल रखा था, और ऐसे ही लोग वहाँ शासन करते थे।
1: आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है।
0: तो अंग बंग और कलिंग ये सिर्फ इतिहास के शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो अतीत से निकलकर आज की राजनीति और कल के विकास तक जाती है। नरेंद्र मोदी ने जिस त्रिकोण की बात की वो दरअसल पूर्वी भारत की ताकत को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। अब सवाल है भविष्य का, क्योंकि इस त्रिकोण ने देश की तकदीर को पहले भी लिखा है।
3: अंग आज नक्शे में नहीं है लेकिन इतिहास में एक पहचान थी। बिहार की इस धरती ने कभी भारत की दिशा तय की थी व्यापार, संस्कृति और शक्ति के दम पर। महाभारत से लेकर साम्राज्यों तक अंग हर दौर में मौजूद रहा। आज भले ही नाम बदल गया हो लेकिन पहचान अब भी जिंदा है।
0: अंग एक ऐसा नाम जो आज नक्शे में नहीं दिखता लेकिन इतिहास के हर पन्ने में दर्ज है। बिहार का हिस्सा, महाभारत की कहानी और प्राचीन भारत की ताकत।
4: हम अंग बंग कलिंग की बात करते हैं तो आज तो पांच प्रदेशों की बात महाभारत काल में पुराणों में आती है और ये कथा आती है कि महाराज बलि के पांच पुत्र हुए। उन पांच पुत्रों के नाम से पांच जनपद स्थापित हुए

0: पुत्रों के नाम ही थे, अंग, बंग, कलिंग, पुंड्र और सुह्य। इसमें अंग, बंग और कलिंग ये बाद के दिनों में भी एक महाजनपद के रूप में, एक प्रादेशिक भूमि के रूप में भरत जम्बूद्वीप के, भरतखंड के, भारतवर्ष के हिस्से के रूप में दिखाई देता है।
1: यह है आज का बिहार, लेकिन हजारों साल पहले इसी धरती पर बसा था एक शक्तिशाली महाजनपद अंग। गंगा के दक्षिण में फैला ये इलाका आज के भागलपुर, मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित माना जाता है। अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। वो दौर जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और हर राज्य अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में था। अंग भी उन्हीं में से एक मजबूत, समृद्ध और रणनीतिक रूप से बेहद अहम जनपद था। अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा से हुई चंपा नगर और आज के चंपा नगर की यह तस्वीर है। गंगा किनारे बसा यह शहर उस व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ से कपड़ा, मसाले और कई तरह के सामान सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में भेजे जाते थे।
2: यहाँ पर जो जिसके लिए भागलपुर मशहूर है, यानी भागलपुरी सिल्क, उसके भी बहुत सारे जो बुनकर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये टसर का दुपट्टा बोल रहे हैं, वो साड़ी, तो ये क्वालिटी टसर और भागलपुरी सिल्क एक ही होता है या अलग अलग होता है?
3: सिल्क एक ही होता है, क्वालिटी का फर्क होता है थोड़ा
2: थोड़ा सा फर्क।
3: जी, टसर ओरिजिनल एक नंबर क्वालिटी हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस हिसाब का सिल्क है।
4: ये ताना हो रहा है, बाना अभी बाकी है, अभी जो आप बुनाई जो हो रहा है ना,
2: इसको ताना कहते हैं
4: जी,
2: इसको बाना कहते हैं
4: जी, जो कपड़ा तैयार
2: होता है ये
4: जी।
2: अच्छा,
5: आंध्र प्रदेश भागलपुर से लेकर आपको झारसुगुंडा तक फैला हुआ था और इधर मुर्शिदाबाद के सीमा को भी छूता था। आंध्र प्रदेश का जो सबसे बाहुबली या कही उसको राजा हुआ, समृद्ध शासक हुआ, उसका नाम ब्रह्मदत्त था। मगध का जब इम्पीरियल पावर का विकास हुआ, शक्ति का विकास हुआ, तो उसने सबसे पहले अंग को जीता। इस टेरिटोरी को मिलाना जरूरी था क्योंकि इसका जो वाणिज्य व्यापार का सबसे बड़ा जगह था चंपा, एक बंदरगाह के रूप में उभर रहा था, उस पर उसका कब्जा करना था, इसलिए उसने अंग को मगध में मिला लिया। और वाणिज्य व्यापार जहां होगा वहां कृषि कार्य भी होगा। यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए भी समुन्नत था, कृषि कार्य होता था और वाणिज्य व्यापारियों के लिए ठहराव का बहुत बड़ा केंद्र था।
1: गंगा नदी ने अंग को दी सबसे बड़ी ताकत। नदी के रास्ते व्यापार आसान हुआ और अंग जुड़ गया पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक। यही वजह थी कि अंग सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि आर्थिक हब बन चुका था। इतिहास ही नहीं, पौराणिक कथाओं में भी अंग का बड़ा जिक्र मिलता है। महाभारत में कर्ण को अंग का राजा बताया गया है। आज दानवीर कर्ण की पहचान के साथ अंग का नाम भी अमर हो गया है, वीरता, दान और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर।
0: यह ध्यान में आता है कि अंग जो है वह पहले मगध महाजनपद के अधीन था, जरासंध के शासन के अधीन था, बाद के दिनों में दुःशासन को, दुर्योधन को जरासंध ने इसको सौंपा था, इसलिए दुर्योधन का उस पर अधिकार था, वह हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अतः यह कथा आती है कि जब कर्ण के समक्ष क्षत्रिय और राजा होने का प्रश्न आया था तो हम सब जानते हैं कि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित करके, या था क्योंकि दुर्योधन का वह क्षेत्र था, दुर्योधन को किसी को दे सकने का अधिकार था, तो हस्तिनापुर का हिस्सा न होने के कारण से। और अंग के सैनिकों का महाभारत के युद्ध में बड़ी भूमिका भी है।
1: लेकिन अंक का इतिहास सिर्फ समृद्धि का नहीं संघर्ष का भी है। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था मगध। कई युद्ध हुए और आखिरकार मगध के राजा बिंबिसार ने अंक को जीत लिया। यहीं से अंक की स्वतंत्र सत्ता खत्म हो गई थी, लेकिन मगध में शामिल होने के बाद भी अंक का महत्व कम नहीं हुआ। मौर्य साम्राज्य के दौर में भी ये क्षेत्र प्रशासन और व्यापार का अहम केंद्र बना रहा। गंगा के किनारे होने से कृषि और व्यापार दोनों फलते फूलते रहे।
0: अंग भागलपुर को केंद्रित करते हुए, जिसकी अंग महाजनपद की राजधानी उस कालखंड का चंपा था, जिसका विस्तार आज चंपारण्य तक थोड़ा जाता हुआ दिखाई देता है और वह वज्र क्षेत्र में भी विस्तृत होता है। भाषिक समानता के आधार पर इसको समझा जा सकता है, अर्थात बिहार का एक बड़ा हिस्सा, आज आधुनिक बिहार का बड़ा हिस्सा और झारखंड का भी एक हिस्सा अंग देश में आता था। बिहार के एक बड़े हिस्से को मगध के रूप में जाना गया है। मगध यानी कर्मनाशा के उस पार, जो आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है वह नदी, और पाटलिपुत्र तक गंगा के किनारे तक, यह मगध है। मागधी यहाँ की भाषा है। अब अंग और मगध इन दोनों को मिला करके आज का आधुनिक बिहार बनता है।
1: अंग सिर्फ सत्ता और व्यापार तक सीमित नहीं था, इसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान भी थी। यहाँ बोली जाने वाली अंगिका भाषा आज भी इस क्षेत्र में जिंदा है। लोकगीत, मेले और परंपराएं सब में झलकता है हजारों साल पुराना इतिहास। भागलपुर को आज सिल्क सिटी कहा जाता है। रेशम उद्योग की यह परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि प्राचीन अंग काल से चली आ रही है। यानी इतिहास आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में सांस ले रहा है।
2: भागलपुर एक बेहद प्राचीन, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसका अपना एक ऐसा इतिहास है जहाँ पर पौराणिक कथाएं भी हैं। और ये देखिए, ये जैसे मंजुषा आर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, मंजुषा आर्ट जो है वो अंग प्रदेश की पहचान है। क्यों ना हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी जगह लिए चलें जहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अभी हालांकि मुझे लग रहा है कि ये भी कैनवस अधूरा है, दो हिस्सों में हुआ है और आगे अभी पेंटिंग बाकी है। नाम कहाँ से आता है मंजुषा का?
6: मंजूषा एक बहुमंजलीय नौका है
2: जी।
6: जिसमें सती बिहुला अपने मृत पति को रख के देव शक्ति को चुनौती देकर स्वर्ग गई और अपने मृत पति और छह भैसुर को जीवित कर लाई। तब से ये मंजूषा,
2: भैसुर मतलब पति के बड़े भाई जी, जेठ जिनको कहते हैं। हाँ। जी।
6: और वो जब वहाँ से सबको जीवित कर लाई तब यहाँ पे एक खुशी का माहौल हुआ और बिहुला का जय जयकार हुआ और बिहुला सती कहलाई। तब भगवान शिव के आदेश पर चंद्रधर सौदागर मां मनसा का पूजा किए और यहां पर एक लोक पर्व की शुरुआत हुई, बिहुला विषहरी। और मंजूषा कला यहां की लोक पर्व बिहुला विषहरी पर आधारित लोक कला, वो पारंपरिक कला है जिसे एशिया की पहली कथा चित्र मानी जाती है।
2: जनरली हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज्यादा सुनते हैं इसीलिए, लेकिन ये मंजुषा बिल्कुल अलग कला है ना?
7: बस तीन ही कलर है इसमें
2: जी, तीन ही कलर होते हैं।
7: हाँ,
2: एक पेंटिंग में इस्तेमाल।
7: हाँ।
2: अच्छा, मतलब अब आप लोग विस्तार कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे भी इसको?
7: जी हाँ, हाँ बहुत हाँ। कुछ बनाते हैं, साड़ी हुआ, टेबल क्लॉथ हुआ, आपका कोवर बनता है साथी ब्याह में जो, वो बनाते हैं।
2: अच्छा,
7: अब तो शादी ब्याह जैसे शादी में जाते हैं ना हम लोग ना, तो गिफ्ट ही करते हैं, पेंटिंग ही देते हैं। मंजुषा पेंटिंग,
2: मंजुषा पेंटिंग
7: जी हाँ।
1: आज अंग कोई अलग राज्य नहीं है, लेकिन इसकी पहचान आज भी कायम है। बिहार के इस हिस्से में इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। जहां अतीत की विरासत आज के विकास की नींव बनती है, जब आज राजनीति में अंग बंग और कलिंग की बात होती है तो उसमें अंग का नाम इसलिए शामिल होता है क्योंकि ये क्षेत्र कभी पूर्वी भारत की ताकत का केंद्र रहा है, एक ऐसा इलाका जिसने इतिहास की दिशा तय की।
8: भारत समृद्ध था तब उसके तीन मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग।
1: आज अंग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की प्राचीन ताकत, संस्कृति और संघर्ष की कहानी है। इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमें ये अपनी जड़ों की याद दिलाता है।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद देखिए बंग और कलिंग की कहानी।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।

0: कल सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय वीसीके और आईयूएमएल ने भी समर्थन दिया। 13 मई है, उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। कल दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार। 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस अब भी बरकरार। दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। बंगाल का सीएम बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी। सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्षी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक अहम ठिकानों पर आईईडी से धमाके का खतरा। बीजेपी मुख्यालय समेत कई जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: बंग सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इतिहास, विचार और व्यापार की ताकत है। पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे प्राचीन बंग क्षेत्र तक इस धरती ने देश को दिशा भी दी है और दृष्टि भी। कभी ग्लोबल ट्रेड हब रहा ये इलाका, आज फिर नई संभावनाओं के केंद्र में है।
3: अंग बंग और कलिंग, इतिहास का वो त्रिकोण जिसने कभी हिंदुस्तान की तकदीर लिखी। बंग वो साम्राज्य था जहां से चली सोच, जहां से उठा विरोध और जहां से बनी देश की दिशा। यह आज का पश्चिम बंगाल, लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि इतिहास में यह इलाका बंग था। एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि भारत की पहचान में बसता था।
4: वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी।
3: आज का बंगाल और उससे कहीं बड़ा था प्राचीन बंग, जहां आज है भारत और बांग्लादेश, कभी एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र था। समृद्ध था, ताकतवर था और असरदार था। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनका विशाल डेल्टा, ये वही जमीन है जिसने बंग को बनाया, जो भारत का सबसे उपजाऊ इलाका था। खेती ऐसी कि पेट पूरे क्षेत्र का भरता था और व्यापार ऐसा था कि दुनिया तक बंग की चर्चा होती थी।
5: एक तो कारण जियोपॉलिटिकल था और जियो भौगोलिक भी था, जो एक प्रकार से वहाँ का जो सीमा विस्तार है वो विस्तार एक बहुत बड़ा है। वहाँ से काफ़ी देशों में जाना संभव था, काफ़ी प्रदेशों में जाना भी संभव था। तो आज तो हम केवल बंगाल यानी हमारे पास जो छोटा सा टुकड़ा है वो वास्तव में इतना नहीं था, पूरा बंगाल था और उसके साथ जुड़ा हुआ था असम भी, उसके साथ अलग प्रदेश भी जुड़े हुए थे। तो एक बड़ा बंगाल था और वह ढाका हो या कोलकाता हो या फिर वो तो अपने पूरा नए नाम है लेकिन पुराने नाम मैंने जो बताए, इस प्रकार की बांग्ला बंगाल की जो रचना थी वो शासकीय दृष्टि से एक बड़ा प्रभावी ढंग से काम करती थी।
3: समुद्र से कनेक्शन बंग की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दो नहीं, कई बंदरगाह थे जहां से निकलते थे जहाज सीधे दक्षिण पूर्व एशिया तक। मतलब साफ है कि बंग उस दौर का ग्लोबल ट्रेड हब था। बंग सिर्फ एक इलाका नहीं था, ये एक सिस्टम था जहां खेती, व्यापार और संस्कृति तीनों साथ साथ दौड़ते थे, जिसकी झलक आज कुछ धुंधली नजर आने लगी है। अंग्रेजों के दौर में बंग सत्ता का सेंटर था, कोलकाता तब का कलकत्ता था और ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया और यहीं से चलता था पूरा हिंदुस्तान। लेकिन बंग यानी पंगाल सिर्फ सत्ता नहीं, सोच भी देता है। यहीं से उठी क्रांति की लहर, जहां से बदली सोच, बदला समाज और बदला देश। आजादी की लड़ाई में बंग सबसे आगे था। क्रांतिकारी आंदोलन हो या जन आंदोलन, हर बार बंग ने दिखाई रहा। बंग का मतलब रंग, राग और रस, दुर्गा पूजा, संगीत, साहित्य। यहाँ हर चीज में एक अलग ही जुनून है। आज राजनीति की वजह से बंग विकास में थोड़ा पीछे है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बंग को एक बार फिर से बेहतर बनाना है। पोर्ट, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी, यहाँ सब कुछ मौजूद है। कभी देश के अर्थव्यवस्था में बंग का बड़ा रोल था, पीएम फिर से वही चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा ये इलाका सुरक्षा से लेकर व्यापार तक हर लिहाज से गेम चेंजर है।
2: कलिंग, जहां इतिहास ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक सोच को जन्म दिया। आज का ओडिशा कभी समुद्री ताकत, व्यापार और परिवर्तन का केंद्र था। कलिंग युद्ध ने एक सम्राट को बदल दिया और उसी धरती ने भारत को एक नई दिशा दी। आज जब विकास, संसाधन और रणनीति की बात होती है तो कलिंग फिर से चर्चा में।
3: कलिंग एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की पहचान का अहम अध्याय है। आज का ओडिशा, लेकिन कलिंग की कहानी सिर्फ ओडिशा की नहीं है। कुछ हिस्सा आज के आंध्र प्रदेश का भी था, कुछ हिस्सा आज के मध्य प्रदेश का भी था। इतिहास में यही इलाका कलिंग कहलाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने युद्ध भी देखा और बदलाव भी। यह आज का ओडिशा, लेकिन हजारों साल पहले इसी धरती पर बसा था शक्तिशाली कलिंग। समुद्र किनारे फैला हुआ, रणनीतिक तौर पर बेहद अहम और व्यापार के लिहाज से बेहद समृद्ध।
6: समुद्र पर शासन जो करेगा वो पूरी दुनिया जीतेगा, ये ऐतिहासिक तथ्य है। कलिंग को याद करना यानी समुद्र की लहरों पर शासन करने वाले शासकों की महान परंपरा को याद करना है। सात समुंदर तक व्यापार कर सकने वाले उन महान व्यापारियों को, सार्थवाहों को याद करना है। कलिंग भारत की का दुनिया के साथ होने वाले व्यापार का द्वार था।
3: कलिंग की सबसे बड़ी ताकत थी इसका समुद्र से जुड़ाव, लंबा समुद्री तट और उससे जुड़ा व्यापार। यही वजह थी कि कलिंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी पहचान बना चुका था। यहाँ से निकलते थे जहाज जो जाते थे श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड तक। मसाले, हाथी दांत, कपड़े और कई कीमती चीजें कलिंग को बनाती थी उस दौर का एक बड़ा ग्लोबल ट्रेड हब। लेकिन कलिंग की कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये कहानी है उस युद्ध की जिसने पूरे भारत की दिशा बदल दी। करीब 261 ईसा पूर्व एक शक्तिशाली राजा थे सम्राट अशोक। उनका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था। अंग और बंग प्रदेश को जीतने के बाद अब उनकी नजर थी कलिंग पर। कलिंग एक मजबूत और समृद्ध राज्य था जो आसानी से झुकने वाला नहीं था। युद्ध शुरू हुआ और इतिहास की किताबें बताती हैं कि बहुत भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, सैनिक भिड़े, हर तरफ चीख पुकार मच गई। हजारों नहीं, लाखों लोग मर गए, हजारों घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। आखिरकार अशोक ने कलिंग को जीत लिया। जीत अशोक के नाम हो गई, लेकिन जब युद्ध के बाद अशोक मैदान में पहुंचे तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। घायल लोग, रोते हुए बच्चे, अपनों को खो चुके परिवार, अशोक ये सब देखकर अंदर से हिल गए। उन्हें समझ आया कि ये कैसी जीत है जिसमें सिर्फ दर्द और विनाश है। कहते हैं यही वो पल था जब एक योद्धा बदलने लगा। अशोक ने तय किया कि अब वो तलवार से नहीं शांति से राज करेंगे। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया।
5: जो नहीं था वेद में, वैसे श्लोक उनमें शामिल कर दिए गए और इसकी आधार पर कुछ ही लोगों का अधिकार ज्यादा और बाकी सबका नहीं। ऐसा कहा गया ये स्त्री को वेद नहीं पढ़ सकती, हरिजन वेद नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मणों का ये अधिकार है। ये सब था नहीं वेद धर्म में, कभी नहीं था। बाद में धीरे धीरे इन अलग अलग जो वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले स्थापित हित वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये घुसा दिया। श्लोक तो आते थे और संस्कृत है, सामान्य आदमी को तो आती नहीं थी, इसलिए सामान्य आदमी मान लेता था। ऐसे दिनों में, और हमारे यहाँ देखो कि प्रत्येक ऐसा जब जब समय आता है तब एक नया साहस, नया पराक्रम, नया आंदोलन हो जाता है। बौद्ध धर्म इसी प्रकार का आंदोलन था।
3: यानी कलिंग की धरती पर हुआ ये युद्ध सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं था, बल्कि एक राजा के दिल और सोच के बदलने की कहानी बन गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। युद्ध छोड़ शांति का रास्ता अपनाया गया, बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा और भारत की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। मौर्य साम्राज्य में शामिल होने के बाद भी कलिंग का महत्व कम नहीं हुआ। समुद्री व्यापार, खनिज संपदा और रणनीतिक स्थिति, तीनों ने इसे हमेशा खास बनाए रखा।
6: ढंग से कलिंग का विचार करेंगे तो वो भी महाराज बलि के पुत्र कलिंग के द्वारा स्थापित हुआ था, और कलिंग की विशेषता उसकी नौकायन की, समुद्र के लहरों पर शासन करने की, जिसके कारण से ये जो कलिंग शासन था वो श्रीलंका में, जावा में, सुमात्रा में, बर्मा में, श्याम में, सर्वत्र प्रसारित होता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए कलिंग की जो लिपि है उस लिपि के असर भी दिखाई देते हैं।
3: आज का ओडिशा यानी प्राचीन कलिंग देश के सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, ये सब यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी जहाँ एक तरफ इतिहास है वहीं दूसरी तरफ भविष्य की संभावनाएं भी। कलिंग की पहचान सिर्फ युद्ध और व्यापार नहीं, इसकी संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा और सदियों पुरानी परंपराएं, ये सब क्षेत्र की आत्मा है। यहाँ की कला, नृत्य और परंपराएं आज भी उसी गौरव की कहानी कहती हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। आज जब विकास की बात होती है तो ओडिशा यानी कलिंग फिर से चर्चा में है। पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसे पूर्वी भारत का पावर हाउस बना सकते हैं। रणनीतिक तौर पर भी ये इलाका बेहद अहम है। समुद्र के रास्ते व्यापार और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी। आज जब अंग बंग और कलिंग की बात होती है तो इसमें कलिंग का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये त्रिकोण सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट भी माना जाता है।
2: फिलहाल कहानी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक।

0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में कल दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। यूपी में 6 नए मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश लोधी मंत्री बन सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी राज्यपाल से, उनकी मुलाकात, और अब कल दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। और जातीय समीकरण बिठाने के लिए ये कैबिनेट का विस्तार इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चुनाव की दहलीज पर उत्तर प्रदेश और उससे पहले 6 नए मंत्री शपथ लेंगे, और सूत्रों के मुताबिक जो नाम है वो भी सामने आ रहे हैं। मनोज पांडे ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए, भूपेंद्र चौधरी बड़ा जाट चेहरा पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल को भी पूरा साधने के, यानी कि क्षेत्र और जाति हर समीकरण को सेट करने का पूरा प्रयास है। कृष्णा पासवान है पासवान समाज से, हंसराज विश्वकर्मा है, सुरेंद्र दिलेर है, कैलाश लोधी का भी नाम सामने आ रहा है। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরির প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জি যিনি ভারতের সংবিধান।
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
3: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
4: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
5: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
7: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
8: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता, आज तक।
9: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
3: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
3: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
10: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टर ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
2: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा ये जनसंघों का, आरएसएस का, बहुत आरएसएस का ही था आदमी। वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया। अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
9: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More favorite country roads.
15: Thank God I get to wake
14: and everything
15: up
14: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

पद की शपथ लेंगे विजय वीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई, या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्ष नेताओं से एकजुट होने का किया आह्वान।

0: समेत कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तमिलनाडु में जोसेफ विजय की ताजपोशी, सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण, राहुल गांधी भी होंगे शाम। शनिवार शाम तमिलनाडु राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपने के बाद से सीएम बनने का रास्ता साफ, टीवीके ने राज्यपाल को 120 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। बीसीके और आईयूएमएल ने उनकी पार्टी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया, दोनों ही दलों के पास दो दो विधायक हैं। जोसेफ विजय को 13 मई और इससे पहले विधानसभा में साबित करना होगा विश्वास मत, राज्यपाल ने दिया निर्देश। तमिलनाडु में चार दिनों से जारी राजनीतिक असमंजस अब खत्म, टीवीके को अपने 107 विधायकों के साथ 118 के मैट्रिक आंकड़े को जुटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। होगा कैबिनेट का विस्तार, दोपहर 3:30 बजे 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में राज्यपाल से की मुलाकात, आनंदीबेन पटेल को मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी गई। यूपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री, जाट समाज के बड़ा एक फेस हैं भूपेंद्र। ब्राह्मण वर्ग के मनोज पांडे को मिल सकता है मौका, समाजवादी पार्टी के बागी और फिलहाल रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक। हंसराज विश्वकर्मा भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल, हाथरस से विधायक सुरेंद्र दिलेर भी मंत्री बन सकते हैं। फतेहपुर में खागा में विधायक कृष्ण पासवान का नाम भी संभावित सूची में शामिल, कन्नौज से कैलाश लोधी भी शपथ ले सकते हैं। आज योगी कैबिनेट के विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज पूछा, पोस्ट करके लिखा कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या, मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी बने बंगाल के नए मुख्यमंत्री, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया, पीएम मोदी ने उन्हें गले भी लगाया। पीएम के अलावा गृहमंत्री शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ पांच और बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, दिलीप घोष, अंडे मित्रा पॉल, निश्चित प्रमाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बनगांव उत्तर से नवनिर्वाचित विधायक अशोक कीर्तनिया ने भी शपथ ग्रहण किया और वो लगातार दो बार से विधायक है, मथुआ समुदाय से आते हैं, सक्रिय रहते हैं। अग्नि मित्रा पॉल ने भी दिग्गज नेताओं की सूची में अपनी जगह बनाई है और फैशन डिजाइनर से नेता बने अग्नि मित्रा आसनसोल दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक। बंगाल के सीएम बनते शुभेंदु अधिकारी का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालयों का बंटवारा। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट होने की अपील की है, कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आना हो, लेफ्ट हो या अल्ट्रा लेफ्ट हो। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रूपा गांगुली ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, हम राज्य का विकास करेंगे। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार, अब लोगों को उम्मीदें हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को हम पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी को 98 साल के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को सम्मानित किया, पीएम ने उन्हें गले लगाया, पैर छूकर आशीर्वाद दिया। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए दोनों ही पर्यवेक्षक हैं। 12 मई को असम में सीएम पद की शपथ होगी, सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू, हेमंता का नाम लगभग। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने किया अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई। सीएम भगवंत मान ने कार्रवाई को राजनीतिक बदली की कार्रवाई बता, छापेमारी से पंजाब में सियासी भूचा। संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से बढ़कर आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में बीजेपी के दफ्तर का घेराव का ऐलान। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का तंज, कहा कि पंजाब की सरकार को बदनाम करने के लिए और कितने हथकंडे अपनाएगी केंद्र सरकार। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी से बीजेपी आप को घेराबंदी, कहा कि बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल और आम आदमी पार्टी कर रही है विजिलेंस का इस्तेमाल। 11 मई को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, सोमनाथ अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। आज तेलंगाना और कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बेंगलुरु आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आज ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का 70वां। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के सम्मान में आयोजित अभिमानोत्सव में हिस्सा लेंगे। शिरडी के साई दरबार पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवार के साथ किए दर्शन। दिल्ली में केरल कांग्रेस नेताओं की दसरा चटर्जी मार्ग पर बैठक, करीब 3 घंटे तक चली बैठक। पुडुचेरी के कराईकल पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार, तिरुनेरलार मंदिर में पूजा अर्चना की। दरगाह के पास में दीवार तोड़ने पर झुंझुनू में तनाव, मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, पुलिस से तीखी बहस। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप।
आज तक की खबर का असर, भोपाल में पैसेंजर के दांत तोड़ने वाले टीटीए के खिलाफ रेलवे ने दायर की चार्जशीट। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, सूत्रों के अनुसार आतंकवादी आईईडी का इस्तेमाल करके शहर के अहम ठिकानों को बना सकते हैं निशाना। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर बीजेपी दफ्तर के बाहर बढ़ाए गए सुरक्षा, कई जगहों पर पुलिस की गश्त। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी युद्ध पोत अचल, अत्याधुनिक तोपों से लैस मॉडर्न वॉरशिप की 27 नॉटिकल मील प्रति घंटा रफ्तार। प्रयागराज में यश श्रीवास्तव को कमाल भारतीय सेना के लिए तैयार कर रहे हैं स्वदेशी लड़ाकू विमान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणि होंगे देश के नए सीडीएस, मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान की जगह लेंगे। संभाजीनगर में निदा खान की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को सौंपा ज्ञापन। धर्मांतरण मामले में नासिक में निदा खान की मां और पुलिस वालों से पूछताछ, बाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर निकले। शिवपुरी में प्रेमिका और बेटी ने फिल्मी अंदाज में अपहरण की घटना, सीसीटीवी में कैद हुए 11 लोगों पर पुलिस ने केस किया दर्ज। बठिंडा में रोड रोलर्स ने पिता और बेटी को कुचल दिया, पिता की मौत, अस्पताल में बेटी का इलाज। जामनगर में सात रास्ता से जनता फाटक जाने वाला मार्ग पर ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई, कार ने ई बाइक को टक्कर मार दी। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में दो माली की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिहार के सहरसा में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान, 8वें फेज में 73 मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल सौंपे गए, 71 लाख रुपए के मोबाइल फोन खो गए थे बरामद। खगड़िया में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल, हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत दो लोग घायल। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई की हत्या कर दी, छोटे भाई की बीवी पर गलत नजर डालने की वजह से भाई की हत्या की। झांसी में शादी के 3 महीने के बाद उजड़ गया सुहाग, ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले युवक जितेंद्र प्रजापति की सड़क हादसे में मौत। बिजनौर में डीएम के आदेश पर 22 साल के एक युवक का शव कब्र से निकलवाया गया, 2 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हुई थी। झांसी में बुंदेली लोकगीत गायिका लाड कुंवर की बेरहमी से हत्या के बाद से शव जला गया, जंगल में मिली जली हुई लाश, इलाके में सनसनी। सोनीपत में भूसे की बोरियों में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी, ट्रॉले से 1000 से ज्यादा की शराब की पेटियां बरामद। ओडिशा के गंजर में बस और एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर, एक शख्स की मौत, लगभग 15 लोग हैं। सूरत पुलिस कंट्रोल रूम में मिली एक कॉल ने खोला अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का राज, 110 मोबाइल फोन जब्त। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव की भव्य तैयारियां, मंदिर के पास आसमान

0: राज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त ने की पूजा, परिवार के साथ दर्शन कर मतदाताओं को दिया धन्यवाद। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 256 करोड़ रुपए, आधारभूत ढांचे के साथ तमाम परियोजनाओं पर काम भी जारी। बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंचे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर से बदलेगा मौसम, मौसम विभाग की ओर से आंधी बारिश का अलर्ट, 11 से 14 मई के बीच में दिखेगा राज्य में इम्पैक्ट। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, माता टेकर आशीर्वाद लिया। वाराणसी में गंगा तट पर सजी सांझ प्रणामी संगीतांजलि, शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की जयंती पर आयोजन हुआ। अगस्त से भारतीय रेलवे 40 साल पुराने टिकट बुकिंग सिस्टम को बदलकर लागू करेगा नया सिस्टम, टिकटिंग और रिजर्वेशन में भी बदलाव होगा। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए के हमले के बाद गांव वालों ने दिखाई दिलेरी, तेंदुए को घेर कर बांधा, बाद में वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रगतिवादी और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो ने मनाया सोमवार जन्मदिन और पिकाडिली सर्कस के विशेष लाइट शो से शुभकामनाएं दी गई। बाद पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: যিনি ভারতের সংবিধান আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে সুধীর টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিয়ে। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू।

0: और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
1: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
0: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়, পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়, পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
0: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
0: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना, ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
4: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, गोभी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
0: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया, वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
5: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा शरद के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
6: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
0: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
1: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
2: आमी शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब।
0: सत्ताईस नवंबर 2020 की बात है, एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे, शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई, रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे, बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
7: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
0: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
8: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण
0: को 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
8: प्रिय सांसद,
0: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
8: दशरथ तिर्के महाशय,
0: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
8: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
0: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
9: 8 लाख वोटे यदि माननीय के हराते ना पारि, हमी राजनीति छेड़े देव, हमी राजनीति छेड़े देव, आप लिखे रखो।
0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
10: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
11: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है। और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है, हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
10: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
0: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई, और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
12: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
0: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
13: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है, और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
13: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टिकरण राजनीति,
14: भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
0: फिर आया 2026 का चुनाव, शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
15: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
16: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है, और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: अब ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

पद के शपथ लेंगे विजय पीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई, या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।

0: कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी, ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরির প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জী যিনি ভারতের সংবিধান।
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
3: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিও সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীও নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদী টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
4: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
5: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
7: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
8: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता, आज तक।
9: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
3: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
3: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
10: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टर ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
2: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए, आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया, और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, गोभी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत, आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
9: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
14: আমি শুভেন্দু অধিকারী সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব।
1: 27 नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए विसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
15: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
1: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
16: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरुण
1: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
16: प्रिय सांसद,
1: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला। दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
16: दशरथ तिर्के महाशय,
1: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
16: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
1: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
17: 7 लाख वोटे यदि माननीय के हराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आप लिखे राखो।
1: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
18: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
1: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
19: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
14: आमी शुभेंदु अधिकारी,
1: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है। और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
18: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
1: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
20: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
1: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
2: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
1: यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
2: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसेज छोड़ के आया है।
1: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
21: शुभेंदु भाई हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
14: आमी शुभेंदु अधिकारी।
1: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
9: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
1: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
22: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी
0: उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्यूनिसिपलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
1: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन एएफआई का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ टीएमसी की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
14: आमी
1: आज तक ब्यूरो
14: शुभेंदु अधिकारी।
9: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़नी तय माने जा रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

विजय पीसीके और आईयूएमएल ने समर्थन दिया 13 मई, उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और के सी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।

0: कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। बाद पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরী প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জী যিনি ভারতের সংবিধান।
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
3: নামে শপথ করিতেছি যে বিজেপি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদি কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাওনে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভী শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সির্ফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
4: बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
5: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
7: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
8: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
9: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
3: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
3: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
10: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टर ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
2: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट थे बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालबानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का, आरएसएस का बहुत

0: बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
1: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
2: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
3: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
5: हमें शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
2: सत्ताईस नवंबर 2020 की बात है, एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे, शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई, रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे, बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
6: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
2: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
7: शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण
2: को 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
7: प्रिय सांसद,
2: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
7: दशरथ तिर्के महाशय,
2: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
7: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
2: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
8: 7 लाख वोटे जदि माननीय के हारा देना पारी, आमी राजनीति छेड़े

0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
1: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
2: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी
0: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है। और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है, हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
1: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
0: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई, और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
4: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
0: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
5: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है, और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
5: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का
6: ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
0: फिर आया 2026 का चुनाव, शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
7: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
8: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
0: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
9: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्युनिसिपलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
0: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन AFI का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यही उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी TMC में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर TMC में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
3: आमी
0: आज तक ब्यूरो।
3: शुभेंदु अधिकारी।
8: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़ने तय माने जा रहे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा।
1: And blow them up a little bit because they're not going to have enough. And then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin it.
0: इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अब ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय वीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई है उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।

0: जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। बाद पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: যিনি ভারতের সংবিধান আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীও নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্র্যান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু নে জগা দি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शटील, कोलकाता आज तक।
8: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम बना है, पहली बार शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
10: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसके बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ हम लोग का परिवार। इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
14: हमें शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
1: 27 नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
15: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
1: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
16: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरुण
1: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
16: प्रिय सांसद,
1: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
16: दशरथ तिर्के महाशय,
1: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
16: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
1: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
17: 7 लाख वोटे यदि माननीय के हाराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आप ही लिखे रखो।
1: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
18: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
1: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
19: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
14: आमी शुभेंदु अधिकारी,
1: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
18: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
1: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
20: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी की तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
1: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
21: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
1: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश की।
21: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
1: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
18: शुभेंदु भाई हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
14: आमी शुभेंदु अधिकारी।
1: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
8: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
1: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
22: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी
0: उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्यूनिसिपलिटी की नगरपालिका थे और उस उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
1: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन एएफआई का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ टीएमसी की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
14: आमी
1: आज तक
14: शुभेंदु अधिकारी।
8: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़ने तय माने जा रहे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

बदलेंगे विजय वीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई है उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्ष नेताओं से एकजुट होने का किया आह्वान।

0: जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी, ईश्वर नामे शपथ करते थे

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরির প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: যিনি ভারতের সংবিধান আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া অর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে সুধীর টুডু অর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
10: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लाडवाणी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया।

0: पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
1: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
2: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
3: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
5: हमें शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब।
2: सत्ताईस नवंबर 2020 की बात है, एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई, रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के एक कमरे में 4 दिग्गज जुटे, बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
6: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
2: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
7: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण
2: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
7: प्रिय सांसद,
2: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
7: दशरथ तिर्के महाशय,
2: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
7: एमएलए हल्दिया, अशोक पिंडा एमएलए तमलुक।
2: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
8: 8 लाख वोटे यदि माननीय के हराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े।

0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
1: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
2: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी,
0: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को चुना। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है, और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
1: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
0: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई, और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
4: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
0: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
5: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है, और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
5: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का
6: ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
0: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
7: शुभेंदु बा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
8: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
0: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 जलाया था।
9: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्युनिसिपैलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
0: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन AFI का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यही उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी TMC में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर TMC में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
3: आमी
0: आज तक ब्यूरो।
3: शुभेंदु अधिकारी।
8: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़ने तय माने जा रहे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा।
1: And blow them up a little bit because they're not going to have enough. And then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin it.
0: इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

बदलेंगे विजय पीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई है उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्ष नेताओं से एकजुट होने का किया आह्वान।

0: कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাহুল্লাল সরকার সবরী প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জী যিনি ভারতের সংবিধান।
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তৌর পর শপথ।
3: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে সুধীর টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
4: बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
5: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
7: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
8: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शटील, कोलकाता आज तक।
9: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
3: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
3: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
10: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
2: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालबानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा शरद के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्टी कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
9: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
14: हमें शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
1: 27 नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथा पच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
15: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
1: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
16: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरुण
1: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
16: प्रिय सांसद,
1: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
16: दशरथ तिर्के महाशय,
1: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
16: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
1: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
16: 8 लाख वोटे जदि माननीय के आनाते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आपने लिखे राखो।
1: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
17: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
1: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
18: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
19: शुभेंदु अधिकारी,
1: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को
20: देखते
1: थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
17: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों,
19: बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
1: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
20: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
1: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
2: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
1: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
2: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
1: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
19: शुभेंदु भाई हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु भाई को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी।
1: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
9: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
1: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्त की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
21: तो अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी
0: उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्युनिसिपैलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
1: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन AFI का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी TMC में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर TMC में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
3: आमी
1: आज तक ब्यूरो
3: शुभेंदु अधिकारी।
9: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़ने तय माने जा रहे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पद के शपथ लेंगे विजय वीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई, या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्ष नेताओं से एकजुट होने का किया आह्वान।

0: कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। बाद पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी, ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জী যিনি ভারতের সংবিধান,
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তৌর পর শপথ
3: মানে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে পাশ পৌঁছে। উন্হোনে পিএম মোদি কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিও সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীও নে ভী শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্র্যান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দি। আজাদী কে বাদ পহলি বার বঙ্গাল মে ভগবা কি বয়ার বহি। বিজেপি অব বঙ্গাল মে আপনি সরকার কো সংগঠন আর ভাবনাত্মক জুড়াও দোনো কে সহারে মজবুত করনে কি রণনীতি পর কাম করতি দিখ রহি হ্যায়। ইয়াহি ওজা হ্যায় কি পশ্চিম বঙ্গাল মে ইস খাস মৌকে পর বিজেপি কা শক্তি প্রদর্শন ভি দেখনে কো মিলা, জহাঁ পিএম মোদি আর শাহ কে আলাবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর রাজ্যো কে মুখ্যমন্ত্রী ভি নজর আয়ে, জিনহোনে শুভেন্দু অধিকারী কি অগুয়াই মে বঙ্গাল কে উজ্জ্বল ভবিষ্য কা ভরোসা দিয়া।
4: बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
5: शुभेंदु अधिकारी जिन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
6: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
7: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
8: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
9: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
3: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
3: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
10: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
2: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट थे बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा ये जनसंघों का, आरएसएस का, बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की।

0: लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
1: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
3: हमें शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
0: सत्ताईस नवंबर 2020 की बात है, एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे, शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई, रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे, बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
4: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
0: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
5: शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण
0: को 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
5: प्रिय सांसद,
0: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
5: दशरथ तिर्के महाशय,
0: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
5: एमएलए हल्दिया,
0: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
6: 7 लाख वोटे यदि माननीय के हाराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आप लिखे राखो।
0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
7: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
8: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा

0: सर मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का यह प्रसंग है।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी
2: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है। और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है, हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
3: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
2: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई, और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
4: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
2: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
5: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है, और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
2: यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
5: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसेज छोड़ के आया है।
2: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
3: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी।
2: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है, और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
6: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
2: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार जलाया था।
7: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्युनिसिपलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
2: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन AFI का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यही उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी TMC में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर TMC में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया। और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
1: आमी
2: आज तक ब्यूरो
1: शुभेंदु अधिकारी।
6: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़नी तय माने जा रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा।
1: And blow them up a little bit because you're not going to have enough and then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin it.
0: इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे विजय वी सी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्ष नेताओं से एकजुट होने का किया आह्वान।

0: जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। अब आज पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরী প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জি যিনি ভারতের সংবিধান আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া অর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাওনে তালিও সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীও নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু অর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रख कर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
10: बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसके बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है। कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट थे बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा ये जनसंघों का, आरएसएस का, बहुत आरएसएस का ही था आदमी। वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इन्वाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
14: हमें
2: শুভেন্দু অধিকারী সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব।
1: नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
14: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
1: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
15: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण
1: को 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
15: प्रिय सांसद,
1: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
15: दशरथ तिर्के महाशय,
1: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
15: एमएलए हल्दिया,
1: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
16: 8 लाख वोटे यदि माननीय के हाराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आप लिखे राखो।
1: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
17: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
1: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
18: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का यह प्रसंग है।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी,
1: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को
19: देखते
1: थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
17: आपको कहकर जाता हूं डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
1: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
19: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
1: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
20: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
1: यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
20: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
1: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
17: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
21: आमी शुभेंदु अधिकारी।
1: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
8: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
1: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970, बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्त की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
0: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्युनिसिपैलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
1: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन AFI का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यही उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी TMC में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को माँ माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर TMC में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
21: आमी
1: आज तक ब्यूरो
21: शुभेंदु अधिकारी।
8: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़नी तय माने जा रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पद के शपथ लेंगे विजय पीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई, या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।

0: कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी, ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরির প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: মুখার্জী যিনি ভারতের সংবিধান।
2: আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता, आज तक।
8: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टर ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
10: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लादवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
14: আমি শুভেন্দু অধিকারী সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব।
1: 27 नवंबर 2020 की बात है, एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और

0: बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
1: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
0: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
2: शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण
0: को 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
2: प्रिय सांसद,
0: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
2: दशरथ तिर्के महाशय,
0: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
2: एमएलए हल्दिया, औसत टिंडा एमएलए तमलुक।
0: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
3: 8 लाख वोटे यदि माननीय के हराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आप ही लिखे रखो।
0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
4: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
5: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी,
0: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को चुना। थोड़ा वक्त लगा लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है, और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
4: को कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
0: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ

0: बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
1: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
0: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
2: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
0: यह असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
2: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
0: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
3: शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी।
0: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
5: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
0: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्ति की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार चलाया था।
6: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्युनिसिपैलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
0: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन एएफआई का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ टीएमसी की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया। और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
4: आमी
0: आज तक ब्यूरो
4: शुभेंदु अधिकारी।
5: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़ने तय माने जा रहे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

पद के शपथ लेंगे विजय पीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई, या उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ, अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।

0: कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। बाद पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: যিনি ভারতের সংবিধান আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া অর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে সুধীর টুডু অর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
10: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, गोभी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं हम लोग का परिवार। ये इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट से बीजेपी का, उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लादवानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा ये जनसंघों का, आरएसएस का, बहुत आरएसएस का ही था आदमी, वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मनुष्य किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है।
12: बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा, उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस का कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा।
1: बंगाल चुनाव में हिंसा का एक लंबा दौर चला है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान का जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इम्फाल के परिवारों से मुलाकात की। तमाम उम्मीदें इस सरकार से जुड़ी हैं। लोगों की भावनाएं शपथ ग्रहण में दिखाई दी, जहां अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बैनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बैनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
14: हमें
2: শুভেন্দু অধিকারী সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব।
1: नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
14: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
1: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
10: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरुण
1: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
10: प्रिय सांसद,
1: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
10: दशरथ तिर्के महाशय,
1: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
10: एमएलए हल्दिया,
1: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
10: 8 लाख वोटे जदि माननीय के हराते ना पारी, हमी राजनीति छेड़े देबो, हमी राजनीति छेड़े देबो, आपने लिखे राखो।
1: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में अब बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
15: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
1: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
16: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी,
1: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को
17: आप देखते
1: थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
15: को कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में

0: बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
1: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
2: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी की तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
1: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
3: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
1: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
3: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
1: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
4: शुभेंदु भाई हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु भाई को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है।
5: आमीन। शुभेंदु अधिकारी।
1: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें इनाम भी मिला है और आज जब बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तो शुभेंदु बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
6: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
1: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970, बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्त की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार जलाया था।
7: तो अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से काठी म्युनिसिपैलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
1: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन एएफआई का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ टीएमसी की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
5: आमी
1: आज तक ब्यूरो
5: शुभेंदु अधिकारी।
6: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़नी तय माने जा रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान।
1: If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा।
1: And blow them up a little bit because they're not going to have enough to and then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin it.
0: इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अबे ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पद की शपथ लेंगे विजय पीसी के और IUML ने समर्थन दिया 13 मई, उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु का दावा, डर का माहौल खत्म करेगी बीजेपी, सोमवार को मंत्रालय का होगा बंटवारा। उधर ममता ने विपक्षी नेताओं से एकजुट होने का किया आह्वान।

0: समेत कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। बाद पश्चिम बंगाल की बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते

0: শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা।
1: বঙ্গাল মে বিজেপি সরকার কা আগাজ হো চুকা হ্যায়।
0: যিনি ভারতের সংবিধান আমি
1: শুভেন্দু অধিকারী নে বঙ্গাল মে বিজেপি কে পহলে মুখ্যমন্ত্রী কে তোর পর শপথ
2: আমি শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি।
1: শপথ লেনে কে বাদ শুভেন্দু অধিকারী সিধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে পাশ পৌঁছে। উনহোনে পিএম মোদী কে পায়ের ছুকার আশীর্বাদ লিয়া আর মঞ্চ পর মৌজুদ বিজেপি নেতাও নে তালিয়ো সে উনকা স্বাগত কিয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নে শুভেন্দু অধিকারী কো আপনা ভগবা পটকা পহনায়া। শুভেন্দু কে সাথ পাঁচ মন্ত্রীয় নে ভি শপথ লি। সবসে পহলে দিলীপ ঘোষ নে শপথ লি। দিলীপ ঘোষ বঙ্গাল মে বিজেপি কে দিগ্গজ নেতা হ্যায়। রাজ্য মে বিজেপি কি কমান সম্ভাল চুকে হ্যায়। দূসরে নম্বর পর অগ্নিমিত্রা পল নে শপথ লি, জো না সিফ মহিলা ফেস হ্যায় বল্কি ফায়ার ব্রান্ড নেতা ভি রহি হ্যায়। ইসকে সাথ হি মধুয়া সমুদায় কে অশোক কীর্তনিয়া, আদিবাসী সমাজ কে ছুদি টুডু আর নিশিত প্রামাণিক কো ভি টিম শুভেন্দু মে জগা দিলি। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस खास मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बंगाल के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया।
3: तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी ना गो तस्करी होगी, अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा।
4: शुभेंदु अधिकारी जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
5: कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा।
6: मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनी है, विकास की राह पर बंगाल को आगे लेकर जाने वाली सरकार बनी है।
7: मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
1: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को चुना है, जिन्हें बीजेपी के उन सपनों को पूरा करना है जिसका जिक्र लगातार पार्टी के दिग्गज भावनात्मक तरीके से करते रहे हैं। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
8: बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ ली है और इस ऐतिहासिक मौके पर कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई, तो बीजेपी के लिए ये भावुक पल भी था।
2: শুভেন্দু অধিকারী, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে
1: পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কি সরকার বনি হ্যায়। পহলি বার বঙ্গাল মে বিজেপি কা পহলা সিএম বনা হ্যায়। পহলি বার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী বনে হ্যায়।
2: ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব।
1: पहली बार बंगाल में बीजेपी का बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ,
1: ये तस्वीरें अद्भुत हैं। कोलकाता का परेड ग्राउंड बीजेपी के नारों और जयकारों से गूंज रहा था। तख्तियों पर तेवर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। मंच पर मोदी के पहुंचने से पहले ही लोगों का सैलाब उमड़ आया था। ऐसे में बीजेपी की शपथ से पहले एंट्री भी शानदार थी, जिसमें रोड शो के लिए एक खास रथ तैयार किया गया था, जिसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी थे। खचाखच भरे मैदान में चारों तरफ नारों की गूंज थी, तो वहीं पीएम जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के लिए ये एक भावुक पल था। जिस सपने को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो सपना पूरे होते देख पीएम मोदी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि वो मंच पर आगे आए और घुटनों के बल साष्टांग होकर जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस मंच से यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल का विकास बीजेपी बांग्ला अस्मिता को ध्यान में रखकर करेगी। मंच पर महाकाली, दक्षिणेश्वर मंदिर और टैगोर की तस्वीरें इस बात की गवाह थी। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे जोरा सांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का घर है। शपथ के लिए बीजेपी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को चुना ताकि बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया जा सके।
10: महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके।
1: पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया, उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
11: बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 सदस्य

0: जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू और पीयूष मिश्रा के साथ मारिया शकील, कोलकाता आज तक।
1: वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें ममता बनर्जी का खासम खास समझा जाता था, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की जमीन बनाई थी, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किला ढा दिया।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
3: आमी शुभेंदु अधिकारी संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब।
0: सत्ताईस नवंबर 2020 की बात है। एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और दीदी के खास सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव महज 5 महीने दूर थे। शुभेंदु का जाना किसी बड़े किले के ढहने जैसा था। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। रूठे हुए नंदीग्राम के शेर को मनाने के लिए बिसात बिछाई गई। 1 दिसंबर की सर्द रात कोलकाता के कमरे में 4 दिग्गज जुटे। बागी शुभेंदु अधिकारी, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों माथापच्ची हुई। अगली सुबह सौगत रॉय ने ऐलान किया कि सब ठीक है, शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। लगा कि तूफान टल गया।
4: कुछ ही दिन बीते थे कि शुभेंदु अधिकारी के एक व्हाट्सएप मैसेज ने फिर से सियासी धमाका कर दिया। सौगत रॉय को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने लिखा कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है, आपने बिना समाधान निकाले सब कुछ मुझ पर ही थोप दिया, अब साथ चलना मुश्किल होगा, मुझे माफ करें।
0: इधर मेदिनीपुर में शुभेंदु के दफ्तर से ममता दीदी के पोस्टर नदारद हो रहे थे और दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा था। 17 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी को राम राम कह दिया। अगले ही दिन दिल्ली से जेड श्रेणी की सुरक्षा का फरमान आया तो समझ में आ गया कि अब शुभेंदु की मंजिल का पता बदल चुका है।
5: मंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण।
0: 19 दिसंबर 2020 का वो दिन मेदिनीपुर का मैदान जन सैलाब से अटा पड़ा था।
5: प्रिय सांसद,
0: गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के गले में बीजेपी का गमछा डाला, दोनों ने मिलकर झंडा लहराया।
5: दशरथ तिर्के महाशय।
0: शुभेंदु अधिकारी ने झुककर शाह के पैर छुए और बंगाल फतह के लिए बीजेपी के सारथी बन गए।
5: एमएलए हल्दिया, अशोक टिंडा एमएलए तमलुक।
0: 2021 का चुनाव आया तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु और ममता की असली लड़ाई। लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में शिकस्त दे दी।
6: 7 लाख वोटे यदि माननीय के हराते ना पारि, आमी राजनीति छेड़े देब, आमी राजनीति छेड़े देब, आपनी लिखे राखुन।
0: ये शुभेंदु का ऐलान था कि बंगाल की सियासत में बदलाव आना तय है। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपना नया गढ़ भवानीपुर बनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की कुर्सी खींच ली।
7: शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो।
0: अब जिस मुख्यमंत्री पद के सिंहासन पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी काबिज थी, आज उस सत्ता के सिंहासन पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं।
8: हम सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है

0: नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका यह पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का यह प्रसंग है।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी,
2: ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ममता के सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त कर चुकी है और बंगाल में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बन गई है और सत्ता की चाबी अब शुभेंदु के हाथों में सौंप दी गई है। हालांकि इसका ऐलान गृह मंत्री ने पहले ही कर दिया था।
3: आपको कहकर जाता हूँ डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है।
2: सवाल है कि शुभेंदु ने इस असंभव से काम को संभव कैसे करके दिखाया। शुभेंदु के आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे बदली, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु की एंट्री हुई और बीजेपी 77 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई और 2026 में 207 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया। गुरु और शिष्य की लड़ाई में आखिरकार शिष्य गुरु पर भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढहाने में बीजेपी की बड़ी मदद की है। बीजेपी के लिए भले ही पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, उन्हें चुनौती दे सके।
4: प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन जब तक बीजेपी को बंगाल में ऐसा कोई लोकल लीडर नहीं मिलता जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको चुनौती दे, तब तक बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मुश्किल था। और यही वजह है बीजेपी के तलाश शुभेंदु अधिकारी पर आकर खत्म हुई।
2: शुभेंदु ममता बनर्जी के बहुत खास थे, उनके आंदोलन के दिनों से उनके साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की पार्टी में एंट्री हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉरपोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
5: में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल।
2: ये असंतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। इसके बाद शुभेंदु ने पहले टीएमसी से इस्तीफा दिया, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई।
5: तो कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, सो कुछ भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है।
2: फिर आया 2026 का चुनाव। शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ रहे थे और ममता बनर्जी भवानीपुर से, लेकिन अमित शाह की सलाह पर वो ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़े।
6: शुभेंदु भाई हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु भाई को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी।
2: अब शुभेंदु के इस मेहनत का उन्हें ना बीजेपी सीएम बन गए हैं। आज तक ब्यूरो।
7: शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी, उनके पिता भी राजनेता थे। अपने पिता को देखकर शुभेंदु राजनीति में आए, छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर नंदीग्राम में बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 2011 में ममता बनर्जी की जीत का श्रेय भी शुभेंदु अधिकारी को दिया जाता है।
2: शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के सूबेदार हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया है। 15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती सर्द हवाएं पूर्वा मेदिनीपुर के एक करकुली इलाके में बह रही थी। इसी रात शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जिसके दरवाजे पर राजनीति की स्याही और देशभक्त की खुशबू एक साथ खुली हुई थी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का घर अंग्रेजों ने 3 बार जलाया था।
8: अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 सालों से कांथी म्यूनिसिपलिटी की नगरपालिका थे और उनको देख के ही शुभेंदु अधिकारी राजनीति में आई। कहीं पे ये हार ना मानने की मिजाज और शिशिर अधिकारी की इशारे पर मेदिनीपुर में पत्ते तक नहीं हिलती थी और यही मिजाज इस वक्त शुभेंदु अधिकारी में भी दिख रहा है।
2: 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति में कदम रखा। कांथी के पीके कॉलेज में लेफ्ट के छात्र संगठन AFI का एक छत्र राज था। शुभेंदु ने कांग्रेस के छात्र परिषद का सहारा लिया। यहीं उन्होंने सीखा कि विरोधियों को कैसे हराते हैं। लेफ्ट के विरोध में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को विद्रोही टापू बना दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। तब तक वो ममता बनर्जी के पाले में आ चुके थे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को जंगल महल, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। ये इलाके माओवादियों और वामपंथ के गढ़ थे। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ TMC की जड़ें जमाई। उनकी नजर 2009 के लोकसभा और 2011 के विधानसभा चुनाव पर थी। 2011 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी TMC में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता बन चुके थे। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता को मां माटी और मानुष का चेहरा दिया और शुभेंदु ने वो जमीन तैयार की जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता की इमारत बनी। वो सालों साल तक ममता बनर्जी के खास रहे, मगर TMC में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखलंदाजी और खुद की उपेक्षा होने से शुभेंदु ने ममता का साथ छोड़ने का फैसला किया और आज उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने ममता की जड़ें हिला दी। उन्हें सत्ता से बेदखल करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठे हैं।
1: आमी
2: आज तक
1: शुभेंदु अधिकारी।
7: बात अब अमेरिका ईरान तनाव की, जहां अगर डील सील ना हुई तो जंग छिड़नी तय माने जा रही है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है।

0: फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान। अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, हॉर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। And blow them up a little bit because they're not going to have enough. And then we're not going to ruin you. These guys work so hard to make things beautiful. We're not going to let a nuclear weapon ruin. इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा हॉर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: अभी ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

त्रिपद के शपथ लेंगे विजय पीसी के और आईयूएमएल ने समर्थन दिया 13 मई, उससे पहले हासिल करना होगा विश्वास मत। यूपी में मिशन 27 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, आज दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अखिलेश का तंज, दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? केरलम के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, मैराथन मंथन, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।

0: जगहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान से बीजेपी राज का उदय हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कभी ममता के साथ संघर्ष कर टीएमसी को सत्ता में लाने वाले शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले बॉस बन गए।
1: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे